0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाइची के साथ वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है।
1: पूर्वोत्तर भारत में संपर्क और विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत और जापान मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों देश बुनियादी ढांचे, शहरी विकास, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र जापान की स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र की परिकल्पना में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यह दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक सेतु का काम करता है। 2025 से अब तक जापान और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच कई उच्च स्तरीय दौरे हुए। इसी वर्ष फरवरी में जापान के विदेश मामलों के राज्य मंत्री इवाओ होरी ने भारत का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने मेघालय और असम के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की। इस वर्ष अप्रैल में मेघालय के मुख्यमंत्री जापान गए थे। इस यात्रा के दौरान एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत अगले 5 वर्षों में मेघालय के 5,000 युवाओं को जापान में कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री तकाइची कल शाम भारत की 3 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाइची के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली निजी पॉइंट इन स्पेस यानी पिंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था में उन्नत उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के सुरक्षित संचालन में सहायता मिलेगी जहां लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं है। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा कि पिंस प्रक्रिया खराब मौसम और जमीनी नेविगेशन सहायता उपलब्ध ना होने की स्थिति में विशेष रूप से उपयोगी है। इसका विकास भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने किया है। झारखंड ने पूर्वी सिंहभूम जिले में मलेरिया से 4 लोगों की मृत्यु के बाद पूरे राज्य में अलर्ट जारी किया है। सरकार ने सभी उपायुक्तों को वेक्टर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों में बुखार का सर्वेक्षण, मलेरिया की त्वरित जांच और मरीजों के समय पर इलाज के निर्देश जारी किए हैं। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा आज से शुरू हो रही है। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर पहुंच चुका है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। 57 दिनों की ये यात्रा 3 जुलाई से नुनवान, पहलगाम और बालतल मार्गों से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू होगी। पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला गया T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल बारिश के कारण रद्द हो गया। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीम 0-0 से बराबरी पर हैं। बारिश के कारण इंग्लैंड अपनी पारी शुरू नहीं कर सका। श्रृंखला का दूसरा मैच शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। और डूरंड कप फुटबॉल का 135वां संस्करण 25 जुलाई से कोलकाता में शुरू होगा। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। मैच रांची, इम्फाल, शिलोंग और गुवाहाटी में खेले जाएंगे। ये पहला मौका है जब डूरंड कप के मैच झारखंड की राजधानी रांची में भी रखे गए हैं। इसके अलावा फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने DR कांगो को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में जगह बना ली है। अटलांटा में खेले गए मुकाबले में कप्तान हैरी केन ने मैच के अंतिम 15 मिनट में 2 गोल दागकर इंग्लैंड को रोमांचक जीत दिलाई। अंतिम 16 में इंग्लैंड का मुकाबला 6 जुलाई को सह मेजबान मैक्सिको से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जब मन सच्चे भाव से ईश्वर का स्मरण करता है तो जीवन के सारे दुख और चिंताएं क्षण भर के लिए दूर हो जाती हैं। आइए भक्ति और आस्था के साथ सुनते हैं ये भावपूर्ण भजन हरिओम शरण की आवाज़ में।

गुरुवाणी हमें आत्ममंथन, विनम्रता और मानवता का मार्ग दिखाती है। जब मनुष्य दूसरों में दोष खोजने की बजाय स्वयं को परखना सीखता है, तभी उसके जीवन में सच्ची आध्यात्मिकता का उदय होता है। इसी भाव के साथ आइए सुनते हैं बलदेव सिंह रागी के स्वर में ये शब्द।

श्रोताओं, इंसान को इबादत की असल रूह और बंदगी के एहसास से रूबरू कराती मशहूर नातखवां अजीज अहमद वारिस और उनके साथियों की पुरसर आवाज में सुनते हैं ये नात। अगर दिल में मोहब्बत, इंसानियत और खालिक की याद नहीं तो इबादत भी अधूरी है।

आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। लीजिए सुनते हैं।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। सवेरे के 6:30 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस गान में आज का प्रसंग।

महाराज दशरथ के दाह संस्कार, दशगात्र विधान आदि के बाद कुलगुरु वशिष्ठ ने भरत जी को राजपद संभालने का उपदेश दिया। भरत ने इस प्रस्ताव को अस्वीकृत करते हुए कहा कि उनका कल्याण मात्र श्रीराम की चाकरी में निहित है। अवध का राजपद श्रीराम, सीता तथा लक्ष्मण की अनुपस्थिति में उनके लिए शोक का संसार बन गया है। जिस प्रकार वस्त्र के अभाव में आभूषण व्यर्थ हैं, वैराग्य के बिना ब्रह्म विचार का कोई अर्थ नहीं। रोगी शरीर के लिए जिस प्रकार नाना प्रकार के भोग, हरे भक्ति के बिना जप तथा जोग तथा जीव के बिना देह व्यर्थ है, उसी प्रकार श्री राम के बिना उनके लिए राज सिंहासन, भोग और ऐश्वर्य सभी व्यर्थ हैं। भरत गुरुजन की आज्ञा लेकर श्री राम के पास वन में जाना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा करने में ही उनके जीवन की सार्थकता है। उनका विचार है कि मात्र मोह के वशीभूत होकर गुरुजन उन्हें सिंहासन पर बैठाना चाहते हैं, जबकि धर्म के अनुसार शीलवान को ही राजपद शोभा देता है। यदि हठ करके उन्हें राज्य दे दिया गया तो पृथ्वी रसातल चली जाएगी। खुमाता कैकई की कोख से पैदा होना उनके लिए अभिशाप बन गया है।

0: अभी आप सुन रहे थे सुरेश वाडेकर के स्वर में श्री रामचरितमानस कान में आज का प्रसंग। संगीत सतीश भाटिया का था। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। श्रोताओं प्रस्तुत है आज का चिंतन।
1: शक्ति भी शांति भी भक्तों के गीत में है, धरती के वासियों की मुक्ति भी प्रीत में है। प्रेम और शांति, दोस्ती और भाईचारे का अटूट संबंध दिलों की खोट और कपट को इस प्रकार दूर कर देता है जिस प्रकार उजाले के सामने अंधेरा भाग जाता है। यह संदेश कोई नया और अनोखा नहीं है। ईश्वर के हर नेक बंदे ने, हर नबी और वली ने, हर ऋषि और मुनि ने अपने अपने अंदाज से इसे दोहराया है। हजारों वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम दुश्मनी को कभी दुश्मनी से नीचा नहीं दिखा सकते, केवल प्रेम और दोस्ती से उसे जीत सकते हैं। ये कभी न मिटने वाला कानून है। प्रभु यीशु ने सिखाया अपने दुश्मनों और विरोधियों से प्रेम और बुराई का बदला नेकी से दो। हजरत मोहम्मद साहिब ने कहा, अगर तुम ईश्वर से प्रेम का दावा करते हो तो उनके बंदों की सेवा करके दिखाओ। इसीलिए मैं कहता हूं ये संदेश अनोखा नहीं है मगर सच्चा जरूर है। मेरे विचार में पहाड़ों जैसा पुराना, समंदर जैसा गहरा, सूरज जैसा रोशन और गुलाब जैसा ताजा संदेश ये है, अपने दिल दिमाग के दरवाजों को खोल दो ताकि तंग नजरी, भेदभाव, जात पात के जाले साफ हो जाएं। मनुष्य मनुष्य को उसके असली रूप में देख सके ताकि प्रेम की धीमी धीमी किरणें ठंडी हवा बंद कलियों को फूल बना दे और मनुष्य एक दूसरे से नफरत करने की बजाय एक दूसरे के सुख दुख का साथी बनना सीखे। कौम, नस्ल, रंग, जात पात और प्रांत के भेदभाव ने देश के नक्शे को बिगाड़ दिया है जिसमें पढ़कर लोग इंसानियत का असली अर्थ भी नहीं समझ पाते। इंसानियत की केवल एक ही कसौटी है, मनुष्य का मनुष्य सम्मान करे, प्रेम करे, वो भी बिना जाति धर्म को देखे। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदोस्ता हमारा। हमारे दिलो दिमाग में ऐसी गुत्थियां पड़ गई हैं जिसकी वजह से आपसी मेलजोल और इंसानियत का एहसास कमजोर पड़ता जा रहा है। ऐसे नाजुक समय में जब जिंदगी, इंसानियत, मौत और जिंदगी के दोहराहे पर खड़ी हो, ऐसी बातों की याद ताजा रखना जरूरी है जो एकता, अमन, प्रेम और शराफत का उपदेश देती हैं।
0: अभी आप सुन रहे थे आज का चिंतन। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। सवेरे के 6:45 हो रहे हैं। प्रस्तुत है काव्यधारा। काव्यधारा में आइए सुनते हैं राजीव शर्मा का वन महोत्सव पर विशेष काव्य पाठ।
2: पहले खुद को स्वच्छ करें हम,

आस पास की साफ सफाई सबकी जिम्मेदारी है, सदा परिश्रम के आगे हर एक समस्या हारी है। आस पास की साफ सफाई सबकी जिम्मेदारी है, सदा परिश्रम के आगे हर एक समस्या हारी है। इस धरती को स्वर्ग बनाओ, इस धरती को स्वर्ग बनाओ, राम राज फिर आएगा, जिंदा वही रहेगा अब जो

बदले हमको सौ सौ पेड़ लगाना है, वरना कोई प्यासा कोई, वरना कोई प्यासा कोई बेघर

एक दवा है, वातावरण रहे निर्मल, प्राण वायु भी शुद्ध मिलेगी, शायद देख सकें हम कल। 100 रोगों की एक दवा है, वातावरण रहे निर्मल, प्राण वायु भी शुद्ध मिलेगी, शायद देख सकें हम कल, शायद देख सकें हम कल। हमको है विश्वास यही ये, हमको है विश्वास यही ये, भारत कर दिखलाएगा, जिंदा वही रहेगा अब जो

वाली पीढ़ी को जवाब हम क्या देंगे। अब संकल्प उठाने होंगे, दृढ़ निश्चय करने होंगे, वरना आने वाली पीढ़ी को जवाब हम क्या देंगे। दूर तलक ये बात जाएगी, दूर तलक ये बात जाएगी, जब राजीव सुनाएगा, जिंदा वही रहेगा अब जो हरियाली फैलाएगा। पहले खुद को स्वच्छ करें हम।

हेलमेट गाड़ी बाएं चलाएं हम, सीट बेल्ट कारों में बांधें, तेज ना हॉर्न बजाएं हम, दो पहिया पर पहने हेलमेट गाड़ी बाएं चलाएं हम, सीट बेल्ट

हम दुर्घटनाएं तभी रुकेंगी, नियम सभी अपनाएं हम। ओवरलोड ना गाड़ी रखें, डीपर का प्रयोग करें। घर पर राह देखते सारे, दुर्घटना से सभी डरें। ओवरलोड ना गाड़ी रखें, डीपर का प्रयोग करें। घर पर राह देखते सारे, दुर्घटना से सभी डरें। लाइट ब्रेक बैक लाइट को चलें अगर तो चेक करें। जांच प्रदूषण की करवा लें, गाड़ी में जब तेल भरें। लाइट ब्रेक बैक लाइट को चलें अगर तो चेक करें। जांच प्रदूषण की करवा लें, गाड़ी में जब तेल भरें। यातायात के सिग्नल देखें, यातायात के सिग्नल देखें, तब आगे को जाएं हम। दुर्घटनाएं तभी रुकेंगी, नियम सभी अपनाएं हम। आबादी है जाम लगे हैं, खुद को अगर बचाना है। अतिक्रमण हम होने ना दें, सबको यही बताना है। आबादी है जाम लगे हैं, खुद को अगर बचाना है। अतिक्रमण हम होने ना दें, सबको यही बताना है। लापरवाही से ही तो हर दिन दुर्घटना होती है। देशहयोग प्रशासन का तो सफल यात्रा होती है। लापरवाही से ही तो हर दिन दुर्घटना होती है। देशहयोग प्रशासन का तो सफल यात्रा होती है। जागरूक हो मध्य गति से, जागरूक हो मध्य गति से, अपनी मंजिल पाएं हम। दुर्घटनाएं तभी रुकेंगी, नियम सभी अपनाएं हम। सड़क सुरक्षा जागरूकता को ही लक्ष्य बनाएं हम। दुर्घटनाएं तभी रुकेंगी, नियम सभी अपनाएं हम। नियम सभी अपनाएं हम। बड़ों को नमन। ये विशाल अभिनंदन, तुम्हें मुबारक हो। ये

सबको मंचों पर तुमने खुशियां बांटी, सबको मंचों पर तुमने खुशियां बांटी, जुड़ा दर्शकों का मन।

0: खाओ।
1: अभी आप सुन रहे थे काव्य धारा, जिसमें राजीव शर्मा का काव्य पाठ आपने सुना। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। 6:55 होने को हैं, कुछ ही पलों में आप संस्कृत में समाचार सुनेंगे।
2: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ल्यां स्वीय समकक्षया सानेताकारी शीत्यनया सह वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तरीयां वार्तां करिष्यति। शिखर सम्मेलनमिदं उभाभ्यां पक्षाभ्यां द्वैपाक्षिक सहयोगं समीक्षितुं सुदृढीकर्तुं सहैव पारस्परिक हिताय क्षेत्रीय वैश्विक विषयेषु विचाराणां आदान प्रदानं कर्तुं अवसरं प्रदास्यति। द्वयोः प्रधानमन्त्रिणोः मध्ये संवादानन्तरं नैकेषां सन्धिपत्राणाम् आदान प्रदानं भविष्यति। जापानस्य प्रधानमन्त्री भारतस्य त्रिदिवसीय यात्रायै ह्यः सायं नवदिल्ल्यां सम्प्राप्ता। प्रधानमन्त्री ताकायची इत्येतस्याः इयं भारतस्य प्रथमा आधिकारिक यात्रा वर्तते। विदेश मन्त्रालयेनोक्तं यत् इयं यात्रा भारत जापानयोः मध्ये विशेष रणनीतिक वैश्विक सहमतिम् अग्रे वर्धन दिशि महत्वपूर्णा वर्तते। सामाजिक संचार पटले एकस्मिन् सन्देशे श्रीमोदिना लिखितं यत् असौ जापानस्य प्रधानमन्त्रिणा सह व्यापक चर्चायाः आशां करोति, यया भारत जापानयोः विशेष रणनीतिक वैश्विक सहमतिम् इतोपि गहनं भविष्यति। दिल्ल्यां वसन्तकुञ्ज क्षेत्रस्य नेल्सन मण्डेला मार्गेण सह द्वारका द्रुतमार्गं संयोजयन् दिल्ली नगरे 48.1 AE राष्ट्रिय राजमार्गस्य कृते 6 सुरंगस्य निर्माणाय ह्यः प्रशासनेन अनुमतिः प्रदत्ता। राष्ट्रिय राजधान्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव अवदत् यत् उत्तर प्रदेशे राष्ट्रिय राजमार्गस्य 34 इत्यस्य 17.7 किलोमीटर मितस्य सुदीर्घस्य कानपुर कबराई खण्डस्य चतुर्मार्गीय अभिगमन नियंत्रित मार्गस्य निर्माणमपि प्रशासनेन अनुमोदितम् अस्ति, यत्र संरचनाः 6 यावत् सुलभतया विस्तारयितुं परिकल्पिताः सन्ति।
3: पहला प्रोजेक्ट 6 द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 की ये टनल एक तरीके से कम्प्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
2: विकसित भारत जी राम जी अधिनियमस्य 25.2 अंतर्गतं वर्धितानि पारिश्रमिक मूल्यानि ह्यः आरभ्य समग्र देशे कार्यान्वितानि। ग्रामीण विकास मन्त्रालयेन प्रसारितायाः अधिसूचनायाः अनुसारं सर्वेषु राज्येषु केन्द्र शासित प्रदेशेषु च पारिश्रमिक अनुपातेषु श्लाघनीया वृद्धिः कृता। मन्त्रालयेन प्रोक्तं यत् प्रथमवारं प्रतिदिनं 300 कश्चन पारिश्रमिकानुपातः निर्धारितः। अनेन सुनिश्चितं भविष्यति यत् देशस्य कस्मिन्नपि भागे अधिसूचितः न्यूनतम पारिश्रमिकः अस्मात् स्तरात् अल्पं न भवेत्। ग्रामीण विकास मन्त्रालयेन प्रतिपादितं यत् अयम् अधिनियमः प्रत्येकं वित्तीय वर्षे 25.1 सवेतन वृत्तेः प्रतिभूतिं प्रदाय ग्रामीण भारतस्य सशक्तीकरणं विधास्यति। दिल्ल्याः मुख्य निर्वाचनाधिकारिणः कार्यालयेन संसूचितं यत् ह्यः पर्यन्तं राष्ट्रिय राजधान्यां 32,000 गणना प्रपत्राणाम् अंकीकरणं सम्पूर्णम्। दिल्ल्यां मतदात्री सूच्याः विशेष गहन संशोधनस्य भागरूपेण प्रायः 99,000 प्रपत्राणि वितरितानि। सम्प्रति दिल्ल्यां नैर्वाचनिक गणना प्रपत्राणां प्रतिगृहं वितरणं प्रचलति। विश्वस्य प्रमुखा कन्दुक क्रीडा प्रतियोगिता ड्यूरंट कप इत्यस्य पञ्चत्रिंशदधिकैकशततमं संस्करणं मासस्यास्य पञ्चविंशति दिनांकात् कोलकातायाम् आरप्स्यते इति वार्ताः।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय

0: महत्वपूर्ण खनिज, फार्मास्यूटिकल्स, स्वच्छ ऊर्जा और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शामिल है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान जापान के प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी के एजेंडे को आगे बढ़ाने का प्रमुख मंच बना हुआ है। वर्ष 2025 में आयोजित वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान जापान भारत मानव संसाधन आदान प्रदान एवं सहयोग कार्य योजना शुरू की गई। इसके तहत अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच 5 लाख लोगों के दो तरफा आदान प्रदान का लक्ष्य रखा गया है। इसमें भारत से जापान जाने वाले 50,000 कुशल और अर्ध कुशल कर्मी भी शामिल है। दोनों देशों के बीच विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और अन्य वरिष्ठ स्तरों पर भी नियमित रूप से बैठकें और उच्च स्तरीय आदान प्रदान होते रहते हैं। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री तकाईची भारत की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान के प्रधानमंत्री के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। भारत और मलेशिया ने कल नई दिल्ली में आपसी सैन्य सहयोग की समीक्षा की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बैठक में दोनों पक्षों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और मुक्त आवाजाही को लेकर प्रतिबद्धता व्यक्त की। 12वीं उप समिति की बैठक में दोनों देशों के बीच मौजूदा रक्षा पहलू, सैन्य संपर्क, द्विपक्षीय अभ्यास, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, समुद्री तथा अन्य उभरते क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली निजी पॉइंट इन स्पेस यानी पेन से व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था में उन्नत उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के सुरक्षित संचालन में मदद मिलेगी जहां लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्यव्यापी विशेष भूमि मापन अभियान डीजी रोवर की शुरुआत की है। ये अभियान 15 अगस्त तक चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सहारनपुर में इस अभियान की शुरुआत की। अभियान में हर तहसील में भूमि सीमांकन और मापन से जुड़े मामलों का समाधान नई तकनीक से किया जाएगा। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में अब तक 32,000 से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटीकरण किया जा चुका है। राष्ट्रीय राजधानी में अब तक करीब 9,99,000 प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं। झारखंड सरकार ने पूर्वी सिंहभूम जिले में मलेरिया से 4 लोगों की मृत्यु के बाद राज्य में स्वास्थ्य अलर्ट जारी किया है। सरकार ने रक्त संक्रमण से फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए सभी उपायुक्तों को तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था आज जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से रवाना हो चुका है। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनु सिन्हा ने जत्थे को रवाना किया। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। 57 दिनों की ये यात्रा 3 जुलाई से नुनवान, पहलगाम और बालतल मार्गो से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू होगी। पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला गया T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल बारिश के कारण रद्द हो गया। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीम 0-0 से बराबरी पर हैं। डूरंड कप फुटबॉल का 135वां संस्करण 25 जुलाई से कोलकाता में शुरू होगा। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। मैच रांची, इम्फाल, शिलांग और गुवाहाटी में खेले जाएंगे। फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। अटलांटा में खेले गए मुकाबले में कप्तान हैरी केन ने मैच के अंतिम 15 मिनट में 2 गोल दागकर इंग्लैंड को रोमांचक जीत दिलाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 7:05 हो रहे हैं। प्रस्तुत है स्वास्थ्य चर्चा।
3: ये तंबाकू का सेवन एक आदत के तहत है, भोजन का हिस्सा तो नहीं कहेंगे लेकिन आदत का हिस्सा जरूर है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि इसके सेवन में पिछले 3 दशकों में कोई खास एप्रिशिएबल गिरावट दिखाई नहीं दे रही है। स्मोकिंग में जरूर थोड़ी सी कमी आई है, पिछले कुछ सालों में, लेकिन बाकी जो तंबाकू सेवन के तरीके हैं उसमें कहीं कोई गिरावट

0: नहीं आई है। यही वजह है कि गले के कैंसर और इससे मिले हुए कैंसर जो हैं, वो उनका अनुपात अभी भी उतना ही है जितना पहले था। तंबाकू के अंदर कुछ पदार्थ हैं निकोटीन, और इसके अंदर जो कुछ जो प्रोसेस होती है तंबाकू को प्रोसेस करने के लिए, उससे कुछ हाइड्रोकार्बन्स हैं जो कि कैंसर प्रोड्यूस करते हैं, जो कैंसर जीन है उस पर सीधे जाकर अटैक करते हैं। तो यही कारण है। तीसरी चीज, इसके अंदर कुछ अलग तरह प्रकार के तेजाबों का इस्तेमाल किया जाता है इसके प्रोसेस में, जिसके लगातार कांटेक्ट में आने से उन जगहों के कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जो सिगरेट से रिलेटेड हैं, उनका लंग कैंसर की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा है, और लगभग जो लोग सिगरेट स्मोक करते हैं उनको कैंसर होने की संभावनाएं लगभग 20 से 30 गुना बढ़ जाती हैं। साथ ही फेनी रखने की मुंह में आदत, तंबाकू को गाल के नीचे दबाने की आदत, और तंबाकू का सेवन करने से गले का कैंसर, ओंठों का कैंसर, बकल कैविटी का कैंसर, ईसोफेगस का कैंसर, ये कैंसरों की नंबर्स बढ़ते चले जाते हैं। और सबसे ज्यादा यानी कि बकल कैविटी के कैंसर जो हैं वो मुंह से लेने वाली तंबाकुओं से ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये और ध्यान देने की बात है कि इससे ना केवल मुंह के और फेफड़े के कैंसर, बल्कि शरीर के हर हिस्से में कैंसर बढ़ने के चांसेस होते हैं, क्योंकि ये एक सिस्टमिक डिजीज है, सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट है इस ड्रग का, इसलिए बाकी जगहों पे भी कैंसर पाए जाते हैं। एक्टिव स्मोकिंग और पैसिव स्मोकिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो पब्लिक प्लेसेस हैं, जो लोग सिगरेट स्वयं सेवन करते हैं, तो वो कुछ अंश धुएं का अपने अंदर लेते हैं, उसको कहते हैं हम एक्टिव स्मोकिंग। और जो अंश वो बाहर निकालते हैं और जिनके आसपास बैठे हुए लोग हैं वो उस धुएं को इनहेल करते हैं, अंदर लेते हैं, और उसको कहते हैं पैसिव स्मोकिंग। ना दुर्भाग्य की बात है कि हर उम्र के बच्चे, चाहे जवान हो चाहे महिला हो, सभी उस धुएं को इनहेल करते हैं, और हर एक व्यक्ति में कैंसर प्रोड्यूस करने की क्षमताएं अलग अलग हो, तो बचपन से ही जो लोग एक्सपोज्ड हैं तो उनमें कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। न केवल कैंसर बल्कि अन्य फेफड़े की बीमारी जैसे कि ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसिमा, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीजेस, ये बीमारियां बढ़ जाती हैं। और इस दिशा में सरकार ने बड़े महत्वपूर्ण कदम भी उठाए हैं, उन्होंने नो स्मोकिंग जोन्स बनाए हैं, और अगर किसी को ऐसी परेशानी महसूस होती है धुएं से, उसका ये फर्ज है पीने वाले को मना करे कि उनसे कहे कि आप अलग जाके पिए, ये एक कानूनी अधिकार के रूप में सामने आने वाला है। ये पहले जो गर्भवती महिलाओं में जो स्मोकिंग है, ये बहुत पहले से इसका ध्यान दिया गया, और इसमें पाया गया कि बच्चे की ग्रोथ के ऊपर इसका काफी महत्वपूर्ण असर है। बच्चे के अंग बनने की जो स्थिति होती है गर्भावस्था में, उस पर असर पड़ता है, और शारीरिक विकास पर को प्रभाव पड़ते हैं। गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत अहम चीज है कि वो एक्टिव या पैसिव स्मोकिंग दोनों से बचाव रखें। सबसे पहले तो स्वयं की भूमिका है, क्या हम वास्तव में इसको छोड़ना चाहते हैं, और अगर हम वास्तव में छोड़ना चाहते हैं, जब इच्छा ये जाग जाती है, तो सिर्फ सिगरेट को फेंक देना ही सबसे आसान विकल्प है। आप सच माने ये बहुत मुश्किल नहीं है, बहुतों ने किया है और बहुत लोग ऐसा शुरुआती दौर में ऐसे करते हैं। इसके मेडिकल रूप में भी कई चार हैं, इसको छुड़ाने के कई सारे तरीके हैं, दवाइयां हैं, इसके पैचेस हैं, च्युइंगम्स हैं जिसमें निकोटीन की मात्रा काफी कम होती है, और उसके जो कुप्रभाव हैं वो बचाए जा सकते हैं। तो चाहे ओपीडी बेसिस पर, चाहे रिहैबिलिटेशन सेंटर की बेसिस की सहायता से इसका निदान किया जा सकता है।
1: अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य चर्चा, आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। सवेरे के 7:10 हो रहे हैं। प्रस्तुत है खेती की बातें।
2: किसान भाइयों नमस्कार, खेती की बातें कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और आज खेती की बातें कार्यक्रम में विषय है बाग लगाने की विधियां और सावधानियां। किसान भाइयों, फलों का बाग लगाना केवल पौधे लगाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक दीर्घकालीन निवेश है। यदि शुरुआत सही तरीके से की जाए तो एक बाग 20 से 50 वर्षों तक लगातार अच्छी आय दे सकता है। वहीं यदि शुरुआत में ही छोटी छोटी गलतियां हो जाएं, जैसे गलत भूमि का चयन, अन उपयुक्त पौध लगाना, गलत दूरी रखना या सिंचाई की उचित व्यवस्था ना करना, तो बाद में

0: लाख कोशिश करने पर भी अपेक्षित उत्पादन नहीं मिल पाता, इसलिए बाग लगाने से पहले पूरी योजना बनाना और वैज्ञानिक तरीके अपनाना अत्यंत आवश्यक है। किसान भाइयों, सबसे पहले भूमि के चयन की अगर हम बात करें तो फलदार पौधों के लिए ऐसी भूमि उपयुक्त होती है जिसमें पानी का निकास अच्छा हो। खेत में लंबे समय तक पानी नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि जलभराव से पौधों की जड़ें सड़ने लगती हैं और पौधे धीरे धीरे सूख सकते हैं। दोमट या बलुई दोमट मिट्टी अधिकांश फलदार फसलों के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। मिट्टी की गहराई कम से कम 1.5 से 2 मीटर होनी चाहिए ताकि जड़ें अच्छी तरह फैल सकें। बाग लगाने से पहले मिट्टी की जांच अवश्य कराएं। मिट्टी की जांच से यह पता चलता है कि उनमें कौन कौन से पोषक तत्व उपलब्ध हैं तथा मिट्टी का पीएच मान कितना है। सामान्यतः 6.5 से 7.5 पीएच वाली मिट्टी अधिकांश फलों के लिए उपयुक्त रहती है। यदि मिट्टी अधिक अम्लीय या क्षारीय है तो कृषि विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार उसमें सुधार करना चाहिए। बाग लगाने से पहले खेत की अच्छी तरह जुताई करें। खेत से खरपतवार, झाड़ियाँ, पत्थर तथा अन्य अवांछित वस्तुओं को निकाल दें। यदि खेत उबड़ खाबड़ हो तो उसे समतल कर लें। समतल खेत में सिंचाई और जल निकास दोनों अच्छे से होते हैं। किसान भाइयों, बाग लगाने के लिए फल का चुनाव, स्थानीय जलवायु, बाजार की मांग और सिंचाई की उपलब्धता को ध्यान में रखकर करना चाहिए। जिस क्षेत्र में आम, अमरूद, नींबू, आंवला, पपीता, अनार, केला या अन्य फल अच्छी तरह उगते हों, वहीं उन्हीं फसलों का चयन करना अधिक लाभदायक रहता है। बाजार की मांग वाले फलों का चयन करने से बेहतर कीमत प्राप्त होती है। किसान भाइयों, पौध हमेशा प्रमाणित नर्सरी से ही खरीदना चाहिए। स्वस्थ, रोगमुक्त और अच्छी गुणवत्ता वाले पौधे ही भविष्य में अच्छा उत्पादन देते हैं। किसान भाइयों, सस्ते या बिना प्रमाण वाले पौधे खरीदने से हमें बचना चाहिए, क्योंकि उनमें रोग होने की संभावना अधिक रहती है। पौधे खरीदते समय उनकी जड़ों, तने और पत्तियों को अच्छी तरह देखकर ही चयन करना चाहिए। भाइयों, बाग लगाने का सही समय भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सामान्यतः वर्षा ऋतु, विशेषकर जुलाई से अगस्त का समय अधिकांश फलदार पौधों के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। जिन क्षेत्रों में सिंचाई की अच्छी व्यवस्था हो वहां फरवरी मार्च में भी पौधे लगाए जा सकते हैं। वर्षा के समय लगाए गए पौधों में जीवित रहने की संभावना अधिक रहती है, क्योंकि उन्हें पर्याप्त नमी मिलती रहती है। किसान भाई, अब बात करते हैं कि किसान भाई गड्ढों की तैयारी कैसे करें। तो गड्ढों की तैयारी पहले से कर लेनी चाहिए। सामान्यतः 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा गड्ढा अधिकांश फलदार पौधों के लिए उपयुक्त रहता है। गड्ढे खोदने के बाद उन्हें कुछ दिनों तक खुला छोड़ दें ताकि सूर्य की रोशनी से हानिकारक कीट और रोगाणु नष्ट हो जाएं। इसके बाद गड्ढे में ऊपरी उपजाऊ मिट्टी, अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद, नीम की खली तथा आवश्यकता अनुसार उर्वरक मिलाकर उसको भर दें। किसान भाइयों, पौध लगाते समय विशेष सावधानियां रखें कि पौधे की जड़ें मुड़ी नहीं होनी चाहिए। पौधे को इतनी ही गहराई पर लगाएं जितनी गहराई तक वह नर्सरी में लगा था। पौधा लगाने के बाद मिट्टी को हल्के हाथों से दबाएं ताकि जड़ों के आसपास हवा ना रहे। इसके तुरंत बाद सिंचाई अवश्य करें। पौधे के पास सहारा देने के लिए मजबूत लकड़ी या बांस लगाएं ताकि तेज हवा में पौधा झुके नहीं। तो किसान भाइयों, ये तो थी आज की खेती की बातें। किसान भाइयों, नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे खेती की बातें। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज़ पर। सवेरे के 7:15 हो रहे हैं। पेश है संक्षिप्त जानकारी हमारे आज प्रसारित होने वाले कुछ खास कार्यक्रमों की। श्रोताओं, रात्रि 10 बजे हमारे दिल्ली केंद्र से प्रादेशिक लोक एवं सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम रिले किया जाएगा। रात्रि 9:30 पर मलय शाह का लिखा नाटक आप सुन सकते हैं, जीवन के रंग। निर्देशक सुदर्शन कुमार और

0: प्रस्तुति सहायक हैं महफूज हसन। नाटक में प्रतिभागी कलाकार हैं श्याम अरोड़ा, अश्विन कुमार, सुरेंद्र सेठी, कान्हा पंत और राजकुमारी प्रसाद। रात्रि 8:30 पर श्रोताओं के लिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा एक ही फिल्म से। शाम 7:32 पर सुगम संगीत में आज आप सुनेंगे राशिद बदर साबरी और साथियों की गाई कव्वालियां। शाम 6:45 पर विविधा के अंतर्गत सुनिएगा महेंद्र सिंह त्यागी की पुनः प्रसारित वार्ता जनपद बिजनौर के प्रमुख साहित्यकार। शाम 6:05 पर कृषि जगत में चर्चा का विषय रहेगा मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, पशुशाला प्रबंधन। भेंटवार्ता के अंतर्गत जहर मुक्त खेती और व्यसन मुक्त व्यक्ति विषय पर महिपाल सिंह से बातचीत करेंगे जितेंद्र कुमार। शाम 6:33 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम छाया गीत होगा। शाम 5:15 समय रहेगा युवा श्रोताओं के लिए ज्ञान और मनोरंजन के कार्यक्रम युवाणी का, जिसमें क्रम रहेंगे बूझो तो जाने कुछ खास है आज और कहानी के उस पार। शाम 5:00 मेरा सपना उन्नत भारत क्रम में महिला उद्यमियों के लिए भारत सरकार द्वारा संचालित योजना मुद्रा योजना महिला उद्यमी, ओरिएंटल महिला विकास योजना एवं अन्नपूर्णा योजना के बारे में जानकारी दी जाएगी। प्रातः 9:25 पर लोक संगीत के कार्यक्रम धरती गाती है में शीश राम सिंह की गाई हुई रागिनी सुनवाई जाएगी। लोकधारा कार्यक्रम होगा दिन के 1:45 पर, जिसमें आज आप सुनेंगे कविता चौहान के गाए जौनसारी लोकगीत। दोपहर 1:15 पर कार्यक्रम होगा महिला जगत। ये थी जानकारी आज प्रसारित होने वाले कुछ खास कार्यक्रमों की। सवेरे के 7:18 होने को हैं। अब हमारे लखनऊ केंद्र से प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
2: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविंद्रनाथ ठाकुर।
3: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम।
4: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
5: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं मेहनत करते हैं उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। APJ अब्दुल कलाम।
6: निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
7: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
8: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
9: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 118 किलोमीटर लंबे एक्सेस कंट्रोल कानपुर कबराई खंड के निर्माण को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जताया आभार, कहा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और कानपुर रिंग रोड को निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगा यह प्रोजेक्ट। मुख्यमंत्री ने सहारनपुर में 613 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास, कहा एयर कनेक्टिविटी से जुड़ेगा शहर। अयोध्या के श्रीराम मंदिर दान प्रकरण की जांच कर रहे विशेष जांच दल एसआईटी की समय सीमा बढ़ाई गई। और आज से शुरू हो रही है उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीईटी 2026। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब 118 किलोमीटर लंबे एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबराई खंड के निर्माण को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद मीडिया को कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस परियोजना की अनुमानित लागत 7,145 करोड़ रुपए है।
10: जो अप्रूव हुआ है 242 किलोमीटर का, ये कानपुर से कबराई 242 किलोमीटर का है। ये एक्सेस कंट्रोल रहेगा, कंप्लीट एक्सप्रेसवे की तरह का है। 2.5 इयर्स में कंस्ट्रक्शन करेंगे इसको। कानपुर, हमीरपुर, महोबा तीन जिले इमीडिएटली इससे कवर होंगे। बीओटी टोल मोड पे इसको डेवलप किया जाएगा। अभी जो 3.5 घंटे लगते हैं कानपुर से कबराई, वो मात्र 1.5 घंटे रह जाएगा।
9: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि भोपाल कानपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर का यह महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अनुरूप बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और कानपुर रिंग रोड को निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सहारनपुर में 613 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में सहारनपुर को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा, जो यहां के विकास को और गति देगा।
11: मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, रोड की कनेक्टिविटी, रेलवे की कनेक्टिविटी के साथ अब सहारनपुर अपना एयर कनेक्टिविटी के लिए भी तैयार हो रहा है। अपना स्वयं का एयरपोर्ट सहारनपुर के पास होगा। ये उड़ान सहारनपुर के नए विकास का आधारशिला बनेगी।
9: इससे पहले मुख्यमंत्री ने सहारनपुर के उच्च प्राथमिक कंपोजिट विद्यालय इस्माइलपुर से राज्यव्यापी स्कूल चलो अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान को जन आंदोलन बनाने की अपील की।
12: पिछले 9 वर्ष में 60 लाख से अतिरिक्त बच्चे बेसिक शिक्षा परिषद में पढ़े और ड्रॉप आउट रेट जो पहले 19-20% था, घट करके आज 3-4% तक रह गया है। स्वस्थ समाज के लिए कोई भी बच्चा स्कूल में जाने से वंचित न रहे। अगर कोई बच्चा शिक्षा से वंचित है तो केवल परिवार की क्षति नहीं, समाज की भी है, राष्ट्र की भी है। यही बच्चे आगे बढ़ेंगे। हमें ऐसी फौज खड़ी करनी है जो राष्ट्र के कर्तव्यशील नागरिक के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन कर सके।
9: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सहारनपुर से प्रदेशव्यापी डीजी रोवर विशेष भूमि पैमाइश अभियान का भी शुभारंभ किया। यह अभियान 15 अगस्त तक चलेगा। एक रिपोर्ट।
13: अभियान के दौरान सभी तहसीलों में सीमांकन एवं पैमाइश से जुड़े लंबित मामलों का निस्तारण अत्याधुनिक डीजी रोवर GNSS तकनीक के माध्यम से किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रत्येक नागरिक को भूमि से संबंधित सभी सेवाएं सरल, पारदर्शी, समयबद्ध और तकनीक आधारित व्यवस्था के माध्यम से उपलब्ध कराना प्रदेश सरकार का संकल्प है। उन्होंने कहा कि लंबे समय तक भूमि की पैमाइश पारंपरिक जरीब जैसी विधियों से होती रही, लेकिन बदलते समय और बढ़ते भूमि विवाद को देखते हुए अब आधुनिक तकनीक को अपनाना आवश्यक हो गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डीजी रोवर तकनीक के माध्यम से भूमि की पैमाइश पहले की तुलना में अधिक सटीक, पारदर्शी और विश्वसनीय होगी। इससे सीमांकन संबंधी त्रुटियों में कमी आएगी, भूमि विवादों और अनावश्यक मुकदमेबाजी पर प्रभावी नियंत्रण होगा तथा नागरिकों को समयबद्ध राजस्व सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। समाचार कक्ष से विवेक सिंह।
9: उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कल लखनऊ से प्रदेश व्यापी विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने संचारी रोगों से बचाव के लिए जागरूकता रैली को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही उन्होंने 11 से 31 जुलाई तक संचालित होने वाले दस्तक अभियान का भी शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि

0: इस अभियान की सफलता के लिए सरकारी प्रयासों के साथ ही जन भागीदारी भी जरूरी है। प्रदेश के वाराणसी, गोरखपुर, चंदौली, देवरिया और अंबेडकर नगर सहित लगभग सभी जिलों में कल जन जागरूकता रैलियां निकालकर लोगों के बीच संचारी रोगों से बचाव का संदेश दिया गया। गोरखपुर में अभियान का उद्घाटन करने के बाद महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने मीडिया से बात की।
1: पूरे महीने में जो है इस तरह का कार्यक्रम संचालित रहेगा। विभिन्न मलिन बस्तियों में कार्यक्रम होने हैं, वार्ड वाइज भी कार्यक्रम होने हैं, तो इस महीने हम एक सघन अभियान चलाकर इस संचारी रोगों के प्रति जागरूक बनाने का और साथ ही साथ उनको शिक्षित करना है कि इससे क्या क्या हमें फायदे हैं।
0: गोरखपुर में विशेष संचारी रोग नियंत्रण माह के दौरान हॉस्टल्स और मलिन बस्तियों में डेंगू से बचाव के लिए विशेष सफाई अभियान भी चलाया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश सरकार ने अयोध्या के श्रीराम मंदिर में चंदे के गबन के आरोपों की जांच कर रहे विशेष जांच दल SIT को 15 दिनों का अतिरिक्त समय दिया है। 15 जून को गठित SIT को 7 दिनों के भीतर प्रारंभिक रिपोर्ट और 15 दिनों के भीतर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था, जिसकी समयावधि 30 जून को समाप्त हो गई। सर्वोच्च न्यायालय ने कल मोटर दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एकरूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतन भोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। स्वरोजगार व्यक्तियों के मामले में न्यायालय ने कहा कि पिछले 3 वर्षों तक के ITR में घोषित औसत आय को सामान्यतः संदर्भ बिंदु के रूप में माना जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET 2026 आज से 4 जुलाई तक प्रदेश के 60 जिलों में 955 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। एक रिपोर्ट।
2: TET परीक्षा कुल 5 पालियों में आयोजित होगी। परीक्षा में करीब 19,94,661 अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे। इनमें लगभग 17,67,000 अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश के हैं, जबकि 2,27,481 अभ्यर्थी अन्य राज्यों से परीक्षा देने आएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा के दौरान कहा कि प्रत्येक जनपद में स्थापित कंट्रोल रूम प्रभावी ढंग से सक्रिय कार्य करें। उन्होंने सोशल मीडिया पर भी कड़ी निगरानी रखने और प्रभावी कार्रवाई निश्चित करने के निर्देश दिए हैं। समाचार कक्ष से तन्वीर फातिमा।
0: इसी क्रम में पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल आज से 4 जुलाई तक गोरखपुर और लखनऊ के बीच एक जोड़ी अनारक्षित परीक्षा स्पेशल ट्रेन का संचालन कर रहा है। इस गाड़ी में 12 अनारक्षित कोच लगाए जाएंगे। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 118 किलोमीटर लंबे एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबराई खंड के निर्माण को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जताया आभार। कहा, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और कानपुर रिंग रोड को निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगा यह प्रोजेक्ट। मुख्यमंत्री ने सहारनपुर में 613 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, एयर कनेक्टिविटी से जुड़ेगा शहर। अयोध्या के श्रीराम मंदिर दान प्रकरण की जांच कर रहे विशेष जांच दल SIT की समय सीमा बढ़ाई गई। और आज से शुरू हो रही है उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET 2026। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
4: यदि युवा को है रोजगार पाना तो होगा उसे कौशल बढ़ाना। अपने कौशल का विकास कीजिए, अपने भविष्य को संवारिए। वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें। बड़े बुजुर्गों की करे मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत। जो सिखाएं हमें व्यवहारिक ज्ञान, करें ज्येष्ठ लोगों का सम्मान।
3: असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।

आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। सवेरे के 7:31 हो रहे हैं। प्रस्तुत है ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम सूरज के साथ साथ।

0: श्रोताओं, सूरज के साथ साथ कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत अभिनंदन। आज का अंक लेकर मैं हाजिर हूं आपका रेडियो साथी विश्वास त्रिवेदी। आइए हम करते हैं शुरुआत एक नए दिन की नई उम्मीद की किरण के साथ। आज के अंक में हम आपके साथ साझा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, शिमला समझौते के बारे में, वन महोत्सव, विश्व खेल पत्रकार दिवस और विश्व यूएफओ दिवस की, साथ ही तिथि विशेष और अखबारों की सुर्खियों पर भी डालेंगे नजर। इतना ही नहीं, मनोरंजन भी होगा। तो साथियों, देर न करते हुए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत। सबसे पहले चर्चा करेंगे शिमला समझौते की। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए एक ऐतिहासिक समझौते की, यानी ये समझौता था शिमला समझौता, जिसने दोनों देशों के संबंध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शिमला समझौता 2 जुलाई सन 1972 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जुल्फकार अली भुट्टो के बीच हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में संपन्न हुआ था। यह समझौता सन 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करने और भविष्य के विवादों को बातचीत के माध्यम से सुलझाने के उद्देश्य से किया गया था। इस समझौते की अहम बात यह थी कि भारत और पाकिस्तान ने आपसी मतभेदों को द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से सुलझाने पर सहमति व्यक्त की। साथ ही दोनों देशों ने युद्ध विराम रेखा को, यानी लाइन ऑफ कंट्रोल, LOC के रूप में स्वीकार किया। शिमला समझौते को दक्षिण एशिया में शांति और कूटनीति की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जाता है। शिमला समझौता हमें यह संदेश देता है कि किसी भी विवाद का स्थायी समाधान युद्ध नहीं, बल्कि संवाद, समझदारी और कूटनीतिक प्रयासों के माध्यम से ही संभव है। श्रोताओं, ये तो थी बात शिमला समझौते की। आगे अभी हमारे पिटारे में और भी बहुत कुछ है, इससे पहले हम सुनते हैं एक संदेश।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001 4242।

0: पर
1: 8700014242।
2: इस संदेश के बाद फिर से हाजिर हैं हम आपके साथ। श्रोताओं, आज 2 जुलाई है और 1 जुलाई से 7 जुलाई तक प्रतिवर्ष प्रकृति संरक्षण और पर्यावरण संतुलन के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए वन महोत्सव मनाया जाता है। वन महोत्सव की शुरुआत वर्ष 1950 में तत्कालीन केंद्रीय कृषि एवं खाद्य मंत्री के मुंशी के द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य केवल पेड़ लगाना नहीं था, बल्कि समाज में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जिम्मेदारी और संवेदनशीलता विकसित करना भी था। पेड़ पौधे हमारे जीवन का आधार हैं, वे हमें शुद्ध वायु, जल संरक्षण, जैव विविधता का संरक्षण और जलवायु संतुलन प्रदान करते हैं। आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन, बढ़ते प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण जैसी चुनौतियों का सामना कर रही है, तब वन महोत्सव का महत्व और भी बढ़ जाता है। एक पेड़ न केवल पर्यावरण को बचाता है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ भविष्य की नींव भी रखता है। आइए वन महोत्सव के अवसर पर हम सभी ये संकल्प लें कि अपने जीवन में कम से कम एक पौधा अवश्य लगाएंगे और उसे एक वृक्ष बनने तक संरक्षित करेंगे। यही प्रकृति के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धा और जिम्मेदारी होगी। श्रोताओं, ये तो थी पर्यावरण संरक्षण की बात, वन महोत्सव की बात। अभी हमारे पास और भी बहुत कुछ है आपके साथ साझा करने के लिए, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, लेकिन इससे पहले आप इंतजार कर रहे होंगे गीत का, तो लीजिए पेश है एक गीत।

0: अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर को फिल्म चोर मचाए शोर में। श्रोताओं, आज 2 जुलाई है और 2 जुलाई को एक और ख़ास दिन मनाया जाता है, विश्व खेल पत्रकार दिवस। खेल पत्रकारिता केवल खेल प्रतियोगिताओं की रिपोर्टिंग तक सीमित नहीं रह जाती, बल्कि ये खिलाड़ियों के संघर्ष और उनकी उपलब्धियों, खेल भावना को समाज तक पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम भी है। विश्व खेल पत्रकार दिवस की शुरुआत वर्ष 1994 में अंतर्राष्ट्रीय खेल पत्रकार संघ की 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर की गई थी। खेल पत्रकार खेल और समाज के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु का काम करते हैं। वे न केवल मैदान पर होने वाली घटनाओं को दर्शकों और श्रोताओं तक पहुंचाते हैं, बल्कि खेल संस्कृति के विकास और खेल के प्रति जागरूकता बढ़ाने में भी अहम योगदान देते हैं। आज के डिजिटल युग में खेल पत्रकारिता का स्वरूप भी तेजी से बदला है। समाचार पत्रों, रेडियो और टेलीविजन के साथ साथ डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने खेल समाचारों को अधिक व्यापक और त्वरित बना दिया है। ऐसे में खेल पत्रकारों की जिम्मेदारियां और भी बढ़ गई हैं कि वे निष्पक्ष, सटीक और विश्वसनीय जानकारी जनता तक पहुंचाएं। विश्व खेल पत्रकारिता दिवस के अवसर पर हम उन सभी खेल पत्रकारों को सम्मान और शुभकामनाएं देते हैं जो अपने समर्पण, मेहनत और निष्पक्षता से खेल जगत की हर धड़कन को हमारे सामने लाते हैं। तो ये तो हुई विश्व खेल पत्रकार दिवस की बात। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और एक और खास दिन के बारे में चर्चा करेंगे। आज 2 जुलाई को एक और विशेष दिन मनाया जाता है, वो है विश्व UFO दिवस। इस दिवस का उद्देश्य ब्रह्मांड के रहस्यों, अज्ञात उड़न वस्तुओं यानी UFO के प्रति लोगों में जिज्ञासा और वैज्ञानिक सोच को प्रोत्साहित करना है। UFO अर्थात अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, वे वस्तुएं हैं जिन्हें आकाश में देखा तो जाता है लेकिन उनकी पहचान तुरंत नहीं हो पाती। हाल के वर्षों में वैज्ञानिकों ने UFO के लिए UAP यानी अनआइडेंटिफाइड एरियल फेनोमिना शब्द का भी प्रयोग शुरू किया है। विश्व UFO दिवस के पीछे वर्ष 1947 की एक प्रसिद्ध घटना मानी जाती है, जब अमेरिका के न्यू मैक्सिको राज्य के रॉसवेल क्षेत्र में एक रहस्यमयी वस्तु के गिरने की खबर ने पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया था। तब से लेकर आज तक UFO से जुड़ी घटनाएं लोगों के बीच चर्चा और शोध का विषय बनी रहती हैं। हालांकि अब तक पृथ्वी के बाहर किसी बुद्धिमान जीवन के अस्तित्व का कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन अंतरिक्ष की विशालता को देखते हुए वैज्ञानिक लगातार शोध और अध्ययन कर रहे हैं। तो श्रोताओं, ये तो हुई विश्व UFO दिवस की बात। श्रोताओं,
1: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
2: तो इंतजार किस बात का,
1: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
1: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
2: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
1: और हमारा ईमेल आईडी है
2: akashwaninajibabad@gmail.com।
1: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
2: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
0: इस संदेश के बाद फिर से हाजिर हैं हम अपने कार्यक्रम के अगले सेगमेंट में। अपने कार्यक्रम में यानी सूरज के साथ साथ कार्यक्रम में हम पहुंच चुके हैं अगले पड़ाव पर यानी तिथि विशेष सेगमेंट पर। आज 2 जुलाई क्यों है खास, आइए जान लेते हैं। 2 जुलाई सन 1808 में वेस्ट इंडिया कमेटी द्वारा लंदन में टेम्स नदी पर व्यापारिक जहाजों की रक्षा के लिए समुद्री पुलिस की स्थापना की गई थी, जो दुनिया का सबसे पुराने निरंतर सेवारत पुलिस बल की शुरुआत थी। बंदरगाहों पर वेस्ट इंडीज के आने वाले मूल्यवान सामानों की रक्षा के लिए इसे बनाया गया था। आज भी ये बल वापिंग पुलिस स्टेशन से टेम्स नदी और लंदन के अन्य जलमार्गों की सुरक्षा कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने 2 जुलाई सन 1862 को इस ऐतिहासिक कानून पर हस्ताक्षर किए थे, जिसे मोरिल भूमि अनुदान अधिनियम, मोरिल लैंड ग्रांट एक्ट कहा जाता है। इस अधिनियम ने संघीय सरकार को प्रत्येक राज्य को कृषि और यांत्रिक कलाओं पर केंद्रित कॉलेजों की स्थापना के लिए सार्वजनिक भूमि प्रदान करने का अधिकार दिया। इस अधिनियम के तहत प्रत्येक राज्य को कांग्रेस संसद में उसके प्रत्येक सीनेटर और प्रतिनिधि के लिए 30,000 एकड़ सार्वजनिक भूमि आवंटित की गई थी। अब कर लेते हैं कुछ ऐसी शख्सियतों की बात जिन्होंने 2 जुलाई को जन्म लिया। 2 जुलाई सन 1948 को आलोक धनवा का जन्म बिहार में हुआ था। वे हिंदी के उन बड़े कवियों में हैं जिन्होंने 70 के दशक में कविता को एक नई पहचान दी। उनका पहला संग्रह है दुनिया रोज बनती है, जनता का आदमी, गोली दागो पोस्टर, कपड़े के जूते और ब्रूनो की बेटियां आदि उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। 2 जुलाई सन 1954 में जन्म हुआ था मोहम्मद अजीज का। भारत के प्रसिद्ध पार्श्व गायक मोहम्मद अजीज को मुन्ना के नाम से जाना जाता था। मोहम्मद अजीज ने हिंदी, बंगाली, उड़िया भाषाओं में लगभग 20,000 से अधिक गाने गाए और सन 1980 से 90 के दशक में संगीत जगत पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। कैरियर की शुरुआत कोलकाता के एक रेस्टोरेंट में लाइव गाकर की थी। उनकी आवाज महान गायक मोहम्मद रफी से बहुत प्रेरित थी। उनका पहला बड़ा ब्रेक उड़िया फिल्म जगह हतारे पादा से मिला, जिसके बाद उन्होंने हिंदी सिनेमा में अपनी आवाज का जादू बिखेरा। अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसी महान विभूतियों की जिनका 2 जुलाई को निधन हुआ। 2 जुलाई सन 2022 को प्रसिद्ध अंग्रेजी थिएटर और फिल्म निर्देशक पीटर ब्रुक का निधन हुआ, जिन्होंने द महाभारत, लॉर्ड ऑफ फ्लाइज आदि का निर्देशन किया। पीटर ब्रुक का निधन 97 वर्ष की आयु में फ्रांस के पेरिस में हुआ था। वे 20वीं सदी के सबसे प्रभावशाली और क्रांतिकारी निर्देशकों में से एक माने जाते हैं। उन्हें सन 1985 में हिंदू महाकाव्य महाभारत के 9 घंटे लंबे थिएटर रूपांतर के लिए वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक प्रशंसा और ख्याति मिली थी। 2 जुलाई सन 1950 को यूसुफ मेहर अली का निधन हुआ।

यूसुफ मेहर अली एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, समाजवादी नेता और बॉम्बे के मेयर थे। इन्हें भारत छोड़ो और साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ जैसे नारे, यानी ऐसे ऐतिहासिक नारों के लिए इन्हें विशेष रूप से जाना जाता है। अपने क्रांतिकारी विचारों और आंदोलनों के कारण उन्हें अपने जीवन में 8 बार जेल भी जाना पड़ा था। तो ये तो थी आज की ऐतिहासिक घटनाओं की बात, यानी 2 जुलाई को घटित कुछ खास घटनाओं का जिक्र हमने किया। अब कर लेते हैं अखबारों की सुर्खियों का रुख। तो क्या कहते हैं अखबार, सबसे पहले बात करेंगे हम दैनिक जागरण अखबार की। दैनिक जागरण अखबार ने सुर्खी बनाया है, प्रदेश भर में अगले 5 दिनों तक झमाझम बारिश। उत्तर प्रदेश में मानसूनी बारिश ने अब रफ्तार पकड़ ली है। बुधवार सुबह से बादलों की आवाजाही के बीच प्रयागराज, बरेली, मुरादाबाद, ललितपुर समेत 25 से अधिक जिलों में हल्के से मध्यम बरसात हुई। दैनिक जागरण की ही एक और खास खबर है जिसे प्रमुख स्थान दिया गया है, मोटर दुर्घटना पीड़ितों की आय गणना के लिए गाइडलाइन तय। मोटर दुर्घटना के मुआवजे में समानता लाने के मकसद से सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में बुधवार को आयकर रिटर्न के आधार पर मृतक पीड़ितों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय की गणना करने के लिए अदालतों के वास्ते गाइडलाइन तय की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, नौकरी पेशा के लिए पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न पर्याप्त, खुद का काम करने वालों के लिए 3 वर्ष का रिटर्न ही आधार। दैनिक जागरण में एक और खास खबर, इस पर नजर डालते हैं, सहारनपुर के इस्माइलपुर कंपोजिट विद्यालय में राज्यव्यापी अभियान की शुरुआत, बच्चों को बांटे बैग, किताबें और स्टेशनरी। सीएम योगी बोले, पढ़ाई से न छूटे कोई भी बच्चा। सहारनपुर के इस्माईपुर स्थित कंपोजिट विद्यालय में बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशव्यापी स्कूल चलो अभियान 2026 के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। ये तो हुई दैनिक जागरण की बात। अब चलते हैं हिंदुस्तान की ओर। हिंदुस्तान अखबार लिखता है, मुंबई में कई जगहों पर जल जमाव के आवागमन बाधित, भूस्खलन में शिमला मटोर हाईवे बंद, चट्टान गिरने से महिला की मौत, मुसीबत। ये हेडिंग है, भारी बारिश से महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश में हाहाकार। हिमाचल प्रदेश के शिमला, मनाली और धर्मशाला सहित कई हिस्सों में भारी बारिश होने से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। हिंदुस्तान के ही खेल प्रश्न पर नजर डालते हैं, एम बापे के दोहरे प्रहार से स्वीडन बाहर, फ्रांस से एक तरफा जीत के अंतिम 16 में पहुंचा, अब पराग्वे से होगा सामना। किलियन ने 29 मिनट में दागे दे धनाधन गोल। फ्रांस के स्टार स्ट्राइकर किलियन एम्बापे का जादू सर चढ़कर बोल रहा है, उनके रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन ने फ्रांस में मंगलवार देर रात को बुधवार फुटबॉल विश्व कप के अंतिम 16 में प्रवेश कर लिया है। अमर उजाला की तरफ देखते हैं, अमर उजाला का कारोबार प्रश्न क्या कहता है, आयात के दम पर जीएसटी संग्रह 14% बढ़ा, वृद्धि की रफ्तार 13 माह में सबसे तेज, चुनौतियों के बावजूद विशेष विदेशी उत्पादों के बंपर आयात ने जून में भरी सरकार की झोली, 1.95 लाख करोड़ पहुंच गया है जीएसटी संग्रह बीते माह, 34.6% की वृद्धि हुई आयात से प्राप्त राजस्व में। अमर उजाला में ही ये खबर है, वाणिज्यिक सिलेंडर 183 रुपये सस्ता, नायरा ने पेट्रोल और डीजल के दाम घटाए, कच्चे तेल के दामों में नरमी के बाद विमान ईंधन में भी 5 रुपये प्रति लीटर की कमी। तो ये तो थी अखबारों की सुर्खियों पर एक नजर। अब चलते हैं कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर और सुन लेते हैं ये

जैसा कि अभी हमने कुछ देर पहले जिक्र किया था मोहम्मद अजीज के बारे में, आज उनका जन्मदिन है, तो ये गीत उन्हीं की आवाज में है और उन्हीं को समर्पित है।

0: साथ साथ।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सूरज के साथ साथ। सवेरे के 8 बज रहे हैं, कुछ ही पलों में आप हमारे दिल्ली
2: समाचार प्रभात के साथ। मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाची के साथ आज नई दिल्ली में वार्षिक शिखर वार्ता करेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ब्याज दर 8.25% रखने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर नए यूजर नेम फीचर को लेकर मेटा को नोटिस जारी किया, 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण रोकने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान की अधिसूचना जारी की। फीफा फुटबॉल

0: नवंबर 2024 में टोक्यो में आयोजित पहले आर्थिक सुरक्षा संवाद के दौरान भारत और जापान ने रणनीतिक सहयोग के लिए 5 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की थी। इनमें सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, फार्मास्यूटिकल्स, स्वच्छ ऊर्जा और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शामिल है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान जापान के प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन देशों की रणनीतिक साझेदारी के एजेंडे को आगे बढ़ाने का प्रमुख मंच बना हुआ है। वर्ष 2025 में आयोजित वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान जापान भारत मानव संसाधन आदान प्रदान एवं सहयोग कार्य योजना शुरू की गई। इसके तहत अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच 5,00,000 लोगों के दो तरफा आदान प्रदान का लक्ष्य रखा गया है। इसमें भारत से जापान जाने वाले 50,000 कुशल और अर्ध कुशल कर्मी भी शामिल हैं। दोनों देशों के बीच विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और अन्य वरिष्ठ स्तरों पर भी नियमित रूप से बैठकें और उच्च स्तरीय दान प्रदान होते रहते हैं। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री तकाई जी भारत की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान के प्रधानमंत्री के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। भारत और मलेशिया ने कल नई दिल्ली में आपसी सैन्य सहयोग की समीक्षा की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बैठक में दोनों पक्षों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और मुक्त आवाजाही को लेकर प्रतिबद्धता दोहराई। 12वीं उपसमिति की बैठक में दोनों देशों के बीच मौजूदा रक्षा पहलों, सैन्य संपर्क, द्विपक्षीय अभ्यास, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, समुद्री तथा अन्य उभरते क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफओ योजना 2026 को अधिसूचित कर दिया है। ये योजना 29 जून से प्रभावी हो गई है। नई योजना 1952 की कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम का स्थान लेगी। इस योजना का उद्देश्य डिजिटल अनुपालन को मजबूत करना, प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना, खातों के स्थानांतरण को आसान बढ़ाना और भविष्य निधि ढांचे को नए श्रम कानून के अनुरूप बनाना है। नई योजना में अनिवार्य ईपीएफ अंशदान कर्मचारी और दोनों के वेतन का 12% बना रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठानों पर मौजूदा 10% की दर लागू रहेगी। योजना में आंशिक निकासी के नियमों को भी अद्यतन किया गया है। योजना में पारदर्शिता में सुधार और भविष्य निधि प्रबंधन को अधिक कुशल बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, ऑनलाइन दावों, ई पासबुक और यूनिवर्सल खाता संख्या से जोड़ने पर जोर दिया गया है। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली निजी पॉइंट इन स्पेस यानी पिंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था में उन्नत उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के सुरक्षित संचालन में मदद मिलेगी जहां लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर की शुरुआत करने के मामले में मेटा को नोटिस जारी किया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार सरकार ने विस्तृत जानकारी 3 दिन के भीतर उपलब्ध कराने को कहा है। एक रिपोर्ट।
2: सूत्रों के अनुसार मंत्रालय ने मेटा को यह भी निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। मंत्रालय ने व्हाट्सएप द्वारा की गई एक सार्वजनिक घोषणा पर संज्ञान लिया है। इस घोषणा में व्हाट्सएप ने भारत सहित वैश्विक स्तर पर चरणबद्ध तरीके से अपने यूजर नेम फीचर को लागू करने की बात कही थी। व्हाट्सएप ने बताया कि एक बार ये फीचर सक्रिय हो जाने पर पहली बार संपर्क करने वाले व्यक्ति को प्राप्तकर्ता का फोन नंबर दिखाई नहीं देगा और एक वैकल्पिक यूजर नेम को अतिरिक्त नियंत्रण के रूप में लगाया जा सकता है। ऐसी आशंकाएं हैं कि इस फीचर से ऑनलाइन धोखाधड़ी, डिजिटल अरेस्ट और साइबर धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ सकती हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एकीकृत रक्षा स्टाफ के प्रमुख रहे एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने कल नए वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ का कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने अवकाश प्राप्त एयर मार्शल नागेश कपूर का स्थान लिया है। श्री नागेश कपूर 4 दशक से वायुसेना में हैं। उनके पास 3,500 घंटे से अधिक का उड़ान अनुभव है। उधर लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन ने थल सेना उप प्रमुख का पदभार संभाल लिया है। सरकार ने विदेश सचिव

0: मिस्त्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक के लिए बढ़ा दिया है। श्री मिस्त्री 1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान अधिसूचित किया है। यह हर साल 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू रहेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस अधिसूचना में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के संशोधित दिशा निर्देश और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
1: नई व्यवस्था के अंतर्गत केवल वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र वाले वाहनों को ही पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और एलपीजी पंपों से ईंधन मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली के बाहर पंजीकृत BS6 से निचले स्तर के सभी मोटर वाहनों के राजधानी में प्रवेश और संचालन पर रोक रहेगी। वहीं सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहन, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस वाहन और पर्यावरण विभाग द्वारा विशेष रूप से छूट प्राप्त श्रेणियों के वाहनों को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि सर्दियों के दौरान अधिकृत पार्किंग स्थलों पर शुल्क दोगुना किया जाएगा। उन्होंने बताया कि निर्माण गतिविधियों, धूल प्रदूषण और खुले में कचरा या पत्तियां जलाने पर भी कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्यव्यापी विशेष भूमि मापन अभियान डिजी रोवर की शुरुआत की है। यह अभियान 15 अगस्त तक चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सहारनपुर में इस अभियान की शुरुआत की। झारखंड सरकार ने पूर्वी सिंहभूम जिले में मलेरिया से 4 लोगों की मृत्यु के बाद राज्य में स्वास्थ्य अलर्ट जारी किया है। सरकार ने रक्त संक्रमण से फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए सभी उपायुक्तों को तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इधर स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कल दिल्ली में डेंगू की तैयारियों पर एक समीक्षा बैठक की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य और नगर निकाय डेंगू के मामलों में संभावित वृद्धि से निपटने के लिए तैयार हैं। जयपुर में 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कारों के वितरण के लिए समाप्त होगा। ये पुरस्कार केंद्र और राज्य सरकारों तथा अन्य संगठनों द्वारा ई गवर्नेंस संबंधी उत्कृष्ट पहलों के लिए प्रदान किए जाते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज सुबह जम्मू से श्री अमरनाथ जी यात्रा के पहले जत्थे को रवाना किया। कश्मीर घाटी के बालतल और पहलगाम दोनों आधार शिविरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु बम बम भोले के नारे लगाते हुए एकत्रित हुए। 57 दिन की ये वार्षिक तीर्थ यात्रा कल से कश्मीर के दोनों मार्गों पर आधिकारिक रूप से शुरू हो रही है और 28 अगस्त तक चलेगी। ये यात्रा अनंतनाग जिले के नुनवान पहलगाम मार्ग और गांधरबल जिले के बालतल से होकर गुजरती है। तीर्थयात्रियों को केवल जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर ही यात्रा करनी होगी। मुगल रोड और धार रोड जैसे वैकल्पिक मार्गों पर तीर्थयात्रा का आवागमन वर्जित है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से पंजीकरण जारी है और यात्रा से पहले लगभग 4 लाख तीर्थयात्रियों ने पंजीकरण करा लिया है। खेलों में फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टेलीमेंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमरीका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही अमरीका ने राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। अब अमरीका का मुकाबला बेल्जियम से होगा। वहीं एक अन्य मैच में कल इंग्लैंड ने कांगो को 2-1 से हरा दिया। अब 6 जुलाई को राउंड ऑफ 16 में इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। पुरुष क्रिकेट में भारत इंग्लैंड के बीच T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल बारिश के कारण रद्द हो गया। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीमें 0-0 से बराबरी पर हैं। बारिश के कारण इंग्लैंड अपनी पारी शुरू नहीं कर सका। श्रृंखला का दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। वहीं ड्यूरेंट कप फुटबॉल का 135वां संस्करण 25 जुलाई से कोलकाता में शुरू होगा। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। मैच रांची, इम्फाल, शिलांग और गुवाहाटी में खेले जाएंगे। 2 क्वार्टर फाइनल, 1 सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले कोलकाता में होंगे। ये पहला मौका है जब ड्यूरेंट कप के मैच झारखंड की राजधानी रांची में भी रखे गए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने सामाजिक न्याय के अग्रदूत डॉक्टर सोनूलाल पटेल की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि डॉक्टर सोनूलाल ने असमानता और अन्याय के खिलाफ संघर्ष का सशक्त संदेश दिया। केंद्र सरकार ने असम में हाल ही में बाढ़ से निपटने के लिए पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कल गुवाहाटी में राज्य सरकार के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में सबसे ज्यादा प्रभावित धेमाजी जिले सहित पूरे राज्य में बाढ़ से हुए आरंभिक नुकसान का जायजा लिया। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले दो दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान पहुंचने की संभावना है। कर्नाटक के तटीय भाग, गुजरात, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में अगले दो दिन में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सुबह बारिश के साथ हुई। शहर के कई हिस्सों में बारिश हुई, इससे दिल्लीवासियों को भीषण गर्मी से राहत मिली। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: धन्यवाद फरहत। कमर्शियल गैस, एटीएस में राहत, पेट्रोल, डीजल और एलपीजी पर इंतजार, जुलाई के पहले सप्ताह ही जेब पर पड़ेगा अच्छा असर, राजस्थान पत्रिका की खबर है। प्रदूषण हो या ना हो, 1 नवंबर से वर्क फ्रॉम होम, दिल्ली में ग्रैब की पाबंदियां 4 महीने तक स्वतः लागू रहेंगी। हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों की आज सुर्खी बनी है। मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी का कार्यकाल बढ़ा, उत्तर प्रदेश सरकार ने 15 जुलाई तक बढ़ाई समय सीमा, वीर अर्जुन की खबर है। दोहा में मध्यस्थों के जरिए अमरीका और ईरान में बातचीत, देश बंधु की सुर्खी है। भारत पहुंची जापान की पीएम, रणनीतिक संबंधों पर जोर, पीएम मोदी के साथ शिखर वार्ता आज, दैनिक जागरण के विदेश पन्ने की खबर है। आयात के दम पर जीएसटी संग्रह 14% बढ़ा, वृद्धि की रफ्तार 13 माह में सबसे तेज, चुनौतियों के बावजूद विदेशी उत्पादों के बंपर आयात में जून में भरी सरकार की झोली, अमर उजाला के कारोबार पन्ने की ये खबर ध्यान खींचती है। आज और कल भी कभी भी एनसीआर में दस्तक दे सकता है मानसून, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में प्रवेश के बाद अगली मंजिल एनसीआर, हरियाणा और पंजाब, दैनिक जागरण ने एक खबर सचित्र दी है। अमर उजाला लिखता है, उत्तराखंड में भारी बारिश से केदारनाथ हेली सेवा स्थगित, उड़ाने डायवर्ट, चार धाम यात्रा में कुछ ही दिनों में अंतर दिखने का समाचार दैनिक भास्कर ने आंकड़ों सहित प्रकाशित किया है। 20 दिन में बदली तस्वीर दर्शनार्थियों की दौड़ में, केदारनाथ से आगे निकला बद्रीनाथ, छोटे शहरों में ऑनलाइन खरीदारी का क्रेज, कंपनियां बढ़ा रही हैं निवेश, नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। वीर अर्जुन ने ग्राम सभा पर अपना संपादकीय प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, गांव की लोकतांत्रिक आत्मा क्या कागजों पर सीमित रही है, ग्राम सभाएं। लेख में कहा गया है कि ग्राम सभा को विकास कार्यों के सोशल ऑडिट का वास्तविक अधिकार मिलना चाहिए। जब लोगों को दिखेगा कि उनके द्वारा किए गए ऑडिट से भ्रष्टाचार पर रोक लग रही है तो उनकी भागीदारी स्वतः बढ़ेगी।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ आज नई दिल्ली में वार्ता करेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ब्याज दर 8.25% रखने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर नए यूजर नेम फीचर को लेकर मेटा को नोटिस जारी किया, 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण रोकने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान की अधिसूचना जारी की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को 3-2 से हराया। और पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 मैच बारिश के कारण रद्द। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू होल्ड एनुअल समिट विद हिज जापानीज काउंटरपार्ट सनाए ताकाइची इन न्यू दिल्ली टुडे। EPFO notifies 8.25% interest rate on EPF deposits for financial year 2025-26. Center issues notice to Meta.

0: the round of 32 to advance into the round of 16, wherein they will take on Belgium. Last night, England defeated the Democratic Republic of the Congo 2-1 in Atlanta, with Harry Kane scoring twice in the final 15 minutes. England will face co-host Mexico in the round of 16 on July 6th. In another round 32 clash, Mexico beat Ecuador 2-0 in Mexico City to reach the round of 16. France defeated Sweden 3-0 in New York, while Norway edged Ivory Coast 2-1 in Texas to book their place in the last 16. In men's cricket, the first T20 international between India and England was abandoned due to rain in Chesterley Street last night. The five-match series now stands level at 0-0. Opting to bat first, India scored 189 for 7 in stipulated 20 overs, with skipper Shreyas Iyer scoring highest 68 runs of 47 balls. Opening batter Abhishek Sharma also scored 59 runs, while Shivan Dubey remained not out at 42 runs. For England, Saqib Mahmood bagged 3 wickets. And now for a look at today's newspapers, it's over to Subhadra Ramachandran.
1: Thank you, Shagun. The Asian Age, quoting Prime Minister Narendra Modi, headlines, "Government's digital push has transformed India," elaborating that 11 years of Digital India initiatives has redefined governance, empowered citizens, and accelerated all-round development. Economic indicators flash green in June. Growth engine revving despite global roadblocks, writes the Economic Times. India's economy ended the first quarter of financial year 2027 on a strong footing, with various high-frequency indicators showing robust growth in June, reflecting resilience despite the West Asia war and other external headwinds. The Hindustan Times opens with the headline, ATF, commercial LPG rates cut as crude prices ease, while the Hindu writes, commercial LPG prices reduced by 183 rupees per refill. The Times of India, under a picture of new Indian Army Chief General Dhirat Seth, saluting his father, Lieutenant General Krishna Mohan Seth, retired, informs, General Seth said his aim would be to build a tech-enabled, future-ready army capable of operating effectively across multiple domains, while the statesman informs, new army chief outlines Vijay vision, stresses modernization of army. And finally, the Times of India informs that University of Minnesota scientists, under a project called Spud Cell, built from scratch synthetic cells that can grow, feed and reproduce like a natural cell, claiming their work could in time lead to made-to-order living machines. And with that, it's back to you, Shagun.
0: Thank you, Subhadra. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to hold annual summit with his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi today. EPFO notifies 8.25% interest rate on EPF deposits for financial year 2025-26. Centre issues notice to Meta over new username feature on WhatsApp in India, seeks detailed explanation in 3 days. Delhi government notifies permanent winter pollution master plan to curb seasonal air pollution in the national capital. Belgium stuns Senegal 3-2 in extra time thriller at FIFA World Cup. And in men's cricket, first T20 international between India and England abandoned due to rain. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वज़ीर-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान की अपनी हमनसब सनाए ताकाइची के साथ सरबरा सतह के सालाना मुज़ाकरात करेंगे। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन EPFO ने माली साल 2025-26 के लिए EPF डिपॉजिट पर 8.25% शरह सूद का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मरकज ने भारत में WhatsApp पर नए यूजर नेम फीचर शुरू करने से मुतालिक मेटा को नोटिस जारी किया है और 3 दिन के अंदर यूजर नेम फीचर से मुतालिक तफसीली वजाहत देने की हिदायत दी है। दिल्ली हुकूमत ने कौमी राजधानी में मौसमियाती फिजाई आलूदगी पर मुस्तकिल तौर पर काबू पाने के लिए मौसम सरमा की फिजाई आलूदगी से मुतालिक मास्टर प्लान नोटिफाई कर दिया है। फीफा आलमी कप में बेल्जियम ने एक सनसनीखेज मैच में सेनेगल को 3-2 से हरा दिया, जिसके बाद बेल्जियम नॉकआउट मरहले में पहुंचने के साथ ही प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया है। और मर्दों के क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के दरमियान पहला T20 बैन अल-अक़वामी मैच बारिश की वजह से मुलतवी कर दिया गया। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान की अपनी हमनसब सानाए ताकाइची के साथ सरबरा सतह के सालाना मुज़ाकरात करेंगे। सरबरा सतह के मुज़ाकरात दोनों फरीकों को इस बात का मौका फराहम करेंगे कि वो अपने तमाम बाहमी तआवुन का जायजा लें और उन्हें मुस्तहकम करें। साथ ही साथ आपसी मफादात के इलाकाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। तवक्को है कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी और वज़ीर-ए-आज़म ताकाइची के दरमियान बातचीत के बाद कई मफाहमत नामों पर दस्तखत किए जाएंगे। जापान की वज़ीर-ए-आज़म भारत के 3 दिन के दौरे पर कल नई दिल्ली पहुंची हैं। वज़ीर-ए-आज़म ताकाइची का भारत का ये पहला दौरा है। वज़ारत खारजा ने कहा कि ये दौरा भारत और जापान के दरमियान खुसूसी कलीदी और आलमी शराकतदारी को आगे ले जाने में अहम कदम है। हमारे नामा निगार ने इत्तला दी है कि इक्तसादी सलामती के ताल्लुकात का एक कलीदी सुतून समझा जा रहा है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
3: नवंबर 2024 में टोक्यो में हुए पहले इक्तिसादी सलामती मुज़ाकरात के दौरान दोनों मुल्कों ने कलीदी इश्तराक के लिए तरजीह शोबों के तौर पर 5 शोबों की निशानदेही की थी। इन शोबों में सेमीकंडक्टर्स, अहम मादनियात, दवासाजी, साफ तवानाई और इत्तलात व मवासलाती टेक्नोलॉजी शामिल हैं। इन आला सतही सियासी मुसफियात से भारत जापान ताल्लुकात की अक्कासी होती है। हाल ही में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में G7 समिट के दौरान जापानी वज़ीर-ए-आज़म के साथ गुफ्तगू की थी। इससे पहले दोनों रहनुमाओं ने गुज़श्ता साल नवंबर में जोहान्सबर्ग में G7 समिट के मौके पर मुलाकात की थी। बाहमी सतह की सालाना सरबरा मीटिंग शराकत दारी के करीबी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए एक अहम प्लेटफॉर्म है। 2025 में सालाना समिट के दौरान जापान भारत के दरमियान इंसानी वसाइल के तबादले और तवाउन के लिए एक एक्शन प्लान शुरू किया था, जिसमें दोनों मुल्कों की तरफ से भारत से जापान के लिए 50,000 हुनरमंद और नीम हुनरमंद अमले समेत 5 साल में 5 लाख अमले का तबादला का मंसूबा है। सालाना समिट के अलावा वजीर खारजा, वजीर दिफा, NSA, खारजा सेक्रेटरी और दीगर सतहों पर भी आला सतह के तबादले और मीटिंगें बाकायदा तौर पर होती रहती हैं। नई दिल्ली से सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
2: इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वो जापान की वज़ीर-ए-आज़म सानाए ताकाइची के साथ आज वसीतर उमूर पर तबादले ख्याल के मुंतजिर हैं, जिससे भारत और जापान के दरमियान खुसूसी कलीदी और आलमी शराकतदारी को मजीद वसअत मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि जापान की वज़ीर-ए-आज़म के भारत दौरे पर उनकी मेजबानी करना उनके लिए बायस मसर्रत होगा। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि मोहतरमा ताकाइची की मुश्तरक कोशिशों के जरिए भारत और जापान भारत बहरुल काहल और उससे आगे भी अमन इस्तेकाम और खुशहाली को आगे बढ़ाने के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन EPFO ने माली साल 2025-26 के लिए EPF डिपॉजिट पर शरह सूद 8.25% रखने से मुतालिक सरकारी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। EPF स्कीम 1952 पर मेहनत और रोजगार की वजारत की जानिब से मंजूरी मिलने के बाद इस शरह सूद का ऐलान किया गया है। EPFO ने अपने इलाकाई और जोनल दफातर को हिदायत दी है कि वो अराकीन के EPF खातों में मंजूर शुदा शरह के मुताबिक सूद की रकम मुंतकिल करे। हुकूमत ने भारत में व्हाट्सएप के जरिए यूजर नेम फीचर शुरू करने से मुतालिक मेटा को नोटिस जारी किया है। जराए ने बताया कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत ने 3 दिन के अंदर यूजर नेम फीचर से मुतालिक तफसीली वजाहत पेश करने की मेटा को हिदायत दी है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
3: जराए ने बताया कि वजारत ने व्हाट्सएप की जानिब से किए गए अवामी ऐलान को नोट किया है, जिसके तहत व्हाट्सएप ने भारत समेत आलमी सतह पर यूजर नेम फीचर का मरहलेवार तरीके से आगाज किया है। व्हाट्सएप ने बताया कि यूजर नेम फीचर के फाल हो जाने के बाद पैगाम भेजने वाले का मोबाइल नंबर पहली मरतबा राबता करने वाले शख्स को नजर नहीं आएगा और इख्तियारी यूजर नेम की इजाफी कंट्रोल के लिए सेट की जा सकती है। जराए ने बताया कि इस बारे में तश्वीश है कि यूजर नेम फीचर के जरिए ऑनलाइन धोखाधही, जालसाजी, डिजिटल गिरफ्तारी जैसे मामलों और जाली शनाख्त जाहिर करने जैसे जराइम में इजाफा हो सकता है। इस बारे में भी तश्वीश है कि यूजर नेम फीचर जाली शनाख्त जाहिर करने और खुद को कोई और जाहिर करने जैसे मामलों को बढ़ावा देगा।
4: ذرائع نے مزید بتایا کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزارت نے میٹا کو یہ بھی ہدایت دی ہے کہ وہ اس معاملے پر مشاورت ختم ہونے سے پہلے یوزر نیم فیچر کی شروعات نہ کرے۔ نئی دلی سے ثقلین اختر کی

0: रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
1: दिल्ली हुकूमत ने मौसम सरमा में फिजाई आलूदगी पर मुस्तकिल तौर पर काबू पाने से मुतालिक मास्टर प्लान नोटिफाई कर दिया है, जो कौमी राजधानी में हर साल 1 नवंबर से 28 फरवरी तक नाफिजुल अमल रहेगा। पेश है एक रिपोर्ट।
0: दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने कहा है कि नया फ्रेमवर्क आलूदगी की रोकथाम से मुतालिक मौजूदा इकदाम को जवाबित के वाहिद सेट के तहत यकजा करेगा और हर मौसम सरमा में अलग अलग अहकाम जारी किए बगैर इन जवाबित के बरवक्त निफाज को यकीनी बनाएगा। ये नोटिफिकेशन हवा के मेयार के बंदोबस्त से मुतालिक कमीशन CAQR के नजरसानीशुदा GRAP रहनुमा खतूत और सुप्रीम कोर्ट के अहकाम को भी यकजा करता है। नए जब्तों के मुताबिक मजाज पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल PUC सर्टिफिकेट न रखने वाली गाड़ियों को पूरी दिल्ली में साल भर पेट्रोल पंप CNG और LPG स्टेशनों पर ईंधन फराहम नहीं किया जाएगा। इसके अलावा 1 नवंबर से 31 जनवरी तक दिल्ली से बाहर रजिस्टर BS6 इखराज से कम दर्जे की गाड़ियों का दिल्ली में दाखला ममनू रहेगा। न्यूज डेस्क से चिराग झा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
1: हुकूमत ने खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री को अगले साल 14 जुलाई तक 1 साल की तौसी दे दी है। जनाब मिस्री ने 15 जुलाई 2024 को खारजा सेक्रेटरी की हैसियत से ओहदा संभाला था। वो जनवरी 2019 से दिसंबर 2021 तक चीन में भारत के सफीर रहे हैं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज सुबह जम्मू में भगवती नगर बेस कैंप से सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के यात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। 57 रोजा सालाना यात्रा सरकारी सतह पर कल से कश्मीर के दो रास्तों से शुरू हो गई है, जो 28 अगस्त को इख्तिताम पजीर होगी। यात्रियों का पहला जत्था सख्त सिक्योरिटी के दौरान आज सुबह सवेरे जम्मू से रवाना हुआ। यात्रा अनंतनाग जिले में 48 किलोमीटर, रिवायती नुनवन पहलगाम और गंदरबल जिले में 14 किलोमीटर बालतल रास्ते से शुरू हुई। CCTV कैमरे और RFID ट्रैकिंग रास्तों पर कसीर सती सिक्योरिटी का सख्त बंदोबस्त किया गया है। यात्री जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा NH44 पर सफर करेंगे। यात्रा ट्रैफिक के लिए मुगल रोड और धार रोड जैसे मुतबादिल रास्तों पर सख्त ममानियत है। ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन दोनों पूरी तरह से सरगर्मी से जारी हैं। तकरीबन 4 लाख यात्रियों ने यात्रा के शुरू होने से पहले ही अपना इंदराज कराया है। भारतीय महकमे मौसमियात ने कहा है कि जुनूब मगरबी मानसून के अगले 2 दिन के दौरान दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आगे बढ़ने का इम्कान है। महकमे ने अगले 2 दिन तक साहिली कर्नाटक, गुजरात, कोंकण, गोवा और वस्ती महाराष्ट्र में शदीद से इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई की है। मौसमियात से मुतालिक एजेंसी ने मजीद कहा कि अगले 3 दिन तक हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तराखंड और विदर्भ में भी इसी तरह के मौसमी हालात रहने का इम्कान है। इस दौरान कौमी राजधानी दिल्ली में आज सुबह शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में हल्की बारिश हुई, जिससे शहर के रिहायशियों को गर्मी से कुछ राहत मिली है। केरलम के ज्यादातर हिस्सों में आज बारिश के कमजोर होने की तवक्को है। भारतीय महकमे मौसमियात ने कहा है कि केरलम के कोझिकोड, कुन्नूर और कासरगोड के अलावा तमाम जिलों में बारिश की शिद्दत में कमी आने का इम्कान है। कुन्नूर और कासरगोड, जो कि गुज़िश्ता 2 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट पर थे, आज इन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि महकमे ने कोझिकोड जिले के लिए बदस्तूर येलो अलर्ट बरकरार रखा है। CBI ने डिजिटल गिरफ्तारी साइबर धोखाधड़ी केस में गुजरात के राजकोट से हरियाणा के एक मुलजिम को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने कहा है कि डिजिटल गिरफ्तारी की धमकी के तहत एक खातून मोहम्मद शहरी को 2 मुख्तलिफ बैंक खातों से 25 लाख रुपए से ज्यादा की रकम मुंतकिल करने पर मजबूर किया गया था। शिकायत के मुताबिक मुतासर खातून को उन नामालूम अफराद की जानिब से धमकी भरे फोन कॉल मौसूल हुए थे, जो खुद को सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी अफसरान के तौर पर जाहिर कर रहे थे। फोन करने वाले नामालूम अफराद ने झूठे दावे किए थे कि खातून मोहम्मद शहरी के बैंक खाते को दहशतगर्दी से मुतालिक सरगर्मी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और उस मोहम्मद खातून को गिरफ्तारी और उनकी जायदाद जब्त करने की धमकी दी गई थी। अपने दावों को मोतबर साबित करने के लिए उन्होंने एक फर्जी

कार्यक्रम का पहला गीत अभी आपने सुना, फिल्म बैराग से आवाज़ लता मंगेशकर की। आनंद बख्शी के लिखे गीत को संगीतबद्ध किया कल्याण जी आनंद जी ने। पेश है कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म कभी कभी से। आवाज़ें हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। साहिर लुधियानवी ने गीत लिखा है और धुन बनाई है खयाम ने।

अभी आपने सुना कभी कभी फिल्म में किशोर कुमार और लता मंगेशकर को। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से कार्यक्रम गोल्डन हिट्स। दिल की बात जब होठों पर आकर भी ठहर जाए तो हर धड़कन एक अनकही कहानी बन जाए। इन्हीं अनकहे जज्बातों, पहली मोहब्बत की मासूमियत और दिल की धड़कनों को स्वर देते हैं गीत। आइए सुनते हैं बॉबी फिल्म से ये गीत, लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह की आवाज में। शब्द रचना आनंद बख्शी की है और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: मुझे भी कुछ कहना है,
1: मुझे कुछ कहना है,
0: मुझे भी कुछ कहना है,
1: पहले तुम,
0: पहले तुम,
1: पहले तुम,
0: पहले तुम,
1: पहले तुम,
0: तुम,
1: तुम,
0: तुम,
1: तुम,
0: तुम,
1: तुम,
0: तुम। देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप करते निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: इस संदेश के बाद फिर से हाजिर हैं हम आपके साथ और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से कार्यक्रम गोल्डन हिट्स। श्रोताओं, मोहब्बत की दुनिया में कुछ एहसास ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों में बांधना आसान नहीं होता। प्यार जब दिल में उतरता है तो वो इंसान की हर खुशी और हर गम को बेखबर कर देता है। शायद इसी एहसास के लिए शायर ने कहा है, इश्क पर जोर नहीं है, ये वो आतिश है गालिब, कि लगाए न लगे और बुझाए न बुझे।

ये गीत अभी आपने सुना फिल्म कटी पतंग से, आवाज़ किशोर कुमार की, आनंद बख्शी के लिखे गीत को संगीत से सजाया था आर डी बर्मन ने।

0: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
1: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
0: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
1: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
0: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
2: कार्यक्रम का अंतिम गीत आइए सुनते हैं, कोहिनूर फिल्म से मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। शकील बदायूनी ने गीत लिखा है और संगीत दिया है नौशाद ने।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गोल्डन हिट्स। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। सवेरे के 9:15 हो रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे जिले की हलचल, रायबरेली और जालौन जिले की हलचल।

0: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए रायबरेली और जालौन जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं रायबरेली जिले की हलचल। आलेख और स्वर है पंकज सिंह का।
1: जिलाधिकारी सरनीत कौर ब्रोका एवं पुलिस अधीक्षक रवि कुमार ने गंगासू गंगा पुल का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्हें पुल पर कराए गए मरम्मत कार्य की गुणवत्ता, सुरक्षा मानकों एवं आवागमन की व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने बताया कि मरम्मत कार्य पूर्ण होने के उपरांत पुल को फिलहाल हल्के वाहनों के आवागमन के लिए खोल दिया गया है। उन्होंने कहा कि पुल पर शेष तकनीकी परीक्षण एवं आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण होने के पश्चात शीघ्र ही भारी वाहनों के आवागमन के लिए भी खोल दिया जाएगा। गंगासू गंगा पुल के पुनः संचालित होने से रायबरेली सहित आसपास के क्षेत्रों के लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी तथा व्यापारिक एवं सामाजिक गतिविधियों को भी गति प्राप्त होगी। इस अवसर पर जिलाधिकारी सरनीत कौर ब्रोका ने बताया कि
2: 1970 के दशक का जो निर्मित पुल है वो काफी दिनों से बंद था, जिसमें रिपेयर वर्क चल रहा था। अब अभी वो लाइट व्हीकल्स के लिए खोला गया है और जल्द ही उसको 10 से 15 जुलाई के बीच में हेवी व्हीकल्स के लिए भी खोल दिया जाएगा।
1: जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल सिंह ने बताया कि प्राथमिक विद्यालय दौतरा विकास क्षेत्र महाराजगंज जनपद रायबरेली ने राष्ट्रीय स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग SHVR प्रतियोगिता 2025-26 में विजेता बनकर एक नया इतिहास रच दिया है। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के निर्देशन में शैक्षिक सत्र 2025-26 हेतु देश के कक्षा 1 से 12 तक के कुल 14,75,000 समस्त सरकारी एवं प्राइवेट विद्यालयों में से यह प्रतियोगिता निर्धारित मानकों पर जनपद, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर आकलन कर अंतिम रूप से पूरे देश के कुल 191 विद्यालयों को इस पुरस्कार हेतु विजेता घोषित किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालय दौतरा विकास क्षेत्र महाराजगंज जनपद रायबरेली ने प्रत्येक स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए अब राष्ट्रीय स्तर पर भारत में 91वीं रैंक प्राप्त कर इस प्रतियोगिता का राष्ट्रीय विजेता बन चुका है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा इस प्रतियोगिता के प्रत्येक विजेता हेतु जुलाई माह में नई दिल्ली में सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक विद्यालय को प्रशस्ति पत्र के साथ 1,00,000 रुपए की अतिरिक्त अनुदान राशि भी प्रदान की जाएगी। हेडमास्टर को शैक्षिक एक्सपोजर विजिट पर भी भेजा जाएगा। उन्होंने बताया कि प्राथमिक विद्यालय दौतरा की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर समस्त विद्यालय परिवार, ग्राम समुदाय एवं जनपद रायबरेली को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि जनपद दौतरा से दिल्ली तक गूंजा नाम राष्ट्रीय जीत ने रायबरेली व उत्तर प्रदेश का सम्मान बढ़ाया है। इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी राहुल सिंह ने बताया कि ज्येष्ठ पूर्णिमा के पावन अवसर पर डलमऊ स्थित VIP गंगा घाट पर आयोजित भव्य गंगा महाआरती कार्यक्रम में जनपद के प्रभारी मंत्री एवं उत्तर प्रदेश सरकार के खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, हथकरघा तथा वस्त्रोद्योग विभाग के मंत्री राकेश अचान ने मुख्य अतिथि के रूप में सहभागिता करते हुए माँ गंगा का विधिवत पूजन अर्चन किया। कार्यक्रम में बड़ा मठ के देवेंद्रानंद जी महाराज की गरिमा में उपस्थित रहे। प्रभारी मंत्री ने उपस्थित श्रद्धालुओं से माँ गंगा की निर्मलता एवं अविरलता बनाए रखने का संकल्प लेने का आह्वान करते हुए कहा कि प्रत्येक नागरिक का दायित्व है कि वह गंगा सहित सभी जल स्रोतों को स्वच्छ बनाए रखने में सक्रिय योगदान दें। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण एवं जल संरक्षण के लिए जन भागीदारी को और अधिक सशक्त बनाए जाने की अपील की। महा गंगा आरती के दौरान वैदिक मंत्रोच्चार, शंखनाद, दीपों की अलौकिक आभा एवं भक्ति रस से ओतप्रोत भजन कीर्तन ने पूरे वातावरण को आध्यात्मिक ऊर्जा से सरोबार कर दिया। इस अवसर पर आपदा एवं बाढ़ नियंत्रण में सराहनीय योगदान देने वाले नाविकों व गोताखोरों को सम्मानित भी किया गया। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत जनपद में 100 दिवसीय टीबी मुक्त भारत अभियान संचालित किया जा रहा है। अभियान के तहत टीबी रोगियों की शीघ्र पहचान, समय पर उपचार तथा जन जागरूकता बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा व्यापक स्तर पर गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। इसी क्रम में सांसद KL शर्मा ने जनपदवासियों से टीबी उन्मूलन अभियान में सक्रिय भागीदारी करने की अपील करते हुए कहा कि टीबी मुक्त जनपद का सपना जन भागीदारी से ही साकार होगा। उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति को 2 सप्ताह से अधिक समय तक लगातार खांसी, बुखार, लगातार वजन कम होना, रात में अत्यधिक पसीना आना अथवा बलगम के साथ खून आना जैसे लक्षण दिखाई दे तो उसे नजरअंदाज न करें। ऐसे व्यक्ति को तत्काल अपने निकटतम सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर टीबी की जांच करानी चाहिए। जनपद न्यायाधीश अमित पाल सिंह, जिलाधिकारी सरनीत कौर ब्रोका व पुलिस अधीक्षक रवि कुमार ने जिला कारागार का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सभी बैरकों का भ्रमण किया तथा कारागार की पाकशाला में बंदियों को दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता, साफ सफाई, पेयजल और प्रकाश व्यवस्था का अवलोकन किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी व्यवस्थाएं नियमानुसार दुरुस्त रखी जाएं और बंदी गृह में रह रहे मरीजों के लिए समुचित चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि जेल की सभी व्यवस्थाएं जेल मैनुअल के अनुरूप ही संचालित हों। जिलाधिकारी सरनीत कौर ब्रोका द्वारा रायबरेली विकास प्राधिकरण के माध्यम से बरखापुर में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत निर्मित बहुमंजिला आवासीय भवनों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने परिसर और बिल्डिंग का अवलोकन करते हुए निर्माण गुणवत्ता एवं मूलभूत सुविधाओं का गहनता से जायजा लिया। उन्होंने भवनों के बाहरी एवं आंतरिक हिस्सों का निरीक्षण करते हुए पाया कि कुछ कार्य अभी भी अवशेष हैं।
0: रायबरेली जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं जालौन जिले की हलचल। आलेख और स्वर है सुनीता सिंह का।
3: केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जालौन में आयोजित जनकल्याण एवं जन जागरूकता अभियान के अंतर्गत प्रदेश के गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री तथा जनपद के प्रभारी मंत्री संजय गंगवार ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई विकास प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। प्रदर्शनी में 41 विभागों द्वारा केंद्र एवं प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं एवं उपलब्धियों को प्रदर्शित किया गया। उत्तर प्रदेश की पहचान बन चुकी आध्यात्मिक स्थलों के विकास, कानून व्यवस्था एवं आंतरिक सुरक्षा के सुदृढ़ मॉडलों को पहले और अब की थीम में प्रदर्शित किया गया। प्रदर्शनी में सूचना विभाग द्वारा लगाई गई विकास प्रदर्शनी विशेष आकर्षण का केंद्र रही, जिसमें केंद्र सरकार एवं प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को चित्रों एवं जानकारियों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री ने प्रधानमंत्री सूरघर मुफ्त बिजली योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, विकास अभियान योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना आदि के लाभार्थियों को अनुदान चेक और आवास स्वीकृत पत्र वितरण किए गए। प्रभारी मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों में भारत में विकास, सुशासन, आत्मनिर्भरता और जन कल्याण के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का उद्देश्य अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक लाभ पहुंचाना है और आज करोड़ों गरीब किसान, महिला, युवा एवं वंचित वर्ग के इन योजनाओं से लाभान्वित होकर आत्मनिर्भर बन रहे हैं। केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जनपद जालौन के युवाओं को स्वरोजगार एवं उद्यमिता के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक विशेष औद्योगिक भ्रमण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे ने कलेक्ट्रेट परिसर में 100 युवा उद्यमियों को लेकर जाने वाली बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिलाधिकारी ने कहा कि सरकार युवाओं को रोजगार देने वाला बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। यह भ्रमण कार्यक्रम युवाओं को उद्यमियों की वास्तविक कार्य प्रणाली से परिचित कराने एवं उन्हें स्वयं का उद्योग स्थापित करने के लिए प्रेरित करने का उद्देश्य से आयोजित किया गया। भ्रमण के दौरान युवाओं के राजकीय औद्योगिक संस्थान कालपी स्थित हथकरघा, हाथ कागज उद्योग की इकाइयों तथा खादी ग्रामोद्योग प्रशिक्षण संस्थान का अवलोकन किया गया। जिले में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूर्ण सुबह पर जनपद मुख्यालय उरई में योग के प्रति अभूतपूर्व जन उत्साह देखने को मिला। पहली बार इतनी बड़ी संख्या में नागरिक स्वयं सड़कों पर उतरकर दूसरों को योग के प्रति जागरूक करते नजर आए। लगभग 4000 लोगों ने टाउन हॉल के चौक, घंटाघर और रेलवे स्टेशन मार्ग होते हुए करीब 5 किलोमीटर लंबी भव्य जागरूकता रैली निकालकर स्वस्थ जीवन के लिए योग अपनाने का संदेश दिया। रैली को सदर विधायक गौरी शंकर वर्मा, जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे एवं मुख्य विकास अधिकारी के सिंह ने टाउन हॉल परिसर में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में उरई के सभी वार्डों से 100 से अधिक लोगों ने सहभागिता रखी। शहर के मुख्य चौराहों और मार्गों पर नागरिकों ने रैली का स्वागत किया तथा योग के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए प्रयास की सराहना की। सदर विधायक गौरी शंकर वर्मा ने कहा कि योग भारत की संस्कृति विरासत ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य और संतुलित जीवन का आधार है। जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे ने कहा कि इसकी बड़ी संख्या में लोगों की सहभागिता यह दर्शाती है कि जनपद में योग के प्रति जागरूकता लगातार बढ़ रही है।
0: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
4: आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अभी आप सुन रहे थे जिले की हलचल, और अब आइए सुनते हैं संवेद स्वर में देश।
5: आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। सवेरे के 9:25 हो रहे हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम धरती गाती है। आज हम आपको सुनवा रहे हैं शीशराम सिंह की गाई हुई रागिनी।

0: नमस्कार, आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मोहम्मद आरिफ, पीडियाट्रिशियन बिजनौर से, जो मॉनसून के दौरान बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव साझा करेंगे। डॉक्टर, यदि बच्चे की साधारण सर्दी का समय पर ध्यान न रखा जाए, क्या जटिलताएं हो सकती हैं?
1: देखा गया है ज्यादातर केसेस में ये सर्दी खांसी अपने आप 3 से 5 दिन में ठीक हो जाती है, लेकिन ऐसे बच्चे जो मालनरिश हैं, जिनमें इम्यूनिटी की कमी है, उसमें ये साधारण सर्दी खांसी भी कॉम्प्लिकेशन पैदा कर सकती है। जैसे कुछ बच्चों में ये मिडिल ईयर इन्फेक्शन या कान का दर्द पैदा कर सकती है, कुछ बड़े बच्चों में ये सर्दी खांसी का इन्फेक्शन साइनस तक पहुंचकर साइनोसाइटिस जैसी परेशान करने वाली स्थिति उत्पन्न कर सकता है। आजकल देखा गया है बहुत सारे बच्चे अस्थमा से पीड़ित हैं और ये साधारण सर्दी खांसी उनमें अस्थमा के सिम्टम्स को बढ़ा सकती है। उन्हें सांस लेने में दिक्कत, सांस लेने में आवाज होना आदि इस तरीके की परेशानियां हो सकती हैं। इस सर्दी खांसी में आने वाले बार बार बुखार से बच्चे के डिहाइड्रेट होने का खतरा रह जाता है, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और इससे बच्चा फर्दर मालनरिश या कुपोषण का शिकार हो जाता है।
0: यह संदेश एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी किया गया है।
2: आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम धरती गाती है।

धरती गाती है कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से, और आज हम आपको सुनवा रहे हैं शीशराम सिंह की गाई हुई रागिनी।

अभी आप सुन रहे थे धरती गाती है, जिसमें आपने सुनी रागनी। गायक कलाकार थे शीश राम सिंह। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 10 बज रहे हैं। श्रोताओं के फरमाइशी गीतों पर आधारित कार्यक्रम की तुम्हारे, आइए सुनते हैं।

0: नमस्कार सुधी श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गीत तुम्हारे में। मैं हूं आज का अंक लेकर आपके साथ विश्वास द्विवेदी, और मेरे साथ हैं
1: आपकी सखी निधि भारद्वाज। सभी श्रोताओं को हमारा भी नमस्कार।
0: तो श्रोताओं, तैयार हो जाइए अपनी फरमाइश का गीत सुनने के लिए, और भेज दीजिए हमें व्हाट्सएप मैसेज, और नंबर आपको बताते हैं
1: श्रोताओं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है आपकी फरमाइश के गीत को सुनने के लिए 9457078288। तो जो श्रोता अभी नए जुड़े हैं उनको हम एक बार पुनः बता देते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9457078288। इस पर आप लिखकर भेजिएगा अपने पसंद के गीतों की फरमाइश, और हम शुरू करते हैं विश्वास जी ये सिलसिला।
0: बिल्कुल, और तो देखिए आप, आपने नंबर बताया और यहाँ हमारे स्क्रीन पर लगातार एकदम मैसेज आने शुरू हो गए।
1: और इसी बीच में हम अपने श्रोताओं को ये भी बता दें कि ये जो आप कार्यक्रम सुनते हैं इसे पत्रों के माध्यम से भी आप सुन सकते हैं, और इसके लिए पता था हमारा गीत तुम्हारे कार्यक्रम और द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद पर। आप अपनी पसंद के गीत को सुनना चाहते हैं, और हमारे कुछ श्रोताओं ने हमें पत्र भी भेजे हैं जिनको हम शामिल करेंगे। तो पहला पत्र मैं लेती हूँ, फिर व्हाट्सएप भी नंबर शुरू कर देंगे मैसेज।

0: साहब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी का
1: अपनी पसंद का गीत सुनने के लिए पत्र भेजा है दिल्ली शहर मोरे गेट से, मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार ने।
0: और व्हाट्सएप मैसेज मिला है हमें ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद मुनाजिर अंसारी, अबरार हुसैन अंसारी, मुन्ना भाई, निशा परवीन, तमन्ना और आशिक हुसैन अंसारी।
1: पत्र भी शामिल करते हैं आप हैं यादव मोहल्ला सनावद मध्य प्रदेश से, दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मालाकार और मुस्कान मालाकार, जितेंद्र धर्मेंद्र मालाकार भी इनके साथ हैं।
0: ये मैसेज है संघ मित्रा श्रोता संघ वार्ड नंबर 1 भोपाली जिला यवतमाल से जयराम सिंघणकर, दिशांत कुमार सिंघणकर और अर्पिता का।
1: पत्र भेजा है एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से कुमारी वंदना मराठा, देविका चौधरी, गणेश दादा मराठा, कार्तिक भाऊ मराठा परी, संजना और मालती चौधरी, स्वाति प्रयाग और इनके साथ एक बार पुनः देखिए दोस्ती में नाम लिखते हैं तो ललिता नारायण खड़चे जी इन्होंने शामिल किया है उनका नाम भी।
0: मजनू का टीला से हमें मैसेज भेजा है कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक ने।
1: व्हाट्सएप मैसेज भी आप करते हैं और आपका पत्र भी हमें मिल गया है कोटावा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमिता राय, हैप्पी राय, दुबीहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय और शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय।
0: तो और इन सभी की फरमाइश हम आपको बता देते हैं, इन्होंने फरमाइश की है फिल्म कसम के इस गीत की, आवाजें हैं नितिन मुकेश और आशा भोसले की, इंदिवर की शब्द रचना है और संगीतबद्ध किया है बप्पी लहड़ी ने। तो लीजिए पेश है ये गीत।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: पुलिस?
2: मिस सीमा
1: जी,
2: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
1: क्यों? लेकिन मैं
2: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
1: डिजिटल अरेस्ट?
2: 1 लाख दो, बच जाओगे।
1: इतने पैसे?
2: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए। अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
1: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
3: हेलो मम्मा।
4: RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम गीत तुम्हारे में, और आप सुन रहे हैं अपनी पसंद के गीत। और जो नए साथी जुड़े हैं उनको हम बता देते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9457078288। तो इस पर भेजिएगा अपनी फरमाइश के गीत, और अब हम शुरू करते हैं आगे का सिलसिला।
7: ये मैसेज हमें मिला है रेलवे रोड गंज डुंडवारा से, मोहम्मद कलीम जख्मी, भुवन प्रकाश गौतम, डॉक्टर दबीर उल हसन, बेगम शबनम अनवार, नज्म बेगम नाज और सरिता गौतम। ये मैसेज हमें मिला है
6: एसके पुरी, बीके पुरी, रशपाल पुरी, हरीश पुरी, राजू शर्मा, सतीश पुरी और विनोद पुरी का, अमान नगर लुधियाना से। झज्जर हरियाणा से भी सुनना चाहते हैं अपने पसंद का गीत बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया, मैं और मयंक भाटिया।
7: और एक और मैसेज हमें मिला है ये बल्केश्वर कॉलोनी आगरा से, श्री सरिता चौरसिया, सुमित चौरसिया, वीर और अबीर का। नवाबगंज कानपुर से सुजाता चौरसिया, पंकज चौरसिया, पीहू और दिया चौरसिया का।
6: अपने पसंद का गीत सुनना चाहते हैं किदवई नगर, सिद्धपुरा टाउन से जुबैर अली खान, सुबिहा जुबैर, अंजुम खान, और एक पत्र के माध्यम से भी हमारे पास ये फरमाइश पहुंची है जिला खंडवा ग्राम लोहारी से, राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार धनजे, शीला धनजे और गायत्री धनजे। पत्र लिखा है कुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद, नीतू वैद ने भी अपनी पसंद का गीत सुनने के लिए।
7: दादरी गेट भिवानी से हमें मैसेज किया है कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा, कुणाल मेहरा ने, और ये मैसेज हमें मिला है गांव नथना पंजाब से, हरजिंदर सिंह छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और कीता का।
6: पंजाब से हमें पत्र भी मिला है गांधी चौक रोपड़ पंजाब से, लिखते हैं हरदेव मीका, बलविंदर विरक, जयदेव विरक और मीका विरक की, उन्हें उनकी पसंद का गीत सुनवाया जाए। मुंदी चेक भागलपुर से दिलीप कुमार सोनी ने हमें मैसेज किया है अपनी पसंद के गीत की फरमाइश के साथ। आप हैं पद्मा टॉकीज, नेपा नगर, मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह।
7: और ये मैसेज हमें मिला है सदर बाजार कुरावाली से, अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीत कुमार वर्मा और सोनम वर्मा का।
6: बागपत उत्तर प्रदेश से हमें मैसेज कर रहे हैं संजय ढिंगिया, नमन ढिंगिया और अपार ढिंगिया।
7: चकला बाजार समाना शहर पंजाब से ये मैसेज आया है पप्पू राजा, खुश दिल, संगीता रानी जिंदल, पप्पू महक, सुनीता रानी, आरजू पप्पू खुश दिल, हसमुख लाल जिंदल, बुलबुल शक्ति, संजीव बंटी जिंदल।
6: नई बस्ती गंजुनवारा से मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौसीफ हाशमी, मोहम्मद तैमूर हाशमी और मोहम्मद कलीम अंसारी भी सुनना चाहते हैं अपने पसंद के गीत को, और गीत के लिए अनुरोध कर रहे हैं शाही मार्केट चौहारा जिला बिजनौर से आसिफ चौधरी, बेगम रिहाना अराफात, अदीब और कादिक चौधरी भी।
7: और ये मैसेज मिला है धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान छिपा, पूजा परिहार का, भोपालगढ़ राजस्थान से।
6: पत्र के माध्यम से फरमाइश भेजी है महाराष्ट्र बीच शहर से प्रकाश पगारिया, पराग पगारिया, प्रदीप पगारिया, केशव पटेल और राम निवास अग्रवाल जी ने।
7: गांव हीरावाली फजिलका पंजाब से सुभाष गोदारा, विमला गोदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु गोदारा, सब्जी मंडी झज्जर से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया,
6: सालार पहलगाम कश्मीर से लिखते हैं पर ज़्यादा मिराज उद्दीन, और कहते हैं कि हमें हमारी पसंद का गीत सुनवाइए आप ज़रूर। और आप हैं हमारे साथी मोहम्मद आसिफ शेख, बेगम रूमा, माहिरा शेख, नौमान शेख, सुलेमान शेख, शेख मोहम्मद कलीम, नाला सोपारा, मुंबई से।
7: तो दीदी जी क्यों ना इनकी फरमाइश का ये गीत सुनवा दिया जाए। इस फिल्म का, इसकी फिल्म है कुली नंबर वन और आवाजें हैं अलका याग्निक, उदित नारायण की, समीर ने गीत लिखा है और आनंद मिलिंद ने संगीत दिया है। तो लीजिए पेश है ये गीत।

0: कार्यक्रम गीत तुम्हारे में स्वागत है। एक बार फिर से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से, और समय हो चला है प्रातः के 10:20:42। तो बिना देर किए हम शुरू करते हैं ये
1: अगली फरमाइश। जी हाँ, तो ये मैसेज हमें मिला है कृष्ण नगरी मथुरा से, सबा अंसारी, शकील अंसारी, इना अंसारी, बुशरा अंसारी, गुलिस्ता अंसारी, गुलिस्ता रानी, नंदिनी और अंजलि का,
0: ग्राम नगला उपर नजीबाबाद जनपद बिजनौर से फरमाइश कर रहे हैं ठाकुर विजयपाल सिंह, जबर सिंह, जयपाल सिंह, राहुल, सचिन, सविता, नोनी, लालू, नमन, के जल, छोटी शिवी, क्रीधा, ओम प्रकाश, बलवंत, पूनम और परिवार के सभी सदस्य।
1: और ये मैसेज मिला है रिंगनी छत्तीसगढ़ से, दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा का,
0: ग्राम धनसिनी नजीबाबाद जनपद बिजनौर से अनुरोध कर रहे हैं मुनेश कुमार प्रजापति, दिनेश कुमार प्रजापति, महेंद्र प्रजापति, मुकेश, राजू, राजकुमार और राधेश्याम जी।
1: कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंगेल, मोरस जंगेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंगेल और नंदिनी जंगेल। धमदा ग्राम सुकरी कला से अमित जंगेल, शकुन जंगेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंगेल और अंजलि जंगेल। ये मैसेज हमें मिला है मजनू का टीला से, कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक।
0: भोलेनाथ कॉलोनी इंदौर मध्य प्रदेश से पत्र लिख रहे हैं स्वाति, प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी और इनके परिवार के सभी सदस्य।
1: कंवर कॉलोनी बड़वाहा जिला खरगोन एमपी से हमें मैसेज भेजा है प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली ने
0: पत्र के माध्यम से अनुरोध किया है ग्राम जहानाबाद नजीबाबाद से, मोहम्मद जावेद, मोहम्मद जुनैद, मोहम्मद जैद, अक्सरानी, इंशा, रीबा, अनाबिया और आयरा ने।
1: करणवीर हाउस भुंचो कैनंचिया बटिंडा पंजाब से प्रेम सिंह जोड़ा, मंजीत कौर जोड़ा, करणवीर, करण, दपिंदर, वरिंदर, कुलदीप, सीमू एकम, दमन और अभिजोत।
0: पत्र भेजा है हमें नूर महल मोहसौल सीतामढ़ी बिहार से, मुसर्रत जहानाज, तलत जहानाज, फरहत जहानाज, रिफत जहानाज, नुजरत जहानाज, साजिया शाहीनाज, नाजिया नूरी नाज ने अपनी पसंद की गीत के लिए।
1: कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखिंदर सिंह जोड़ा, सिटी दीवाना।
0: खुर्जा से हमें पत्र भेजा तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा ने, सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का गीत आप भी।
1: ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांद गांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा, बेबी आराध्या साहू।
0: और ये गीत की फरमाइश भेजी है डार नांदगांव छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा, चांदनी, भूपेश और दीपेश वर्मा ने। फूल गांव निजामाबाद तेलंगाना से एम ए वहीदुरमानी, डॉक्टर मोहम्मद जमीर, मोहम्मद फसी, मोहम्मद जुनैद, बुबैर मुकरम, मोहम्मद नोमान, मोहम्मद फुरकान, मोहम्मद जाकिर के साथ मोहम्मद फाजिल ने भी। कोल सिटी बरका काना से अफजाल, ताज, शाहिन, सुल्ताना, सोनू, तस्नीम, निप्पी सहानी और मोहम्मद अफजल मलिक, सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का गीत।
1: और ये मैसेज हमें मिला है गांव फरांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी का। गांव गाद्रोना पोस्ट लंडौरा रुड़की से हमें मैसेज भेजा है मदन गिरी, विमला देवी, बलराम गिरी, मधु देवी, भारत गिरी, सोनिया देवी, सिमरन गिरी, गोविंद गिरी, वंशिका गिरी, रमन गिरी और दिव्या गिरी का।
0: अपनी पसंद का गीत सुनना चाहते हैं जिला मुरादाबाद ग्राम दूल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज काजल, सीमा मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहनी, ऋतिक और बलवीर सिंह जी।
1: ये मैसेज हमें व्हाट्सएप के जरिए मिला है गुलाम रोड हर गोविंद नगर नवान शहर से सुरेंद्र संधु, अनीता संधु, रोहित संधु, रितेश संधु, शिखा संधु, प्रतीक्षा संधु और मैक्स का। तो निधि जी, इनके फरमाइश का गीत
0: सुनवा देते हैं मोहम्मद रफी के स्वर में। फिल्म का नाम है तीसरी मंजिल, मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गीत है और संगीत है आर डी वर्मन का।

0: आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत तुम्हारे, और कार्यक्रम गीत तुम्हारे में मैं आज आपके साथ हूँ आपके सखी निधि भारद्वाज,
1: और मेरे मैं हूँ आपके साथ विश्वास त्रिवेदी।
0: तो विश्वास जी, अगला गीत आप कौन सा सुनवा रखे हैं, पहले ये बता देते हैं, फिर करते हैं कि।
1: हाँ बिल्कुल, ये हमारे श्रोताओं की फरमाइश पर ये गीत है, मोहरा फिल्म से उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में है। आनंद बख्शी ने गीत लिखा है और धुन बनाई है विजू शाह ने।
0: तो फिर श्रोताओं तैयार हो जाइएगा, क्योंकि आपकी पसंद का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं और अनुरोध कर रहे हैं आप सब।
1: ये नगर पंचायत बढ़ापुर बिजनौर से हैं एम तायर एम उजैफ, और ये मैसेज है हमारे पास रतलाम एमपी से, श्रोता संघ ग्राम हिंगड़ी अलोट जिला मालवा रेडियो श्रोता संघ। ये मैसेज करने वाले हैं जगदीश धाकड़ नायमा, रंजू भाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़ और शिवांगी धाकड़।
0: अनारकली बाजार जगराव से कमल पाठक, सुनील पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गायवा मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक, विनोदपुरी और इनके साथ ही सुनना चाहते हैं अपनी पसंद के गीत को, और अनुरोध कर रहे हैं आप भी हमारे इस कार्यक्रम में अपनी पसंद के गीत के लिए। परिमहल काजगंज से आबाद खान और
1: हमारा
0: और इनकी बहन और परिवार के सदस्य, नाम थोड़ा अलग अलग लिखा है लेकिन देखिए शामिल तो हो गई आपकी फरमाइश। और आप पत्र के माध्यम से जो जुड़े हैं वो है अस्तुपुरा जिला मऊ यूपी से मजहर अली अंसारी, राजी अभिगम अंसारी, सादिक और साजिद पत्र भेज रहे हैं। बहादुरगंज गाजीपुर उत्तर प्रदेश से आजाद अली अनवर, रिजवाना परवीन और अब्दुल्ला आजाद भी।
1: ये कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा वालों छत्तीसगढ़ से है, देव शंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी पूजा तामुरिया, राधिका और प्रभा देवी तामुरिया, इनके साथ हैं पोता मास्टर अल कबीर। और ये मैसेज हमें जो मिला है ये मोताला महाराष्ट्र से ये मैसेज भेजा है, बड़ी दूर से मैसेज मिला है विजय सुरलकर और रतन माला सुरलकर का।
0: सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से पत्र भेज रहे हैं टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर और डॉक्टर अमनदीप। पत्र के माध्यम से फरमाइश करते हैं शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल भी कालका से।
1: नसीब रेडियो श्रोता संघ नागचून रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफार डावर खुश नसीब, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी।
0: दीदार रेडियो श्रोता संघ बलराम गेट कासगंज से एम असलम सैफी, जबुनिश अभिगम, अक्रम सैफी, जाहिद सैफी और सद्दाम सैफी के साथ सभी साथी।
1: मैसेज मिला है हमें ग्राम जुझेला थाना शिवाला कला बिजनौर से राशिद अंसारी, परवीन जहां, निशात आयशा, आलिया साइना, महवेश मोहम्मद अफान और अदीना नूर का।
0: उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी, बोधराज खोरवाल, गीतिका खोरवाल, भानु प्रकाश भी सुनना चाहते हैं अपनी पसंद के गीत को, और आप जुड़ रखे हैं हमसे, ये तो शायद शामिल भी हुए हैं कुछ साथी, लेकिन पढ़ते हैं। जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुषद वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईचान भाई, राजकुमार भुडाना, और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी, नंदिनी, रोहित, ऋतु, मुकेश और जगताप भी अनुरोध कर रहे हैं अपने पसंद के गीत के लिए। बीजना मुरादाबाद से राजवीर सिंह यादव, कुणाल यादव, हर्ष यादव, मनीष यादव, अंशिका यादव, यूनुस खान और सोफिया खान का भी अनुरोध है इस गीत के लिए। दाऊद सराय सहारनपुर से फरमाइश कर रखे हैं अनवर साबरी, शन्नू साबरी, मुदस्सिर साबरी, मुजक्किर साबरी और जरीफ अंसारी जी अपनी पसंद के गीत को सुनना चाहते हैं। गोल्डन रेडियो श्रोता संघ राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक और आर्यन वर्मा, और शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार, गंज डुंडवारा से।
1: ये गंज डुंडवारा से हमें मैसेज मिला है, शमसुल कमर राही, शाहीन, फातिमा, अदनान, फैजान, अनु, उस्मान और कलीम का। ये मैसेज हमें कई बार ना, मैसेज हमें दो
0: हाँ,
1: दो
0: बार
1: बार
0: आते हैं,
1: तीन
0: जैसे
1: तीन बार
0: सनावत
1: भेज
0: से
1: देते
0: शेख मुसा मोहिन से
1: हैं।
0: कभी किसी और ने नाम लिखा, इस चक्कर में रह जाते हैं। और साथियों के सेक्टर 18 जगह धड़ी जिला यमुनानगर हरियाणा से विनय मोहन खारवन, मीनाक्षी प्लोमा और डॉक्टर ईशानी भी सुनना चाहती हैं अपने पसंद के गीत को।
1: ये मोताला बाजार से हमें मैसेज भेजा है बबलू ठेकेदार, शेख शगीर, शेख वजीर, सोहिल शेख, सैयद तहमूर, शामिर खान और अजलान का।
0: धाड़ी नांदुरा महाराष्ट्र से श्री कृष्ण बाठे, संदीप बाठे और अमूल्य बाठे का अनुरोध है अपनी पसंद के गीत के लिए। और एक और फरमाइश लेते हैं, आप हैं हमारे साथी आरती गौरी और ओम मोताला से, मनाली हिमाचल से हर्ष, विनय, विनीत, रोजस भाई चंडीगढ़ से फरमाइश कर रहे हैं, शेफाली, शेफी, डेविस, विमला और सतीश अनेजा भी। मुगलपुरा बागपत से अब्दुल सत्तार अब्बासी सुनना चाहते हैं अपने पसंद के गीत को। और आप हैं हमारे साथी बल्हार शाह से सूरज लोंढे, प्राची लोंढे, एकलव्य लोंढे और पांढर कवड़ा जिला यवतमाल महाराष्ट्र, अनिल बुरांडे, उषा बुरांडे, अनुश्री बुरांडे और धनश्री बुरांडे। अस्तुपुरा जिला मऊ से मजहर अली अंसारी, राजा बेगम और मोहम्मद सादिक अंसारी, बहादुरगंज गाजीपुर से भी अनुरोध करते हैं आजाद अली अनवर, रिजवाना परवीन और अब्दुल्ला आजाद।
1: नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से ये मैसेज मिला है, पीएस गंवाणकर, निर्मला नवानकर, विशाल मलकापुर महाराष्ट्र से ये मैसेज है, सोपान तायडे, नारायण इंगले और आशीष मुरहेकर का।
0: पत्र के माध्यम से अनुरोध करते हैं महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तरनी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुचला ठाकुर, ज्योति ठाकुर और रियांश ठाकुर। छत्तीसगढ़ भाटापारा ददरंगी से पत्र भेजते हैं द्वारिका प्रसाद वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झाविंद्र कुमार वर्मा और किशोर कुमार वर्मा भी।
1: भटिंडा रोड मंडी ये डबावाली से है, राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, लक्की नारंग, तानिया नारंग, ये मैसेज हमें एक और मिला है इसी गीत के लिए।
0: चकिया बाजार चंदौली से सुंदर जायसवाल, सुमन जायसवाल, रामनगर कदमा जमशेदपुर से मुराह जायसवाल और दिवंती जायसवाल, बाबूरी बाजार चंदौली से विजय जायसवाल और सरोज जायसवाल और गम्हरिया जमशेदपुर से रोहन जायसवाल, आर्य जायसवाल। तो आप भी सुनेगा अपनी पसंद का गीत, फिल्म का नाम है मोहरा, आवाज़ उदित नारायण और अलका याग्निक की।

0: कार्यक्रम गीत तुम्हारे का आनंद आप ले रखे हैं आकाशवाणी की नजीबाबाद केंद्र से, और अगले गीत की फरमाइश करने वाले साथियों के नाम हम आपको जरूर बताएंगे क्योंकि आप कर रहे हैं इंतजार और सुनते रहेगा कार्यक्रम गीत तुम्हारे। खमहरिया छत्तीसगढ़ से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी, प्रतीक कुमार सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का गीत और आप हैं हमारे साथी अपनी फरमाइश के साथ। किदवई नगर, सिद्धपुरा टाउन से जुबैर अली खान, सबिया जुबैर, अनुमन खान, और ये मैसेज हमें मिला है
1: गांव जेवरा हिसार से वीरेंद्र भयान, सुरेंद्र भयान, शमशेर मनोज
0: और इनके परिवार के सदस्यों का पत्र के माध्यम से फरमाइश कर रखे हैं। ग्राम राजापुर लकड़ापारा जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से खेल सात मरकाम, नयन प्रकाश मरकाम, शारदा मरकाम, संतोषी और इनके परिवार के सदस्य।
1: जिला अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस और रेहान, और ये मैसेज हमें मिला है यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़से और विनोद खड़से का, और इसी गीत की फरमाइश हमें भेजी है ये
0: ग्राम पीपरलोट सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा ने भी। दाऊद सराय सहारनपुर से अनवर साबरी, शनू साबरी, मुदस्सिर साबरी, मुजक्किर साबरी और जरीफ अंसारी की फरमाइश हमें प्राप्त हुई है और ये पत्र के माध्यम से हमसे जुड़े हैं। जेल रोड रायगढ़ से रेशमा तिवारी, सोनम तिवारी, आदिबा तिवारी। राजनांदगांव से पत्र लिखते हैं याकूब आसमा, यूसुफ आसमा, इमरान और इरफान आसमा। और इंदिरा विहार रायगढ़ से भी पत्र प्राप्त हुआ है वसीम अक्रम नूरजहां, डब्ल्यू अक्रम नूरजहां, वली अक्रम नूरजहां, उल्लाह अक्रम नूरजहां का।
1: कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा ने हमें इसी गीत की फरमाइश भेजी है। व्हाइट फील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण अंजु श्रीवास्तव, दिव्येंदु भूषण, संस्कृति पौरुष, रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी, कुलदीप कमल।
0: बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन, मेघा मस्किन ने फरमाइश भेजी। और चंडीगढ़ से लिखते हैं राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना भी अपनी पसंद के गीत के लिए आप हैं हमारे साथी। कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन फरहान, फारिया और ताहिरा। ऊपरकोट बुलंदशहर से भी अनुरोध आया है हमारे पास अपनी पसंद के गीत के लिए, आप हैं मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अरजान अब्बासी और अवान अब्बासी के साथ पूरा अब्बासी परिवार।
1: और ये मैसेज हमें गन गोला दातागंज जिला बदायूं से मिला है इशरत खान, शायरा बेगम, रऊफ खान, सावरीन बेगम, शहबाज खान, सैफ खान, ईशान खान और आजम खान, इनके साथ हैं अरहान खान।
0: गुजरात गांधी ग्राम से अपनी पसंद के गीत को सुनना चाहते हैं प्रवीण सोनी, पूजा पायल और जगदीश जौहरी।
1: खमरिया छत्तीसगढ़ से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी, प्रतीक कुमार।
0: मोहल्ला बारादरी से महमूद खान, रामपुर से भाई रफत, सईद भाई मंसूरी, राशिद भाई मंसूरी, असद भाई बहन, फिरोजा मुस्कान और

0: अफसर अली नगमा ना मंसूरी भी सुनना चाहते हैं, इस गीत को जनकपुरी सहारनपुर से सुनना चाहते हैं, जॉन डिक्रेस्टो, रोजी डिक्रेस्टो, पॉल डिक्रेस्टो और विलिस डिक्रेस्टो।
1: और ये एक और मैसेज सहारनपुर से ही है, आशा नारंग और सुरेश नारंग का।
0: शेरकोट बिजनौर से निजामुद्दीन, रऊफ अहमद, मोहम्मद अरसलान, मोहम्मद हन्नान महक, परवीन, रश्मा, रमशा और इनके परिवार के सभी सदस्य।
1: और ये मैसेज हमें मिला है करूला मुरादाबाद से अयुब खान, इरम गुड़िया, शोएब खान, सिंधौली मीरगंज बरेली से जीशान वारसी का।
0: लालगिरी गोस्वामी, हिमलता हिना, हर्षित खुशी गोस्वामी, रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से अनुरोध कर रखे हैं कि इस गीत के लिए जो अब हम आपको सुनवाएंगे। और ये है साथी विनायक बेंडे, श्रीमती मंगला बेंडे, विजय, शुभम बेंडे, पवन जरीके, संजीव डाबे, राव आकोट से।
1: समस्तीपुर बिहार से मीरा सिंह, ज्योति सिंह, रोहतास बिहार से ही हैं ये सोनम सिंह, अनामिका सिंह। ये मैसेज हमें मिला है जिला मुरादाबाद, ग्राम दूल्हापुर, उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून का।
0: लक्सर रोड गांव, सुबाहेड़ी, कस्बापुर, काजी जिला, मुजफ्फरनगर नगर से ये अनुरोध कर रहे हैं मोहम्मद जाबिर, मोहम्मद हुसैफा, मोहम्मद शाहनवाज, मोहम्मद शाहरुख, मोहम्मद शोहेब, कहकशा और पूरा परिवार सुनना चाहता है अपनी पसंद के गीत को एक साथ। और आप हैं जिला नांदेड़, एताला, महाराष्ट्र, शंकर जायसवाल, गणेश जायसवाल, शुभम प्रसाद जायसवाल, अर्णव जायसवाल, दुग्रेश्वरी, राखी जायसवाल और तृप्ति जायसवाल भी।
1: और ये एक और मैसेज है चौटाला हरियाणा से दारा पंडित, संजय शर्मा, प्रियंका शर्मा का। तो आइए सुनते हैं इनकी फरमाइश का ये गीत। और ये गीत जो इन्होंने अपनी फरमाइश का सुनने के लिए हमें भेजा है, ये है फिल्म आए दिन बाहर से, और लता मंगेशकर की आवाज़ है, आनंद बख्शी ने गीत लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने इसकी धुन बनाई है।

0: कार्यक्रम गीत तुम्हारे आप सुन रखे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। और अब कार्यक्रम का अंतिम गीत आप सबके अनुरोध पर जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश से पोस्ट बसी किरतपुर से सुनना चाहते हैं जकी मिर्जा और सलमान अख्तर।
1: लाल कुर्ती रुड़की कैंट से राजेश वर्मा, मंजू वर्मा, निशांत वर्मा, कौशिकी वर्मा, दीपाली वर्मा युवान और आर के राजा।
0: दंतरंगी से भागवत वर्मा, विनीता वर्मा, रुद्र वर्मा के साथ लीलावती और शांति देवी जी। और आप हैं हमारे साथी
1: रघुवीर नगर दिल्ली से दिलावर खान, असीना बानो, अलीजा नायाब और लट्टू।
0: ये अनुरोध मिला है मारहरा दरवाजा ईटा से नबी हसन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, अनम यशफ अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी का।
1: सादुल शहर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़।
0: जिला मुरादाबाद गामधुल्लापुर से मोहम्मद फरमान सलमान ने फिर से भेज दी अपनी फरमाइश। और ये हैं साथी धनौरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद बेबी आलिया और रेयान बाबू। और आप हैं
1: तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया शेख, शेख रही मुन्ना, दानिश आसिफ शेख।
0: ये फरमाइश कवाई सालपुरा जिला बारा राजस्थान से सतीश श्रीवास्तव, श्रीमती प्रेमलता श्रीवास्तव, हिमानी हर्षिता, अभिषेक और श्रीवास्तव की हमें मिली है।
1: मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी, सैयद शारिक अली, मेराज अंसारी और बाबू अंसारी।
0: इसी गीत को सुनना चाहते हैं जलालाबाद वैसे सूरज गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा। और
1: मौला अफगानान शेरकोट से नदीम बाकी, कलीम बाकी, अलीम बाकी, अदीम बाकी, अदीम बाकी, अब्दुल गनी, अलमीर, मोहम्मद जैन और जन्नत। तो लीजिए इन सभी की फरमाइश पर पेश है ये गीत फिल्म इतिहास से। आवाजें हैं अनुराधा पोडवल और हरिहरन की। समीर ने गीत लिखा और धुन बनाई है दिलीप सेन, समीर सेन ने।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम के इस अंतिम गीत के साथ ही कार्यक्रम गीत तुम्हारे संपन्न करने की अपनी सखी निधि भारद्वाज
1: और मुझे यानी विश्वास द्विवेदी को दीजिए अनुमति।
0: नमस्कार।

श्रोताओं के पत्र और व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम की तुम्हारे आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 11 बज रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रखे हैं गीता दत्त के स्वर में। फिल्म का नाम है साहब बीबी और गुलाम। संगीत है हेमंत कुमार का और शब्द रचना है शकील बदायूनी की।

0: गीता दत्त के स्वर में आपने ये गीत सुना और ये बात तो श्रोताओं जानते ही हैं कि जब किसी से प्यार हो जाए तो उसके सिवा कहीं दिल नहीं लगता है, ना ही कोई बात सुझाई देती है। सुनते रहेगा कार्यक्रम चित्रपट संगीत आकाशवाणी के इंद्रजी पपात केंद्र से।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
0: में आनंद बख्शी के लिखे गीत को, फिल्म का नाम है दिल तो पागल है और लता मंगेशकर उदित नारायण की युगल आवाज में जब आप इसे सुनेंगे तो निश्चित रूप से चुप नहीं बैठेंगे। कब तक चुप बैठेंगे, आइए गाइए साथ में इस प्यारे से गीत को।

लता मंगेशकर और उदित नारायण की युगल आवाज में दिल तो पागल है, इस फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। और बिल्कुल सही बात है, नहीं चुप बैठना है, मन की बात तो हमें अपनों से जरूर बतानी चाहिए। अगर समस्या है तो भी जरूर बताएं, और अगर किसी से कोई दिल की बात कहनी है तो भी जरूर बताएं, क्योंकि अपने एहसास का एहसास दूसरों को कराना जरूरी है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, कुमार सानू और अलका याग्निक की युगल आवाज में। फिल्म का नाम है मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, संगीत अनु मलिक का है और गीतकार हैं रानी मलिक। देखिए, मन को चुराकर कोई चल ही पड़ा है, जब चुप नहीं रहा गया तो फिर उसको भी अपने पास रखने को जी तो चाहता ही है। उसको ना जाने देंगे हम अपने से दूर, क्योंकि वो है हमारे दिल के बहुत करीब। आइए सुनते रहिए आकाशवाणी नजीबाबाद केंद्र से चित्रपट संगीत।

मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी। इस फिल्म में आपने सुना कुमार सानू और अलका याग्निक को। आइए अब सुनते हैं कुमार सानू और अलीशा चिनाय की युगल आवाज में कार्यक्रम का ये अगला गीत। फिल्म का नाम है इश्क विश्क। संगीतकार हैं अनु मलिक और गीतकार हैं समीर। जब बात एहसासों की हो तो उसका अनुभव होता है कभी खुशी में, कभी गम में, कभी हम कह पाते हैं और कभी एहसास को समझने का भरपूर प्रयास करते हैं, कुछ इस गीत की तरह।

आइए श्रोताओं, चित्रपट संगीत का ये अंतिम गीत अब हम आपको सुनवाते हैं। हमने इसे लिया है फिल्म ढोल से, संगीत प्रीतम का है और शब्द रचना इरशाद कामिल की। गीत को गाया है सोहम चक्रवर्ती ने। तो आइए शामिल होइए इस गीत के साथ, ढोल भी बजाइएगा और आज के इस मौसम का, इस कार्यक्रम का आनंद लीजिएगा।

सोहम चक्रवर्ती के गाए इस गीत के साथ ही श्रोताओं फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत अब संपन्न होता है। मीडिया वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रखे हैं। कहते हैं कि 11:30 होने को है। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं NCERT।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं विमलेश

0: उमंग कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूँ।
1: और मैं अजीत। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
0: लिखते हैं, मित्रता एवं रिश्तेदारी परस्पर सम्मान पर टिकी होती है।
1: बहुत सुंदर विचार आपने भेजा है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी का।
0: गांव ढाणी कुतुबपुर जिला हांसी हरियाणा से रामधारी अवनी प्रियांशी रियांशी ओजस अनाया गुरदीप और बेबी किरत अवाना ने लिखा है।
1: कार्यक्रम उमंग के प्रस्तुतकर्ता विमलेश जी और अजीत जी को सप्रेम नमस्कार। कार्यक्रम उमंग के तहत 3 जून 2026 को प्रस्तुत गोबी शीत मरुस्थल की भौगोलिक सांस्कृतिक एवं सामाजिक जानकारी हमारे लिए अत्यंत ज्ञानवर्धक रही। साथ ही प्रेरणादायी कहानी दोस्त की पहचान ने सच्ची मित्रता के गुणों को समझने की महत्वपूर्ण सीख हमें दी। ऐसे रोचक शिक्षाप्रद एवं प्रेरणादायक कार्यक्रमों की भविष्य में भी आपसे अपेक्षा है। आपके उत्कृष्ट प्रयास के लिए हृदय से धन्यवाद।
0: बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी लिखते हैं।
1: आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी को सादर नमस्कार। समावेशी शिक्षा पर प्रोफेसर भारती जी द्वारा दी गई ज्ञानवर्धक जानकारी महत्वपूर्ण थी। साथ ही गुजरे सप्ताह शीत मरुस्थल पर बेहद शानदार जानकारी दी गई। ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी को हमारे बच्चों ने छुट्टियों में बड़े ध्यान

0: खनिज सोने से भी अधिक मूल्यवान माना जाता है। इसकी चमक अत्यंत आकर्षक है
1: जी।
0: इसे तराशा जाता है।
1: और
0: हाँ, ये कांच काटने के काम भी आता है।
1: जी जी जी मैं समझ गई, ये कहीं हीरा तो नहीं?
0: बिल्कुल सही जवाब। जी हाँ श्रोताओ, ये हीरा है। ये खनिज पृथ्वी पर पाए जाने वाले किसी भी प्राकृतिक पदार्थ से अधिक कठोर है। हीरे के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन प्रश्न ये है कि कितने लोग ये जानते हैं कि ये बनता कैसे है। तो आइए देते हैं इस रोचक चर्चा को विस्तार।
1: श्रोताओं, हीरे का निर्माण होता है पृथ्वी की गहराइयों में। अगर आप पूछें कि कितनी गहराइयों में, तो हम आपको बता दें कि पृथ्वी की सतह से लगभग 150 किलोमीटर नीचे पृथ्वी की परत मेंटल में बनता है।
0: आपको हम ये भी बता दें कि कोयला और हीरा दोनों ही मुख्य रूप से कार्बन से बने होते हैं,
1: जी।
0: लेकिन हीरा बनने की प्रक्रिया बिल्कुल अलग है।
1: श्रोताओं, जैसा कि अभी हमने सुना था कि पृथ्वी की सतह से लगभग 150 किलोमीटर से भी अधिक गहराई में बनता है, आइए जानते हैं क्या होता है उन गहराइयों में।
0: श्रोताओं, पृथ्वी की गहराइयों में लगभग तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक होता है, और वहाँ का दबाव वायुमंडलीय दबाव से हजारों गुना अधिक होता है।
1: इन अत्यधिक दबाव वाली परिस्थितियों में कार्बन के परमाणु एक विशेष क्रिस्टलीय संरचना में व्यवस्थित हो जाते हैं, जिसके कारण हीरा बनता है। इस प्रक्रिया में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं। लेकिन अजीत जी, श्रोताओं की ओर से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। अभी हमने जाना कि हीरे पृथ्वी की सतह से 150 से भी अधिक गहराई में बनते हैं। इतनी गहराई तक उत्खनन तो असंभव है, तो फिर हीरे तक हम कैसे पहुँचे?
0: सचमुच ये बहुत ही सुंदर प्रश्न है। विमलेश जी, यदि हीरे इतनी गहराई में ही बने रहते तो हम उन्हें कभी देख ही नहीं पाते। होता ये है कि ज्वालामुखीय विस्फोटों के कारण मैग्मा यानी धरती के अंदर की पिघली चट्टानें तीव्र गति से ऊपर उठती हैं, और वे साथ साथ हीरों को भी पृथ्वी की सतह के बहुत करीब ले आती हैं,
1: और फिर हम उन्हें उत्खनन द्वारा निकाल लेते हैं। श्रोताओ, वैज्ञानिक दृष्टि से हीरा शुद्ध कार्बन है। आपको बता दें कि हीरा और आपके घर में पाई जाने वाली पेंसिल की नोक ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन से बने हैं। अंतर केवल परमाणुओं की व्यवस्था का है।
0: पता है श्रोताओ, हीरे को यदि अत्यधिक ताप पर ऑक्सीजन में जलाया जाए तो अंत में कार्बन डाइऑक्साइड गैस में वो बदल सकता है। श्रोताओ, एक बात और आपको बता दें, आजकल आभूषणों और उद्योग में इस्तेमाल होने वाले हीरे प्रयोगशालाओं में ही बनाए जाते हैं।
1: लेकिन एक खास बात यह है कि कृत्रिम रूप में हीरों को बनाने के लिए एक छोटा प्राकृतिक हीरा इस्तेमाल किया जाता है, जिसे डायमंड सीड कहा जाता है। इस सीड के द्वारा प्राकृतिक प्रक्रिया की नकल करके हीरा बनाया जाता है। एक बात जरूर है कि प्राकृतिक रूप से हीरा बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं, लेकिन कृत्रिम रूप में इसे बनाने में बहुत कम समय लगता है।
0: लेकिन इसे बनाने की विधा या फॉर्मूला हमें प्रकृति से ही मिलता है, तो हम याद रख सकते हैं कि पृथ्वी की गहराइयों में अत्यधिक ताप और दबाव के कारण जो कार्बन के क्रिस्टल बनते हैं उन्हें हम हीरा कहते हैं।
1: तो श्रोताओ, आप कह सकते हैं कि आपके हाथ में चमकता हुआ हीरा वास्तव में पृथ्वी की गहराइयों में लाखों करोड़ों वर्ष पहले बना हुआ एक अद्भुत प्राकृतिक चमत्कार है।
0: जी, तो श्रोताओ ये थी जानकारी हीरे की। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज की ही जानकारी से प्रश्न है, डायमंड सीड किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: डायमंड सीड किसे कहते हैं?
0: आप हमारे प्रश्नों के उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर भेज सकते हैं, और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं आज का पहला शैक्षिक कार्यक्रम। शीर्षक है न्याय।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसके द्वारा पशु पक्षियों के प्रति दया और प्रेम भाव रखने का संदेश दिया गया है।
2: चलो मित्र सिद्धार्थ, उद्यान की ओर चलते हैं, सरोवर के पास। कैसी शांति है, पक्षी नीड़ों की ओर लौट रहे हैं। वहां देखो उस पेड़ पर कैसे वो चिड़िया अपने बच्चे को दाना खिला रही है, अति सुंदर। और तनिक उधर देखो उद्यान के बाहर, कैसे एक बछड़ा अपनी माँ की ओर दौड़ा चला जा रहा है, और गाय अपने बछड़े को लाड़ कर रही है।
3: साथियों, ये वार्तालाप हो रहा था युवराज सिद्धार्थ और उनके मित्र वसु के बीच। सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था, जो कपिलवस्तु नगर का एक ग्राम उद्यान था। उनके पिता राजा शुद्धोधन थे, जो शाक्य गणराज के राजा थे, जिसकी राजधानी थी कपिलवस्तु।

0: युवराज सिद्धार्थ ही आगे चलकर गौतम बुद्ध बने और विश्व को अहिंसा और शांति का पाठ पढ़ाया। प्रारंभ में उनका जीवन राजसी सुख सुविधाओं से भरपूर था। आइए एक बार फिर से चलते हैं उस उद्यान की ओर जहां दोनों मित्र वार्तालाप कर रहे हैं।
1: युवराज, तनिक ऊपर देखो, कितने सुंदर पक्षी हैं।
2: ये राजहंस हैं। ऐसा लगता है मानो हवा में तैर रहे हैं और इतनी ही सुंदरता से वे पानी में भी तैर सकते हैं।
1: ओह, देखो, एक राजहंस नीचे की ओर गिर रहा है। हाँ, लगता है उसे तीर लगा है।
2: प्यारे पक्षी, सब ठीक हो जाएगा, घबराओ नहीं। मैं हूं ना, न जाने किस निर्दयी ने इसे घायल कर दिया। भला इसका क्या दोष है?
3: दोष ये है कि ये सुंदर है, प्यारा है, सबको पसंद आता है।
2: क्या सुंदर होना और सबका प्यारा होना कोई दोष है? प्यारे हंस, मैं तुम्हारा ये तीर निकाल देता हूं, फिक्र मत करो। ये निकाल दिया, अब तुम मेरी गोद में थोड़ी देर विश्राम कर लो।
4: मित्र, कोई भी व्यक्ति जिसके पास हृदय है इन निर्दोष पक्षियों को मार ही नहीं सकता। तुम जरा दौड़कर राज वैद्य से इसके लिए कोई औषधि तो ले आओ।
1: हाँ मित्र, अभी जाता हूँ।
0: युवराज सिद्धार्थ ने हंस को विश्राम करने के लिए पास के ही एक कुंज में लिटा दिया और वसु के आने की प्रतीक्षा करने लगे। इतने में उनके चचेरे भाई देवदत्त आ पहुंचे। वे इधर उधर देख रहे थे, मानो कुछ खोज रहे हों।
5: कुमार सिद्धार्थ, कुमार सिद्धार्थ, कुमार सिद्धार्थ, अभी मैंने एक उड़ते हुए हंस को तीर मारकर नीचे गिराया था। मैंने अपनी आंखों से उसे गिरते हुए देखा था। वो इधर ही कहीं आया है। तीर धनुष पर मेरा लक्ष्य अब भली भांति सद गया है। ये बात मैं कल गुरुजी को बताऊंगा तो वो कितने प्रसन्न होंगे। तुम गुरुजी के सामने मेरी गवाही दोगे ना?
4: अवश्य दूंगा देवदत्त, और वो भी प्रमाण के साथ, क्योंकि इसका प्रमाण वो हंस है जिसे तुमने मारा है।
5: तो हंस तुम्हारे पास है, लाओ उसे मुझे दे दो।
4: क्यों दे दूं?
5: क्यों दे दो? ये तो बड़ा ही विचित्र प्रश्न है। भाई, इसलिए दे दो क्योंकि मैंने उसे मारा है।
4: लेकिन मैंने इसे बचाया है।
5: तुम राजकुमार हो इसलिए मुझे धमकी देना चाहते हो? मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं दोगे। इसका निर्णय तो अब राज दरबार में ही होगा।
0: तो साथियों, दूसरे दिन दरबार लगा हुआ था।
6: महाराज की जय हो,
7: महाराज की जय हो, महाराज की जय हो।
0: प्रतिहारी ने सभी प्रकरणों की जानकारी दी और बताया कि आज कुमार देवदत्त भी एक प्रकरण न्याय के लिए प्रस्तुत करना चाहते हैं। राजकुमार सिद्धार्थ भी उपस्थित थे।
8: कुमार देवदत्त को प्रस्तुत किया जाए।
5: महाराज को प्रणाम करता हूँ। महाराज, मेरा कहना है कि राजकुमार सिद्धार्थ ने मेरा हंस ले लिया है जिसे मैंने मारा था। वो मुझे मेरा हंस नहीं दे रहे, मुझे न्याय चाहिए।
8: राजकुमार सिद्धार्थ, क्या ये वही हंस है जो आपकी गोद में है?
4: महाराज को प्रणाम करता हूँ। जी महाराज, ये वही हंस है। मेरा कहना है कि कुमार देवदत्त ने इस हंस को मारा है, लेकिन मैंने इसे बचाया है। अतएव मैं ये हंस इन्हें नहीं दे सकता।
8: लेकिन सिद्धार्थ, देवदत्त ने इस हंस का आखेट किया है। नियम के अनुसार आखेट वीर का अधिकार है। वीर आखेट को छोड़ नहीं सकता।
4: जी महाराज, लेकिन नियम तो ये भी कहता है कि वीर शरणागत को भी नहीं छोड़ सकता। हमारी शाक्य राजवंश की परंपरा और शास्त्रों का नियम तो ये भी कहता है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है।
5: पर महाराज, मैंने पहले इस हंस को मारा है, इसलिए ये मेरा है।
4: जी, पहले मारा था, तभी तो वो मेरी शरण में आया है। बिना मारे वो मेरी शरण में कैसे आता?
8: महामंत्री, समस्या जटिल हो गई है। क्या आप कोई मार्ग सुझा सकते हैं?
3: जी महाराज, आपकी आज्ञा हो तो मैं अभी तुरंत दूध का दूध और पानी का पानी कर सकता हूँ। अब तो निर्णय ये हंस ही करेगा।
8: निर्णय ये हंस ही करेगा? भला वो कैसे आज्ञा है?
3: महाराज, मेरा आग्रह है कि हंस को यहाँ इस आसन पर बैठाया जाए।
0: हंस को आसन पर बैठा दिया गया। हंस भयभीत था, लेकिन सिद्धार्थ उसे सांत्वना दे रहे थे। सभा स्तंभित थी, सभी फुसफुसा रहे थे।
9: पता नहीं ये हंस कैसे बताएगा?
10: सिद्धार्थ को मिलना चाहिए।
3: कुमार देवदत्त, आप कहते हैं कि इस पर आपका अधिकार है। आसन के पास आइए और हंस को अपने पास बुलाइए।
11: ओ प्रिय हंस, मेरे पास आओ, आ जाओ, आओ मेरे पास, आ जाओ।
0: देवदत्त जितनी बार हंस को बुलाते, वो उतनी ही बार भय के मारे आसन से चिपक जाता। देवदत्त ने बहुत प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी।
3: अब मैं राजकुमार सिद्धार्थ को सामने बुलाना चाहूंगा और कहूंगा कि वे भी हंस को अपने पास बुलाएं।
2: प्यारे राजहंस, मेरे प्रिय मित्र, डरो मत, तुम्हें कोई हानि नहीं होगी, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। मेरे पास आ जाओ, अपने मित्र के पास आ जाओ, आ जाओ, घबराओ मत।
0: फिर क्या था, पलक भी नहीं झपकी थी, हंस ने अपने पंख फैलाए और उड़ता हुआ सिद्धार्थ की गोद में ऐसे आ चिपका जैसे एक बालक अपनी माँ की गोद में चिपक जाता है।
8: स्वयं इस पक्षी ने अपना निर्णय बता दिया है। हमने सुना था कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। आज साक्षात देख भी लिया। मैं हर्ष के साथ घोषित करता हूं कि ये हंस युवराज सिद्धार्थ का ही है।
7: महाराज जय हो,
6: महाराज जय हो,
7: महाराज जय हो।
12: नीड शब्द का अर्थ है घोंसला और आखेट शब्द का अर्थ होता है शिकार। अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। पशु पक्षियों का ख्याल रखने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, सोचिए और इसकी सूची बनाइए। अभी आपने सुना कार्यक्रम न्याय।
13: मैं एक नन्ही बच्ची हूँ, प्री स्कूल में जाती हूँ। अलर्ट हूँ मैं।

0: की गुणवत्तापूर्ण बाल शिक्षा से, निष्ठा से खिलेंगे ये नन्हे फूल।
1: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है हमारा आदित्य।
2: ये कार्यक्रम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें भारत के सौर मिशन की विस्तार से जानकारी दी गई है।
3: 5, 4, 3, 2, 1, 0।
4: दिन था 2 सितंबर 2023, स्थान इसरो का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, समय भारतीय समयानुसार ठीक 11:50, जब अंतरिक्ष यान आदित्य L1 की गगनभेदी गर्जना से आकाश गूंज उठा। लाखों करोड़ों लोगों ने सारी दुनिया में इस दृश्य को टेलीविजन पर देखा।
5: श्रीहरिकोटा से आदित्य L1 के पहले सूर्य मिशन को लॉन्च कर दिया गया है।
4: रेडियो पर समाचार प्रसारित हुए और दूसरे दिन के सभी अखबारों ने इसे अपने मुख पृष्ठ पर प्रमुखता से छापा। शीर्षक था आदित्य L1 का सफल प्रक्षेपण, अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत विश्व की चौथी महाशक्ति बना। आज कक्षा में बड़े उत्साह का वातावरण है, क्योंकि विद्यालय के विशेष निमंत्रण पर आज जाने माने स्पेस जर्नलिस्ट श्री विनीत चरण जी आने वाले हैं, जो सौर यान आदित्य के बारे में बातचीत करेंगे।
6: क्या तुम्हें पता है कि श्री विनीत चरण जी आने वाले हैं?
7: क्या वो चंद्रयान के बारे में बात करेंगे?
6: मुझे लगता है वो आदित्य यान के बारे में बात करेंगे।
7: चलो देखते हैं वो किस यान के बारे में बात करेंगे।
8: हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब?
9: हम अच्छे हैं।
8: तो बच्चों, शुरू करते हैं बातचीत। आप तैयार हैं?
9: जी हम तैयार हैं।
8: तो आज हम बातचीत करने जा रहे हैं भारत के सौर यान आदित्य L1 के बारे में।
2: बच्चों शांत हो जाओ, आप बारी बारी सर से सवाल पूछ सकते हैं।
7: सर, इसका नाम आदित्य क्यों पड़ा?
8: बहुत अच्छा सवाल। देखो, आदित्य एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है सूरज यानी सूर्य। अच्छा चलो बताओ, सूर्य के लिए और कौन कौन से शब्द हैं?
6: सर, टीचर ने बताया था कि सूर्य को रवि और भास्कर भी कहते हैं।
8: बहुत अच्छे। चलो अब मेरी ओर से एक खास सवाल। अच्छा तो अब ये बताओ कि क्या तुमने किसी वैज्ञानिक का नाम सुना है जिनके नाम में भास्कर शब्द जुड़ा है?
7: जी सर, उनका नाम है भास्कराचार्य।
8: अरे वाह।

0: और भास्कर भी कहते हैं।
1: बहुत अच्छे, चलो अब मेरी ओर से एक खास सवाल। अच्छा तो अब ये बताओ कि क्या तुमने किसी वैज्ञानिक का नाम सुना है जिनके नाम में भास्कर शब्द जुड़ा है?
0: जी सर, उनका नाम है भास्कराचार्य।
2: अरे वाह।

0: हाइड्रोजन।
1: हीलियम और हाइड्रोजन सर?
0: हाँ, सूर्य मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम नाम की गैसों का एक विशाल गोला है।
2: विशाल गैसों का गोला?
1: अब समझ आया कि सूर्य इतना गर्म कैसे होता है।
0: शाबाश, समझ गए ना?
2: जी सर।
3: सर, जिस तरह से चंद्रमा पर जाया जा सकता है, क्या उसी प्रकार सूर्य पर भी जाया जा सकता है?
0: बहुत अच्छा प्रश्न किया है। देखो, सूर्य का तापमान इतना अधिक है कि वहाँ चंद्रमा की तरह नहीं जाया जा सकता। हाँ, एक निश्चित दूरी से सूर्य का अध्ययन किया जा सकता है। इसलिए तो हमारे देश ने सूर्य के बारे में अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 को अंतरिक्ष में भेजा।
1: सर, आदित्य अंतरिक्ष यान के बारे में हमें विस्तार से बताइए ना।
0: जरूर बच्चों, देखो आदित्य L1 चंद्रयान की तरह ही एक यान है जिसका कार्य है सूर्य के बारे में जानकारी जुटाना।
2: जी सर।
0: जैसे ये किस समय कैसा होता है, इसका तापमान स्थिर रहता है या घटता बढ़ता है, और इसका क्या प्रभाव हमारी पृथ्वी या सौर मंडल के अन्य ग्रहों पर पड़ता है।
3: सर, हमने आपके लेख में ही पढ़ा है कि आदित्य यान ने सूर्य के कई फोटोज पृथ्वी पर भेजे हैं।
0: हाँ, सही कहा। आदित्य यान का मुख्य उद्देश्य सूर्य की बाहरी परतों का अध्ययन करना है। इन तस्वीरों से हमें तूफानों और अंतरिक्ष के मौसम की बेहतर जानकारी मिलेगी, जिससे भविष्य में संचार और उपग्रह सेवाओं को सुरक्षित रखने में हमें बड़ी मदद मिलेगी।
1: सर, मेरा नाम दिवाकर है।
0: भाई वाह, दिवाकर का मतलब भी तो सूर्य ही होता है ना?
2: जी सर।
0: जी दिवाकर, आपका प्रश्न क्या है?
1: सर, मेरा प्रश्न है, यदि सूर्य इतना गर्म है तो आदित्य यान उसके पास जाकर तस्वीरें कैसे भेज रहा है? क्या वो जल नहीं जाएगा?
0: अरे भला जलेगा कैसे, आदित्य यान सूर्य से एक सुरक्षित दूरी पर है, करोड़ों किलोमीटर दूर, समझे?
3: जी सर। सर, आदित्य यान का पूरा नाम आदित्य L1 क्यों है? L1 का क्या मतलब है?
0: देखो बेटी, L1 का मतलब है लैग्रेंज पॉइंट। ये बिंदु अंतरिक्ष का एक विशिष्ट स्थान होता है जो सूर्य और पृथ्वी के केंद्रों को जोड़ने वाली रेखा पर होता है। इस स्थान से सूर्य को लगातार बिना किसी रुकावट के देखा जा सकता है, और ये देखा गया है कि अंतरिक्ष यान लगभग स्थिर रहता है। लैग्रेंज बिंदु 1 से 5 तक होते हैं।
1: सर, एक बार जब सूर्य ग्रहण लगा था तो हमें विशेष प्रकार की किट दी गई थी और कहा गया था कि इसी किट के द्वारा सूर्य को देखें। ऐसा क्यों?
0: बेटा सोहम, सिर्फ सूर्य ग्रहण के समय ही नहीं, सूर्य को कभी भी प्रत्यक्ष आंखों से देखना हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। लेकिन आदित्य यान ने जो तस्वीरें हमें भेजी हैं, उन्हें देखकर हमें पता चलता है कि सचमुच कितना अद्भुत है हमारा सूर्य।
3: सर, आपकी बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं भी बड़े होकर अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनूंगी, चंद्रमा और दूर दूर के तारों के बारे में पढ़ूंगी और अंतरिक्ष यान भी भेजूंगी।
0: शाबाश बच्चों, शाबाश। खूब पढ़ो, खूब पढ़ो, और देश का नाम हमेशा रोशन करो।
4: तो साथियों, अभी आपने सुनी जानकारी L1 यानी आदित्य यान के बारे में। कैसी लगी जरूर बताइएगा, और ये भी पता लगाइए कि और कौन कौन से यान अंतरिक्ष में भारत द्वारा भेजे गए हैं।
5: हमारा आदित्य, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के बाद हमारा आज का उमंग कार्यक्रम समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
6: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
5: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
7: आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, प्रायोजक थे NCERT। ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है।

अब से कुछ ही देर में आप सुन सकेंगे फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सैनिकों के लिए। समय रहेगा दिन में 12:05। फिल्म संगीत का ही कार्यक्रम मिडडे मेलोडी आप सुनिएगा दिन में 12:30 पर। बहनें सुन सकेंगे अपना कार्यक्रम दिन में 1:15 पर। महिला जगत, जिसमें आज आप सुनेंगे महिलाओं के लिए किचन गार्डन विषय पर नीरज कुमारी की वार्ता। साथ ही आधी आबादी से क्रम में आप बिहार की मंजू देवी पोस्टमार्टम सहायिका की जानकारी भी पा सकेंगे।

लोक संगीत के कार्यक्रम लोकधारा के अंतर्गत जौनसारी लोकगीत आज हम आपको सुनवाएंगे कविता चौहान के स्वर में समय रहेगा दिन में 1:45 संदेश टू सोल्जर्स। ये कार्यक्रम शाम 4 बजे हम अपने दिल्ली केंद्र से प्रसारित करेंगे। शाम 5 बजे मेरा सपना उन्नत भारत क्रम में महिला उद्यमियों के लिए भारत सरकार द्वारा संचालित योजनाएं मुद्रा योजना महिला उद्यमी ओरिएंटल महिला विकास योजना और अन्नपूर्णा योजना पर आप जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। समय याद रखिएगा शाम 5 बजे कार्यक्रम रहेगा मेरा सपना उन्नत भारत।

युवा श्रोता सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी शाम 5:15 पर, जिसमें आज के आकर्षण रखेंगे बूझो तो जाने, कुछ खास है आज, नॉन फिल्मी चार्टबस्टर और कहानी के उस पार में सुनेगा कानों में कंगना का एपिसोड 4। किसान भाइयों के कार्यक्रम कृषि जगत का समय रहेगा शाम 6:05 पर, जिसमें आज आप सुनेंगे श्री महिपाल सिंह से जितेंद्र कुमार की बातचीत। भेंट वार्ता का विषय रहेगा जहर।

श्याम अरोड़ा, कुसुम मिश्रा, चांद नारायण सक्सेना, मंजू मैनी, कंचन बाला और राजकुमारी प्रसाद। पूर्व प्रसारित उदास चबूतरा सुनना ना भूलिएगा रात्रि 9:30 पर।

रात्रि 10 बजे प्रादेशिक लोक एवं सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से प्रसारित करेंगे। सुगम संगीत के अंतर्गत राशिद बदर साबरी और साथियों की गायक कव्वाली सुनिएगा शाम 7:32 पर। छाया गीत का आनंद आप ले सकेंगे शाम 6:55 पर और विविधा क्रम में 6:45 पर। आज शाम सुनिएगा महेंद्र सिंह त्यागी की पूर्व प्रसारित वार्ता, विषय रहेगा जनपद बिजनौर के प्रमुख साहित्यकार। तो श्रोताओं, ये थी संक्षिप्त जानकारी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 12:05 हुए हैं। प्रस्तुत है सैनिक भाइयों का कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

सैनिक भाइयों जय हिंद। श्रोताओं, सैनिक हमारे राष्ट्र का गौरव और देश की सबसे बड़ी संपत्ति है और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम उनको अपना प्यार भी देना चाहते हैं और सम्मान भी। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत। संगीत है AR रहमान का, गीतकार हैं समीर और फिल्म का नाम है द लेजेंड ऑफ भगत सिंह। स्वर है AR रहमान और सुखविंदर का।

वंदे मातरम। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सैनिकों के लिए आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। साथियों, सैनिक अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर अपने देश को रखते हैं। सैनिक का पेशा अनुशासन, वीरता, वफादारी, टीम भावना, दृढ़ता जैसे सर्वोत्तम मानवीय गुणों को सामने लाता है। ऐसे में जब ये प्रहरी हमारी सुरक्षा में लगे हैं तो हम ये कर सकते हैं कि अपने देश में जहां भी हम रहते हैं उनके प्रति हमेशा सम्मान को, आदर को प्रदर्शित करते रहें। साथ ही सहयोगी बन सकते हैं। हम भी देश की रक्षा, सुरक्षा और स्वच्छता में अपने आसपास सफाई रखकर, गलत चीज़ों को रोककर और एक से एक कड़ी जोड़ते हुए अच्छी चीज़ों को बढ़ाते हुए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत अलका याग्निक और उदित नारायण के युगल स्वर में। फिल्म का नाम है साया। एमएम करीम का संगीत है और आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को आइए सुनते हैं अलका याग्निक और उदित नारायण की युगल आवाज में।

सैनिकों के लिए कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से, और आज मैं आपके साथ हूँ आपकी सखी निधि भारद्वाज। साथियों, हमारे सैनिक कड़ाके की ठंड हो या भीषण गर्मी या भारी बारिश का मौसम, हर स्थिति में देश की रक्षा में तत्पर लगे हैं। वे घने जंगलों और बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच भी लड़ते हैं। इसके अलावा हमारे देश की रक्षा के लिए युद्ध क्षेत्र में तैनात रहते हैं। हम उनको हृदय से नमन करते हैं, सलाम करते हैं, और ये आशा भी करते हैं कि वो जहाँ भी, जिस भी समय, जहाँ पर भी अपने स्थान पर ड्यूटी पर रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि वो सुरक्षित हैं तो हम सुरक्षित हैं। ऐसे में उन्हें अपने घर की याद भी आती है, चिट्ठियों के माध्यम से या जहाँ से वो फ़ोन कर सकते हैं, फ़ोन के माध्यम से वो अपनों से मिलते हैं, जुड़ते हैं और दिल का हाल भी बताते हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत। फिल्म ओम शांति ओम से संगीतकार हैं विशाल शेखर और गीतकार भी विशाल हैं, और गाया है इस गीत को केके ने।

सैनिकों के लिए कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की नजीबाबाद केंद्र से। श्रोताओं, सैनिक घर से दूर रहते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि वो अपनों के साथ नहीं रहना चाहते। जब भी वो छुट्टी पर आते हैं तो उनके साथ भरपूर मनोरंजन करते हैं, पर फिर भी हर समय वो ड्यूटी पर ही तैनात रहते हैं, देश की रक्षा में लगे रहते हैं, आसपास की गतिविधियों का ध्यान भी रहते हैं। तो सोचिएगा, जिसके घर में कोई फौजी रहता है तो उसका सीना घर से कैसे चौड़ा हो जाता होगा। भाई वो तो यही कहेगा कि अगर आप मेरे जीवन में आ गए तो बस अब आगे के लिए तो ईश्वर से कुछ और मांगने की चाह रही ही नहीं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम गीत, वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई फिल्म से, संगीत से सजाया है प्रीतम ने और गीत के बोल लिखे हैं इरशाद कामिल ने, स्वर है राहत फतेह अली खान और तुलसी कुमार का।

0: राजू देवी आगे आई।
1: सबसे पहले फुलझारो देवी की है, हमारा ससुर के दादी, उसके बाद बंगाली मल्लिक की है ददिया ससुर, उसके बाद रामजी मल्लिक की है मेरा ससुर, उसके बाद सास की है भोलिया देवी, उसके बाद मेरे हस्बैंड की है रमेश मल्लिक, उसके बाद करना पड़ा, इसका अलावा और कोई ऑप्शन मेरे पास था नहीं, तो किए, हिम्मत हुआ, उस दिन से करते आ रहे। अकेले हम उसमें काम करते हैं, डॉक्टर साहब चल जाते तो अकेले रहते, हमको तो पूर्वज बाय पूर्वज किए, हम देखते देखते सीख गए, हम कोई पढ़ाई नहीं किए हैं, कहीं से ट्रेनिंग नहीं लिए हैं, मेरा पूर्वजे किए हैं, उससे सीख लिए, आते आते आते आते आदत हो गया।
0: डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करना मंजू देवी का पैतृक कार्य है। पहले भी इनके परिवार से इनके सास ससुर इस काम को करते आए हैं, इनके पति ने भी इस काम को किया है। पति की मृत्यु के बाद बच्चों का भरण पोषण करने के लिए मंजू देवी ने इस कार्य को अपनाया। किसी भी व्यक्ति की मृत्यु अलग अलग तरह से होती है, तो पोस्टमार्टम में कैसे पता चलता है किसी व्यक्ति की मृत्यु कैसे हुई है?
1: एक्सीडेंटल जैसे हुआ, तो ये हेड इंजरी हुआ तो कान से ब्लड गिरता है, उसके बाद स्काल खोलते हैं, उसमें ब्लड क्लॉट रहता है ब्रेन में, और जैसे चेस्ट पर इंजरी है, एब्डोमन में इंजरी है तो लीवर रेप्चर रहता है, या रिब टूटा हुआ रहता है तो उसमें लंग्स रेप्चर रहता है, और चेस्ट में ब्लड रहता है, कंकाल हम लोग देखते देखते सीख गए सब।

0: एक छोटा सा कमरा जिसमें डेड बॉडी को लिटाकर वो डॉक्टर के बताए अनुसार उस पर चीरा लगाती हैं, और इस कमरे में आज भी उन्हें कार्य करते हुए कैसी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है मंजू देवी बताती हैं।
1: इसमें व्यवस्था नहीं है, इसमें पेपर लाइट होना चाहिए, एसी होना चाहिए, पानी रहना चाहिए, एसी नहीं है, पानी भी नहीं है, एगो छोटा सा नल बाहर में है, काम करके आते तो बाहर में हाथ धोते हैं, लेकिन उसमें पेपर लाइट होना चाहिए। पोस्टमार्टम वाला जो बेड है सो नहीं है, थोड़ा सा मरीज लोग को जो ऑपरेशन होता है उसमें पोस्टमार्टम होता है, उस बेड पर होता है, उसके लिए अथी के होना चाहिए, सीमेंट के होना चाहिए, 7 फीट लंबाई और 5 फीट चौड़ाई, ये सब व्यवस्था उसमें होना चाहिए।
0: पोस्टमार्टम जैसे कार्य को बहुत सहजता से आज मंजू देवी कर लेती हैं, लेकिन इतने साहस भरे कार्य को करने के लिए उन्हें बहुत कम मानदेय मिलता है। क्या कहना चाहती हैं अपने मानदेय के बारे में मंजू जी, और इसको बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या प्रयास किया?
1: परमानेंट के लिए प्रयास कर रहे हैं, 2014 के आदेश है, 2004 में वैकेंसी निकला, उसमें पैनल में 1 नंबर में नाम था, 2006 में बहाली हुई, हमको छाड़ दिया गया तब कोर्ट का, उस दिन से दौड़ते दौड़ते दौड़ते दौड़ते नहीं किए तो 11 में हम कोर्ट गए हाई कोर्ट, और 14 में मेरा ऑर्डर उसमें परमानेंट नहीं करके 19 में हमको हटा दिया गया, तो हम MGC फाइल कर दिए कोर्ट में, अब फिर हम आ गए लड़ते लड़ते, इस व्यवस्था उसमें होना चाहिए।
0: एक महिला के लिए घर गृहस्थी के साथ एक ऐसा कार्य जो बहुत मुश्किल है, आज भले ही बच्चे बड़े हो गए हों, लेकिन जब वो छोटे थे किस तरह की चुनौतियां मंजू देवी जी के सामने आती थी और कैसे वो घर और कार्य के बीच संतुलन बिठा पाती थी, आइए जानते हैं।
1: सुबह से लेकर शाम तक एकदम बिजी थे, काम आया था काम में गए, फिर छुट्टी हुआ था जल्दी से घर में मेंटेनेंस किया, खाना बना दी, बाल बच्चा को दे दिए खाना, एगो लड़की थी ज्योति वो भी संभालती थी थोड़ा, जो दीपक लड़का है बड़ा सपोर्ट है, वो सब थोड़ा छिटकर था, वही दोनों मिलकर के, तीन माँ बेटा मिलकर के मैनेज किया।
0: मंजू देवी जी आज भी अपने कार्य के प्रति समर्पित हैं। एक दिन पति की अचानक मृत्यु हो जाने पर भी उन्होंने अपने कार्य को सर्वप्रथम रखा, पति का शव घर पर रखकर वो अपने कार्य के लिए गईं।
1: पति का बॉडी पड़ल था, वो बॉडी आ गया मुसरी घर के, उसको करके पोस्टमार्टम करके गए तो सब चीज लाए, अपना कपड़ा उपड़ा पर न्यूनी जो होता है उसमें सो सब लाए, तब पति के अपना दाह संस्कार करने के लिए क्रियाकर्म उनको किए।
0: मंजू देवी जी ने जब शुरुआत में पोस्टमार्टम के इस कार्य को संभाला जो उनका पैतृक कार्य था, तो उन्हें इस कार्य को करता देख रिश्तेदारों का, समाज के लोगों का क्या रिएक्शन था, कैसे व्यवहार वो उनके साथ करते थे?
1: कौन क्या बोलता उसका मायने नहीं दिया, हम अपना काम पर फोकस किए कि जिससे हमारा बाल बच्चा को जीविका चले, उस काम पर हम फोकस किए, टॉर्चर तो बहुत हुआ लेकिन हम उसका मायने नहीं दिए, वही अलगे रहिए, मुर्दा चिर के आते हैं, डेड बॉडी चिर के आते हैं, तो उसमें तो इसमें लेवे ना करेगा, मुर्दा का काम है।
0: श्रोता बहनों, मंजू देवी जी को हमारा सैल्यूट है जो इतना कठिन हिम्मत वाले कार्य को कर रही हैं, जिस कार्य को करते हुए अच्छे अच्छे पुरुष तक डर जाएं।

महिला होने के नाते उन्होंने बड़ी हिम्मत साहस के साथ इस कार्य में कदम बढ़ाए हैं और आज भी इस कार्य को वो निभा रही हैं बिल्कुल निडरता के साथ। ऐसी महिलाओं को देखकर प्रेरणा हमें भी मिलती है। अगर मंजू देवी जी एक चुनौतीपूर्ण वाले कार्य को इतनी सहजता के साथ कर सकती हैं तो फिर तो महिलाओं के लिए कोई भी कार्य आसान हो सकता है। प्रेरणा मिलती है हमें मंजू देवी जी से, जो बिहार के समस्तीपुर जिले में पोस्टमार्टम सहायिका के रूप में तैनात हैं और उन्होंने आज तक लगभग 40,000 पोस्टमार्टम कर चुकी हैं और आज उनके बेटे भी इस काम को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ा रहे हैं। महिला हर बाजी जीत ले अगर वो ठान ले, महिला हर बाजी जीत ले अगर वो ठान ले, दुनिया क्या रोकेगी उसे अगर वो हौसलों से उड़ान ले। श्रोता बहनों, सच में यदि हमारी आधी आबादी किसी भी काम को करने की ठान ले तो उसे कोई भी बंधन रोक नहीं सकता है आगे बढ़ने से। और आधी आबादी में आपने सुना कि कैसे मंजू देवी एक ऐसे काम को कर रही हैं जिसे करने में पुरुषों को भी हिम्मत जवाब दे दे। और ऐसी ही और कहानियां आपके बीच फिर हम लेकर आते रहेंगे। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो रहा है एक ब्रेक का।

0: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
1: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
0: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
1: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
0: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
2: श्रोता बहनों, इस ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कार्यक्रम महिला जगत में। और अब वक्त हो रहा है आज की वार्ता का।

पूर्व स्वरचित कविता की पंक्तियां इस प्रकार हैं। छत के कोने में बालकनी की रेलिंग पर मिट्टी के गमलों में सपना उगता है। बीज बोती हूँ मैं उंगलियों के प्यार से, हर पल पत्ते में मेरी ममता से पलता है। धनिया महके तो लगे माँ की रसोई, पुदीने की ठंडक से गर्मी हट जाए। टमाटर लाल लाल सूरज सा दमके, हरी मिर्च तीखी बातें तेज कर जाएं। नहीं चाहिए बाजार की चमक दमक, कीटनाशक सब्जी का झमेला, अपने हाथ का उगा अपने आंगन का, जिसमें छुपा सेहत का पूरा मेला। सुबह सुबह पानी दूं लोरी सी सुनाऊं, पालक बढ़े तो खुशी से झूम जाऊं। बच्चा कहे माँ ये भिंडी किसने उगाई, मैं हंस दूं और सीना गर्व से फुलाऊं। घर की चार दीवारी के भीतर महिलाओं का योगदान हमेशा बहुत रहा है। वह केवल भोजन बनाने वाली नहीं बल्कि परिवार की सेहत, संस्कार और संस्कृति की संरक्षक भी है। आज जब शहरीकरण बढ़ रहा है और बाजार की सब्जियों में रसायनों की मात्रा चिंता का विषय बन गई है, तब घर की छत, बालकनी, घर का आंगन, खिड़की के पास थोड़ी सी जगह में ताजी सब्जियां, फल, जड़ी बूटियां उगाना, यह केवल शौक ही नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता और पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक है। किचन गार्डन अर्थात रसोई उद्यान, जिसमें धनिया, पुदीना, मेथी, पालक, टमाटर, मिर्च, बैंगन जैसी रोजमर्रा की सब्जियां और तुलसी, अजवायन, गिलोय जैसी रोजमर्रा के लिए औषधीय पौधे उगाए जाते हैं। महिलाओं के लिए इसका महत्व तीन स्तरों पर ज्यादा रहा है, जैसे आर्थिक स्तर का आधार। बाजार से हर महीने कई हजार रुपए खर्च हो जाते हैं, तब हम 10x10 फीट की जगह में उगाई गई सब्जियां इस खर्च का 50-60% कम कर देती हैं। दूसरे स्वास्थ्य के स्तर पर घर की उगी सब्जियां कीटनाशक मुक्त होती हैं। बच्चों को ताजी पालक, महिलाओं को आयरन से भरपूर मेथी बिना रसायन के मिल जाती है। तीसरे मानसिक स्तर के आधार पर मिट्टी से जुड़ाव तनाव को कम करता है। बागवानी को गार्डन थेरेपी भी कहा जाता है, जो डिप्रेशन और चिंता में राहत देता है। किचन गार्डन महिला सशक्तिकरण का माध्यम तब बन जाता है जब महिला अपने हाथों से उगाई भिंडी को सब्जी परिवार को खिलाती हैं, तो उससे आत्मविश्वास पैदा होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं तथा बिहार राज्य की जीविका दीदी और महाराष्ट्र की बचत समूह की महिलाएं अतिरिक्त फल व सब्जी बेचकर महीने में 3000 से 4000 रुपए कमा लेती हैं। किचन गार्डन शुरू करने के आसान चरण निम्न हैं: कम जगह का चयन, कम साधनों के होने पर भी बेनिफिट दे जाता है, जैसे धूप आने वाली बालकनी, छत का कोना या खिड़की की मुडेर पर्याप्त है। पुराने बाल्टी, टब, प्लास्टिक की बोतल, टूटे मटके भी गमले बन जाते हैं। 50% मिट्टी में 30% गोबर की खाद, बर्मी कंपोस्ट और रेत मिला करके रसोई की सब्जी, फल व छिलके, चाय की पत्ती मिलाकर घर पर बना खाद बिना रसायन का बन जाता है। शुरू में महिलाओं को धनिया, पुदीना, पालक, मेथी, हरी मिर्च, टमाटर से प्रारंभ करना चाहिए। सप्ताह से लेकर महीने के भीतर ये सब्जियां तैयार हो जाती हैं तथा कम देखभाल में भी और कम पानी में भी किचन गार्डन का अंग बन जाती हैं। सुबह और या शाम को हल्का पानी दिया जाता है। हफ्ते में एक बार नीम की पत्तियों को गला

0: कर पानी से छिड़काव करें तो कीटनाशक का काम करती हैं। बीज और पौधे किचन गार्डन का अभिन्न अंग हैं। नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र, नर्सरी या ऑनलाइन बीज माता जैसी योजनाओं से मुफ्त जानकारी लेकर सस्ते बीज से किचन गार्डन रोपण किया जा सकता है। किचन गार्डन एक मौसमी योजना अनुसार 12 महीने हरियाली देने का साधन है। कुछ बड़े पौधे छाया देने का कार्य भी करते हैं। एक कुशल गृहिणी गर्मी में लौकी, तुरई, भिंडी, मिर्च आदि सब्जियां उगाकर लाभ कमा सकती हैं। बरसात के मौसम में पालक, सरसों, ब्रोकली आदि सब्जियां उगाई जा सकती हैं। नवंबर से फरवरी सर्दी की सब्जियां जैसे गोभी, टमाटर, आलू, सरसों, चना, प्याज की सब्जियों का अच्छा समय होता है। इस चक्र से महिला किचन गार्डन की सब्जियों से परिवार व अपनी सेहत का पूर्ण ध्यान रखती हैं। भारत में कुपोषण और भूख बड़ी समस्या है। किचन गार्डन के द्वारा घर में महिलाएं आयरन, कैल्शियम, विटामिन, खनिज लवण आदि पोषक तत्वों की कमी की पूर्ति कर सकती हैं। एक गमले में लगा तुलसी का पौधा हवा शुद्ध करता है तथा किचन गार्डन शून्य कचरा की अवधारणा को बढ़ावा देता है। सब्जी व फलों के छिलके खाद बन जाते हैं। इस प्रकार महिलाएं अप्रत्यक्ष रूप से जलवायु परिवर्तन से भी लड़ रही होती हैं, क्योंकि सब्जी व फलों के छोटे छोटे पौधे ऑक्सीजन देते हैं और वातावरण को दूषित होने से बचा लेते हैं। किचन गार्डन में कीट लगना, फंगस लगना आदि बीमारियां कुछ चुनौतियां भरी होती हैं, जिन्हें प्याज, लहसुन व नीम से तैयार घोल का स्प्रे कर दूर किया जा सकता है। इसके अलावा कृषि दर्शन, इफको किसान चैनल तथा नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र से मुफ्त में जानकारी ली जा सकती है। किचन गार्डन अर्थात आर्थिक स्तर, स्वास्थ्य एवं मानसिक स्तर पर स्त्रियों के लिए प्रेरणास्पद है। कुटुंबश्री मिशन से जुड़ी लाखों करोड़ों केरल की महिलाएं किचन गार्डन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने हर घर में 10 गमलों का अभियान चलाया। चेन्नई की एक स्कूल टीचर ने 4x6 फीट की बालकनी में 40 तरह की सब्जियां उगाकर बालकनी की किसान का अवार्ड हासिल किया। इस तरह मैं भी बिजनौर के सरकड़ा ग्राम में एक किचन गार्डन से हरा खजाना उगाती हूँ। किचन गार्डन केवल मिट्टी बीज का खेल नहीं है, बल्कि महिलाओं में आत्मसम्मान, परिवार की सेहत और देश की खाद्य सुरक्षा से जुड़ा एक आंदोलन है। प्रधानमंत्री की पोषण वाटिका योजना नारी शक्ति का सपना है। किचन गार्डन के बिना अधूरा है। आज का यही छोटा प्रयास भारत को सब्जियों व फलों में आत्मनिर्भर बनाता है। किचन गार्डन भारतीय महिलाओं को देवी अन्नपूर्णा का रूप देता है, जो न केवल रसोई बनाती हैं बल्कि रसोई उगाती हैं। अंत में मन यही कहता है कि मिट्टी से दोस्ती, धूप से यारी, किचन गार्डन मेरी छोटी दुनिया प्यारी, एक बीज में छिपा है आत्मनिर्भर भारत, महिला के हाथों में खेती देश की सारी। थकान मिटे, तनाव हटे, मन शांत हो जाए, जब एक गमले में तुलसी अजवायन लगाए, हर घर की लक्ष्मी धरती से जुड़ जाए, तो आंगन भी हरा वृंदावन बन जाए।
1: श्रोता बहनों, किचन गार्डन किस प्रकार से लाभदायक है, इसे कैसे किया जा सकता है घर पर, इस बारे में नीरज कुमारी से सुनिए आपने वार्ता, महिलाओं के लिए किचन गार्डन। उम्मीद है आप भी इस वार्ता से प्रेरित होकर किचन गार्डन को अपने जीवन में अपनाएंगी। और बहनों, अब तो मौसम भी बरसात का है, यदा कदा बारिश भी होगी ही, तो पानी की कमी भी नहीं होगी। तो आप बेल वाली सब्जियों को बो डालिए गमलों में, ग्रो बैग्स में, और फिर हम

जरूर शेयर कीजिएगा कि कैसे कैसे आपका किचन गार्डन तैयार हो रहा है। बहनों, आप अपने सुझाव संदेश हम तक व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकती हैं। हमारे कार्यक्रम महिला जगत को सुनकर भी उसकी प्रतिक्रिया हम तक जरूर भेजिएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9457078288। बहनों, एक बार फिर से अपना मोबाइल नंबर दोहरा रहे हैं, मैसेज आप कीजिएगा। हमारा नंबर है 9457078288। और बहनों, आप कार्यक्रम में चलते चलते मनोरंजन आपका करा देते हैं इस प्यारे से गीत से।

श्रोता बहनों, ये था आपके लिए प्यारा सा गीत। और चलते चलते बोलते हैं आपके लिए कि श्रोता बहनों, आजकल सड़क दुर्घटनाओं में बहुत से लोग चोटिल हो रहे हैं और कभी कभी तो जीवन भी नुकसानदायक बन जाता है। सड़क दुर्घटनाओं में मौत तक हो जाती है। तो बहनों, आपसे यही कहना चाहेंगे, सड़क पर जब भी वाहन लेकर चलें, सड़क नियमों का, यातायात नियमों का पालन करें, सुरक्षित गति बनाए रखें, ध्यान केंद्रित रखें और सड़क की स्थिति का भी ध्यान रखकर गाड़ी चलाएं। सड़क सुरक्षा हेतु जागरूकता बनाए रखें और बहनों, नशे की स्थिति में कभी भी वाहन ना चलाएं। यदि आपके घर में नाबालिग बच्चे हैं और आप उन्हें स्कूटी या बाइक वगैरह चलाने के लिए देते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें, यह भी बच्चों के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। और बहनों, हमेशा हेलमेट लगाकर दुपहिया वाहन चलाएं। फोर व्हीलर यदि चला रहे हैं तो सीट बेल्ट जरूर लगाएं। इन सभी बातों को आप ध्यान रखेंगे और औरों को भी इसकी जानकारी देंगे तो सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं से कहीं ना कहीं व्यक्ति सुरक्षित रह सकता है। और बहनों, इसी संदेश के साथ आज का महिला जगत कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न करते हैं। अपनी साथी सुनीता नेगी को दे अनुमति। बहनों, नमस्कार।

बहनें सुन रही थी अपना कार्यक्रम महिला जगत। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। अपने श्रोताओं को एक बार पुनः याद दिला दें, दोपहर 2:30 पर इसी सभा में आज आप सुनेंगे एक ही संगीत कार्यक्रम में संगीतकार अनिल विश्वास के कुछ गीत। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए श्रोताओं, सुनते हैं लोक संगीत का कार्यक्रम लोकधारा। लोकधारा के अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं कविता चौहान के स्वर में जौनसारी लोकगीत।

0: लोक संगीत के कार्यक्रम लोकधारा के अंतर्गत कविता चौहान के गाए इस जौनसारी लोकगीत के साथ ही लोकधारा का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 2 बजने को हैं। अब हम अपने दिल्ली केंद्र से समाचार रिले करेंगे, पहले अंग्रेजी में उसके बाद हिंदी में।
1: दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वर्षा विलियम्स विद द मिड डे न्यूज।

0: economic and energy security, pharmaceuticals, defence and AI. Prime Minister Narendra Modi held annual summit-level talks with his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi this afternoon. Addressing the joint press meet following the talks, Prime Minister Modi said mutual trust is the biggest asset in today's time and the India-Japan bilateral partnership has stood the test of time. He highlighted that India and Japan are among the world's biggest economies today and a free and open Indo-Pacific is a shared priority for both countries.
1: आज भारत और जापान दोनों ही विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से हैं. एक फ्री प्रॉस्परस और रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता है. क्षेत्र की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक और मार्केट इकोनॉमीज के रूप में आज हमने कई महत्वपूर्ण पहल की है. इनसे हम मिलकर पूरे क्षेत्र में शांति स्थिरता और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेंगे.
0: He stressed that both nations understand the importance of economic security and energy security. He added that technology partnership will be the most important pillar of India-Japan cooperation. Mr. Modi said to realize this vision, India and Japan have issued a joint statement in the field of AI.
1: टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी. इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है. भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट किए हैं. जापान की प्रिसीजन टेक्नोलॉजी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमता इसका संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति देगा.
0: The Prime Minister also informed that in the field of defense today, both nations have signed an agreement on the first co-development project between India and Japan.
1: डिफेंस के क्षेत्र में आज हमने भारत और जापान के पहले को-डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर एग्रीमेंट किया है. नेवल रेडियो एंटेना यूनिकॉर्न का यह प्रोजेक्ट हमारी डिफेंस टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप में एक नया अध्याय खोलेगा. अब हम ऐसी डिफेंस टेक्नोलॉजीज को साथ मिलकर विकसित करेंगे जो रीजनल पीस मैरिटाइम सिक्योरिटी और रूल बेस्ड ऑर्डर को मजबूत करेगी.
0: The Japanese Prime Minister arrived in New Delhi last evening on a three-day visit to India. This is the first official visit of Prime Minister Takaichi to India. The Vikasa

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकायची के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की बातचीत, दोनों देशों के बीच आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स और एआई सहित कई समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा, भारत जापान के द्विपक्षीय संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को लेकर भारत के प्रस्ताव को एक बार फिर से समर्थन मिला। जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे के रवाना होने के साथ ही श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू। दक्षिण पश्चिम मानसून की दिल्ली में दस्तक, उत्तरी तथा पश्चिमी राज्यों के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ा। फीफा विश्व कप में अमेरिका ने बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर 2002 के बाद पहली जीत दर्ज की। बेल्जियम ने सेनेगल को हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। भारत और जापान ने आर्थिक तथा ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स, रक्षा तथा एआई सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकायची के साथ वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की वार्ता की। सम्मेलन में दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज के समय में सामूहिक विश्वास सबसे बड़ी संपत्ति है और भारत जापान की द्विपक्षीय साझेदारी समय की कसौटी पर खरी उतरी है। श्री मोदी ने कहा कि इस परिकल्पना को साकार करने के लिए भारत और जापान ने एआई के क्षेत्र में एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जापान की सटीक प्रौद्योगिकी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमताओं का संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति प्रदान करेगा।
1: प्रधानमंत्री ताकायची, और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानी पार्टनर के साथ एग्रीमेंट किए हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि भारत जापान जैव गैस पहल के माध्यम से भारत में 1000 जैव गैस और जैविक उर्वरक संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे भारत के गांवों में स्थिरता, समृद्धि और ग्रामीण आजीविका को नई शक्ति मिलेगी।
1: भारत और जापान दोनों इकोनॉमिक सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी का महत्व अच्छी तरह समझते हैं। इसी दिशा में आज हमने इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए एक ज्वाइंट रोड मैप तैयार किया है। इसके माध्यम से हम सेमीकंडक्टर, क्वांटम और एडवांस मटेरियल जैसे स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों में सप्लाई चेन रेजिलियंस को मजबूत करेंगे। एनर्जी सिक्योरिटी के क्षेत्र में भी इंडिया जापान बायोगैस इनिशिएटिव के माध्यम से हमें भारत में 1000 बायोगैस और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर प्लांट लगाने में सहायता मिलेगी।
0: इससे पहले आज प्रधानमंत्री ताकायची का राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित थे। जापान के प्रधानमंत्री कल शाम 3 दिन के भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये दौरा भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन के लिए भारत के लंबे समय से चले आ रहे प्रस्ताव को

0: भारत ने आतंकवाद के लिए फंडिंग को रोकने पर वैश्विक ध्यान केंद्रित करने की दिशा में काम किया है। भारत का मानना है कि आतंकवाद विरोधी प्रयासों को राजनीति से प्रेरित बयानों से कमजोर नहीं किया जाना चाहिए।
1: We must address the conditions conducive to the spread of terrorism.
2: अमेरिका, इसराइल और अर्जेंटीना ने प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आज जम्मू में भगवती नगर आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए 4,822 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। इस पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से तीर्थयात्री जम्मू पहुंच रहे हैं। 4,822 श्रद्धालुओं का पहला जत्था, जिसमें बालताल रूट के लिए 2,312 और पहलगाम रास्ते के लिए 2,510 लोग शामिल थे, 147 गाड़ियों के काफिले में रवाना हुए। ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण, विकसित भारत जयराम जी अधिनियम 2025 देश में रोजगार सुनिश्चित करने, ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने और गांवों के विकास में तेजी लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री चौहान ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ आज तिरुपति जिले के मुक्कावरीपल्ले गांव में विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 का शुभारंभ किया। सभा को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि योजना का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी गरीब मजदूर बेरोजगार न रहे और सभी को रोजगार मिले।
3: मनरेगा में केवल 100 दिन रोजगार मिलता था, विकसित भारत जी राम जी योजना में पूरे 125 दिन मजदूर को रोजगार मिलेगा। और रोजगार देने की बात प्रधानमंत्री ऐसे नहीं कह रहे, पहले साल ही विकसित भारत जी राम जी योजना में केंद्र ने जो अपना पैसा दिया है वो है 95,600 करोड़ रुपया, और राज्यों का 40% शेयर मिलेगा, तो एक साल में ही खर्च होंगे 1,51,282 करोड़ रुपया।
2: श्री चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आंध्र प्रदेश के लिए 70,000 से अधिक आवासों की मंजूरी दी। उन्होंने ग्रामीण संपर्क और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से 422 करोड़ रुपए की स्वीकृत राशि से 146 ग्रामीण सड़कों और 19 पुलों के निर्माण के लिए स्वीकृति पत्र भी सौंपे। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एक से दूसरी तकनीक की जगह नहीं ले रहा है, बल्कि इससे टिकाऊ औद्योगिक इकोसिस्टम का निर्माण हो रहा है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी विकसित भारत के लिए देश को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हब बनाने पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ तथा संतुलित विकास के साथ जीवन को सुगम बनाने के प्रयास कर रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत मानसून के मौसम में 21 लाख पौधे लगाए जाएंगे। जिले में विभिन्न स्थानों पर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाएगा। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज रांची के लोकभवन में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत जनगणना प्रपत्र भरकर संबंधित मुख्य चुनाव अधिकारी रवि कुमार और जिला चुनाव अधिकारी मंजुनाथ भजंत्री को सौंपा। उपराज्यपाल ने देश के सभी योग्य पात्रों को जनगणना प्रपत्र सही समय पर भरने की अपील की। बंगलुरु दक्षिण तालुक में एक चट्टान के गिरने से 7 प्रवासी श्रमिकों की मौत हो गई। दुर्घटना उस समय हुई जब मदपटना गांव स्थित कावेरी क्रशर पत्थर खदान में एक विशाल चट्टान नीचे खदान में गिर गया, जहां मजदूर काम कर रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और खदान के मालिकों की तलाश जारी है। मृतकों में बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तरी कर्नाटक के निवासी थे। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए खदान मालिकों के खिलाफ उचित कार्रवाई का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने ISI प्रायोजित अंतर्राज्यीय आतंकी और हथियार नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

0: पुलिस ने बताया कि आरोपी आईएसआई हैंडलर शहजाद भट्टी और उसके साथियों के निर्देश पर राष्ट्रीय राजधानी में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज दिल्ली के सभी इलाकों सहित राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश के कुछ और हिस्सों में तथा मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के ज्यादातर भागों में पहुंच गया है। राजधानी दिल्ली में बारिश से गर्मी और उमस भरे मौसम से काफी राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिन में मानसून के उत्तर भारत के कई और इलाकों में आगे बढ़ने की उम्मीद है। वहीं पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों के लिए तेज बारिश की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में मानसून के आगमन से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है और राज्य के लगभग सभी हिस्सों में बारिश हुई है।
1: दक्षिण पश्चिम मानसून मंगलवार से ही आधिकारिक तौर पर प्रदेश में दाखिल हो चुका है और ट्रफ लाइन आजमगढ़, बरेली और अयोध्या जिलों से होकर गुजर रही है। राज्य के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटों में मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई, जिससे लोगों को लंबे वक्त से पड़ रही भीषण गर्मी से राहत मिली। सुल्तानपुर, मुजफ्फरनगर, बदायूं, सहारनपुर और संभल में बहुत भारी बारिश हुई, जिससे कुछ क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। हालांकि दिन के तापमान में भी गिरावट आई। ये बारिश किसानों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है, जो धान की बुआई में देरी के कारण बेसब्री से मानसून का इंतजार कर रहे थे। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाया है और कहा है कि राज्य भर में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए मौसम के हालात बेहतर बने हुए हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: महाराष्ट्र में आज लगातार दूसरे दिन भी मूसलाधार बारिश जारी रही।
2: मुंबई में लगातार हो रही तेज बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव हो गया है, यातायात धीमी पड़ गई है और उपनगरीय रेल सेवाएं कुछ मार्गों पर प्रभावित हो रही है। लगातार बारिश के चलते पवई लेक पूरी तरह भर चुका है। मुंबई विश्वविद्यालय ने पालघर जिला तथा पनवेल महानगरपालिका क्षेत्र के महाविद्यालयों में आज होने वाली परीक्षाएं रद्द कर दी है। मौसम विभाग ने उत्तर महाराष्ट्र तथा दक्षिण महाराष्ट्र गोवा तट पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी है। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: कनाडा के अधिकतर क्षेत्रों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। वहीं कुछ क्षेत्रों में बारिश और बाढ़ की समस्या बनी हुई है। ओंटारियो, क्यूबेक, प्रेरीज और नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज के कुछ हिस्सों के लिए गर्मी की चेतावनी जारी की गई है। अधिकारियों ने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, बाहरी गतिविधियों से बचने और वरिष्ठ नागरिकों तथा बच्चों का ध्यान रखने की सलाह दी है। यूक्रेन के कीव में रूस के ड्रोन और मिसाइल हमले में 13 लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए। स्थानीय समाचार एजेंसियों ने बताया कि आज शहर के कई हिस्सों में विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं। ये हमले सप्ताह की शुरुआत में यूक्रेन द्वारा मॉस्को पर किए गए ड्रोन हमलों के बाद हुए हैं। फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टेलेमंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमेरिका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर 2002 के बाद पहली जीत दर्ज की। अब अमेरिका का मुकाबला बेल्जियम से होगा। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के सत्र में सेंसेक्स 402 अंक के साथ 77,325 के उच्चतम स्तर पर और निफ्टी 129 अंक बढ़कर 24,135 पर आ गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की बातचीत। दोनों देशों के बीच आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स और एआई सहित कई समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा, भारत जापान के द्विपक्षीय संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को लेकर भारत के प्रस्ताव को एक बार फिर से समर्थन मिला। जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे के रवाना होने के साथ ही श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू। दक्षिण पश्चिम मानसून की दिल्ली में दस्तक, उत्तरी तथा पश्चिमी राज्यों के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी

के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 2:30 हो रखे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही संगीतकार। एक ही संगीत कार्यक्रम में आज हमारे संगीतकार होंगे अनिल विश्वास।

0: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम एक ही संगीतकार लेकर हाजिर हो गई हूँ मैं आपकी सखी निधि भारद्वाज। कहिए कैसे हैं आप, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, जुड़े हैं हमसे। बस यही बात हर बार आपसे कहना हमें पसंद है और सुनना भी यही चाहते हैं कि आप स्वस्थ हैं, जुड़ रहे हैं हमसे और कर रहे हैं अपने सभी कामों को बहुत खुश दिली के साथ। और श्रोताओं, आज तो मौसम भी बहुत अच्छा हुआ, कल और आज कहीं कहीं की बरसने वाली इस बारिश ने मौसम को सुहावना बना ही दिया है। और इस सुहावने मौसम में हम बस यही कहते हैं कि जैसे सूरज की किरणें पूरी दुनिया को अपनी रोशनी से सराबोर कर देती हैं, वैसे ये बारिश के रिमझिम फुहारे भी बहुत अच्छी कर देते हैं हमारी खुशी को, हमारे मौसम को। और ऐसे ही कुछ फनकार ऐसे होते हैं जिनकी धुनें सदियों तक संगीत की दुनिया को रोशन रखती है। साथियों, आज हम याद कर रहे हैं भारतीय फिल्म संगीत के उस महान स्तंभ को जिन्हें आधुनिक संगीत का अग्रदूत और पार्श्व गायन यानी प्लेबैक सिंगिंग का प्रणेता कहा जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हम सबके प्यारे अनिल विश्वास साहब की, जिन्हें पूरी इंडस्ट्री सादर अनिल दा बुलाती थी और अभी भी बुलाती है। तो आइए सुनते हैं उन्हीं के संगीत निर्देशन में कार्यक्रम का ये पहला गीत। फिल्म का नाम है सौतेला भाई और आवाज है मन्ना डे, अनिल विश्वास और साथियों की, गीत है शैलेंद्र का।
1: पैसा नहीं होता कुछ और में होता, मगर ऐसा ऐसा नहीं होता। ऐसे का भरोसा न है वैसे का भरोसा, सच्चा है मेरे यार तो पैसे का भरोसा। कि पैसा ही मालिक, पैसा ही दाता।

0: भटकल आ
1: नामा है जिसके पास उसके हाथ जोड़िए
0: के हाथ जोड़िए जी उसके हाथ जोड़िए
1: मौके से अपनी

क्या हूँ? पैसा ही मालिक, पैसा ही दाता, पैसा ही तेरा यारम, तो प्यार

सौतेला भाई में आपने सुना मन्ना डे अनिल विश्वास और साथियों को, और बात कर रहे हैं हम आज संगीतकार अनिल विश्वास की, जिनके लिए हमने बताया कि पूरी इंडस्ट्री उन्हें सादर अनिल दा बुलाती थी। तो संगीतकार अनिल विश्वास जी हिंदी सिनेमा के दिग्गज संगीतकार थे और उनका जन्म 7 जुलाई 1914 को बारिसाल में हुआ था। 1914 को बारिसाल में जन्मा यह सितारा महज 14 साल की उम्र में ही ऐसा तबला बजाता था कि लोग हैरान रह जाते थे। छात्र जीवन में देश की आजादी के लिए लड़े और फिर कोलकाता से होते हुए 1934 में माया नगरी मुंबई भी पहुंचे। श्रोताओं, फिल्मों में पहली बार पूरा ऑर्केस्ट्रा और 12 वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल करने वाले जादू इंसान अनिल दा ही थे। उन्होंने भारतीय लोक संगीत और वेस्टर्न म्यूजिक को ऐसा मिलाया कि नई विधा को ही जन्म दे दिया। तो आइए बातें आपके बारे में और भी करेंगे। आप सुनते हैं आशा भोसले के सर में संस्कार फिल्म से अनिल विश्वास के संगीत निर्देशन में ये गीत।

0: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
1: तो इंतजार किस बात का,
0: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
1: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
0: हमारा मोबाइल नंबर है 8865।

0: 8845809।
1: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
0: और हमारा ईमेल आईडी है
1: akashwaninajibabad@gmail.com।
0: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
1: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: श्रोताओं, आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम एक ही संगीतकार। और एक ही संगीतकार क्रम में आज हमारे संगीतकार हैं अनिल विश्वास। तो अभी हमने बताया आपको कि फिल्मों में पहली बार पूरा ऑर्केस्ट्रा और 12 वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल करने वाले जादुई इंसान थे अनिल दा। और अगर हम इनकी तारीफ के लिए कुछ लाइनें कहें तो बस यही कह सकती हूँ, वो सजाते थे सुरों को इस तरह, वो सजाते थे सुरों को इस तरह कि हर साज झूम उठता था। लोक और पश्चिमी संगीत का संगम उनके हाथों से संवरता था। दी उन्होंने ऑर्केस्ट्रा की भव्यता हिंदी सिनेमा को। अनिल दा के सुरों का जादू हर दिल में आज भी धड़कता है। तो आइए सुनते हैं मीना कपूर और साथियों के सुर में फिल्म परदेसी का एक खूबसूरत गीत जिसे अपना संगीत दिया है अनिल विश्वास ने।

शास्त्रीय संगीत का अमृत कलश रागम भारतीय शास्त्रीय संगीत को समर्पित आकाशवाणी का बेहतरीन चैनल रागम डीटीएच पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए इंटरनेट और आपके मोबाइल ऐप पर भी रागम आनंद की अटूट रसधार।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: एक ही संगीतकार क्रम में आज आप सुन रहे हैं अनिल विश्वास के कुछ तराने, जिन्हें उन्होंने अपने संगीत से सजाया है। साथियों, वाकई अनिल दास सिर्फ संगीतकार नहीं थे, वो पारखी थे। आज हम जिन आवाज़ों के दीवाने हैं, चाहे वो मुकेश साहब की हो या गज़ल किंग तलत महमूद की, इन महान गायकों को पहला ब्रेक देने वाले और तराशने वाले अनिल दा ही थे। 1943 में ब्लॉकबस्टर फिल्म किस्मत से लेकर तराना, आरजू और अनोखा प्यार जैसी फिल्मों में उन्होंने वो संगीत दिया जो अमर हो गया। तो जैसे अभी हमने आपसे कहा कि तलत महमूद को भी उन्होंने ब्रेक दिया, तो आई क्यों ना उन्हीं के स्वर में हम सुनते हैं ये प्यारा सा गीत और आपको भी सुनवाते हैं फिल्म वारिस का ये गीत, जिसे संगीत दिया है अनिल विश्वास ने।

श्रोताओं, संगीतकार अनिल विश्वास जी, संगीत के प्रति बेमिसाल योगदान देके गए। उन्हें 1986 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा पुरस्कार से भी नवाजा गया और बाद में उन्होंने आकाशवाणी के नेशनल ऑर्केस्ट्रा के निदेशक के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। आइए एक और प्यारे से गीत के साथ आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और आपको सुनवाते हैं ये गीत जिसे संगीत दिया अनिल विश्वास ने और शैलेंद्र ने लिखा है। फिल्म है छोटी छोटी बातें, स्वर है लता मंगेशकर और मुकेश का।

वाह, क्या गीत था हीर राजा। शमा की जी, हीर फिल्म में गीता दत्त को आपने सुना धड़कने लगा दिल। और ये संगीत, ये जादू सिर्फ अनिल विश्वास साहब ही बिखेर सकते थे। और अब चलते चलते कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं क्लासिक गीत जो आज भी हर आशिक की दास्तां बयां करता है। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के स्वर में फिल्म बेकसूर का ये गीत।

क्षमा करना श्रोताओं, एक ही संगीत कार्यक्रम में एक ही ताप नहीं सुन पाए, लेकिन आज का ये सफर आपके साथ बहुत ही अच्छा गुजरा। इसके साथ ही एक ही संगीतकार कार्यक्रम अब संपन्न होता है। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। अपराह्न के 3 बज रहे हैं। हमारी इस सभा के प्रसारण अब संपन्न होते हैं। अपनी संध्याकालीन प्रसारण सभा में शाम 4 बजे आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए।

कुछ बात है कि हस्ती हमारी मिटती नहीं, कुछ बात है इस मिट्टी में कि दुश्मन लाख चाहे पर देश झुकता नहीं, हजार साजिशों से भी देशवासी टूटता नहीं। कुछ बात है भारत की मिट्टी में कि इसका सिपाही, इसका रक्षक, वीर सैनिक शौर्य, निष्ठा, साहस, वीरता और बलिदान से कभी पीछे हटता नहीं। स्वागत है आपका देश की सीमाओं से लेकर देश के भीतर और आसमान की ऊंचाइयों से समंदर की गहराइयों तक।

से। नंबर है हमारा दिल्ली का कोड 011 और उसके बाद 2342-1080 पर। साथ ही हमारी मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर के माध्यम से डाउनलोड करके दुनिया भर में आप हमें लाइव सुन सकते हैं। तो मिट्टी को सलाम है देश की, हमारे सैनिकों की तरफ से और हमारी ओर से भी। शाहिद आपके साथ संदेश टू सोल्जर्स में।

0: 106 देश नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स में एक बार फिर स्वागत है आपका। आपके साथ है शाहिद और आज के हमारे खास मेहमान हैं इंस्पेक्टर कुमार ऋतुराज। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका संदेश टू सोल्जर्स में आकाशवाणी रेनबो पर।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जितने भी श्रोतागण हैं सशस्त्र सीमा बल की तरफ से मैं कुमार ऋतुराज सबको जय हिंद।
0: जय हिंद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना समय निकाला और आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको अपने लिसनर्स को बताना चाहेंगे कि दो बार पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री जैसे प्रेस्टीजियस अवार्ड के अलावा आपने अदम्य साहस, वीरता और समर्पण के लिए कई दूसरे अवार्ड से भी लगातार सम्मानित किए जाते रहे हैं। श्री इंस्पेक्टर कुमार ऋतुराज सशस्त्र सीमा बल के जांबाज और अत्यंत निपुण सबऑर्डिनेट ऑफिसर हैं। 72 बटालियन एसएसबी के साथ रिमार्केबल शानदार 14 साल से भी ज्यादा की सर्विस प्रदान कर चुके हैं। खास तौर पर एंटी नक्सल ऑपरेशंस को सक्सेसफुली लीड कर खतरनाक माओइस्ट आतंकियों को और उनके कई मिशंस को नाकाम किया है इंस्पेक्टर कुमार ऋतुराज ने। सर अपना ये एक्सपीरियंस आप हमारे साथ शेयर कीजिए, हमारे लिसनर्स के साथ, कि कैसा था ये एक्सपीरियंस आपने अपने 14 साल के करियर में खास इस तरीके के एंटी नक्सल ऑपरेशंस में कामयाबी के साथ उनको लीड किया और कामयाबी के साथ उनको पूरा किया।
1: ये सफर तो काफ़ी मेरा शानदार है, लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि इसमें टीम वर्क होता है। ऑफिसर से लेकर जितने आपके सबऑर्डिनेट हैं, जितने भी कार्मिक हैं, सबको इसमें मेहनत करना पड़ता है। कहीं ना कहीं सबका योगदान इसमें रहता है। भले मेडल हमारे सीने पर लगा हुआ है, लेकिन जो हमारे ऑफिसर हैं, हमारे साथ जितने काम करने वाले सहपाठी हैं, सबका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। जी
0: तो सर, जैसा आपने बताया कि ये एक टीम वर्क होता है, लेकिन सर आपने इन सब से हट करके अपनी पहचान जो बनाई, एक टैक्टिकल लीडरशिप, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस और मैदान जंग में स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी आप जाने गए, इसीलिए आपके वो ऑपरेशन सक्सेसफुल भी रहे, तो उनके बारे में बताइए।
1: जी, ऑपरेशन इसलिए सक्सेसफुल रहा कि हम जब 32 बटालियन सशस्त्र सीमा बल मुजफ्फरपुर बेला में जब पोस्टेड थे, हमारे कमांडेंट श्री दीपक सर थे और सुमित जोशी सर डीआईजी थे जो अभी आईजी हैं, और आईपीएस संजय सर थे वो पटना फ्रंटियर में थे, उनका इन लोग का बहुत सहयोग रहा हमारे ऊपर, हमारे काम को हमेशा प्रोत्साहित करते रहे। हमेशा किसी भी ऑपरेशन से पहले शुरुआत से ही डिस्कस होता था, हर एक पॉइंट पर डिस्कस होता था कि कम से कम हम लोग का कैजुअल्टी हो और दुश्मन का ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्षति कर सकें। तो इसीलिए ही ऑपरेशन हमारा अभी तक सक्सेसफुल रहा, जो भी ऑपरेशन हुआ।
0: जी, यहाँ पर हम अपने लिसनर्स को बता दें कि सशस्त्र सीमा बल इंडिया की सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है जो इस बात के लिए जिम्मेदारी लेती है कि वो इंडो नेपाल और इंडो भूटान बॉर्डर की सुरक्षा रक्षा कर सके। सर मैं ठीक बता रहा हूँ?
1: जी बिल्कुल ठीक बता
0: जी रहे हैं। तो हम सर आगे बढ़ेंगे और हम जानना चाहेंगे कि आपकी सर्विसेज के दौरान जो सबसे महत्वपूर्ण और एक की करियर माइलस्टोन भी रहा, जुलाई 2020 का वाल्मीकि नगर एनकाउंटर, और इस ऑपरेशन के दौरान जब खतरनाक गोलीबारी चल रही थी तब आपकी कलाई में भी एक गोली लगी, लेकिन घायल होने के बावजूद आपने पीछे हटने से इनकार कर दिया और अपने जवानों के साथ डटे भी रहे, उन्हें लीड भी करते रहे। और हम ये जानना चाहेंगे कि फिर क्या हुआ उस ऑपरेशन का अंजाम, क्या वो मंजर, वो सिचुएशन हमारे लिसनर्स के साथ आप शेयर कर सकेंगे?
1: ये वाल्मीकि नगर रिजर्व फॉरेस्ट काफ़ी टफ लोकेशन है। इस ऑपरेशन के लिए हम लोग पहले भी प्रयास कर चुके थे 2-3 बार, लेकिन असफलता ही हाथ लगा था। लेकिन मेहनत बोला जाता है, करने से सफलता तो एक दिन आता ही आता है। तो इसमें 4 खूंखार जो नक्सली थे, एक तो पीलूट ब्यूरो के थे, उनके साथ ज़बरदस्त मुठभेड़ हुआ। उस मुठभेड़ के दौरान मेरे राइट हैंड पर बुलेट इंजरी भी हुआ, उधर से भी बहुत ज़बरदस्त फायरिंग हुआ। ये इतना डेन फॉरेस्ट था कि वहाँ GPS वगैरह भी काम नहीं कर सकता था, वहाँ दिन में पहुँचना बहुत मुश्किल है। और उस सिचुएशन में हम लोग वहाँ तक पहुँचे, उसमें बहुत टफ ऑपरेशन, काफ़ी देर तक गोलीबारी चली, इसका परिणाम हुआ कि 4 नक्सली उसमें
0: जी
1: मारे गए।
0: और सर उसमें बताया जाता है कि वो काफ़ी मतलब ड्रेडेड किस्म के जो नक्सली थे, वो बहुत खतरनाक वाले नक्सली थे, तो क्या वो ऑपरेशन आपने जब प्लान किया उसको, तो उसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेस है, मतलब कि इसका अंजाम कुछ भी हो सकता है आपके

0: जवानों को आपको जैसे कि गोली भी लगी और भी कुछ हानि हो सकती थी, तो आपने उसकी तैयारी की थी?
1: जी, उसकी तैयारी बहुत लंबा तैयारी रहा, बहुत सारे इंफॉर्मेशन है जो हम शेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन बहुत लंबी तैयारी रही। जब तक हम लोग पिन पॉइंट पर पहुँचे, मतलब पिन पॉइंट पर हम लोग पहुँचे नहीं, तब तक वो हम लोग अंजाम उसको नहीं दिए।
0: तो सर कितना लंबा चला ये ऑपरेशन?
1: तैयारी तो ऑपरेशन का मतलब 2 साल हम लोग इस ऑपरेशन का तैयारी किए, तब जाके हम लोग को सफलता हासिल हुआ
0: जी
1: इसमें। जी जी जी।
0: और जब आपने ये मिशन शुरू किया, जब आप उन आतंकियों के पीछे गए, तो उसमें फिर कहाँ से शुरू हुआ, फिर कितना समय लगा उसको पूरा करने में, और किस तरीके की आपकी स्ट्रैटेजी रही और कैसे आपने कामयाबी हासिल की?
1: एक्चुअली हमारे में क्या है कि हमारे सशस्त्र सीमा बल जो है उसमें कोई रैंक का कोई गैप नहीं है उसमें।
0: अच्छा।
1: उसमें हम लोग आराम से अपने डीआईजी महोदय, आईजी महोदय से भी आराम से, हम लोग कमांडेंट महोदय से आराम से किसी भी छोटे बात से डिस्कस कर सकते हैं
0: जी।
1: और छोटा छोटा बात जो हम लोग डिस्कस करते हैं उसी का परिणाम है कि हम लोग का कैजुअल्टी कम से कम होता है और हमारा ऑपरेशन 100% नहीं तो 99% हमारा सक्सेस होता है।
0: जी
1: जी।
0: तो आपने जब इस मिशन के लिए, आपको ये तो अंदाजा होगा कि ये कितना खतरनाक मिशन है, तो आपने सब कुछ दांव पर लगा दिया इसकी कामयाबी के लिए और उन आतंकियों से आज़ादी के लिए, मतलब उन आतंकियों को ढेर करने के लिए पूरी तरीके से आपने तैयारी कर ली।
1: आपको बताना चाहते हैं अगर उस इलाके में ये ऑपरेशन नहीं होता तो सुरक्षा बल के लिए बहुत घातक परिणाम भविष्य में होने वाला था, क्योंकि हमारे वाल्मीकि नगर में हमारे भी बटालियन, वहाँ 2 बटालियन कार्यरत हैं, हमारे कार्मिक उसी रूट से आना जाना करते हैं और
0: अच्छा।
1: फॉरेस्ट के भी जो कर्मचारी हैं कार्मिक है वो भी जाते हैं, स्टेट पुलिस के STF भी जाती रहती थी उधर, कभी भी कुछ भी हो सकता था उधर अगर ये नहीं होता ऑपरेशन। तो इस ऑपरेशन के बाद उधर से नक्सल का पूरा जड़ ही वहां से खत्म हो गया इस ऑपरेशन के बाद, उनकी कमर टूट गई।
0: क्या बात है सर। तो यानी कि ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट, एक सक्सेसफुल एंटी नक्सल मिशन था जिसकी वजह से बहुत ज्यादा फिर बाद में फायदा हुआ पूरी फोर्स को भी और उस एरिया को भी, जैसे कि आपने बताया कि उनकी वजह से बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था और आतंकवाद भी बढ़ रहा था।
1: बिल्कुल, उन लोग का वहाँ ट्रेनिंग कैंप भी चल रहा था, बाहर से रिक्रूट करते थे, नौजवान युवक को भड़काते थे, वहाँ ट्रेनिंग करवाते थे, देश के विरुद्ध अगर कोई किसी क्राइम में फंस गया, कोई पुलिस के कार्य से अगर वो खुश नहीं है तो उसको भला फुसला के वहाँ बुलाते थे और देश के विरुद्ध गतिविधियों में उसको लगाते थे और उसे ट्रेनिंग करवाते थे, फिर सुरक्षा बल के खिलाफ ही उसको यूज करते थे।
0: तो इंस्पेक्टर ऋतुराज जी, आप ये बताइए कि उसी ऑपरेशन के दौरान आपके हाथ में गोली जब लगी तो फिर वो तो फिर एक बहुत ही सिचुएशन ही बदल गई, वहां पर आप घायल हो गए, तो फिर भी आपने लेकिन मिशन अपना जारी रखा, कंटिन्यू रखा, तो वो कैसे पॉसिबल कर पाए आप घायल अवस्था में भी?
1: एक्चुअली जब इस टाइप का ऑपरेशन होता है तो उसमें अगर गोली बुलेट इंजरी भी होता है तो उसमें पता नहीं चलता है और उस समय आदमी उस जोश और जुनून में कुछ भी हद तक कर मिटने के लिए तैयार रहता है।
0: बिल्कुल। और जैसे कि आपने बताया कि मिशन ये बहुत ही सक्सेसफुल रहा, तो आपको लगता है कि आपके कंसिस्टेंट रहने पर, आपके बिल्कुल डटे रहने की वजह से ही जो साथ में आपके जवान थे वो भी डटे रहे और इसको कामयाब करके ही वापस लौटे?
1: इसमें हमारे ऑफिसर और ऑफिसर में हमारे नरपर सर डिप्टी कमांडेंट थे, उनका अहम योगदान है और जो कार्मिक लोग थे बहुत उनका अहम योगदान था इसमें।
0: जी
1: एक, जी जी जी।
0: तो
1: बहुत बहादुरी के साथ वो फायर करते रहे, दोनों साइड से काउंटर फायर बहुत जबरदस्त,
0: जी
1: भारी गोलीबारी का बौछार हुआ दोनों साइड से। जी जी जी।
0: सर हमें ये भी हम यहाँ जानना चाहेंगे जैसे हमारे लिसनर्स कि ये जो सिचुएशन होती है जो एक जवान फेस करता है, एक सोल्जर जो फेस करता है, हमें यहाँ स्टूडियो में बैठ करके, अपने घर में बैठ करके वो अंदाजा उसकी इंटेंसिटी का नहीं हो पाता है, तो उसको आप किस तरीके से बयान करेंगे कि जैसे हमने फिल्मों में तो कुछ भी देख लिया है, कोई भी बैटल सीन, कोई भी वॉर सीन या कोई भी इस तरह के एनकाउंटर सीन, लेकिन जब वो आपके सामने हो रहा होता है तो क्या, मतलब वो सिचुएशन होती है आपके दिमाग में, आपके दिल पर क्या चल रहा होता है?
1: बस यही सिचुएशन होता है कि किस तरह उन लोगों को हम लोग परास्त करें, कितना से जल्दी जल्दी उनका जो इनकाउंटर चल रहा है उनको कितने से जल्दी
0: खात्मा करें। जी, लेकिन सर मैं ये जानना चाह रहा था कि वो जो डर वाली सिचुएशन जो होती है वो भी तो कहीं ना कहीं रहती होगी ना, क्योंकि एक तो ये कि मिशन तो है लेकिन एक इंसान के अंदर वो डर जो होता है, तो वो फिर कैसे आप उसको हैंडल करते हैं, कैसे टैकल करते हैं?
1: एक्चुअली हमारे टीम में जितने भी हमारे टीम सेट टीम हमारा था
0: जी,
1: उसमें जितने भी कार्मिक थे, डेडिकेटेड कार्मिक थे, डरने का कोई सवाल नहीं था, गोलियों को बौछार आते भी रहेगा तो वो खड़ा होकर गोली चलाने वाले सारे कार्मिक इसमें थे।
0: क्या
1: नाम का इसमें कोई चीज ही नहीं था।
0: जी
1: जी जी।
0: तो सर यही हमारे सोल्जर्स की, हमारे जवानों की पहचान है कि वो जिसको बोलते ना कि बस डर से आगे निकल करके वो जीत हासिल करके ही दम लेते हैं। तो सर आपको जो स्पेशल रिकॉग्निशन भी मिले हैं और आपको जो एक बहुत ही प्रेस्टीजियस जो मेडल है उससे भी नवाजा गया उस इसी ऑपरेशन के बाद।

0: भी उससे नवाजा गया। आपको जो पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री जैसा प्रेस्टिजियस अवार्ड आपको दो बार दिया गया है, उसके बारे में बताइए।
1: जी, एक तो वाल्मीकि नगर के लिए मुझे गैलेंट्री अवार्ड मिला, गैलेंट्री अवार्ड मिला। उसके बाद फिर एक और बिहार में लखीसराय में इनकाउंटर हुआ था जिसमें दो नक्सली मारे गए थे।
0: अच्छा।
1: उसमें भी भारी मात्रा में गोली और हथियार बरामद हुए थे, तो उसके लिए भी हमको गैलेंट्री मिला। तो फर्स्ट बार गैलेंट्री मिला है
0: जी। जी, और दो बार आपको मिला है?
1: दो बार गैलेंट्री।
0: और उसके अलावा भी बहुत सारे आपको और भी मेडल्स मिले हुए हैं, जैसे कि आप इस वक्त जिस तरीके की अपनी बहुत शानदार यूनिफॉर्म में मौजूद हैं, तो वो मेडल भी मैं दो चार देख पा रहा हूँ, और शायद जगह कम है इसलिए जो आपके मेडल्स, आपके जो अवार्ड हैं वो ज्यादा हैं।
1: आपको तो बताया ही कि मेडल भरे मेरे सीने पर लगा हुआ है, लेकिन काम तो पूरा टीम वर्क का ही होता है।
0: एग्जैक्टली। लेकिन वही है कि लीडरशिप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी होता है, ये भी तो मानना पड़ेगा। तो हमारे साथ हैं हमारे आज के खास मेहमान संदेश टू सोल्जर में इंस्पेक्टर कुमार ऋतुराज, जिनको दो बार पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री जैसे प्रेस्टिजियस अवार्ड के अलावा कई और भी अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। और देश के दुश्मनों के खिलाफ जंग करने में अपनी वीरता और साहस से पीछे नहीं हटे और मिशन को कामयाबी के साथ पूरा किया, डेडिकेशन के साथ। हमारे साथ बने रहेंगे हमारे संदेश टू सोल्जर्स के आज के खास मेहमान इंस्पेक्टर कुमार ऋतुराज, सशस्त्र सीमा बल से। आप सुन रहे हैं शाहिद को 102.6 देश का नंबर 1 रेडियो रेनबो पर।

0: 102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है संदेश टू सोल्जर्स। आप हैं शाहिद के साथ और हमारे साथ हैं इंस्पेक्टर ऋतुराज सशस्त्र सीमा बल से। सर स्वागत एक बार फिर आपका हमारे शो में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: और जैसे हमने ये गाना भी सुना कि हमारे जो वीर सैनिक हैं उन्हीं के हाथ में है देश की सीमाओं की रक्षा और देश के भीतर की भी सुरक्षा, इसमें कोई दो राय नहीं। हम एनकाउंटर की बात कर रहे थे सर, जिस तरीके से आपने बताया तो लग रहा है कि जैसे आपने इसको इतनी मतलब विद ईज आपने इसको किया, इतने आराम से और इतनी प्लानिंग के साथ, पूरी स्ट्रेटजी के साथ किया, तो जाहिर है इसके लिए तैयारी भी बहुत लंबी चली होगी। तो वहां आप पहुंचे कैसे, और ये इतना बड़ा ऑपरेशन था तो तैयारी भी आपने पहले से ही की होगी, और जाहिर है इससे पहले भी कहीं ना कहीं आपने ऐसी कोई मिशन तो किया होगा, या हम ये पूछें कि आपने अपना पहला एनकाउंटर कब और कैसे किया, कैसे आप उसको याद करते हैं?
1: आपको हम बताना चाहेंगे कि 2019 में लोकसभा इलेक्शन था, आपको याद होगा, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का मुजफ्फरपुर में उसमें उनका वो वहाँ प्रोग्राम था। उसी समय नक्सली लोग छत्तीसगढ़ से कुछ प्लान बना के आए हुए थे और कुछ आईडी ब्लास्ट वगैरह का कुछ प्लानिंग उनका चल रहा था, तो सोर्स के द्वारा हमको खबर मिला, उसके बाद हम लोगों ने ऑपरेशन शुरू किया, उस पर काम करना शुरू किया। और जैसे जैसे लीड मिलते गया और लीड मिलने के बाद फिर हम लोग का इनकाउंटर 2019 में मुजफ्फरपुर में हुआ
0: जी।
1: 50 केस का वांटेड आपको बताना चाहेंगे,
0: 50
1: केस का वांटेड नक्सली को हम लोगों ने उनके टीम के साथ उनको घेरा, और एसटीएफ और हमारी टीम,
0: अच्छा,
1: उसमें मैं एसएसबी से मैं लीड कर रहा था,
0: ओके,
1: और एसटीएफ से भी लीड कर रहे थे, उधर से भी एक इंस्पेक्टर थे, तो दोनों की टीम मिलकर टेक्निकल और सोर्स के माध्यम से पिन पॉइंट लोकेशन मिला और हम लोगों ने इनकाउंटर शुरू किया। उसमें 50 केस के वांटेड, फिर से बताना चाहता हूँ
0: जी,
1: उनको हम लोगों ने मार के वहाँ इनकाउंटर में वो ढेर हो गए। उसके बाद उसमें 4 गिरफ्तारी भी हुआ था, उसमें बहुत
0: अच्छा।
1: सारे नक्सली पर्चे वगैरह बरामद हुए थे उसमें जी।
0: जी तो ये जो आप बता रहे हैं कि ये जो इनकाउंटर था ये आपका पहला इनकाउंटर था?
1: ये हाँ, मेरा ये पहला इनकाउंटर था।
0: और वो आपने

0: 102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है संदेश टू सोल्जर्स और शाहिद आपके साथ। आप हमें सुन रहे हैं अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर पूरे देश में और 102.6 पर दिल्ली एनसीआर में। मोबाइल ऐप के माध्यम से पूरी दुनिया में हमें आपसे रूबरू जो है न्यूज ऑन एआईआर। आज के संदेश टू सोल्जर के हमारे खास अतिथि इंस्पेक्टर ऋतुराज सशस्त्र सीमा बल से और हम सुन रहे हैं उनकी जोश भरी कहानियां। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं वो। सर क्या कहना है आपका इस बारे में जो आपको एक टाइटल दे दिया गया है और इस पर आपको कई सारे गैलेंट्री मेडल्स भी दिए जा चुके हैं।
1: मैं बार बार कहता हूं कि ये सारा टीम वर्क होता है
0: जी।
1: पहले जो गैलेंट्री मेरे सीने पर लगा हुआ है लेकिन इसमें जितने भी मेरे साथ सबॉर्डिनेट काम किए
0: जी,
1: जो हमारे सीनियर ऑफिसर जिनके साथ हम काम किए, वो सब सबका अहम इसमें योगदान है
0: जी।
1: सिर्फ सीना मेरा है, इसमें योगदान सबका है।
0: बिल्कुल सर, बहुत अच्छी आपने बात कही और ये बहुत ही अपने आप में इंस्पायर करने वाली बात है, बहुत ही प्रेरणादायक बात है कि आप अकेले ही उसको जो है नहीं लेना चाहते, उसकी तारीफ आप अकेले नहीं सुनना चाहते, आप सबके साथ उसको शेयर करते हैं, उस मेडल को भी, अपने अवार्ड को भी, अपनी उस गैलेंट्री को भी। हम बता दें आपको कि पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री 2 बार दिया जा चुका है, उसके अलावा फर्स्ट बार टू दी पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री भी आपको नवाजा जा चुका है। उसके अलावा पुलिस अंतरिक्ष सुरक्षा सेवा पदक फॉर कमेंडेबल सर्विस इन लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड एरियाज में भी, ये भी आपको दिया जा चुका है।
1: हाँ जी, ये आंतरिक सुरक्षा पदक है ये
0: जी। ये सर ये किस तरह से होता है, ये इसको हम कैसे अगर डिफ्रेंशिएट करें गैलेंट्री मेडल से?
1: एक्चुअली ये जो नक्सल में अच्छे काम करते हैं या जम्मू कश्मीर में जो आंतरिक सुरक्षा में जो काम, जिनका बेस्ट परफॉर्मेंस रहता है,
0: जो सेंसिटिव एरियाज हैं उनमें सर्विस के लिए
1: अच्छे काम करते हैं, उनका नाम रिकमेंड किया जाता है बटालियन के द्वारा।
0: okay.
1: उसके बाद फोर्स हेडक्वार्टर में आता है, फिर उनका जो जिनका काम अच्छा रहता है उनका सिलेक्शन होता है, उसके बाद फिर ये मिलता है।
0: अच्छा, और उसके अलावा सर डायरेक्टर जनरल का गोल्डन डिस्क, उसमें 1 स्टार और 2 स्टार वेरिएंट भी शामिल है, वो भी आपको मिला है, और उसके अलावा डीजे सिल्वर डिस्क भी आपको प्रदान की गई है, इसके बारे में क्या कहेंगे, ये क्या होता है?
1: जी ये वही बताए, काम जिनका अच्छा रहता है, जिनका ऑपरेशनल अचीवमेंट अच्छा रहता है।
0: तो सर आपके बैक टू बैक इतने अच्छे और इतने अचीवमेंट रहे हैं कि आपको बैक टू बैक इस तरीके के गैलेंट्री मेडल्स से भी नवाजा गया है, प्रदान किए गए हैं आपको, तो कैसा महसूस होता है जब ये मिलते हैं और कैसा महसूस हो रहा है अब आपको?
1: जी ऐसा होता है, कभी ये सोच के नहीं कि हमको गैलेंट्री मेडल चाहिए या हमको डीजी डिस्क चाहिए, हम अपना जो मेरा काम है वो अपना हम काम करते रहते हैं
0: जी।
1: टीम के साथ मिलके हमेशा सोचते हैं कुछ देश हित में कुछ अच्छा करें, जिसमें हमारे जो सशस्त्र सीमा बल का है वो नाम हमेशा रोशन
0: रहे। क्या बात है सर, बहुत बहुत खूब।

0: आगे बढ़ेंगे हम इंस्पेक्टर ऋतुराज, लेकिन कुछ मैसेजेस हैं जिनको पढ़ना बहुत जरूरी है, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। जय हिंद कुमार साहब, मेरा नाम संदीप कश्यप है, पालम दिल्ली से ये मैसेज कर रहे हैं सर आपके लिए। आज की जनरेशन को कैसे मोटिवेट किया जाए देश सेवा के लिए, आपसे अनुरोध है कि कृपया बताएं। बताइए सर।
1: जय हिंद आपको भी। देश हमारा तभी सुरक्षित रहेगा जब सब लोग मिलकर हम लोग काम करेंगे। कोई भी अगर आपके आसपास या कहीं भी कुछ भी देश विरोधी तत्व या कोई देश लगे आपको कि ये देश हित में नहीं अच्छा है या अच्छे लोग नहीं है, तो उनको तुरंत आप नज़दीकी पुलिस स्टेशन या जो भी फोर्स वहाँ काम कर रही है उसको आप बताएं, तभी हमारा देश सुरक्षित रहेगा। सब हम लोग टीम वर्क के रूप में काम करें, या वर्दी पहने हुए हैं या जो वर्दी नहीं भी पहने हुए हैं, देश सबका है। देश तभी सुरक्षित रहेगा जब सब हम लोग मिल के काम करेंगे।
0: क्या बात है सर, बहुत खूब। और सर एक और बहुत ही स्पेशल विशेष मैसेज है सर आपके लिए। मैं अभी अगर नाम ना बताऊं तो शायद आप पहचान लेंगे, या मैं बता देता हूं। ऋतुराज सर, जय हिंद, फीलिंग प्राउड टू लिसन यू, विश यू अ टन ऑफ गुड एनर्जीज, इंस्पेक्टर बरखा निरंकारी, सशस्त्र सीमा बल से।
1: जय हिंद आपको भी।
0: ये खास मैसेज सर आपके लिए आया है जो आपको सुन रहे हैं इस वक्त। इसके अलावा संदेश टू सोल्जर शो बेहद खूबसूरत शो है, जय हिंद, वंदे मातरम, यश शिंदे हैं ये मुंबई से सर, ये भी मैसेज कर रहे हैं। और इसके अलावा सर जय हिंद, ऋतुराज जी को भी जय हिंद, आप लोगों की बदौलत हम देशवासी सुकून से जीते हैं, हमें गर्व है। लेकिन कुछ शीश पर बैठे हुए इच्छा शक्ति की कमी से बॉर्डर के अलावा आंतरिक सुरक्षा पर आपके विचारों को, अपने विचारों को व्यक्त करें। ये कृष्ण साहू हैं रायपुर से, छत्तीसगढ़।
1: जय हिंद आपको भी।
0: और ये मैसेज है, जय हिंद भारत माता की जय, मोनू सेठ खालिसपुर अमेठी से सर ये आपको मैसेज कर रहे हैं। सलाम है आपके जज्बे को, जय हिंद कह रहे हैं सर ये आपसे।
1: जय हिंद आपको भी।
0: और ये मैसेज है, मेरा भतीजा भी आपके SSB में है और भारत माता की सेवा कर रहा है, मुझे बेहद गर्व है। ये हैं सर सुशील कुमार नई दिल्ली से।
1: जय हिंद आपको भी।
0: और ये एक और मैसेज है सर, रजनीकांत रघुनाथ पाटिल महाराष्ट्र वार्ड 1 से, जय हिंद कह रहे हैं आपको।
1: जय हिंद आपको भी।
0: सर ये सारे जोशीले मैसेज जो हैं, इनकी लग रहा है इन मैसेज को पढ़कर कि वो दिल से और बहुत ही जज्बे के साथ आपको भेजे गए हैं, तो इस पर आप कुछ अपनी तरफ से भी कुछ बताएं। और ये भी बताएं कि SSB के लिए जैसे कुछ लोगों ने पूछा, तो एक बार और उनको बता दें कि क्या तरीका है, कैसे जा सकते हैं, और जो आपने महसूस किया इन मैसेज के जरिए वो भी उन तक पहुंचाएं अपने दिल की बात।
1: आप अगर कांस्टेबल में भर्ती होना चाहते हैं तो मैट्रिक इंटर करने के बाद आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, और अगर आप सब इंस्पेक्टर में भर्ती होना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन के बाद, और असिस्टेंट कमांडेंट में भी अगर भर्ती होना चाहते हैं तो UPSC के थ्रू फॉर्म आता है, तो उसमें भी आप डायरेक्ट असिस्टेंट कमांडेंट में भर्ती हो सकते हैं
0: जी। और इसके अलावा सर हमें ये भी आप बताइए, क्योंकि अब हमारे पास समय भी कम बचा है और मैसेज भी लगातार अब आ ही रहे हैं, तो मैं मैसेज बाद में पढ़ूंगा। हम ये भी जानना चाहेंगे कि सर जिस तरीके से आपकी सर्विस ये रही है और जिस तरीके से आपने डेडिकेशन के साथ अपनी सर्विस को पूरी तरीके से पूरी निष्ठा के साथ निभाते हैं, आप कर रहे हैं, तो आप हमारी जो यूथ है, हमारा जो यंग जनरेशन है, उसको कुछ कहना चाहेंगे किस तरीके से हम उसको भी, जो अगर नहीं है उस तरीके की सोच रखता है, तो कैसे उसको मोटिवेट करें?
1: जी देश सबका है, हमारा जितना है सबका देश है, उसमें सबका सहयोग चाहिए। आजकल युवा थोड़ा नशे के तरफ मोटिवेट हो रहे हैं, उस पर थोड़ा कम ध्यान दीजिए, जंक फूड की तरफ कम ध्यान दीजिए, अपना स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। स्वास्थ्य ही आपका धन है, स्वास्थ्य अगर आप सही रखेंगे तभी आपका सोच अच्छा रहेगा, और जब सोच और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो ऑटोमेटिक है देश हमारा अच्छा रहेगा। जी
0: बिल्कुल सर, एक मैसेज है, जय हिंद ऋतुराज सर एंड नमस्ते RJ सर, मैं अपने सारे फौजी भाइयों को दिल से सैल्यूट करती हूं, उनकी शक्ति वीरता के साथ देश की सेवा करने के लिए हमेशा उनका आभारी रहूंगी। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। अंजलि लोड फ्रॉम गमो डिस्ट्रिक्ट धनबाद झारखंड से ये सर मैसेज किया है इन्होंने।
1: जय हिंद आपको भी।

0: तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आज के शो में आप हमारे साथ रहे, बहुत बहुत धन्यवाद इंस्पेक्टर ऋतुराज, जिनकी जितनी तारीफ की जाए कम है, और उनकी वीरता, उनके समर्पण, उनके साहस, अदम्य साहस के लिए और उनके जज्बे के लिए बलिदान के हम बहुत बहुत उनका स्वागत करते हैं और उनका बहुत सम्मान करते हैं उनके इस जज्बे के लिए। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे शो में आए।
1: सशस्त्र सीमा बल की तरफ से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
0: और सर जाते जाते हम एक बहुत ही जोशीला गाना, जैसे कि आपने कहा कि ये जोश और ये जज्बा बहुत जरूरी है अपने देश के लिए क्योंकि हम हैं हिंदुस्तानी। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।
0: आप सुन रहे थे संदेश टू सोल्जर्स। आज के हमारे खास मेहमान इंस्पेक्टर कुमार ऋतुराज SSB से, और शायद अब आपसे यहां से लेगा विदा। आ गई हैं श्वेता लेकर के सैटेलाइट्स। आप सुनते रहे हैं रेनबो दिल से दिल तक।
2: तो समझो दिल भर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत। इस कार्यक्रम में श्रोताओं महिला उद्यमियों के लिए भारत सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के विषय में आज जानकारी दी जाएगी। मुद्रा योजना महिला उद्यमी, ओरिएंटल महिला विकास योजना और अन्नपूर्णा योजना की। पहले बात करते हैं मुद्रा योजना महिला उद्यमी की। श्रोताओं आज के समय में महिलाएं केवल घर तक सीमित नहीं है बल्कि व्यापार, उद्योग, शिक्षा, कृषि और सेवा क्षेत्र में भी अपनी पहचान बना रही हैं। महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में मुद्रा योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस योजना की शुरुआत वर्ष 2015 में की गई थी। इसका उद्देश्य छोटे व्यवसाय शुरू करके या पहले से चल रहे व्यवसाय का विस्तार करने के लिए बिना गारंटी के ऋण उपलब्ध कराना है। मुद्रा योजना के अंतर्गत तीन प्रकार के ऋण दिए जाते हैं। पहला शिशु ऋण, इसमें 50,000 तक का ऋण मिलता है। यह उन महिलाओं के लिए उपयुक्त है जो अपना छोटा व्यवसाय शुरू करना चाहती हैं। दूसरा है किशोर, इसमें 50,000 से 5,00,000 तक का ऋण दिया जाता है। यह

उन महिलाओं के लिए है जो अपने व्यवसाय का विस्तार करना चाहती हैं। तीसरा है तरुण ऋण। इसमें 5 लाख से 10 लाख तक का ऋण मिलता है। यह उन उद्यमियों के लिए है जो अपने व्यवसाय को बड़े स्तर पर ले जाना चाहती हैं। इस योजना का लाभ लेकर महिलाएं सिलाई, कढ़ाई, ब्यूटी पार्लर, डेयरी, बुटीक, किराना दुकान, खाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प, ऑनलाइन व्यवसाय या अन्य छोटे उद्योग शुरू कर सकती हैं। मुद्रा योजना का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इससे महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ता है। वे आर्थिक रूप से सशक्त बनती हैं और अपने परिवार के साथ साथ समाज के विकास में भी योगदान देती हैं। यह योजना स्वरोजगार को बढ़ावा देने और नए रोजगार के अवसर पैदा करने में भी सहायक है। यदि कोई महिला इस योजना का लाभ लेना चाहती है तो वह अपने नजदीकी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक या अन्य अधिकृत वित्तीय संस्थान से संपर्क कर सकती है। आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन करके इस योजना का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इसके बाद आइए बात करते हैं ओरिएंटल महिला विकास योजना की। महिलाओं का आर्थिक रूप से सशक्त होना किसी भी समाज के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसी उद्देश्य से महिलाओं को स्वरोजगार और छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए विभिन्न वित्तीय योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया जाता है। ओरिएंटल महिला विकास योजना भी ऐसी ही एक पहल रही है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को अपना व्यवसाय स्थापित करने और उसे आगे बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। OMVY यानी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख महिला उद्यमता ऋण योजना है। यद्यपि ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का विलय पंजाब नेशनल बैंक यानी PNB में हो चुका है, फिर भी यह योजना अभी भी महिलाओं उद्यमियों को छोटे व्यवसाय शुरू करने या विस्तार करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस योजना में 10 लाख से लेकर 25 लाख तक का ऋण प्रदान किया जाता है। महिला उद्यमियों को सामान्य ब्याज दर पर 2% तक की छूट दी जाती है। 10 लाख से 25 लाख तक के ऋण के लिए किसी भी प्रकार की गारंटर की आवश्यकता नहीं होती। साथ ही ऋण चुकाने की अवधि 7 वर्ष निर्धारित की गई है। पात्रता मानदंड की अगर बात करें तो आवेदक महिला की किसी प्रॉपर्टी फर्म में कम से कम 51% शेयर पूंजी व्यक्तिगत या संयुक्त रूप से होनी चाहिए। इस योजना के अंतर्गत महिलाएं सिलाई, कढ़ाई, ब्यूटी पार्लर, बुटीक, डेयरी, खाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प, कंप्यूटर सेंटर, किराना दुकान तथा अन्य लघु उद्योग के लिए ऋण प्राप्त कर सकती हैं। इस प्रकार की योजनाओं में महिलाओं को आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता है ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। इस योजना का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इससे महिलाओं में उद्यमिता की भावना विकसित होती है। वे अपने पैरों पर खड़ी होकर अपने परिवार की आय बढ़ाने के साथ साथ अन्य लोगों के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा कर सकती हैं। इसके बाद आइए अब बात करते हैं अन्नपूर्णा योजना की। अन्नपूर्णा योजना विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए बनाई गई है जो अपना स्वयं का खाद्य व्यवसाय शुरू करना चाहती हैं। अन्नपूर्णा ऋण योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से निर्भर बनाना और स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना है। इस योजना के अंतर्गत महिलाएं टिफिन सेवा, कैटरिंग, रेस्टोरेंट, कैंटीन, बेकरी, फूड प्रोसेसिंग या अन्य खाद्य व्यवसाय शुरू करने या उसका विस्तार करने के लिए बैंक से ऋण प्राप्त कर सकती हैं। इस योजना के तहत पात्र महिला उद्यमियों को उनकी आवश्यकता और बैंक के नियमों के अनुसार ऋण उपलब्ध कराया जाता है। ऋण राशि का उपयोग रसोई उपकरण, फर्नीचर, कच्चा माल, वाहन तथा अन्य आवश्यक व्यावसायिक खर्चों के लिए किया जा सकता है। ऋण के ब्याज दर, पुनर्भुगतान अवधि और अन्य शर्तें संबंधित बैंक के नियमों के अनुसार निर्धारित होती हैं। इस योजना का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह महिलाओं को अपना व्यवसाय स्थापित करने, आय बढ़ाने और परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत करने का अवसर प्रदान करती है। साथ ही यह योजना महिला सशक्तिकरण और रोजगार सृजन को भी बढ़ावा देती है। अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत आवेदिका की आयु सामान्यतः 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। इस योजना के तहत बैंक व्यवसाय की आवश्यकता के अनुसार ऋण प्रदान करते हैं। कई बैंकों में 50,000 से लेकर 5 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। हालांकि यह राशि बैंक और परियोजना के अनुसार अलग अलग हो सकती है। ऋण की ब्याज दर संबंधित बैंक की प्रचलित दरों के अनुसार तय होती है। पुनर्भुगतान अवधि सामान्यतः 3 से 5 वर्ष तक हो सकती है, जो बैंक और ऋण की शर्तों पर निर्भर करती है। कुछ मामलों में बैंक ऋण के लिए गारंटर या जमानत भी मांग सकते हैं। अन्नपूर्णा ऋण योजना

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष और कल के कार्यक्रमों के विषय में जानकारी। पहले सुनिए आज के शेष कार्यक्रम।

प्रादेशिक लोक एवं सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 10 बजे। ये कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। रात्रि 9:30 पर सुनेगा नाटक उदास चबूतरा। गीत संध्या कार्यक्रम रात्रि 8 बजे और एक ही फिल्म से कार्यक्रम होगा 8:30 पर। सुगम संगीत कार्यक्रम में शाम 7:32 पर सुनेगा राशिद बदर साबरी और साथियों की गायक कव्वाली। छाया गीत शाम 6:55 पर। विविधा कार्यक्रम में शाम 6:45 पर सुनेगा महेंद्र सिंह त्यागी से वार्ता, विषय होगा जनपद बिजनौर के प्रमुख साहित्यकार। कृषि जगत कार्यक्रम में शाम 6:05 पर सुनेगा महिपाल सिंह।

जितेंद्र कुमार की बातचीत विषय होगा जहर मुक्त खेती और व्यसन मुक्त व्यक्ति। युवाणी में अब से कुछ ही देर में यानी 5:15 पर क्रम होगा बूझो तो जाने कुछ खास है आज नॉन फिल्मी चार्ट बस्टर कहानी के उस पार और साथ ही आप आनंद लेंगे फिल्म संगीत का। ये थे हमारे आज के शेष कार्यक्रम। लीजिए अब सुनिए कल के कार्यक्रमों के विषय में जानकारी। रात्रि 9:30 पर सुनिएगा सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो नजीबाबाद। रात के हम सफर कार्यक्रम आप सुनेंगे कल रात्रि 10:30 पर। गीत संध्या कार्यक्रम कल रात 8:00 और एक ही फिल्म से कार्यक्रम 8:30 पर। सुगम संगीत कार्यक्रम में कल शाम 7:32 पर सुनिएगा विविध कलाकारों की गाई नात। कानूनी सलाह के अंतर्गत कल शाम 6:45 पर सुनिएगा एडवोकेट विजेंद्र सिंह से एस के नोटियाल की बातचीत विषय होगा अवैध कब्जा संबंधी कानूनी जानकारी। कृषि जगत कार्यक्रम में कल शाम 6:05 पर आप सुनेंगे किसान भाइयों की खेती एवं पशुपालन संबंधी समस्याओं के उत्तर पर आधारित सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान। युवाणी कार्यक्रम में कल शाम 5:15 पर क्रम होगा बूझो तो जाने कुछ खास है आज ये शाम गजलों के नाम आपका सितारा कहानी के उस पार और साथ ही आप आनंद लेंगे फिल्म संगीत का। मेरा सपना उन्नत भारत क्रम में कल शाम 5:00 किसानों की आय दोगुनी करने हेतु सरकारी योजनाओं के अंतर्गत जानकारी दी जाएगी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और इनाम योजना पर। फिल्मी कव्वालिया आप सुनेंगे कल दोपहर 2:30 पर। लोकधारा कार्यक्रम में कल दोपहर 1:45 पर सुनिएगा केशव अनुरागी के गाए गढ़वाली लोकगीत। घर संसार कार्यक्रम में कल दोपहर 1:15 पर सुनिएगा श्रीमती मनीषा से वार्ता विषय होगा बदलता मौसम और खान पान। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत चर्चा का विषय होगा परिवार में संवाद का महत्व और पर्यावरण संरक्षण में ग्रामीण बहनों की भूमिका। मिड डे मेलेडी कार्यक्रम आप सुनेंगे कल दोपहर 12:30 पर। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में कल दोपहर 12:15 पर सुनेगा लियाकत अली से सारंगी वादन। प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियां सुनेगा कल दोपहर 12:00। प्रायोजित कार्यक्रम उमंग कल सुबह 11:30 पर। चित्रपट संगीत कल सुबह 11:00। सजीव फोन इन कार्यक्रम जागरूक श्रोता आप सुनेंगे कल सुबह 10:30 पर। पत्र और व्हाट्सएप मैसेजेस पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम गीत तुम्हारे कल सुबह 10:00। धरती गाती है कार्यक्रम में कल सुबह 9:25 पर सुनेगा उषा पंत के गाए रुहेल खंडी लोकगीत। गोल्डन हिट्स कार्यक्रम कल सुबह 8:45 पर और कल सुबह 7:31 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सूरज के साथ साथ। ये थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज और कल के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:15 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी।

0: शाम एक नई उम्मीद का पैगाम लाती है।
1: हर नई सोच जिंदगी को एक नई पहचान दिलाती है।
0: मुस्कुराइए क्योंकि आज का ये सफर होगा बातों,
1: जज्बातों और गीतों के नाम।
0: गुड इवनिंग दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? स्टूडियो में हाजिर हूँ मैं आपके रेडियो पार्टनर मरियम जैदी।
1: हेलो, नमस्ते, आदाब दोस्तों। मरियम के साथ आज की इस खूबसूरत शाम को और ज्यादा हसीन बनाने आ गई हूँ मैं आपकी अपनी रेडियो दोस्त सना, और हम दोनों मिलकर स्वागत करते हैं आप सभी का
0: आपके पसंदीदा प्रोग्राम युववाणी में, जहाँ हर मुलाकात होती है नए ख्यालों के साथ,
1: हर बात होती है दिल से, और हर गाना दिल के एहसासों को छू जाता है।
0: वैसे दिल को छू जाने से याद आया सना, तुम्हें पता है एक और चीज है जो मेरे दिल को छू जाती है।
1: अच्छा, ऐसा है क्या? तो चलो बताओ मुझे और हमारे लिसनर्स को कि क्या है वो चीज।
0: चीज नहीं सना, असल में वो ना एक रंग है। वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में? कलर
1: है। कलर? कौन सा कलर?
0: देखो, कभी सोचा है अगर कलर्स यानी कि रंगों की भी कोई पर्सनैलिटी होती तो ब्लू यानी कि नीला रंग शायद सबसे शांत और सबसे गहरा दोस्त होता।
1: बिल्कुल, बस एक बार ऊपर आसमान की तरफ देखो और दिल को जो शांति मिलती है ना।
0: अरे सना, तुमने तो मेरे मन की बात कह दी। तुम्हें पता है जब भी मैं उदास होती हूँ ना, या मैं बहुत ज्यादा लो फील करती हूँ, तो नीले नीले आसमान को देख लेती हूँ।
1: मरियम, वैसे ब्लू कलर सिर्फ आसमान और समंदर तक ही सीमित नहीं है। वो बारिश के बाद का खुला आसमान, शाम की हल्की सी नीली रोशनी, या किसी की पसंदी ब्लू शर्ट, हर जगह इसका अपना ही अंदाज है।
0: वैसे ब्लू से याद आया, हमारा बूझो तो जाने का सवाल भी तो ब्लू कलर से ही रिलेटेड है ना।
1: बिल्कुल दोस्तों, सेगमेंट बूझो तो जाने में हमारा आपसे सवाल है, ब्लू सिटी के नाम से भारत के कौन से शहर को जाना जाता है?
0: सवाल एक बार फिर से बता देते हैं दोस्तों, ब्लू सिटी के नाम से भारत के कौन से शहर को जाना जाता है? तो दोस्तों आप सोचिए, पहचानिए और हमें अपना जवाब जरूर भेजिए। और जवाब आपको कहाँ भेजना है, रुको सना, दोस्तों को बताने दो।
1: बिल्कुल मरियम, हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी नजीबाबाद के कमेंट सेक्शन में जाकर।
0: और दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपने सही शहर पहचान लिया है सना की तरह, तो अपना आंसर हमें जरूर भेजिएगा।
1: सही जवाब देने वाले दोस्तों के नाम फिलहाल तो सीक्रेट रखेंगे हम, लेकिन बाद में रिवील जरूर करेंगे। जैसा हमने कहा था दोस्तों, युववाणी वो एहसास है जहां हर शाम आपसे मुलाकात होती है नए ख्यालों के साथ,
0: और आज भी हम आपसे मुखातिब हैं ऐसे ही सुरों के एहसास के साथ। सुरों की दुनिया में हर धुन किसी फिल्म की मोहताज नहीं होती,
1: और आज हम लेकर आए हैं ऐसे गाने जो किसी फिल्म का हिस्सा नहीं है, लेकिन अपने खूबसूरत लिरिक्स और वाइब की वजह से लाखों दिलों पर राज कर रहे हैं।
0: तो वॉल्यूम को थोड़ा सा हाई कर लीजिए, और दोस्तों शुरू करते हैं आज के पहले चार्ट बस्टर के साथ। तो सुनिए और एंजॉय कीजिए आज की शाम।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
4: हो जाओगे आसास कर लोट कोट,
3: क्योंकि यह है लाफ्टर का सॉलिड डोज।
5: और डोज में क्या है?
4: डोज में है मजा। जी हाँ, मजा आ गया।
5: अच्छा सुनो।
6: हाँ हाँ बोलो।
5: वो मैं आपसे एक सवाल पूछूं?
6: हाँ हाँ पूछो।
5: कैसे पूछूं, मुझे तो बहुत शर्म आ रही है।
6: इसमें शर्माने की क्या ही बात है।
5: अच्छा ये बताओ, अगर आपको मुझे दोबारा प्रपोज करना हो तो आप कौन सा गाना गाकर मुझे प्रपोज करोगे?
6: इतनी शक्ति हमें दे न दाता।
4: जी हाँ, मजा आ गया।
5: वेलकम बैक दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे सफर पर जहाँ सवाल ज्यादा हैं और जवाब कम। एक ऐसी दुनिया जहाँ विज्ञान और रहस्य आमने सामने खड़े नजर आते हैं।
7: जरा सोचिए, आधी रात का वक्त हो, आसमान बिल्कुल साफ, और अचानक एक चमकती हुई गोलाकार चीज हवा में तेजी से घूमने लगे, फिर पलक झपकते ही गायब हो जाए।
5: क्या होगा वो? कोई विमान, कोई ड्रोन, या किसी ग्रह से आया मेहमान?
7: इन्हीं सवालों की वजह से हर साल 2 जुलाई को मनाया जाता है विश्व UFO दिवस।
5: सबसे पहले एक बहुत बड़ा भ्रम दूर कर देते हैं सना। UFO का मतलब एलियन स्पेसशिप नहीं होता।
7: दोस्तों UFO का मतलब होता है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, यानी कि ऐसी उड़ने वाली चीज जिसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। लेकिन बाद में सर्च करने के बाद पता चला कि कई UFO साधारण विमान, वेदर बलून्स, ड्रोन या प्राकृतिक घटनाओं निकलते हैं।
5: सना ये दिवस 2 जुलाई को ही क्यों मनाया जाता है?
7: साल था 1947। अमेरिका के न्यू मैक्सिको के राजविल शहर में एक अजीब चीज गिरने की खबर फैली। लोगों ने कहा कि वो उड़ंत अश्तरी थी और उसमें एलियन भी थे, लेकिन सरकार ने कहा कि सिर्फ एक मौसम संबंधी गुब्बारा था।
5: अब साइंटिस्ट कहते हैं कि हमारा यूनिवर्स इतना बड़ा है कि कहीं ना कहीं जीवन होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।
7: लेकिन अब तक ऐसी कोई सॉलिड साइंटिफिक रीजन नहीं मिला है जिससे ये साबित हो सके कि एलियन पृथ्वी पर आए हैं। वैसे मरियम, तुम बताओ, अगर तुम्हें एलियन से सिर्फ एक सवाल पूछने का मौका मिले तो तुम क्या पूछोगी?
5: मैं पूछूंगी, क्या तुम्हारे ग्रह पर भी होमवर्क मिलता है?
7: अरे मरियम, वैसे अगर वो हाँ कहे
5: तो मैं बोलूंगी ठीक है, फिर तो मैं धरती पर ही ठीक हूँ भाई।
7: ठीक है मरियम, तुम धरती पर ही रहो। और धरती पर रहने वाले हमारे लिसनर्स को ये भी बता दो कि कुछ खास है आज में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे दोस्तों इस खूबसूरत से गीत के बाद।

0: नमस्कार, आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मोहम्मद आरिफ, पीडियाट्रिशियन बिजनौर से, जो मॉनसून के दौरान बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव साझा करेंगे। डॉक्टर, यदि बच्चे की साधारण सर्दी का समय पर ध्यान न रखा जाए, क्या जटिलताएं हो सकती हैं?
1: देखा गया है, ज्यादातर केसेस में ये सर्दी खांसी अपने आप 3 से 5 दिन में ठीक हो जाती है, लेकिन ऐसे बच्चे जो मालनरिश हैं, जिनमें इम्यूनिटी की कमी है, उसमें ये साधारण सर्दी खांसी भी कॉम्प्लिकेशन पैदा कर सकती है। जैसे कुछ बच्चों में ये मिडिल ईयर इन्फेक्शन या कान का दर्द पैदा कर सकती है, कुछ बड़े बच्चों में ये सर्दी खांसी का इन्फेक्शन साइनस तक पहुंचकर साइनोसाइटिस जैसी परेशान करने वाली स्थिति उत्पन्न कर सकता है। आजकल देखा गया है बहुत सारे बच्चे अस्थमा से पीड़ित हैं और ये साधारण सर्दी खांसी उनमें अस्थमा के सिम्टम्स को बढ़ा सकती है। उन्हें सांस लेने में दिक्कत, सांस लेने में आवाज होना आदि इस तरीके की परेशानियां हो सकती हैं। इस सर्दी खांसी में आने वाले बार बार बुखार से बच्चे के डिहाइड्रेट होने का खतरा रह जाता है, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और इससे बच्चा फर्दर मालनरिश या कुपोषण का शिकार हो जाता है।
0: यह संदेश एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी किया गया है।
2: मरियम, तुम्हें नहीं लगता कि कुछ कहानियां सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, बल्कि सुनी जाती हैं, बल्कि महसूस की जाती हैं?
3: बिल्कुल सना, और सबसे खास बात यह है कि हर कहानी अपने साथ कोई ना कोई एहसास या कोई सीख या अनकहा रिश्ता छोड़ी जाती है।
2: बिल्कुल सही कहा, कभी कहानी हमें हंसाती है, कभी रुला देती है, तो कभी एक ऐसा सवाल छोड़ जाती है जिसका जवाब हम काफी देर तक ढूंढते ही रहते हैं।
3: और शायद यही वजह है कि कहानियां कभी पुरानी नहीं होती। वक्त बदल जाता है, लोग बदल जाते हैं, लेकिन अच्छी कहानियां हमेशा दिल में अपनी जगह बना लेती हैं।
2: तो चलिए दोस्तों, अब वक्त हो गया है हमारे उस खास सेगमेंट का, जहां पर कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती, बल्कि अपने पीछे छिपे जज्बातों से आपको रूबरू भी कराती हैं।
3: जी हाँ दोस्तों, पेश है आपका पसंदीदा सेगमेंट कहानी के उस पार।
2: आज की कहानी का नाम है कानों में कंगना। नाम जितना दिलचस्प है, इसकी कहानी भी उतनी ही भावनाओं, रिश्तों और अनकहे एहसासों से भरी हुई है। तो आराम से बैठ जाइए, अपने दिल के दरवाजे खोल लीजिए, क्योंकि अब शुरू होने जा रहा है कानों में कंगना, सिर्फ कहानी के उस पार में, जिसे लिखा है हमारी साथी अक्षी त्यागी ने।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अक्षी त्यागी और आप सुन रहे हैं कहानी के उस पार में एपिसोड नंबर 4, मोह का जाल। दोस्तों, पिछले भाग में आपने सुना कि योगेश्वर अपनी सबसे अनमोल धरोहर किरण का हाथ नरेंद्र के हाथों में सौंपकर चले गए। समय ने करवट ली और जंगल की निर्मल निश्चल किरण अब गृहस्थ जीवन का हिस्सा बन गई। धीरे धीरे उसने संसार के रीति रिवाज अपनाए, लेकिन उसके भीतर की मासूमियत कहीं ना कहीं अब भी जीवित थी। दूसरी ओर नरेंद्र भी जीवन की नई राह पर बढ़ तो रहा था, मगर उसे कहां पता था कि आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी परीक्षा उसका अपना मन ही लेने वाला है। तो आइए दोस्तों, अब सुनते हैं कहानी का अगला और बेहद महत्वपूर्ण अध्याय। कंकड़ी जल में जाकर कोई स्थायी विवर नहीं फोड़ सकती। छड़भर जल का समतल भले ही उलट पुलट हो जाए, लेकिन इधर उधर से जल तरंग दौड़कर उस छिद्र का नाम निशान भी नहीं रहने देती। जगत की भी यही चाल है। यदि स्वर्ग से देवेंद्र भी आकर इस लोक चलाचल में खड़े हों, फिर संसार देखते ही देखते उन्हें अपना बना लेगा। इस काली कोठरी में आकर इसकी कालिमा से बचे रहें, ऐसी शक्ति अब आकाश कुसुम ही समझो। दो दिन में राम हाय जानकी कहकर वन वन डोलते फिरे। दो क्षण में यही विश्वामित्र को भी स्वर्ग से घसीट लाया। किरण की भी यही अवस्था हुई। कहां प्रकृति की निर्मुक्त गोद, कहां जगत का जटिल बंधन पाश, कहां से कहां आ पड़ी वो आलौकिक भोलापन, वो निसर्ग उच्छ्वास, हाथों हाथ लुट गए। उस वनफूल की विमल कांति लौकिक चमन की मायावी मनोहारित में परिणत हुई। अब आंखें उठाकर आकाश से नीरव बातचीत करने का अवसर कहां से मिले? मल्य वायु से मिलकर मल्याचल के फूलों की पूछताछ क्यों कर हो, जब किशोरी नए सांचे में ढल कर उतरी, उसे पहचानना भी कठिन था। वो लाल चोली हरी साड़ी पहनकर सर पर सिंदूर रेखा सजती और हाथों के कंगन, कानों की बाली, गले की कंठी तथा कमर की करधनी दिन दिन उसके चित को नचाए मारती थी। जब कभी वो सच धज कर चांदनी में कोठे पर उठती और वसंत वायु उसके आंचल से मोतियों की लपट लाकर मेरे बरामदे में भर देता, फिर किसी मतवाली माधुरी या तीव्र मदिरा के नशे में मेरा मस्तिष्क घूम जाता और मैं चटपट उसका प्रेम चित्कार फूलदार रंगीन चिट्ठी में भरकर चूही के हाथ ऊपर भेजवाता या बाजार से दौड़कर कटकी गहने या विलायती चूड़ी खरीद लाता। लेकिन जो हो, अब भी कभी कभी उसके प्रफुल्ल वदन पर आलोक की छटा पूर्व जन्म की सुख स्मृतिवत चली आती थी और आंखें उसी जीवंत सुंदर झिकमिक का नाच दिखाती थी। जब अंतर प्रसन्न था, फिर बाहरी चेष्टा पर प्रतिबिंब क्यों ना पड़े। यूं ही साल दो साल मुरादाबाद में कट गए। एक दिन मोहन के यहाँ नाच देखने गया, वही किन्नरी से आंखें मिली। मिली क्या, लीन हो गई। नवीन यौवन, कोकिल कंठ, चतुर चंचल चेष्टा तथा मायावी चमक, अब चित को चलाने के लिए और क्या चाहिए। किन्नरी सचमुच किन्नरी थी, नाचने वाली थी। पहली बार देखकर उसे इस लोक की सुंदरी समझना दुरुस्त था। एक लपट जो लगती किसी नशा से चढ़ जाती। यारों ने मुझे और भी चढ़ा दिया। आंखें मिलती मिलती मिल गईं, हृदय को भी साथ साथ घसीट ले गईं। फिर क्या था, इतने दिनों की धर्म शिक्षा, शतवत्सर की पूज्य लक्ष्मी, बाप दादों की कुल प्रतिष्ठा, पत्नी से पवित्र प्रेम, एक एक करके उस प्रतिप्त वासना कुंड में भस्म होने लगे। अग्नि और भी बढ़ती गई। किन्नरी की चिकनी दृष्टि, चिकनी बातें घी बरसाती रहीं। घर बार सब जल उठा, मैं भी निरंतर जलने लगा। लेकिन जो जो जलता गया, जलने की इच्छा जलाती रही। 5 महीने कट गए, नशा उतरा नहीं। बनारसी साड़ी, पारसी जैकेट, मोती का हार, कटकी कड़ फूल, सब कुछ लाकर उस मायावी के अलक रंजित चरणों पर रखे। किरण हेमंत की मालती बनी थी, जिस पर एक फूल नहीं, एक पल्लव नहीं। घर की वधू क्या करती, जो अनंत सूत्र से बंधा था, जो अनंत जीवन का संगी था, वही हाथों हाथ पराए के हाथ बिक गया। फिर ये तो 2 दिन के चकमकी खिलौने थे, इन्हें शरीर बदलते क्या देर लगे।
दिन भर बहानों की माला गूंद गूंद किरण के गले में और शाम को मोती की माला उस नाचने वाली के गले में सशंक निर्लज डाल देना, यही मेरा जीवन निर्वाह था। एक दिन सारी बातें खुल गईं। किरण पछाड़ खाकर भूमि पर जा पड़ी। उसकी आंखों में आंसू ना थे, मेरी आंखों में दया ना थी। एक समय जब नरेंद्र की दुनिया केवल किरण की मुस्कान में बसती थी दोस्तों, और अब वही नरेंद्र मोह के ऐसे जाल में उलझ चुका था जहां उसे अपने और पराए का भी भान नहीं रहा। लेकिन क्या गलती

की एक कीमत होती है और क्या नियति इतनी आसानी से किसी के अपराध को अनदेखा कर देती है। किरण सब को सहती रही, मगर कब तक? क्या उसके धैर्य की भी एक सीमा थी? आगे जो होने वाला है वो केवल नरेंद्र की जिंदगी नहीं बल्कि इस कहानी का सबसे मार्मिक मोड़ भी बनने वाला है। क्या नरेंद्र को अपनी भूल का एहसास होगा या तब तक बहुत देर हो चुकी होगी? जानने के लिए दोस्तों सुनते रहिएगा कहानी के उस पार का अंतिम एपिसोड। फिर मिलेंगे कल शाम ठीक 5:15 बजे। नमस्कार।

हजार बार सोचा, कह दूं कि फ्रेंड नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड है तू, पर सपने टूट जाने का डर कभी दिल से गया ही नहीं।

0: नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स, इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
1: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
2: हो जाओगे एहसास कर लोट पोट,
1: क्योंकि ये है लाफ्टर का सॉलिड डोज।
3: और डोज में क्या है?
2: डोज में है मजा। जी हाँ, मजा आ गया।
3: सुनते हो?
4: हाँ हाँ बोलो।
3: अरे वो शाम को अपने बेटे के लिए हम जो लड़की देखने जाने वाले थे ना, अब वहाँ नहीं जाना है।
4: क्यों, क्या बात हो गई?
3: हुआ तो कुछ भी नहीं, बस मुझे अभी अभी पता चला है कि लड़की की मम्मी और तुम एक स्कूल में पढ़ते थे।
2: जी हाँ, मजा आ गया।
4: दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा खास सेगमेंट नॉन फिल्मी चार्टबस्टर,
3: और अब इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए पेश है एक बेहद खूबसूरत और एहसासों से भरा गीत। अगर किसी का जिक्र आज भी आपकी मुस्कान की वजह बन जाता है तो ये गाना आपके लिए है।

0: तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप अपनी शाम की चाय एंजॉय कर रहे होंगे प्रोग्राम युववाणी के साथ। तो ऐसे ही हमसे जुड़े रहिए और सुनते रहिए, और साथ ही हमें अपने फीडबैक्स भी देते रहिए। लेकिन अब वक्त है आपको कुछ याद दिलाने का, है ना सना?
1: बिल्कुल मरियम।
0: तो दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ कि हमने प्रोग्राम के शुरुआत में आपसे पूछा था एक सवाल।
1: सवाल था, ब्लू सिटी के नाम से भारत के कौन से शहर को जाना जाता है? और इसके सही जवाब है जोधपुर। आइए जान लेते हैं सही जवाब देने वाले लिसनर्स के नाम। दुर्गाराम साहू, सुनीता रानी, विजय सुलरकर, बीपी गौतम, अरविंद कुमार, शाहरुख नूरंसारी, आसिफ चौधरी, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, प्रवीण चौहान, मोहम्मद सईद अब्बासी, मोहम्मद जाहिद अब्बासी, प्रेम सिंह, सुरेश गगनेजा, गंगा सिंह रावत, शाहजी बोड़के, राजकुमार डूडी, राजू मिगलानी, मिसबा शमसी, मोहम्मद कलीम, आकाश रस्तोगी, शकील अहमद इदरीसी, दिलशाद हुसैन, दुमेंद्र नेतम, संजय डिगनिया, मुजफ्फर अली खान, आर्यन राज, जाकिर मंसूरी, धीरज भाई रबाड़ी, राजेश वर्मा, रामशरण, एम अफजल ताज, नवी हसन अब्बासी, राजपाल गजभे, वीरेंद्र भयान, राधेश्याम पांडे, गजानन येले, राजेश, श्यामल कुमार, दिग्दर्शन शाह गोड़, निसार सलमानी, देवशंकर तमूरिया, बी आई धाकड़, जगदीश धाकड़, गोविंद विश्नोई, फागुराम यादव, राम कुमार रेवार, धर्मेंद्र छीपा, महाराज कीर्तनपुरी, तुलसी मस्कीन, डॉक्टर एस सोहन जोशी, मीरा सिंह, लाल मोहम्मद अंसारी, नाज जमील, हिरमनी वर्मा, नदीप बाकी, अनिल विनोचा, ताज अंसारी, बबलेश पवार, दिनेश वर्मा, नंद कुमार ठाकुर, पुनाजी नवरकर, सुदर्शन शाह, जॉन डिकेस्ट्रो और नरीन नेतम।
0: तो ये थे हमारे उन लिसनर्स के नाम जिन्होंने हमें दिया था सही जवाब। तो दोस्तों, जब आपने हमें सही जवाब दिया है तो हमारा फर्ज है कि हम आपको
1: बिल्कुल मरियम, हमारा पूरा फर्ज बनता है कि हम अपने लिसनर्स को सुनवा दें एक और खूबसूरत सा गीत।

0: दोस्तों ये तो था हमारा आज का प्रोग्राम, हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हमारे प्रोग्राम आपको कैसे लग रहे हैं आप हमें मैसेजेस के जरिए बता सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9457078288 और आप हमें खत भी भेज सकते हैं। उसके लिए नोट करना है हमारा पता, कार्यक्रम युववाणी अनुभाग द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद, पिन कोड 246763।
1: और इसी के साथ आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। अपडेटेड रहने के लिए हमारा फेसबुक अकाउंट है आकाशवाणी नजीबाबाद, हमारी इंस्टाग्राम आईडी है @आकाशवाणी नजीबाबाद। साथ ही हमारे पुराने प्ले, कहानियां, आने वाले प्रोग्राम्स हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी नजीबाबाद पर आप सुन सकते हैं।
0: इसी के साथ अपनी साथी सना
1: और मरियम जैदी को दीजिए कार्यक्रम संपन्न करने की इजाजत। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजने को हैं, कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, दोनों देशों के संबंध बेहद विशेष हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि देश की रिफाइनिंग क्षमता को अगले 6 से 12 महीनों में 30 करोड़ मीट्रिक टन प्रतिवर्ष तक बढ़ाया जाएगा। दिल्ली सरकार ने निजी स्कूलों में फीस विनियमन समिति के गठन का निर्देश दिया। फीस बढ़ोतरी से पहले अभिभावकों की सहमति सुनिश्चित की जाएगी। भारतीय रेलवे ने जून में माल ढुलाई में 4% की वृद्धि दर्ज की। अमृत भारत रेल सेवाओं की संख्या बढ़कर 72 और वंदे भारत सेवाएं 164 हुईं। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने राम मंदिर चंदा घोटाला मामले में आरोपी लव कुश मिश्रा की एक निर्माणाधीन संपत्ति पर नोटिस जारी किया। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। दक्षिण पश्चिम मानसून दिल्ली में दस्तक देते हुए उत्तरी और पश्चिम राज्यों में आगे बढ़ा। और खेलों में फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा, वहीं पुर्तगाल का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। ये थे अब तक के समाचार।

0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों में समझौते किए हैं। ये समझौते दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि आर्थिक जगत इस समय आपूर्ति श्रृंखला अड़चनों, व्यापार अनिश्चितता और वैश्विक मांग में गिरावट से जूझ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
1: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है, लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट अपनाते हुए अपने इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत अपनी रिफाइनरी क्षमता का तेजी से विस्तार कर रहा है। नई दिल्ली में श्री पुरी ने बताया कि अगले 6 से 12 महीनों में देश की रिफाइनिंग क्षमता को 30 करोड़ मीट्रिक टन प्रतिवर्ष तक बढ़ाया जाएगा। त्रिपुरा के अगरतला में आज राज्य स्तरीय विकसित भारत जी रामजी का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर त्रिपुरा के श्रम मंत्री टिंकू रॉय ने कहा कि नई योजना प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार को प्रतिवर्ष 125 दिन के रोजगार की गारंटी देती है। योजना के अंतर्गत दैनिक मजदूरी 256 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए कर दी गई है। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने राम मंदिर चंदा घोटाला मामले में आरोपी लवकुश मिश्रा से जुड़ी एक निर्माणाधीन संपत्ति पर नोटिस जारी किया है। प्राधिकरण के सचिव ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि भवन निर्माण नियमों के संदिग्ध उल्लंघन के कारण ये नोटिस जारी किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों की राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता ग्रैंड आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि समारोह में उच्च स्तरीय उपस्थित दोनों देशों के बीच सभ्यतागत संबंधों के महत्व को रेखांकित करती है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 मैच में आज रात इंगलवुड में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा, वहीं टोरंटो में पुर्तगाल का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को आपके भैया आलोक कुमार गंगाराम
1: और भैया प्रमोद सिंह की
0: राम राम। और भैया प्रमोद क्या हो रहा है?
1: देखो भैया सब ठीक है। हाँ। अब तो भैया मौसम भी थोड़ा सा बदलने लगा
0: भाई। देखो अब जो हल्की हल्की सी बारिश हुई ना भाई, हमने धान की पौध तो तैयार कर ही ली थी।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: अब तो भैया धान की रोपाई चरम सीमा पर चल रही।
1: हाँ भाई देखो, पौध अगर हमने टाइम से तैयार कर ली तो टाइम से उसकी रोपाई भी होगी, लेकिन भैया रोपाई अगर हम और ढंग से कर देंगे तो धान की फसल बहुत बढ़िया हो जाएगी।
0: देखो रोपाई तो ढंग से हम कर ही देंगे, लेकिन एक काम हमारे किसान भाई थोड़ी सी कंजूसी कर दें।
1: वो कौन सा काम है भैया?
0: वो यो है भैया, पौध का शोधन करना बहुत जरूरी है।
1: यही तो हम कह रहे हैं भैया, अगर हम थोड़ी सी बातें ध्यान में रख लें, जैसे भैया हम बीज को शोधित करके बो रहे हैं,
0: ठीक
1: है ना, तो भाई जो पौध हमारी नर्सरी में खड़ी है वो बहुत बढ़िया खड़ी है, उसको कोई रोग नहीं लग रहा है। और अगर हम उसको उखाड़ते समय और उसको रोपाई करते समय थोड़ी सी बातें ध्यान में रख लें, जैसे भी आपने कहा कि भैया उस पौध को शोधित कर दें, तो यूं समझो कि फिर तो और भी बढ़िया बात हो जाएगी।

0: जी
1: वो भैया इस हिसाब से लगा डाल दें कि 5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करते हैं। और भाई जो पानी की गुच्छी हैं वो धान की गुच्छी हैं वो पानी में नहवा दें अच्छी तरह।
0: उसमें पड़ी रहने दें कम से कम 1 घंटा, अगर उसमें
1: हाँ
0: हमने उसको छोड़ दिया तो भैया वो बढ़िया तरीके से शोधित हो जाएगी।
1: बिल्कुल। और देखो वैसी जड़ डाल दी निकाल दिया ये नहीं, पूरी नहवानी चाहिए अच्छी तरह भाई।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
1: जैसे देखो हमारा नहाना जरूरी रहे ना, शरीर में चुस्ती फुर्ती सी आ जा,
0: हाँ
1: ऐसी भैया धान की पौध में भी अगर कोई भैया कीड़ा होगा या उसके अंडे होंगे या हानिकारक कीट के अंडे होंगे वो बेकार हो
0: और
1: जाएंगे।
0: दूसरी एक बात यो भी है भैया कि देखो शोधित तो हमने उसे कर लिया, अब उसका ऊपर का 1 से 1.5 इंच जो हिस्सा है वो अगर हम तोड़ देंगे तो और अच्छी बात
1: भाई
0: रहेगी।
1: देखो वो शोधित करने से पहले ही तोड़ना चाहिए।
0: हाँ हाँ हाँ हाँ
1: तो क्या होता है जो हानिकारक कीट हैं
0: जी
1: उसके अंडे जो हैं वो ऊपरी भाग में ही रहते हैं पौध के,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: तो वे अंडे भैया फिर पूरे कीड़े बन जाएंगे और नुकसान पहुंचाएंगे। तो ये काम हो ही ना, इससे पहले तोड़ दो और पौध को शोधित करके और भैया पौध को लाइन से लगाना चाहिए।
0: और भैया देखो जो हमारे कृषि के वैज्ञानिक हैं वो नू भी कह रहे हैं कि जब हम उसको लगावें पौध को, तो देखो खेत में पानी तो भरा ही रहे अच्छी
1: ठीक।
0: तरीके से, भैया हम कादल भी काट कर लगावें ये खेत को बढ़िया करके तैयार, तब उसको लगाया जाए। लेकिन हमारे किसान भाई क्या करें कि भैया उसका जो तना है वो बहुत ज्यादा नीचे जो है उसको जमीन में गाड़ दें,
1: बिल्कुल वो नहीं करना चाहिए।
0: वो
1: और
0: नहीं
1: एक
0: करना
1: बात और
0: चाहिए।
1: है भाई, एक कहावत है गांव में, जो दिखेगा वो बिकेगा। तो भैया खेत अच्छा लगना चाहिए,
0: हाँ, सही बात
1: तो वो
0: है।
1: अच्छा जब लगेगा जब हम लाइन से यानी कि एक रस्सी ले लें सबके पास बांध हो में,
0: हाँ
1: और बांध रखकर भैया उस बांध के धोरा धोरा जो है पौध लगा दें।
0: जी जी
1: और भैया
0: जी
1: पौध से पौध की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी 20 सेंटीमीटर के आसपास हो।
0: और इसके अलावा भाई खेत को अच्छी तरीके से हवा लगती रहे, खेत बढ़िया तरीके से हमारा जो है वो उत्पादित मतलब जो फसल है हमारी ठीक ठाक होती रहे, तो
1: हाँ
0: उसके बाद हमें ध्यान यो रखना है इस काम के लिए कि जो हमने 10 लाइनें लगा दी उसके बाद थोड़ा सा गैप दे दें
1: हाँ
0: हर 10 लाइन के बीच में।
1: यानी कि ऐसे कहा जाए कि 3 मीटर पर एक गैप दे दें।
0: हाँ हाँ
1: उसमें
0: हाँ
1: क्या होगा भाई, एक तो खाद बखेरना है और आना जाना
0: जी
1: है
0: जी जी जी जी
1: भैया, निराई गुड़ाई करनी है उसमें फायदा रहेगा। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण फायदा ये होगा, उस खाली जगह में जो है मकड़ी जाला पोर देंगी, और मकड़ी हमारी बहुत अच्छी मित्र होती हैं,
0: जी
1: तो हानिकारक कीट जो है वो उस जाले में फंस जाएंगे और हमारी फसल में नुकसान होने का नहीं, तो फ्री का ही हमारा जो कीट नियंत्रण हो गया।
0: देखो कितनी बढ़िया बात है भाई, देखो बातचीत तो बहुत सारी है और भाई महत्वपूर्ण बात तो यही है कि किसान भाई इस समय धान की रोपाई कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान हमें रखना पड़ेगा कैसे रोपाई करनी। और भैया आज बहुत सारी बातें आज के कार्यक्रम में करी जाएंगी, किसान भाइयों को और भी जानकारी दिलवाई जाएगी, किसान भाइयों का मनोरंजन भी करवाया जाएगा। पर अब बताओ भैया थारी क्या मर्जी।
1: भाई अब तो हम सुन लेते हैं कुछ जरूरी संदेश।
0: ठीक है भैया।
2: पुलिस
3: मिस सीमा,
2: जी,
3: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
2: क्यों, लेकिन मैं
3: अकेले दूसरे कमरे में जाइए, आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
2: डिजिटल अरेस्ट?
3: 1 लाख 2 बच जाओगे।
2: इतने पैसे?
3: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो वरना बेटा जेल जाएगा।
2: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
4: हेलो मम्मा,
5: RBI कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
8: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
7: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
8: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
7: डायल कीजिए 8700014242।
8: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
9: नमस्कार, आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मोहम्मद आरिफ, पीडियाट्रिशियन बिजनौर से, जो मॉनसून के दौरान बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव साझा करेंगे। डॉक्टर, यदि बच्चे की साधारण सर्दी का समय पर

0: ध्यान न रखा जाए क्या जटिलताएं हो सकती हैं।
1: देखा गया है ज्यादातर केसेस में ये सर्दी खांसी अपने आप 3 से 5 दिन में ठीक हो जाती है, लेकिन ऐसे बच्चे जो मालनरिश हैं, जिनमें इम्यूनिटी की कमी है, उसमें ये साधारण सर्दी खांसी भी कॉम्प्लिकेशन पैदा कर सकती है। जैसे कुछ बच्चों में ये मिडिल ईयर इन्फेक्शन या कान का दर्द पैदा कर सकती है, कुछ बड़े बच्चों में ये सर्दी खांसी का इन्फेक्शन साइनस तक पहुंचकर साइनोसाइटिस जैसी परेशान करने वाली स्थिति उत्पन्न कर सकता है। आजकल देखा गया है बहुत सारे बच्चे अस्थमा से पीड़ित हैं और ये साधारण सर्दी खांसी उनमें अस्थमा के सिम्टम्स को बढ़ा सकती है। उन्हें सांस लेने में दिक्कत, सांस लेने में आवाज होना आदि इस तरीके की परेशानियां हो सकती हैं। इस सर्दी खांसी में आने वाले बार बार बुखार से बच्चे के डिहाइड्रेट होने का खतरा रह जाता है, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और इससे बच्चा फर्दर मालनरिश या कुपोषण का शिकार हो जाता है।
0: यह संदेश एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी किया गया है।
2: भैया गंगाराम जी, देखो संदेश हमने सुन लिए।
3: बिल्कुल।
2: और भाई बात हम यूँ कर रहे थे कि भैया हमें आज के कार्यक्रम में किसान भाइयों को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दिलवानी है, मनोरंजन भी करवाएंगे, पर एक बात तुम बताओ।
3: वो क्या?
2: भैया बातचीत करने के लिए तो स्वस्थ होना बहुत जरूरी।
3: बिल्कुल। और स्वस्थ होने के लिए भैया अच्छा खाना जरूरी है।
2: बहुत जरूरी है
3: भैया। आज के दौर में देखो तुम, चाहे आप फल ले लो कोई, उन्हें क्या भैया इस पर बहुत दवाई छिड़की जा रही है।
2: हाँ।
3: वो उसमें बस जहर है सीधा।
2: बिल्कुल सही बात है।
3: और भैया आप कोई सब्जी ले लो उसकी जो हालत
2: जी,
3: है भैया, जो भी देखो।
2: अरे भैया देखो, अब तो किसी भी फसल को हम भैया बगैर रसायन के तैयार नहीं कर रहे, और उसमें भी अंधाधुन तरीके से डालते चले जा रहे हैं, तो वो जो रसायन हम डाल रहे हैं हमारे शरीर में जा रहा है भैया, उसका नुकसान तो हो ही रहा।
3: बिल्कुल भाई, देखो हम बार बार ये आग्रह करते हैं किसान भाइयों से कि भाई जैविक तरीके से कोई भी चीज उगाओ।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
3: और जैविक तरीके से कीट नियंत्रण करो, जैविक तरीके से जो है भैया सारे काम करो।
2: हाँ।
3: और जो हमारा रासायनिक खाद है वो भी जैविक ही होना चाहिए।
2: सही।
3: हरी खाद हो, चाहे भैया केंचुई खाद हो या गोबर की सड़ी हुई खाद हो, कोई भी हो, लेकिन वो जैविक तरीके को होना चाहिए।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
3: कारण ये है कि जो जैविक तरीके से कोई भी चीज पैदा की जाएगी, उसका जो असर होगा,
2: हाँ,
3: वो भैया बहुत लाजवाब होगा।
2: देखो भैया, लाजवाब की जहां तक बात है, तो पहला तो लाजवाब भैया वो यही होगा कि हमारा पर्यावरण प्रदूषित होने से बचेगा।
3: बिल्कुल।
2: जो हमारे पक्षी वातावरण में भैया उड़ रहे हैं भैया, उनके स्वास्थ्य को उससे फायदा होगा।
3: बिल्कुल।
2: दूसरी बात भाई, जो सांस हम ले रहे हैं, खुली हवा में हम जी रहे हैं, लेकिन भैया हम वही रसायन वाली बात फिर आ जा, जहर वाली बात आ जा, तो भैया फिर हम भी तो स्वस्थ रहेंगे अगर हम सही तरीके का खान पान करेंगे तो।
3: बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। देखो भैया, बात यह है, हर साल भारत सरकार जो है एक जिले में लाखों रुपए खर्च करती है यो बताने के लिए कि भैया आपको जैविक तरीके से उत्पादन करना।
2: बिल्कुल।
3: और जो जैविक उत्पादन कर रहे हैं भैया, उन्हें प्रोत्साहित भी किया जाता है।
2: हुँ।
3: और भाई ये भी बताया जा है कि जैविक जो उत्पाद है उन्हें खाने से, और जो हम भैया रसायन वाले उत्पाद हैं उनके खाने से क्या क्या फायदे और क्या क्या नुकसान है। तो लेकिन भैया हम क्या है, लगातार पैसे के पीछे इतना भाग रहे हैं।
2: हाँ।
3: कि भाई लगातार दवाइयां छिड़क रहे हैं, लगातार रसायन,
2: जिससे कि हमारे खेत में जो फसल खड़ी उससे ज्यादा उत्पादन मिल जाए।
3: हाँ हाँ। तो भैया इस आधुनिक जो जीवन है उसकी दौड़ में हम सच्चाई को भूलते जा रहे हैं।
2: अरे भैया, और तो और जिस जमीन में हम पैदा कर रहे हैं फसल उसको ही खराब करते चले जा रहे हैं।
3: बिल्कुल भाई, देखो यो तक नहीं सोच रहे कि भैया यो भूमि हम हमारे बुजुर्गों ने दी है और हम भी भैया एक दिन अपने बाल को छोड़ कर जाएं।
2: बिल्कुल।
3: तो यो भूमि भैया अगर जहर मुक्त होगी, यो भूमि भैया उपजाऊ रहेगी, तो भैया अगली पीढ़ी भी खाम।
2: अरे भैया, कहने की बात तो यो है कि अगर हम जहर मुक्त खेती करेंगे तो व्यसन मुक्त व्यक्ति होगा।
3: बिल्कुल। तो भाई क्यों ना इस बारे में कुछ जानकारी ली जाए।
2: ठीक है भैया, आओ सुनते हैं जानकारी। और भैया देखो, इस बारे में जानकारी आज हम लेकर आए हैं, और इस जानकारी को भैया दे रहे हैं महिपाल सिंह जी, और आपसे बातचीत कर रहे हैं हमारे भैया जितेंद्र कुमार।
3: तो भैया सुनते हैं ये बातचीत।
4: किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, आज हम खेती में इस कदर रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं कि हमारी जो मिट्टी है, हमारा जो पर्यावरण है, वो कहीं ना कहीं प्रदूषित हो रहा है, और जो कि मानव स्वास्थ्य पर भी उसके दुष्प्रभाव हो रहे हैं। तो आज हमने एक समाज सेवी जिनका नाम है महिपाल सिंह, ग्राम मुस्सापुर ब्लॉक मुजफ्फराबाद जनपद सहारनपुर के रहने वाले हैं, उनसे बात की। जहर मुक्त खेती और व्यसन मुक्त व्यक्ति, यानी के नशा मुक्त व्यक्ति किस तरह से हो और जहर मुक्त खेती हमारी किस तरह से हो। तो महिपाल सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
5: धन्यवाद जी आपका।
4: सर, जैसा कि हमारा आज आपसे विषय है जहर मुक्त खेती, तो हमारे किसान भाई किस तरह से जहर मुक्त खेती से उत्पादन ले सकते हैं, इससे क्या असर समझें?
5: बिल्कुल ठीक है, हमने अपने गांव के विकास की दृष्टि से विचार करके गांव-गांव जाकर हमने गोष्ठी प्रारंभ की कि अगर हम ऐसे ही जहर डालना शुरू किया तो हमारा स्वास्थ्य तो बिगड़ेगा, पर्यावरण तो बिगड़ेगा और हमारी आय भी कम होगी। तो इसलिए हमने ग्रामीण स्तरों पर गांव-गांव जाकर गोष्ठियां करते हैं, प्रशिक्षण देते हैं कैसे हम जहर मुक्त खेती को समाप्त कर एक बिल्कुल गो आधारित खेती कर सकते हैं। एक गाय एक 50 से 60 या 100 बीघा खेती कर सकती है। गोमूत्र गोबर से तैयार औषधियां हम जैविक उत्पाद बनाकर मार्केट में ला सकते हैं। उस पर किसानों ने भारतीय नस्ल की गाय बांधना प्रारंभ किया है, उनके गोमूत्र से बहुत सारी दवाइयां बनानी प्रारंभ की है। फिर उनके साथ बैठने का किया कि भाई अगर हम आज गांव का विकास चाहते हैं तो हमको कुछ कड़े निर्णय लेने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हमने अपने समाज को बचाने के लिए यही निर्णय किया कि एक तो हमारा आमदनी तो कम हो ही गई, फिर हम नशे की ओर जा रहे हैं।
4: बिल्कुल।
5: तो कैसे हमारा व्यक्ति व्यसन मुक्त हो, आने वाली युवा पीढ़ी उससे कैसे दूर हो, तो ऐसे छोटे छोटे प्रशिक्षण करके हमने कुछ गाँव को मॉडल के रूप में खड़ा किया है। आज उस गाँव के अंदर हमने पर्यावरण की दृष्टि से तो बहुत सारा काम किया है। तो गांव की युवा टीम हमारे साथ खड़ी हुई है, महिलाओं की टीम खड़ी हुई है, कुल मिलाकर के उस गांव के अंदर एक ऐसा वातावरण खड़ा हुआ है तो लोग देखने के लिए जाते हैं।
4: बिल्कुल।
5: तो इस तरह हमने सहारनपुर जिले के अंदर एक ब्लॉक एक गांव, एक आदर्श गांव खड़ा करने की योजना बनाई है, जिससे उस ब्लॉक के लोग मिलकर के उस गांव को देखें, अध्ययन करें और अध्ययन करने के बाद फिर वो अपने कार्य में खड़े हों।
4: जी जी बिल्कुल सर, आपको जो ये मुहिम आपने चला रखी है जहर मुक्त खेती की, तो सर ये आपको प्रेरणा कहाँ से मिली, इस संबंध में हमारे किसान भाइयों को आप जागरूक कीजिए।
5: ये प्रेरणा हमको कई बहुत सारे लोगों ने एक प्रशिक्षण लगाया भाईले के अंदर, तो वहाँ एक किसान आए महाराष्ट्र से चलकर
4: जी,
5: तो उन्होंने प्रशिक्षण दिया, वो प्रशिक्षण हमने भी लिया कि आज कुछ लोगों को समय छोड़कर गांव के अंदर जाना पड़ेगा।
4: जी जी।
5: तो वहां से प्रशिक्षण लेने के बाद हमने संकल्प लिया और एक ग्राम विकास गतिविधि बनाई, हम उनके साथ जुड़े और कुछ उनका निर्देशन कुछ अपने अंदर की एक जिज्ञासा लेकर गांव के अंदर गए। लगभग पूरे सहारनपुर जिले में फिलहाल हमने केचुआ उत्पादन और पशुपालन और गोमूत्र आधारित ऐसे 100 प्रकल्प खड़े किए हैं, जिसके कारण हमारी खेती का उत्पादन बढ़ा है और गौ पालने से आज उन लोगों को हमने नशे से भी दूर किया है, वो सब लोग बिजी होने शुरू हो गए।
4: बिल्कुल सर बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं को जहर मुक्त खेती के संबंध में दी। अच्छा, जिस तरह से आपने जो खेती की बात बताई कि इस तरह से आप खेती कर सकते हैं, तो इससे जो है हमारे किसान भाइयों का जो उत्पादन है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगा या बढ़ेगा, इस संबंध में और किसान भाइयों को हमारे जागरूक कीजिए।
5: बिल्कुल, हमने जैसे जैविक खेती की बात की
4: जी,
5: तो हमने गो आधारित खेती का नाम दिया। उस गो आधारित खेती के तहत हमने सब घरों में पहले गायें बंधवाई, तो गायें बांधने के कारण दो दो तीन तीन गायें बंधी तो उनका दूध उत्पादन बढ़ा, उनकी आय बढ़नी शुरू होगी। फिर उनका एक एक बूंद हम पेशाब का भी इकट्ठा कराते हैं, जो पेशाब केवल फसलों पर छिड़कने के लिए औषधि के रूप में काम आता है, तो उनकी डबल आय हुई। उनका जहाँ घी दूध बिक रहा है वही वो गोमूत्र भी उनके काम आ रहा है। मार्केट से वो केवल अपने खेत में डालने वाली कोई भी चीज नहीं लाते, केवल वो सब चीजें अपनी गो आधारित खेती से ही, गो के आधारित खेती जो करते हैं उस पर ही निर्धन करते हैं। और आज उस उन गांव के अंदर एक अच्छा माहौल बना है, उस माहौल के कारण आसपास के लोग जब उन किसानों को पूछते हैं, चर्चा करते हैं, वही पहल वो दूसरे गाँव में भी प्रारंभ हो गई, स्वदेशी गाय बंधनी शुरू हो गई एचएफ छोड़ करके, और उनका आय भी बना है, आय का साधन भी बना, छोटे छोटे उनके स्वदेशी रोजगार भी खड़े हुए हैं।
4: जी जी।
5: तो इस तरह से उनके आय के साधन बने
4: जी।
5: और उनका स्वास्थ्य भी ठीक हुआ और वो उनके पास इतना समय नहीं रहता अब
4: जी।
5: जो वो गलत जगह बैठ करके नशे की तरफ जाए।
4: बिल्कुल।
5: तो बिल्कुल एक व्यस्त जीवन और एक अच्छी परंपरा डाल गई।
4: बिल्कुल, वो व्यस्त रहते हैं और जो हम आज अपनी खेती में इतने रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं जिससे कि हमारे किसान भाइयों की जेब पर भी अधिक भार पड़ रहा था, वो आपने कहीं ना कहीं हमारे किसान भाइयों को जागरूक किया और उनको इस अतिरिक्त भार से मुक्ति दिलाई। अच्छा, जैसे आप गो आधारित खेती करने के संदर्भ में आप हमारे किसान भाइयों को जागरूक करते हैं, तो सर इसमें आप जो है गो आधारित गोमूत्र से क्या क्या उनको बनवाते हैं, किस तरह से उनका खेती में प्रयोग कराते हैं?
5: हाँ बिल्कुल, एक तो लगभग हम गोमूत्र आधारित एक ऐसा जो छिड़कने वाला एक प्रोडक्ट बनाते हैं
4: जी,
5: जिसमें हम नीम के पत्ते, आंखे के पत्ते, वो सब एक मात्रा में
4: जी,
5: हम उसमें एक ड्रम के अंदर अपना गौमूत्र रखते हैं, उसमें वो सारे उत्पाद डाल करके 15 दिन बाद उसमें रखते हैं, फिर उसको छान करके तो प्रति एकड़ लगभग 1 लीटर वो गौमूत्र का अर्क उसमें छिड़का जाता है। उससे सुंडी से लेकर के कोई भी इस तरह का कोई बीमारी हो वो सब उस गौमूत्र के अर्क से ही ठीक हो जाती है
4: जी, जी।
5: और बाकी हम गोबर के अंदर केचुआ पालन करके वो जो खाद तैयार होता है उससे वो नीचे डालने वाला खाद तैयार करते हैं। इसी तरीके दो चीजें उनको दी है, उसी से वो डाई का विकल्प, यूरिया का विकल्प लेकर के गौमूत्र गोबर से अपनी आय बढ़ा रहे हैं और किसान की डबल उत्पादन हो रहा है, क्योंकि उसका दूध भी बिक रहा है, उसका घी भी बिक रहा है और उसका गोबर गौमूत्र से खेती भी उत्तम हो रही है।
4: बिल्कुल सर, बिल्कुल। इससे जो है हमारे किसान भाइयों को अतिरिक्त लाभ हो रहा है, साथ ही साथ हमारे किसान भाई जो गो आधारित खेती कर रहे हैं उनका जैविक उत्पाद, प्राकृतिक उत्पाद जो बाजार में जाएगा उसका मूल्य भी हमारे किसान भाइयों को अधिक मिलेगा। जहां तक सर आपने बात बताई महिपाल जी कि हमारे जो किसान भाई हैं वो यदि इस तरह से खेती करेंगे तो उनका जो उत्पादन है वो जो है हमारे किसान भाइयों का उसका लागत उस पर कम आएगी और जो बाजार मूल्य है उसका अधिक मिलेगा। तो सर जैसे हम जहर मुक्त खेती जब भी करें तो हमारे किसान भाई किस तरह से उसको कर सकते हैं, किस तरह से अपनी गाय पालने या देसी गाय ही या ऐसे गाय का कोई प्रयोग नहीं है इसमें?
5: वैसे तो गोमूत्र सभी का ले सकते हैं, लेकिन जो टेस्टिंग में पाया गया है केवल भारतीय नस्ल की गाय, जो ढांट वाली गाय है, केवल उन गायों का ही गोमूत्र वास्तव में मनुष्य के लिए भी और हमारी फसलों के लिए भी उत्तम पाया गया है। इसलिए गोवंश से चाहे बैल हो, बछड़ा हो, बछिया हो, उन सबका गोमूत्र हम इकट्ठा कराते हैं और उसकी कीट नियंत्रक के रूप में हम दवाई बनाते हैं। मार्केट में जो रासायनिक है वो कीटनाशक के रूप में आती है, हम कीट नियंत्रक केवल उसकी आयु बढ़ाते हैं जिससे कि फसलों पर वो कीटनाशक कोई नुकसान न कर पाए, इसलिए कीट नियंत्रक बनवा करके हम छिड़कवाते हैं और गोबर गोमूत्र से जो हमारे अन्य खाद के रूप में तैयार होते हैं वो हम उनको डलवाते हैं।
4: बिल्कुल सर, जैसा आज हम देखते हैं कि हमारा जो पर्यावरण है वो भी कहीं ना कहीं रासायनिक उर्वरकों के, रासायनिक कीटनाशकों के प्रयोग से प्रदूषित हो रहा है, तो आपने बड़ी अच्छी मुहिम चला रखी है कि यदि हमारे किसान भाई गो आधारित खेती करें, गोबर की खाद अपने खेतों में डालें, साथ ही साथ गोमूत्र का अपनी फसलों पर छिड़काव करें तो जैविक नियंत्रण हो जाता है। तो सर जैसा हमारे किसान भाई आज खेती से उत्पादन ले रहे हैं और कहीं ना कहीं अधिक लागत लगाकर भी उत्पादन नहीं बढ़ रहा है, तो आपकी जो ये मुहिम है, ये जो आपने कार्यक्रम चला रखा है ग्राम विकास का, जहर मुक्त खेती का, तो इस कार्यक्रम को आप कितने किसानों तक अब तक जागरूक कर चुके हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से?
5: लगभग अपने जिले के अंदर हजारों किसान ट्रेनिंग ले चुके हैं
4: जी, जी।
5: और छोटा किसान इसमें पहले जुड़ रहा है, बड़े किसान आज भी केवल खाद, रासायनिक खाद और उस पर निर्भर हैं, लेकिन छोटा किसान जो अपने हाथ से काम करता है
4: जी, जी।
5: वो किसान हमारे साथ ज्यादा जुड़े हैं। उन्होंने गो आधारित खेती का बिल्कुल अपने जीवन में एक आदर्श रूप लिया है और उनकी वास्तव में आय भी बढ़ी है, उनका स्वास्थ्य भी बढ़ा है और उनका पर्यावरण भी ठीक हुआ है।
4: बिल्कुल।
5: और लोग उनसे सीख करके आगे कुछ बढ़ रहे हैं।
4: बिल्कुल सर, आपने जो है काफी लोगों को प्रशिक्षित किया है और काफी लोगों को आप अपनी इस मुहिम से जोड़ रहे हैं और आगे भी आप भविष्य में भी ये कार्य करते रहेंगे। तो सर महिपाल जी, जैसे आपने इस मुहिम में आप आगे भी लगे रहेंगे तो इस जहर मुक्त खेती के संबंध में या कोई बात हमारे किसान भाइयों से आप साझा करना चाहते हैं, क्योंकि आज आपकी बात काफी ऐसे किसान है या जो नौजवान साथी हमारे खेती किसानी कर रहे हैं या जुड़ना चाहते हैं तो वो भी आपकी बात सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो लाभान्वित होंगे, ऐसा कोई संदेश आप हमारे किसान भाइयों को आप देना चाहते हैं?
5: बिल्कुल, अगर हमें वास्तव में अपने शरीर को ठीक रखना है, भारत माता को ठीक रखना है, पर्यावरण को ठीक रखना है तो मात्र कोई औषधि नहीं है, केवल गौ माता के चरणों में आना पड़ेगा
4: जी।
5: गौ माता हमको जहाँ दूध देगी वहीं उनका गौमूत्र हमारे लिए गंगा जल के समान है, वही उस जो धरती आज बंजर हो चुकी केवल गोमूत्र गोबर से ही वह जमीन फिर पुनः है, क्योंकि उसके अंदर जीवाणु है, वो जीवाणु को केवल मेरा गोमूत्र ही जिंदा कर रख सकता है और उत्पादन बढ़ा सकता है, बाकी जितने रासायनिक उत्पाद हम डालेंगे उससे मेरी धरती माँ बंजर होती जा रही है।
4: बिल्कुल सर, जैसा आपने ये मुहिम चला रखी है कि जहर मुक्त खेती और व्यसन मुक्त व्यक्ति के संबंध में, तो आपने बड़ी अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं को दी। और आज हमारे किसान भाई जो हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वो गन्ना उत्पादक क्षेत्र है। अच्छा सर, जैसा गन्ना उत्पादक है और गन्ने में हमारे किसान भाई अत्यधिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, तो क्या गन्ने की फसल भी वो गो आधारित कर सकते हैं?
5: बिल्कुल कर सकते हैं। हमारे हमने कई किसान शामली के अंदर
4: जी
5: थाना भवन के अंदर अपने गन्ने का ये प्रयोग किया। लगभग उनका सारा गन्ना गो आधारित ही है
4: जी जी।
5: वो लगभग 6 फुट की दूरी पर गन्ने का उत्पादन करते हैं और एक बार बोने के बाद 10 साल तक उनका गन्ना चलता है। अच्छा। 10 साल तक उन्हें बोने की जरूरत नहीं पड़ती जी।
4: 10 साल तक वो, 1 साल बोने के बाद 10 साल तक उसकी कटाई करते हैं। अच्छा सर, जैसा कि गन्ने की फसल है, हमारे कुछ किसान भाई कहते हैं कि भाई गन्ने की फसल जैविक तरीके से नहीं हो सकती है, और आप बता रहे हो कि शामली के किसान हैं और अन्य किसान हैं जो खेती जैविक आधारित कर रहे हैं, तो सर पर गन्ने के उत्पादन पर भी क्या इसका कुछ असर पड़ता है?
5: केवल पहले साल
4: जी,
5: एक साल थोड़ा सा उस खेती को, मिट्टी को जरा अपना टेम्परेचर या अपना स्वभाव बदलने में दिक्कत आएगी। धीरे धीरे जब करते रहेंगे तो लगभग हमारे किसान का उत्पादन आज 2 साल बाद वही 90 क्विंटल बीघा हो रहा है
4: जी।
5: और लगभग वो उसका गुड़ बना करके मार्केट में बेचते हैं। उनका गुड़ अगर मार्केट में 50 रुपए किलो गुड़ है तो हमारे उस किसान का गुड़ 100 रुपए किलो बिकता है मार्केट के अंदर।
4: बिल्कुल सर, आपने बड़ी अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं को जहर मुक्त खेती और व्यसन मुक्त व्यक्ति के संबंध में और इस विषय पर दी कि किस तरह से हमारे किसान भाई अपनी फसलों से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं और जहर को अपने खेत में ना डालकर अपने स्वास्थ्य को, अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं और अच्छा लाभ और आने वाली जो हमारी पीढ़ी है जो खेती करेगी उसको एक अच्छी भूमि आप दे सकते हैं। तो महिपाल सिंह जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं को दी और आपकी जानकारी का हमारे नौजवान साथी जो कृषि या खेती किसानी से जुड़ना चाहते हैं या जो हमारे किसान भाई खेती किसानी कर रहे हैं वो अपनी खेती किसानी में अपना कर अच्छा लाभ कमाएंगे। जैसा कि इन पिछले 2 वर्षों से हमारे किसान भाइयों को गन्ना उत्पादन से काफ़ी नुकसान हुआ है, तो यदि वो जैविक खेती करते हैं या गो आधारित खेती करते हैं तो वो अपनी मिट्टी को बचा सकते हैं और अच्छा लाभ अपनी खेती किसानी से कमा सकते हैं। तो आपने इतना व्यस्त कार्यक्रम से हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
5: धन्यवाद साहब।
3: जहर मुक्त खेती और व्यसन मुक्त व्यक्ति
2: जी।
3: तो भैया अभी महिपाल सिंह से जितेंद्र कुमार की बातचीत हमारे किसान भाई ने सुनी।
2: बिल्कुल, और भैया देखो महिपाल सिंह जी प्रगतिशील किसान हैं और भाई जहर मुक्त खेती कर भी रहे हैं और दूसरों को इसके लिए जागरूक भी कर रहे हैं। तो देखो इससे तो बहुत अच्छी चीज हमें ऐसी सीखने को मिली है कि भैया हर व्यक्ति को ये काम करना ही चाहिए।
3: बिल्कुल भाई, देखो बात यह है, जहर मुक्त खेती जब होगी, जब हम अपनी भूमि जो है उसके बारे में सही जानकारी देंगे।
2: बिल्कुल,
3: और सही जानकारी हमें मिलेगी मृदा स्वास्थ्य कार्ड से।
2: ये भी बिल्कुल आपने सही बात करी है भैया। देखो मृदा स्वास्थ्य कार्ड हमें कहाँ से मिलेगा?
3: हाँ।
2: जब हम थोड़े से जागरूक हो जाएंगे और अपनी मिट्टी की जांच हम करा लेंगे।
3: बिल्कुल, देखो भैया हर आदमी को अपनी फसल बोने से पहले मिट्टी की जांच करानी चाहिए।
2: बिल्कुल करानी चाहिए।
3: और भैया उसका जो एक कार्ड बनता है वो बनवा लेना चाहिए।
2: जी जी जी।
3: अब बात यह आ रही है कि भाई नमूना कैसे ले। वैसे तो देखो हमारे किसान भाई बहुत जानकार है।
2: हाँ।
3: तो नमूना लेने के लिए भैया पहले तो ये जान लेना जरूरी है कि कहाँ कहाँ से नमूना नहीं लेना।
2: ये बात बिल्कुल सही है भाई।
3: भाई एक तो जो आपने नाली बना रखी है अपने खेत पर, तो उस नाली के पास से नमूना लेना
2: जी।
3: कोई पेड़ खड़ा उसके नीचे से नहीं लेना। कोई कूड़ी का गड्ढा बना रखा आपने या खाद आप
2: घर डाल रखा वहाँ,
3: उससे नमूना नहीं लेना। और भाई कई बार क्या होता है, कोई गहवर हो जा, गहरा हिस्सा हो जा, उससे भी पानी का मिट्टी का नमूना नहीं लेना। और बाकी जमीन में से कहीं से भी ले लो।
2: बिल्कुल बिल्कुल। और भैया जो आपने ये बातें बताई कि हमें कहाँ कहाँ से नमूना नहीं लेना, इसके अलावा जो खेत बचता है उस खेत के हमें भैया 4-5 जगह ऐसे निशान लगा लेने चाहिए कि भाई हमें यहाँ से यहाँ से यहाँ से जो है मिट्टी उठानी है।
3: बिल्कुल।
2: नमूना लेना है तो बस वहां से हम नमूना लें। और बस नमूना लेने के लिए भी कुछ नहीं करना, बहुत आसान सा काम है किसान भाई, जाना ही है।
3: हाँ।
2: भाई एक वी आकार का गड्ढा खोदना।
3: ठीक।
2: और वो ऐसे मान लो कि पहले अगर हम पूरब की तरफ को मुंह करके खड़े तो भैया एक फावड़ा मारेंगे हम।
3: हाँ।
2: दूसरा हम फावड़ा मारेंगे पश्चिम की तरफ को मुंह करके।
3: हाँ।
2: तो वी आकार का गड्ढा खुद ही बन जाएगा।
3: बिल्कुल। और मिट्टी को बाहर निकाल दो
2: जी।
3: और उसके बाद जो गड्ढे में जगह बचेगी, खुरपे से भैया थोड़ा थोड़ी मिट्टी छीलते रहो और एक जो है कपड़े में या
2: साफ से बर्तन में,
3: साफ से बर्तन में भरते रहो। ऐसे ऐसे करके भैया आप 8-10 जगह से भैया मिट्टी इकट्ठी कर लो
2: जी,
3: फिर उस मिट्टी को भैया हाथ संभालते रहो जिससे मिल जाओ शहरी
2: मिट्टी।
3: शहरी मिट्टी मिलेगी लेकिन इस काम को छायादार स्थान पर करना।
2: हाँ।
3: और भैया मिट्टी को मल कर उस आधी कर दो, और आधी मिट्टी को भैया खेत में डाल दो, और आधी मिट्टी को फिर आप मल लो अच्छी तरह से, और फिर आधी कर दो। यो प्रक्रिया आपको जब तक लो करनी है जब तक के आपकी जो मिट्टी है उसकी जो वजन है उसका 1 किलो के आसपास में रहे।
2: हाँ, लगभग आधा से 1 किलो के आसपास में वो होना चाहिए, और उसको भैया एक साफ थैली में हमें भर लेना चाहिए, और उसके ऊपर हमें जो है एक कागज पे अपना नाम लिखना चाहिए। कागज पे हमने ये भी लिखना है कि वो हमारा खेत कौन सा था, उसकी क्या पहचान है, क्या फसल हमने उसमें बोई थी, क्या फसल हम उसमें बोने वाले हैं, और वही पर्ची भैया एक अगर हम उसके अंदर भी लिख कर रख देंगे ना थैली। हाँ। के तो और भी अच्छा रहेगा।
3: बिल्कुल। और भैया जिसे भी आप मिट्टी की जांच के लिए दो, चाहे आप अपने ब्लॉक में दो, या भैया कृषि विज्ञान केंद्र में दो, या भैया जिला कार्यालय में दो, तो भैया उनका फोन नंबर जरूर ले लो।
2: हाँ।
3: और भैया टाइम टाइम पर जो है उन्हें फोन करते रहो कि भैया क्या हुआ हमारी मिट्टी का, और जैसी भैया आपका सोयल हेल्थ कार्ड बन जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी मिट्टी में किस किस चीज की कमी है, और कौन कौन से पोषक तत्व आपको इस्तेमाल करने हैं, और कौन कौन सी चीजों की आपके यहाँ अधिकता है जिनका इस्तेमाल नहीं करना है।
2: जी जी जी।
3: तो इस तरह से जो आपकी फसल होगी वो भैया बहुत बढ़िया होगी।
2: और देखो ये मिट्टी की जांच हमें ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए कि भैया हमने एक बार मिट्टी की जांच करा ली अब हमें आगे को करानी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई ये बात भी सोच लें हमने तो भैया 2 साल पहले ही कराई थी।
3: सही कह रहे हैं।
2: देखो भाई हर 2 से 3 साल में हमें अपने खेत की मिट्टी की जांच कराते रहना चाहिए, जिससे हमें ये पता चलता रहेगा कि हमारे खेत का स्वास्थ्य कैसा है।
3: बिल्कुल। तो भैया जब ये पता चल जाएगा तो आपकी फसल आगे वो अच्छी होगी, और भाई जब फसल अच्छी होती है मन खुश हो जाता है फिर तो।
2: मन तो भैया देखो इस बात को सुनकर किसान भाइयों का अब वैसे भी हो ही गया होगा खुश। हाँ। क्योंकि भैया आप वो समझ गए होंगे कि हम उनको एक रागनी सुनवाने वाले हैं, उनका मनोरंजन करवाने वाले हैं। बताओ अब आप ही बताओ क्या इरादा भैया।
3: तो भैया देखो हम मैनपाल सिंह की आवाज में सुनवाते हैं एक रागनी, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये संदेश।
2: ठीक है भाई।
6: कम लागत समृद्ध किसान, यही आज का है अभियान।
2: पोषक तत्व बचाएं, मिट्टी को स्वस्थ बनाएं।
7: मेरे देश की धरती तो ना उगले उगले हीरे मोती।
6: यूरिया और डीएपी का संतुलित उपयोग,
2: खुशहाली का नया प्रयोग।
8: किसान भाई अंधाधुंध उर्वरकों के प्रयोग से बचें और खेती की लागत कम करके प्राकृतिक संसाधनों को बचाएं। भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान मोतीपुरम मेरठ और आकाशवाणी नजीबाबाद द्वारा जनहित में जारी।

0: ना इसी प्रकार का बना रहेगा।
1: अच्छा,
0: कहीं कहीं को भैया हल्की हल्की बारिश हो जाएगी, कहीं को भैया तेज हवा आ जाएंगी, कहीं को फिर बारिश हो जाएगी, इसी प्रकार का मौसम बना रहेगा। तो ऐसे मौसम में धान की रोपाई बड़ी अच्छी होती है।
1: भैया देखो, धान की रोपाई किसान भाई समय से पूरी करते रहेंगे ये हमें उम्मीद है, लेकिन साथ ही साथ भैया अपने स्वास्थ्य का और अपने पशुओं का भी वो ध्यान रखेंगे।
0: बिल्कुल, अपने पशुओं के विशेष रूप से पशुशाला का प्रबंधन करेंगे, और भाई पशुशाला में विशेष रूप से उनकी जो चर है
1: जी
0: जिसमें वो चारा खाते हैं,
1: हाँ हाँ
0: तो
1: हाँ
0: उनके कोने में भैया कई बार जो होता है वो पानी भरा रहे या कुछ चारा रह जाता है, तो आजकल बहुत तेजी से उसमें कीड़े पैदा हो जाते हैं।
1: भैया, इसी से तो संक्रमित बीमारियां फैलती हैं।
0: तो भैया ये ध्यान रखें कि उसमें कीड़ा ना कोई होने पाए, यानी कि साफ बना रहे।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: मैं तो ये कह रहा कि जब धोना ही है तो बढ़िया करके, जैसे बर्तन हम धोते हैं ऐसे धो।
1: साफ सफाई का ध्यान रखें, पशुओं को समय पर नहलाते रहें, पशुओं को भैया समय पर ताजा पानी पिलाते रहें, और भैया उनका विशेष ध्यान रखें।
0: बिल्कुल, तो इस तरह से अगर भैया ध्यान रखेंगे तो भैया आप भी खुश और आपके पशु भी खुश,
1: बिल्कुल
0: और भाई हम तो खुश जब होंगे कि आप जो है अपनी क्रिया प्रतिक्रिया भरा पत्र हमें लिखेंगे। पत्र लिखने के लिए भैया पता बता दो।
1: बिल्कुल, देखो भाई किसान भाइयों को हम समय समय पर क्या बल्कि रोजाना ही बताते रहते हैं कि किसान भाई हमारे पास में चिट्ठी जरूर लिखें, और भाई चिट्ठी लिखने के लिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि जगत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद पिन 2467-63।
0: बिल्कुल, तो भैया इस पते पे हमारे हमें आपकी चिट्ठी का इंतजार रहेगा। इसके अलावा भैया आप हमें व्हाट्सएप नंबर से भी भैया फॉलो कर सकते हैं, और भैया यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी हमें जो है आप फॉलो कर सकते हैं
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: आकाशवाणी नजीबाबाद के नाम से। तो कुल मिला के भैया अपना प्यार अपना स्नेह बनाए रखें। देखिए आपकी कोई खेती किसानी या पशुपालन की समस्या हो तो आप माह के पहले शुक्रवार को हेलो किसान में फोन कर सकते हैं,
1: जी
0: माह के तीसरे शुक्रवार को हेलो गन्ना किसान होता है उसमें भैया आप फोन कर सकते हैं, और माह के आखिरी मंगलवार को हेलो बासमती होता है उसमें बासमती धान से या सामान्य धान से संबंधित कोई भी समस्या हो उसके लिए आप फोन कर सकते हैं।
1: और भैया नंबर हमारा वही है 94-570-78-288, और इसी नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज भी भेज सकते हैं।
0: बिल्कुल, देखो भैया बात करते करते कब समय बीत गया हमें पता ही नहीं चला, तो अब इसी के साथ आज का कृषि जगत कार्यक्रम संपन्न करने की अपने भैया आलोक कुमार गंगाराम
1: और भैया प्रमोद सिंह को दीजिए अनुमति, किसान भाइयों
0: राम
1: राम
0: राम।
1: राम।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विविधा। इस कार्यक्रम में श्रोताओं लीजिए सुनी महेंद्र सिंह त्यागी से वार्ता। विषय है जनपद बिजनौर के प्रमुख साहित्यकार।
1: ऐतिहासिक दृष्टि से बिजनौर जनपद को राजा दुष्यंत की प्रेरणा स्थली और उनकी महान संतान परम प्रतापी राजा भरत की क्रीड़ा स्थली एवं महात्मा विदुर की तपोस्थली होने का गौरव प्राप्त है। परम प्रतापी राजा भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है। गंगा एवं मालिनी नदी के संगम पर स्थित कण्व आश्रम के अवशेष आज भी इसके प्रत्यक्ष साक्षी हैं। आधिकारिक स्तर से ज्ञात होता है कि महाभारत काल में भारत के उत्तरी पश्चिमी प्रदेश के एक छोटे राज्य के वीर शासक बेन ने गंगा नदी के बाएं तट पर बेन नगर स्थापित किया था, जो कालांतर में बिजनौर नाम से विख्यात हुआ। सन 1801 ईस्वी में बिजनौर जनपद मुरादाबाद जनपद में शामिल था तथा इसे उत्तरी डिवीजन के नाम से जाना जाता था। सन 1817 में बिजनौर जनपद का मुख्यालय नगीना शहर बना। सन 1824 ईस्वी में नगीना मुख्यालय को बिजनौर स्थानांतरित कर दिया गया। बिजनौर गजेटियर के अनुसार जनपद बिजनौर के प्रथम कलेक्टर मिस्टर एम जे हेल हेड थे। सन 1837 में यह जिला बिजनौर के नाम से जाना जाने लगा। इस जिले की मिट्टी में महान अकबर के नवरत्नों में अबुल फजल फैजी, महान समालोचक पंडित पद्म सिंह शर्मा, संपादक आचार्य पंडित रुद्रदत्त शर्मा, महान वैज्ञानिक डॉक्टर आत्माराम, हिंदी गजल के मसीहा दुष्यंत कुमार त्यागी आदि अनेक विभूतियों ने इस जिले के इतिहास को गौरवान्वित किया है। मुस्लिम

0: मुनि की करण के अग्रदूत सर सैयद अहमद खान की कर्मस्थली होने का गौरव भी इसी जिले को प्राप्त है। सन 1929 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने धामपुर नगर में तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ग्राम फीना में पधारकर अंग्रेजी शासन को उखाड़ फेंकने का संदेश दिया था। हाफिज मोहम्मद इब्राहिम, पंडित महावीर प्रसाद त्यागी एवं डॉक्टर सुभाष कश्यप ने अपने ज्ञान आलोक से भारतवर्ष को ज्योतिर्मय किया है। महाभारत के सुप्रसिद्ध नीतिज्ञ महात्मा विदुर की पावन कुटी बिजनौर के निकट पतित पावनी गंगा तट पर स्थित है। भगवान कृष्ण के इसी कुटी में आगमन का प्रसंग महाभारत में मिलता है। संगमरमर पत्थर पर महात्मा विदुर के चरण चिन्ह आज भी यहाँ मौजूद हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सन 1960 में यहाँ महात्मा विदुर की प्रतिमा का अनावरण किया था। यह कुटी महात्मा विदुर की तपोस्थली के रूप में विश्व प्रसिद्ध है। गुप्त काल से जनपद बिजनौर का गहरा संबंध रहा है। ईसा से लगभग 300-400 वर्ष पूर्व गुप्त साम्राज्य के संस्कृत भाषा के कवि एवं नाटककार महाकवि कालिदास ने गंगा और मालिनी नदियों के संगम पर स्थित कण्व ऋषि के आश्रम में निवास करने वाली महर्षि कण्व की धर्मपुत्री शकुंतला और हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत की प्रणय लीला को अपने विश्व प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम में जिस प्रकार वर्णित किया है, उससे ज्ञात होता है कि महाकवि कालिदास ने कण्व ऋषि के आश्रम में कुछ समय अवश्य ही व्यतीत किया होगा। सम्राट हर्षवर्धन के बाद राजपूत राजाओं ने इस क्षेत्र पर अपना अधिकार जमा लिया। पृथ्वीराज और जयचंद की पराजय के बाद भारत में तुर्क साम्राज्य की स्थापना हुई। उस समय बिजनौर क्षेत्र दिल्ली सल्तनत का हिस्सा रहा था, तब इसका नाम कटेहर क्षेत्र था। कहा जाता है कि सुल्तान इल्तुतमिश स्वयं साम्राज्य विरोधियों को दंडित करने 1927 में मंडावर आया था। मंडावर नगर में उसके द्वारा बनवाई गई मस्जिद आज भी विद्यमान है, जिसे किले की मस्जिद के रूप में जाना जाता है। औरंगजेब के समय में इस जनपद पर अफगानों का अधिकार था। ये अफगान शासक अफगानिस्तान के रोहो कस्बे से आए थे। ये अफगान रोहेले कहलाए और उनके द्वारा शासित क्षेत्र रोहेलखंड कहलाया। नजीब उद्दौला प्रसिद्ध रोहेला शासक था, जिसने पत्थरगढ़ के किले को अपनी राजधानी बनाया था। बाद में इसके आसपास के क्षेत्र नजीबाबाद कहलाए। इस क्षेत्र में कई राजपूत रियासतें भी रहीं, जिसमें हल्दौर, राजा का ताजपुर, शेरकोट तथा साहनपुर की जाट रियासत शामिल थीं। बाद में यह क्षेत्र अवध के नवाब के पास आया, जिसे सन 1801 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने ले लिया। ब्रिटिश शासनकाल में पत्थरगढ़ के किले को सुल्ताना डाकू ने अपनी शरण स्थली बनाया। वर्तमान में यह किला सुल्ताना डाकू का किला के नाम से प्रसिद्ध है। मंडावर नगर में बौद्ध काल का सबसे अधिक प्रभाव देखने को मिलता है। यह नगर विशाल हवेलियों एवं मठों हेतु प्रसिद्ध है। यहाँ पर एक प्रसिद्ध महल है, जो अरबी व फारसी के प्रसिद्ध विद्वान मुंशी सहामत अली का है। चूंकि मुंशी जी इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया को अरबी व फारसी भाषाएं पढ़ाते थे, अतः महारानी ने गुरु दक्षिणा में मुंशी जी के लिए यह विशाल महल बनवाया था। प्रसिद्ध इतिहासकार कनिंघम के अनुसार चीनी यात्री ह्वेन सांग 6 माह तक मंडावर में रहा था। उसने इस स्थान को मोतीपुर नाम दिया था। सन 1130 ईस्वी में अरब यात्री इब्न बतूता मंडावर आया था। उसने अपने सफरनामे में दिल्ली से मंडावर होते हुए अमरोहा जाना लिखा है। जनपद में बौद्ध काल का एक और प्रमाण मयूर ध्वज का दुर्ग है। यह दुर्ग भगवान श्री कृष्ण के समकालीन सम्राट मयूर ध्वज ने नजीबाबाद तहसील स्थित जाफरा गांव के निकट बनवाया था। गढ़वाल विश्वविद्यालय ने इस दुर्ग की खुदाई कराई थी, जिसमें यहाँ के भवनों में प्रयुक्त ईंटें 5वीं सदी से भी पूर्व की हैं। नगीना तहसील के बढ़ापुर क्षेत्र में स्थित जैन तीर्थांकर पारसनाथ के किले से ज्ञात होता है कि इस क्षेत्र में जैन धर्म का प्रभाव भी रहा है। बढ़ापुर से लगभग 4 किलोमीटर पूर्व में लगभग 25 एकड़ क्षेत्र में पारसनाथ का किला के खंडर विद्यमान है। पारसनाथ या पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थांकर थे। उनका काल 872 से 272 ईसा पूर्व रहा है। चांदपुर नगर के निकट ग्राम राजपुर में पुरातत्व विभाग द्वारा 1995-96 में खुदाई कराई गई, जिसमें गंगेरियन टाइप के 9 चपटे तांबे के कुल्हाड़े और नुकीले शस्त्र मिले हैं, जिनसे स्पष्ट होता है कि यहां ताम्र युग की बस्तियां थीं। महाभारत काल में ग्राम सैनद्वार का नाम सैन्य द्वार था। यहां ऋषि भारद्वाज के पुत्र द्रोण का आश्रम था, जिसके अवशेष आज भी यहां मौजूद हैं। जनपद बिजनौर में मुगल कालीन रियासतों का प्रमाण इतिहास में दर्ज है। गंगा के किनारे पर स्थित 101 गांवों से युक्त रियासत जहानाबाद मुगल कालीन रियासत थी। मुगल सम्राट शाहजहां ने साधु स्वभाव के धनी सेवक जहार दीवान को यह रियासत इसलिए उपहार स्वरूप दी थी क्योंकि उन्होंने सर्पदंश से उनकी बेगम को बचाया था। कालांतर में यह रियासत नवाब सुजात अली खान के अधिकार में आई। सुजात अली खान ने गंगा के तट पर एक विशेष मस्जिद का निर्माण कराया था, जिसके बुर्ज से कानपुर, इलाहाबाद व बनारस नगरों में गंगा के जल स्तर की जानकारी मिलती थी। यह मस्जिद आज भी गंगा के किनारे स्थित है। मुगल काल के शुरुआती दौर में सिख धर्म के संस्थापक श्री गुरु नानक देव जी अपनी प्रथम उपदेश यात्रा के दौरान सन 1526 ईस्वी में जनपद बिजनौर के हल्दौर कस्बे में आए थे। उन्होंने राजा कमल नयन के बाग में विश्राम कर राजा व संगत को उपदेश देकर निहाल किया था। अब उक्त स्थान पर एक सुंदर ऐतिहासिक गुरुद्वारे का भव्य निर्माण किया गया है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जनपदवासियों ने अमूल्य योगदान दिया है। आजादी की लड़ाई के समय सर सैयद अहमद खान बिजनौर में ही कार्यरत थे। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक तारीख़े सरकशी ए बिजनौर उस समय के इतिहास पर लिखा हुआ एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। 16 अगस्त 1942 को नूरपुर थाने में क्रांतिकारी परवीन सिंह के हाथ से तिरंगा निकालकर उसे फहराते समय ग्राम असगरीपुर के रिक्खी सिंह पुलिस की गोली से गंभीर रूप से घायल हो गए थे। गिरफ्तारी के 10 दिन बाद ही जेल में उनकी मृत्यु हो गई थी। इसी दिन नूरपुर थाने पर ब्रिटिश शासन का विरोध कर रहे क्रांतिकारियों में से वीर परवीन सिंह एवं ऋषि नामक युवकों को गोली से उड़ा दिया गया था। सारे जनपद में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध क्रांतिकारियों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया एवं जगह जगह तिरंगा फहराने की कोशिश में अनेक युवकों को जेल में डाला गया। ग्राम फीना एवं ग्राम पैजनिया क्रांतिकारियों का गढ़ कहलाते थे। ग्राम पैजनिया में क्रांतिकारी शिवचरण सिंह त्यागी के घर पर राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहड़ी, रोशन सिंह एवं चंद्रशेखर आजाद आते थे। इन महान क्रांतिकारियों ने पैजनिया गांव में 6 माह से भी अधिक का अज्ञातवास बिताया था। ग्राम पैजनिया को स्वतंत्रता आंदोलनकारियों का तीर्थ भी कहा जाता है। क्रांतिकारियों के संबंध में कवि चरण सिंह सुमन ने लिखा है, कुछ ख्वाबों में खेलते हैं, कुछ अरमानों में खेलते हैं, जिन्हें प्यार है वतन से वे तूफानों में खेलते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विविधा। इस कार्यक्रम में आपने सुना महेंद्र सिंह से वार्ता, विषय था जनपद बिजनौर के प्रमुख साहित्यकार। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:55 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम छाया गीत। स्वागत है आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में। कार्यक्रम का पहला गीत लीजिए सुनिए फिल्म गुमराह से।

महेंद्र कपूर की आवाज में भी आपने ये गीत सुना। फिल्म गुमराह से इस गीत को संगीत दिया था रवि ने और गीत लिखा था साहिर लुधियानवी ने। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में। फिल्म का नाम है एक कली मुस्कुराई। संगीत मदन मोहन का है और गीत लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने।

एक कली मुस्कुराई। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में, संगीत मदन मोहन का था और गीत लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने। कार्यक्रम का अंतिम गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म फकीरा से, स्वर लता मंगेशकर का है, गीत और संगीत है रविंद्र जैन का।

लता मंगेशकर के गाए फिल्म फकीरा के इसी गीत के साथ कार्यक्रम छाया गीत अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, प्रस्तुत है देशगान।

अभी आप देशगान सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष और कल के कार्यक्रमों के विषय में जानकारी। पहले सुनिए आज के शेष कार्यक्रम। प्रादेशिक लोक एवं सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 10 बजे। ये कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। नाटक सुनिएगा रात्रि 9:30 पर। नाटक का शीर्षक होगा उदास चबूतरा। गीत संध्या कार्यक्रम 8 बजे और एक ही फिल्म से कार्यक्रम 8:30 पर। सुगम संगीत कार्यक्रम में 7:32 पर सुनेगा राशिद बदर साबरी और साथियों की गाई कव्वाली। ये थे हमारे आज के शेष कार्यक्रम। लीजिए अब सुनिए कल के कार्यक्रमों के विषय में जानकारी। सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो नजीबाबाद का समय रहेगा कल रात्रि 9:30 पर। कार्यक्रम रात के हम सफर आप सुनेंगे कल रात्रि 10:30 पर। गीत संध्या कार्यक्रम कल रात्रि 8 बजे और एक ही फिल्म से कार्यक्रम 8:30 पर। सुगम संगीत कार्यक्रम में कल शाम 7:32 पर सुनेगा विविध कलाकारों की गाई नात। छाया गीत सुनेगा कल शाम 6:55 पर। माफ कीजिएगा, छाया गीत आप सुनेंगे कल शाम 7 बजे। कानूनी सलाह कार्यक्रम आप सुनेंगे कल शाम 6:45 पर। कृषि जगत कार्यक्रम में कल शाम 6:05 पर आप सुनेंगे किसान भाइयों की खेती एवं पशुपालन संबंधी समस्याओं के उत्तर पर आधारित सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान। युवाणी कार्यक्रम में कल शाम 5:15 पर क्रम होगा बूझो तो जाने कुछ खास है आज ये शाम गजलों के नाम आपका सितारा कहानी के उस पार और साथ ही आप आनंद लेंगे फिल्म संगीत का। मेरा सपना उन्नत भारत क्रम में कल शाम 5 बजे किसानों की आय दोगुनी करने हेतु सरकारी योजनाओं के अंतर्गत जानकारी दी जाएगी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और इनाम योजना पर। फिल्मी कव्वाले आप सुनेंगे कल दोपहर 2:30 पर। लोकधारा कार्यक्रम में कल दोपहर 1:45 पर सुनेगा केशव अनुरागी की गाय गढ़वाली लोकगीत। घर संसार कार्यक्रम में कल दोपहर 1:15 पर सुनिएगा श्रीमती मनीषा से वार्ता विषय होगा बदलता मौसम और खान पान। मिड डे मेलडी कार्यक्रम आप सुनेंगे कल दोपहर 12:30 पर। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में कल दोपहर 12:15 पर सुनिएगा लियाकत अली से सारंगी वादन। ये थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:18 होने के हैं। कुछ ही पलों में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।

0: प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RBLI इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RBLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना। स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं।
3: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: मुख्य समाचार। अयोध्या के श्री राम मंदिर चढ़ावा मामले में जांच के लिए एसआईटी आज दोबारा पहुंची अयोध्या। बार एसोसिएशन ने ट्रस्ट के पदाधिकारियों के खिलाफ दी तहरीर। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज में वीबीजी रामजी अधिनियम के शुभारंभ कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा, ग्रामीण भारत में श्रम को सम्मान और गांवों के विकास को रफ्तार देने का माध्यम बनेगी योजना। शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टीईटी का पहला दिन आज शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न। 60 जिलों में 955 परीक्षा केंद्रों पर अगले दो दिनों तक होगी परीक्षा। और प्रदेश में मॉनसून ने लोगों को भीषण गर्मी से दी राहत। मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों में प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में बारिश का जताया अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा, और अब समाचार विस्तार से। अयोध्या के श्रीराम मंदिर चढ़ावा मामले की जांच के सिलसिले में आज एक बार फिर एसआईटी की टीम अयोध्या पहुंची। जांच को आगे बढ़ाते हुए टीम विभिन्न बिंदुओं पर पड़ताल कर रही है। मामले की जांच अवधि 15 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने राम मंदिर चढ़ावा मामले में आरोपी लवकुश मिश्रा से जुड़ी एक निर्माणाधीन संपत्ति पर नोटिस जारी किया है। एडीए के सचिव ने बताया कि भवन निर्माण नियमों के संदिग्ध उल्लंघन के कारण नोटिस जारी किया गया है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: एडीए की ओर से नोटिस जिस निर्माणाधीन संपत्ति को दिया गया है, वह लवकुश मिश्रा की पत्नी सुप्रिया मिश्रा के नाम दर्ज है। नोटिस में एक सप्ताह के भीतर जवाब देने और यह बताने को कहा गया है कि भवन का नक्शा प्राधिकरण से स्वीकृत है या नहीं। उधर अयोध्या अधिवक्ता संघ ने चौकी सिविल लाइन में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी अनिल मिश्रा, गोपाल राव समेत अन्य के खिलाफ तहरीर दी है। अधिवक्ता संघ का कहना है कि दस्तावेजों की जांच के आधार पर नामों में बदलाव भी किया जा सकता है।
2: अभी एफआईआर लिखने की बात चल रही है। आंदोलन के लिए मीटिंग होगी, आंदोलन स्थगित करने लायक होगा तो स्थगित होगा, अगर कॉपी नहीं मिलेगी तो आगे बढ़ेगा।
1: तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या।
0: केंद्रीय ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 देश में रोजगार सुनिश्चित करने, ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने और गांवों के विकास में तेजी लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री चौहान ने आज तिरुपति में विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 का शुभारंभ किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी गरीब मजदूर बेरोजगार न रहे और सभी को रोजगार मिले।
3: मनरेगा में केवल 100 दिन रोजगार मिलता था, विकसित भारत जी रामजी योजना में पूरे 125 दिन मजदूर को रोजगार मिलेगा। और रोजगार देने की बात प्रधानमंत्री ऐसे नहीं कह रहे, पहले साल ही विकसित भारत जी रामजी योजना में केंद्र ने जो अपना पैसा दिया है वो है 95,600 करोड़ रुपया, और राज्यों का 40% शेयर मिलेगा, तो एक साल में ही खर्च होंगे 1,51,282 करोड़ रुपया।
0: इसी क्रम में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण योजना के शुभारंभ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वीबीजी रामजी योजना ग्रामीण भारत में श्रम को सम्मान, गरीब को संबल और गांवों के सतत विकास को नई रफ्तार देने का सशक्त माध्यम बनेगी और पारदर्शिता को सुनिश्चित करेगी।
4: पहले वर्ष में 100 दिन रोजगार की गारंटी होती, लेकिन विकसित भारत जी रामजी में 125 दिन रोजगार की गारंटी देने का काम किया। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हम विकसित भारत बनाएंगे, और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम आपको आश्वस्त करते हैं कि हम विकसित उत्तर प्रदेश भी बनाएंगे। लेकिन विकसित उत्तर प्रदेश के साथ साथ हम आप सबको आश्वस्त करना चाहते हैं कि ये जो विकसित भारत जी रामजी के रूप में आपके गांव के विकास के लिए भारत सरकार बहुत आगामी योजना, अब आपका विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित ग्राम सभा बनेगा।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित होने वाले 3 दिवसीय उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2026 का शुभारंभ करेंगे। महोत्सव में 7 श्रेणियों और 56 वर्गों में लगभग 800 से अधिक आम की प्रजातियों का प्रदर्शन किया जाएगा। इसकी जानकारी देते हुए प्रदेश के उद्यान कृषि विपणन राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने बताया कि 4 जुलाई को जनभवन लखनऊ में आम क्रेता विक्रेता सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। उद्यान मंत्री ने बताया कि महोत्सव में मेजबान उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के उद्यान विभाग के प्रतिनिधि, प्रगतिशील बागवान और निर्यातक हिस्सा लेंगे।
5: यह महोत्सव राज्य भर के किसानों को, देश के विभिन्न राज्यों के किसानों को और दुनिया के बहुत सारे लोगों को आमंत्रित करके इस लखनऊ की पावन भूमि पर दुनिया में आम के ग्रोवर्स क्या क्या काम कर रहे हैं हमारे राज्य के किसानों को पता चलेगा। भारत के भीतर दूसरे राज्य के किसान आम को बेहतर तरीके से क्या क्या प्रसंस्करण कर रहे हैं ये पता चलेगा।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से आयोजित हो रही शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET 2026 का आज पहला दिन शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। परीक्षा के दूसरे दिन कल प्रथम पाली में उच्च प्राथमिक स्तर के अभ्यर्थियों की परीक्षा होगी, जबकि दूसरी पाली और 4 जुलाई की प्रथम पाली में प्राथमिक स्तर के अभ्यर्थियों की परीक्षा होगी। आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने बताया कि लखनऊ, कानपुर, जौनपुर सहित प्रदेश के 60 जिलों में 955 परीक्षा केंद्र पर परीक्षाएं हो रही हैं। अध्यक्ष ने कहा कि शासन और आयोग इस परीक्षा को पूरी तरह से पारदर्शी, निष्पक्ष तथा शुचितापूर्ण ढंग से कराने के लिए संकल्पित हैं। सभी परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है और CCTV कैमरे लगाए गए हैं। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर की शुरुआत करने के मामले में मेटा को नोटिस जारी किया है। सरकार ने विस्तृत जानकारी 3 दिन के भीतर उपलब्ध कराने को कहा है।
6: सूत्रों के अनुसार मंत्रालय ने मेटा को यह भी निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। मंत्रालय ने व्हाट्सएप द्वारा की गई एक सार्वजनिक घोषणा पर संज्ञान लिया है। इस घोषणा में व्हाट्सएप ने भारत सहित वैश्विक स्तर पर चरणबद्ध तरीके से अपने यूजर नेम फीचर को लागू करने की बात कही थी। व्हाट्सएप ने बताया कि एक बार ये फीचर सक्रिय हो जाने पर पहली बार संपर्क करने वाले व्यक्ति को प्राप्तकर्ता का फोन नंबर दिखाई नहीं देगा और एक वैकल्पिक यूजर नेम को अतिरिक्त नियंत्रण के रूप में लगाया जा सकता है। ऐसी आशंकाएं हैं कि इस फीचर से ऑनलाइन धोखाधड़ी, डिजिटल अरेस्ट और साइबर धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ सकती हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: प्रदेश सरकार ने लगातार 7वें वर्ष बिजली दरों में कोई वृद्धि नहीं करने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जारी टैरिफ आदेश पर प्रदेश के नगर विकास और ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने कहा कि ये निर्णय प्रदेश के करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। प्रदेश में मॉनसून के आगमन से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है और राज्य के लगभग सभी हिस्सों में बारिश हुई है। मौसम विभाग ने आगामी 3 दिनों में प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी संभाग में बारिश का अनुमान जताया है। एक रिपोर्ट।
7: दक्षिण पश्चिम मानसून मंगलवार से ही आधिकारिक तौर पर प्रदेश में दाखिल हो चुका है और ट्रफ लाइन आजमगढ़, बरेली और अयोध्या जिलों से होकर गुजर रही है। राज्य के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटों में मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई, जिससे लोगों को लंबे वक्त से पड़ रही भीषण गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाया है।
8: दक्षिण पश्चिम मानसून ने आज आगे बढ़ने के साथ ही संपूर्ण उत्तर प्रदेश को आच्छादित कर लिया है। अगले 2-3 दिनों के दौरान प्रदेश के दक्षिणी भाग में हल्की से मध्यम वर्षा के साथ साथ कहीं कहीं भारी वर्षा होने की संभावना है।
7: ये बारिश किसानों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है, जो धान की बुआई में देरी के कारण बेसब्री से मानसून का इंतजार कर रहे थे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अयोध्या के श्रीराम मंदिर चढ़ावा मामले में जांच के लिए SIT आज दोबारा पहुंची अयोध्या। बार एसोसिएशन ने ट्रस्ट के पदाधिकारियों के खिलाफ दी तहरीर। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज में VBG रामजी अधिनियम के शुभारंभ कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा, ग्रामीण भारत में श्रम को सम्मान और गाँव के विकास को रफ्तार देने का माध्यम बनेगी योजना। शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET का पहला दिन आज शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न। 60 जिलों में 955 परीक्षा केंद्रों पर अगले 2 दिनों तक होगी परीक्षा। और प्रदेश में मॉनसून ने लोगों को भीषण गर्मी से दी राहत। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में बारिश का जताया अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
9: डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूँ कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है।
10: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:31 होने को है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में श्रोताओं लीजिए सुनिए राशिद बदर साबरी और साथियों की गाई कव्वाली।

0: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
1: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
0: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
1: मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
0: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
2: नमस्कार, आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मोहम्मद आरिफ, पीडियाट्रिशियन बिजनौर से, जो मॉनसून के दौरान बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव साझा करेंगे। डॉक्टर, यदि बच्चे की साधारण सर्दी का समय पर ध्यान न रखा जाए, क्या जटिलताएं हो सकती हैं?
3: देखा गया है ज्यादातर केसेस में ये सर्दी खांसी अपने आप 3 से 5 दिन में ठीक हो जाती है, लेकिन ऐसे बच्चे जो मालनरिश हैं, जिनमें इम्यूनिटी की कमी है, उसमें ये साधारण सर्दी खांसी भी कॉम्प्लिकेशन पैदा कर सकती है। जैसे कुछ बच्चों में ये मिडिल ईयर इन्फेक्शन या कान का दर्द पैदा कर सकती है, कुछ बड़े बच्चों में ये सर्दी खांसी का इन्फेक्शन साइनस तक पहुंचकर साइनोसाइटिस जैसी परेशान करने वाली स्थिति उत्पन्न कर सकता है। आजकल देखा गया है बहुत सारे बच्चे अस्थमा से पीड़ित हैं और ये साधारण सर्दी खांसी उनमें अस्थमा के सिम्टम्स को बढ़ा सकती है। उन्हें सांस लेने में दिक्कत, सांस लेने में आवाज होना आदि इस तरीके की परेशानियां हो सकती हैं। इस सर्दी खांसी में आने वाले बार बार बुखार से बच्चे के डिहाइड्रेट होने का खतरा रह जाता है, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और इससे बच्चा फर्दर मालनरिश या कुपोषण का शिकार हो जाता है।
2: यह संदेश एलेंबिक फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी किया गया है।

आकाशवाणी नजीब आवाज से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत, और इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं राशिद बदर साबरी और साथियों की गायी कव्वाली। और लीजिए सुनिए कार्यक्रम की ये अगली कव्वाली।

सुगम संगीत में अभी आप सुन रहे थे राशिद बदर साबरी और साथियों की गायी कव्वाली। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, प्रस्तुत है कार्यक्रम गीत संध्या। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को ज्योति गौड़ का प्यार भरा नमस्कार और स्वागत आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में। कार्यक्रम का पहला गीत लीजिए, सुनिए किशोर कुमार की आवाज में फिल्म धर्मात्मा से।

0: ईमेल आईडी है
1: akashvaninajibabad@gmail.com।
0: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
1: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: कार्यक्रम का अगला गीत श्रोताओं लीजिए सुनिए अलका याग्निक की आवाज में। फिल्म का नाम है दिल क्या करे। इस गीत को संगीत जतिन ललित ने दिया है और गीत लिखा है आनंद बख्शी ने।

कुमार शानू और अलका याग्निक को भी आपने सुना फिल्म दरार के इस गीत में। इस गीत को संगीत दिया था अनु मलिक ने और गीत लिखा था रानी मलिक ने। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म दीदार से। स्वर है उदित नारायण का। गीत को संगीत आनंद मिलिंद ने दिया है और गीत लिखा है समीर ने।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर के गाए फिल्म हीरा पन्ना के इसी गीत के साथ कार्यक्रम गीत संध्या अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही फिल्म से। एक ही फिल्म से कार्यक्रम में श्रोताओं, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिल्म दिल का क्या कसूर से कुछ गीत। इस फिल्म का ये पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं कुमार शानू और आशा भोसले की आवाजों में। संगीत नदीम श्रवण का है और गीत लिखा है मदन पाल ने।

कुमार शानू का गाया ये गीत अभी आपने सुना। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और इस कार्यक्रम में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिल्म दिल का क्या कसूर से कुछ गीत। कार्यक्रम का अंतिम गीत आपको सुनवा रहे हैं अलका याग्निक और कुमार शानू की युगल आवाजों में। गीत अनवर सागर का लिखा हुआ है और संगीत है नदीम श्रवण का।

0: अलका याग्निक और कुमार शानू के गाए फिल्म दिल का क्या कसूर के इसी गीत के साथ कार्यक्रम एक ही फिल्म से अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 हुए हैं। अब आप समाचार सुनेंगे।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के विकास की गति और जापान की विशेषज्ञता वैश्विक आर्थिक वृद्धि के लिए प्रेरक शक्ति का काम करेगी। श्री मोदी ने नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्ता की। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की। पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार अगले एक वर्ष में तेल शोधन क्षमता बढ़ाकर सालाना 30 करोड़ मीट्रिक टन करेगी। केंद्र ने देश भर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल शुरू किया। मौसम विभाग ने पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। और फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 मुकाबले में स्पेन और ऑस्ट्रिया होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
2: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। ये समझौते दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
2: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है। लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट अपनाते हुए अपने इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के समय में सामूहिक विश्वास सबसे बड़ी संपत्ति है और भारत जापान की द्विपक्षीय साझेदारी समय की कसौटी पर खरी उतरी है। श्री मोदी ने कहा कि जापान की सटीक प्रौद्योगिकी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमताओं का संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति प्रदान करेगा।
2: प्रधानमंत्री ताकाइची और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट किए हैं।
1: भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों ने एशिया में जिम्मेदार शक्तियों और प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा सुगमता को संयुक्त रूप से मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की साझा इच्छा व्यक्त की। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलों पर सहयोग करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
3: नेताओं ने व्यापार और निवेश, आर्थिक सुरक्षा, रक्षा, सप्लाई चेन की मजबूती, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और लोगों के बीच आपसी आदान प्रदान जैसे कई क्षेत्रों में हमारे द्विपक्षीय संबंधों की मजबूत नींव पर चर्चा की। साथ ही दोनों नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र और उससे अलग शांति, समृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित करने में विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की भूमिका को स्वीकार किया।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि निवेश भारत और जापान की रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख संचालक बनकर उभरा है। वे आज एक निजी टेलीविजन चैनल द्वारा आयोजित एशियाई सदी को आकार देने संबंधी विषय पर भारत जापान रणनीतिक संवाद को संबोधित कर रहे थे।
4: ट्रेड ऑल्सो इज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ दिस पार्टनरशिप।
5: भारत के कुशल कार्यबल के लिए अवसर खुल रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार का ध्यान सभी के लिए समान विकास सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। निवेश भारत और जापान की रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख संचालक बनकर उभरा है और इससे द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती मिलने की उम्मीद है।
4: ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट डायमेंशन।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत अपनी रिफाइनरी क्षमता का तेजी से विस्तार कर रहा है। नई दिल्ली में श्री पुरी ने बताया कि अगले 6 से 12 महीनों में देश की तेल शोधन क्षमता को 30 करोड़ मीट्रिक टन प्रतिवर्ष तक बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष की स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने लंबे समय तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों को नियंत्रित किया। श्री पुरी ने कहा कि पिछले 4 वर्षों में पेट्रोल की कीमत में केवल 5.58% और डीजल की कीमतों में 6.23% की ही वृद्धि हुई है। नागर विमानन मंत्रालय ने देशभर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के सहयोग से इस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्वास्थ्य, आव्रजन और निगरानी एजेंसियों के बीच समन्वय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना है, ताकि जोखिम वाले यात्रियों का शीघ्र पता लगाया जा सके। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। भारतीय रेलवे ने इस वर्ष जून में पिछले वर्ष इसी महीने की तुलना में माल ढुलाई में 4% की वृद्धि दर्ज की है। रेल मंत्रालय ने बताया कि रेलवे ने पिछले महीने 142 करोड़ टन से अधिक माल की ढुलाई की। इस वर्ष जून में यात्री आवागमन में भी लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। पंचायती राज मंत्रालय कल नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया जाएगा। कोयला मंत्रालय ने कोयला खंड आवंटियों को अधिक वित्तीय सुविधा प्रदान करने और कोयला क्षेत्र में व्यापार को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण सुधार प्रस्तुत किया है। कोयला खंड आवंटन संशोधन नियम 2026 के अंतर्गत मंत्रालय ने कोयला खंड और खनिज विकास तथा विनियमन अधिनियम 1957 के अंतर्गत आवंटित कोयला खंडों के लिए निष्पादन बैंक गारंटी के स्थान पर बीमा गारंटी बॉन्ड के उपयोग को सक्षम बनाया है। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों के राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता ग्रैंड आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि समारोह में उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यतागत संबंधों के महत्व को रेखांकित करती है। केरल में शिक्षण संस्थानों को निशाना बनाने वाले नशीले पदार्थों के गिरोहों पर राज्य पुलिस की कार्रवाई में 30 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की अवैध दवाएं जब्त की गई हैं। केरलम पुलिस के अनुसार अधिकारियों ने राज्य में 5,353 मामले दर्ज किए हैं और 5,736 लोगों को गिरफ्तार किया। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 5 से 18 वर्ष के बच्चों की असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किए जाते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा नगर निगम ने स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठा अभियान शुरू किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2026-27 के अंतर्गत खंडवा नगर निगम ने पॉलीथीन लाओ चाय पाओ नाम की एक पहल शुरू की है। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को एक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक बनाना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था आज कड़ी सुरक्षा के बीच अनंतनाग जिले के पहलगाम क्षेत्र में नुनवान और गांदरबल जिले के बालताल स्थित दोहरे शिविरों में पहुंचा। एक रिपोर्ट।
0: यात्रियों का पहला जत्था आज दोपहर कड़ी सुरक्षा के बीच कश्मीर घाटी पहुंचा। पहले जत्थे में 4,822 यात्री शामिल हैं। इसमें से 2,510 यात्री पहलगाम के रास्ते से यात्रा करेंगे, जबकि 2,312 यात्री बालतल से होते हुए बाबा बर्फानी की गुफा का रुख करेंगे। नुनवन और बालतल कैंप पहुंचते ही प्रशासन ने यात्रियों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। यात्रा के मद्देनजर दोनों रास्तों पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। दोनों रास्तों पर पुलिस, अर्धसैनिक बलों और आर्मी जवानों की बड़ी संख्या में तैनाती की गई है। इसके अलावा चिकित्सा सुविधाएं, मौसम की जानकारी के लिए प्रणाली, अहम जगहों पर क्विक रेस्पॉन्स टीमें, बड़े पैमाने पर सीसीटीवी निगरानी और आरएफआईडी आधारित प्रणाली भी लगाई गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं इश्फाक शाह।
3: अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि राज्य में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जमीनी आकलन जारी है और इसके पूरा होने पर केंद्र सरकार को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य आपदा मोचन बल SDRF और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF के मानदंडों के अनुसार राहत सहायता प्रदान की जाएगी। मौसम विभाग ने पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है।
4: विभाग ने अगले 2-3 दिनों में गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भारी से बहुत भारी वर्षा का अनुमान लगाया है। इसी दौरान छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, राजस्थान, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल, माहे, उत्तराखंड और विदर्भ में भी मौसम की ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। मौसम विभाग ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। हालांकि दिल्ली में अगले 24 घंटों के दौरान आसमान में बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की संभावना है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
3: और अब कुछ खेल खबरें। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात इंगलवुड के लॉस एंजल्स स्टेडियम में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। वहीं टोरंटो में पुर्तगाल का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया आमने सामने होंगे। स्क्वाश में विल्वन सेंथिल कुमार और तन्वी खन्ना ने मुंबई में PSA चैलेंजर टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेंथिल कुमार ने मिस्र के अब्दुल्ला हाफिज और को, जबकि तन्वी ने जापान की जोई फू को हराया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के विकास की गति और जापान की विशेषज्ञता वैश्विक आर्थिक वृद्धि के लिए प्रेरक शक्ति का काम करेगी। श्री मोदी ने नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्ता की। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की। पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार अगले एक वर्ष में तेल शोधन क्षमता बढ़ाकर सालाना 30 करोड़ मीट्रिक टन करेगी। केंद्र ने देश भर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल शुरू किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अनुजा कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi says India's speed and Japan's expertise will work as driving force for global growth. Holds talks with Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi. India and Japan announce energy partnership to strengthen strategic oil reserves and maritime transport resilience. Government to expand oil refining capacity to 300 million metric tons per annum in next 1 year amid West Asia crisis. Center launches Air Suvidha 2.0 portal for Ebola health screening at entry points of international airports across the country. IMD issues red alert for heavy rainfall in parts of western and central India for next 2 to 3 days. And in FIFA World Cup, Spain to take on Austria in round of 32 match in Los Angeles tonight. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has said that India-Japan relations are truly very special and there are many shining examples of the success of the economic partnership. Addressing the India-Japan Joint Economic Forum in New Delhi this evening, Mr. Modi said, when Japan's expertise and investment combined with India's speed and scale, the entire world benefits. He said both sides today decided to make the partnership even more dynamic and profound. The Prime Minister said India and Japan today reached agreements on several areas such as economic security, AI, defense and health that will make the partnership futuristic and limitless.
2: जो नए साथी इस फोरम के साथ जुड़ रहे हैं मैं उन्हें भारत जापान सक्सेस स्टोरी का भाग बनने पर हार्दिक बधाई देता हूं फ्रेंड भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया जब जापान की एक्सपर्टीज और इन्वेस्टमेंट भारत के स्पीड और स्केल के साथ जुड़ती है तो पूरी दुनिया को फायदा होता है
5: In her address, Prime Minister of Japan, Sanae Takaichi, said, among the many areas of cooperation, energy security is one of the most important areas. Ms. Takaichi said, through the Power Asia Initiative, it is working to translate this vision into a concrete action. On the occasion, both Prime Ministers jointly inaugurated Maruti Suzuki's fourth vehicle manufacturing facility at Kharkhoda in Haryana. Earlier, India and Japan today exchanged agreements in different fields, including economic and energy security, pharmaceuticals and AI. Prime Minister Narendra Modi held annual summit-level talks with his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi this afternoon. Addressing the joint press meet following the talks, Prime Minister Modi said, trust is the biggest asset in today's time and the India and Japan bilateral partnership has stood the test of time. He highlighted that India and Japan are among the world's biggest economies today and a free and open Indo-Pacific is a shared priority for both the countries.
2: आज भारत और जापान दोनों ही विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से हैं एक फ्री प्रॉस्परस और रूल्स बेस्ड इंडो-पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता है क्षेत्र की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक और मार्केट इकोनॉमीज के रूप में आज हमने कई महत्वपूर्ण पहल की है इनसे हम मिलकर पूरे क्षेत्र में शांति स्थिरता और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेंगे
5: Briefing media in New Delhi this evening, Foreign Secretary Vikram Misri said that both leaders recognize that this is a relationship of trust and trust was visible in abundance during the engagements today. He said today's engagements have yielded good results in areas including energy security and economic security.
6: The leaders reflected on the very strong foundation of our bilateral ties across multiple sectors, including trade and investment, economic security, defense, supply chain resilience, technology, innovation, and people-to-people exchanges. And both leaders acknowledged the role that our special strategic and global partnership plays insofar as peace, prosperity, and stability in the Indo-Pacific and even beyond is concerned.
5: India and Japan today agreed to deepen cooperation on strategic crude oil stockpiling, petroleum reserve mechanisms and maritime energy transport value chains. It comes after annual summit-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi this afternoon. According to a joint statement issued by the Ministry of Petroleum and Natural Gas of India and Japan's Ministry of Economy, Trade and Industry on Energy Resilience, Both sides expressed their shared intention to work as responsible powers and major energy-consuming countries in Asia to strengthen energy resilience amid current geopolitical uncertainties. The two sides agreed to cooperate on the strategic stockpiling ecosystem, including sharing knowledge and experience on crude oil and petroleum product reserves, coordination with producing countries and mechanisms for emergency response and market stabilization. Union Minister for Commerce and Industry Piyush Goyal today said that investments have emerged as a key driver of India's strategic partnership with Japan and are expected to further strengthen bilateral ties. addressing the Indo-Japan Strategic Dialogue on Shaping the Asian Century, organized by a private television channel, Mr. Goyal said, opportunities are opening up for India's skilled workforce, while the government's focus remains on ensuring equitable development for all under the leadership of Prime Minister Narendra Modi.
7: It's a partnership that has many dimensions. Trade also is an important element of this partnership, particularly given our complementary strength. What we get from Japan are largely technology-driven products. What we sell to Japan are also value-added products. We are not selling raw materials or intermediates. We're selling high-quality, precision-engineered material, auto component, electronic component. So, in effect, this particular relationship has both the trade and investment dimension. Therefore, I think it's a good partnership.
5: Petroleum and Natural Gas Minister Hardeep Singh Puri today said that India is rapidly expanding its refinery capacity. Addressing a press conference in New Delhi, Mr. Puri informed that in the next 6 to 12 months, the country's refining capacity will be brought to 300 million metric tons per annum. He said that the first greenfield refinery is being established after a gap of 10 years. Talking about India's handling of the situation during the West Asia crisis, Mr. Puri said that for a long time, the government controlled the prices of petrol and diesel and reduced the duties imposed on them. He said that the government always prioritized and focused on the interest of the citizens.
8: We have different projects, including refineries, which are at an advanced stage, and over the next 6 months to 2 years, they will be implemented. Those taken collectively would bring our refining capacity to about 300 million metric tons per annum. Now, this in and of itself is a noteworthy and remarkable figure. But if you see that in the context of what's happening in other parts of the world, it becomes more noteworthy.
5: This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsoneir.gov.in and download the News on AIR app. The Ministry of Civil Aviation today launched the Air Suvidha 2.0 portal for Ebola health screening at entry points of international airports across the country. Developed in collaboration with the Directorate General of Health Services and Delhi International Airport Limited, the upgraded digital platform aims to strengthen health surveillance of international travelers through real-time coordination among health, immigration,

0: 1 year amid West Asia crisis. Center launches Air Suvidha 2.0 portal for Ebola health screening at entry points of international airports across the country. IMD issues red alert for heavy rainfall in parts of Western and Central India for next 2 to 3 days. And in FIFA World Cup, Spain to take on Austria in round of 32 match in Los Angeles tonight. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ, मैं आसिया मेमुना। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की रफ्तार और जापान की महारत आलमी तरक्की के लिए कलीदी मुहर्रिक साबित होंगी। उन्होंने नई दिल्ली में जापान की अपने हममनसब के साथ बातचीत की। भारत और जापान ने स्ट्रेटेजिक तेल ज़खायर और समुद्री नकलो हमल के निजाम को ज्यादा महफूज और मुस्तहकम बनाने के लिए तवानाई साझेदारी का ऐलान किया है। हुकूमत मगरबी एशिया बहरान के तनाजुर में अगले एक साल के दौरान मुल्क में सालाना तेल साफ करने की सलाहियत को 300 मिलियन मेट्रिक टन तक तौसी देगी। मरकज ने मुल्क के तमाम बैन अवी हवाई अड्डों पर इबोला की जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का आगाज किया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने मुल्क के मगरबी और वसी इलाकों में अगले 2 से 3 दिन के दौरान शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। और फीफा वर्ल्ड कप में आज रात लॉस एंजलिस में राउंड ऑफ 32 के मैच में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और जापान के ताल्लुकात हकीकी तौर पर बहुत खास हैं और इक्तिसादी शराकतदारी की कामयाबी की बहुत सी शानदार मिसालें मौजूद हैं। आज शाम नई दिल्ली में भारत जापान मुश्तरका इक्तिसादी फोरम से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि जब जापान की महारत और सरमायाकारी भारत की रफ्तार और पैमाने के साथ यकजा होती है तो पूरी दुनिया को उससे फायदा होता है। उन्होंने कहा कि आज दोनों फरीकों ने शराकतदारी को और ज्यादा गहरा और मजबूत करने का फैसला किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत और जापान ने इक्तिसादी तहफ्फुज़, मस्नूई ज़हानत, दिफा और सेहत जैसे बहुत से शोबों में आज समझौते किए हैं जो इस शराकतदारी को मुस्तकबिल के लिए और लामहदूद बनाएंगे।
2: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। जब जापान की एक्सपर्टीज और इन्वेस्टमेंट भारत के स्पीड और स्केल के साथ जुड़ती है तो पूरी दुनिया को फायदा होता है।
1: जापान की वज़ीर-ए-आज़म सनाई तकाइची ने अपने खिताब में कहा कि ताउन के बहुत से शोबों के माबेन तवानाई का तहफ़ुज़ इंतहाई अहम शोबों में से एक है। उन्होंने कहा कि हालिया G7 चोटी कॉन्फ्रेंस में उन्होंने तवानाई के तहफ़ुज़ को मुस्तहकम करने के लिए 3 तजावीज पेश की थी ताकि पैदावारी और सारिफीन मुल्कों के दरमियान आजाद और शफाफ तवानाई की तिजारत करने, तवानाई के जामे जखीरे का ऐलान करने और ताउन को फरोग देने को यकीनी बनाया जा सके। मोहतरमा तकाइची ने कहा कि पावर एशिया इनिशिएटिव इस नजरिए को ठोस कार्रवाई में बदलने के लिए काम कर रहा है। इस मौके पर दोनों वज़राए आज़म ने हरियाणा के शहर खारखोदा में मारुति सुजुकी की गाड़ी तैयार करने की चौथी फैक्ट्री का मुश्तरका तौर पर इफ्तिताह किया। इससे कबल भारत और जापान ने आज मुख्तलिफ शोबों में समझौतों का तबादला किया। इनमें इक्तिसादी और तवानाई का तहफ्फुज़, अदविया और मस्नूई ज़हानत के शोबे शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज तीसरे पहर नई दिल्ली में अपनी जापानी हममनसब सनाई तकाइशी के साथ सालाना चोटी कॉन्फ्रेंस सतह की बातचीत की। ये चोटी कॉन्फ्रेंस बाहमी ताल्लुकात के मुकम्मल शोबों का इहाता करने और उन्हें दवाम बख्शने की गरज से दोनों मुल्कों के लिए मौका फराहम करने के साथ साथ बाहमी मफाद के इलाकाई और आलमी मामलात पर नजरियात का तबादला करने का मौका भी फराहम करती है। बातचीत के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि आज के दौर में भरोसा सबसे बड़ा असासा है और भारत और जापान की बाहमी शराकतदारी वक्त की कसौटी पर खरी उतरी है। उन्होंने उजागर किया कि भारत और जापान आज दुनिया की सबसे बड़ी मईशतों में शामिल हैं और एक आजाद और खुला भारत बहरुल काहिल दोनों ममालिक के लिए एक मुश्तरका तरजीह है।
2: आज भारत और जापान दोनों ही विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से हैं। एक फ्री प्रॉस्परस और रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता है। क्षेत्र की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक और मार्केट इकोनॉमी के रूप में आज हमने कई महत्वपूर्ण पहल की है। इनसे हम मिलकर पूरे क्षेत्र में शांति, स्थिरता और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेंगे।
1: आज शाम नई दिल्ली में मीडिया को तफसीलात बताते हुए खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ने कहा कि दोनों लीडरों ने इस बात को तस्लीम किया कि ये ताल्लुक एतमाद पर मबनी है और आज की मसरूफियात के दौरान एतमाद नुमाया तौर पर देखा जा सकता था। उन्होंने कहा कि आज की मसरूफियात में तवानाई के तहफ्फुज़ और इक्तिसादी तहफ्फुज़ समेत शोबों में अच्छे नतायज हासिल हुए हैं। आज भारत और जापान ने खाम तेल की जामे जखीरा अंदोजी, पेट्रोलियम रिजर्व के तरीक़ेकार और समुद्री तवानाई की नकलो हरकत के अख्तदारी सिलसिले से मुतालिक तआवुन को और गहरा करने से इत्तेफाक किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और उनकी जापानी हममनसब सनाई तकाईची के दरमियान आज तीसरे पहर नई दिल्ली में सालाना सरबराह सतह की बातचीत के बाद इस इत्तेफाक का ऐलान किया गया। दौरे के नतायज से मुतालिक तफसीलात फराहम करते हुए खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ने कहा कि दोनों लीडरों के दरमियान तबादले ख्याल में तवानाई की लचक एक कलीदी मौजू रहा। भारत की पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत और जापान की इक्तिसादी तिजारती और तवानाई की लचक से मुतालिक सनद की वजारत के जरिए जारी एक मुश्तरका बयान के मुताबिक फरीकैन ने मौजूदा जोग्राफियाई और सियासी गैर यकीनी की सूरतेहाल के माबेन तवानाई की लचक को मुस्तहकम करने की गरज से एशिया में जिम्मेदार मुल्कों और तवानाई इस्तेमाल करने वाले बड़े ममालिक के तौर पर काम करने के मुश्तरका इरादे का इजहार किया। तवानाई की नकलो हमल से मुतालिक दोनों ममालिक ने तेल और गैस के लिए लचकदार समुद्री लॉजिस्टिक्स की अहमियत पर जोर दिया और समुद्री तवानाई की नकलो हमल के जारी सिलसिले में मुश्तरका सरमायाकारी समेत तआवुन के मौके की जस्तजू करने से इत्तेफाक किया। कॉमर्स और सनद के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने आज कहा कि जापान के साथ भारत की जामे शराकतदारी में सरमायाकारी एक कलीदी उनसुर के तौर पर उभरी है और तवक्को है कि बाहमी ताल्लुकात को मजीद इस्तेहकाम मिलेगा। एक निजी टेलीविजन चैनल के जरिए मुनाकिदा शेपिंग द एशियन सेंचुरी से मुतालिक भारत जापान जामे मुजाकिरात से खिताब करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि भारत की हुनरमंद अफरादी कुव्वत के लिए मौके खुल रहे हैं जबकि हुकूमत की तवज्जो वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में सबके लिए यकसां तरक्की को यकीनी बनाने पर मरकूज है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। पेट्रोलियम और कुदरती गैस के वजीर हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि भारत अपनी रिफाइनरी की सलाहियत में तेजी के साथ तौसी कर रहा है। नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब पुरी ने बताया कि अगले 6 से 12 महीनों में मुल्क की रिफाइनरी की सलाहियत सालाना 300 मिलियन मैट्रिक टन हो जाएगी। उन्होंने कहा कि 10 साल के वक्फे के बाद पहली ग्रीन फील्ड रिफाइनरी कायम की जा रही है। मगरबी एशिया के बहरान के दौरान सूरत हाल से निमटने की भारत की कार्रवाई के बारे में जनाब पुरी ने कहा कि तवील अरसे तक हुकूमत ने पेट्रोलियम और डीजल की कीमतों को कंट्रोल किया है, नीज इन पर आयद महसूलात को कम किया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत शहरियों के मफाद को हमेशा तरजीह देती है और उन पर तवज्जो मरकूज रखती है। वजीर मौसूफ ने कहा कि पिछले 4 साल में पेट्रोल की कीमत में सिर्फ 5.58% का इजाफा हुआ जबकि डीजल की कीमतों में ये इजाफा 6.23% रहा। सारिफिन के लिए तेल की कीमत में कोई इजाफा नहीं हुआ और हुकूमत के मालियाती निजाम ने खाम तेल की कीमतों में इजाफे को बर्दाश्त किया है। शहरी हवाबाजी की वजारत ने आज मुल्क भर के बैन अलाक्वामी हवाई अड्डों पर इबोला की जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का आगाज किया। ये जदीद डिजिटल प्लेटफॉर्म सेहत खिदमात के डायरेक्टोरेट जनरल DGHS और दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड DIAL के इश्तराक से तैयार किया गया है। इसका मकसद सेहत, इमिग्रेशन और निगरानी करने वाले इदारों के दरमियान बरवक्त राब्ता कायम करके खतरे से दो चार मुसाफिरों की फौरी शिनाख्त करना और बैन अलाक़वामी मुसाफिरों की सेहत की निगरानी को मजीद मौसर बनाना है। एयर सुविधा 2.0 में मुकम्मल तौर पर कागज से मुबर्रा और बगैर जिस्मानी राब्ते के सेहत से मुतालिक खुद ऐलानिया निजाम मुतारिफ कराया गया है। नए निजाम के तहत बैन अलाक़वामी मुसाफिर अपनी आमद से 24 घंटे पहले ऑनलाइन तरीके से सेहत से मुतालिक खुद ऐलानिया फॉर्म जमा करा सकेंगे, जिससे इमिग्रेशन की कार्रवाई तेज होगी और हवाई अड्डों पर सेहत की जांच भी आसान और मौसर तरीके से अंजाम दी जा सकेगी। अमला, अवामी शिकायत और पेंशन के मरकजी वजीर मुमलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि मजमूरी जहानत अब सिर्फ एक मुतबादल नहीं रह गई है बल्कि ये अच्छी हुक्मरानी का एक अहम सुतून है। उन्होंने दानिशमंदी के साथ AI के जिम्मेदाराना इस्तेमाल की अहमियत पर जोर दिया। आज से पहले जब

0: कल से होगा और ये 28 अगस्त को इख्तिताम पजीर होगी। पेश है एक रिपोर्ट।
1: भगवती नगर जम्मू के यात्री निवास से आज अल सुबह रवाना हुआ श्री अमरनाथ जी यात्रियों का पहला काफिला सख्त सिक्योरिटी के बीच आज दोपहर वादी पहुंच गया। ये काफिला 4,822 यात्रियों पर मुश्तमिल है। इनमें 2,510 यात्री पहलगाम जबकि 2,312 यात्री बालतल के रास्ते कल सुबह पवित्र गुफा की तरफ रवाना होंगे। बेस कैंप पहुंचते ही इंतजामिया के अफसरान और मकामी लोगों ने यात्रियों का वालेहाना इस्तकबाल किया। यात्रा के ऐसे इनेकाद के लिए दोनों रास्तों पर सिक्योरिटी के माकूल इंतजाम किए गए हैं। यात्रा के पूरे रास्ते पर पुलिस, नीम फौजी दस्तों और फौज के इजाफी एहलकारों को तैनात किया गया है। इसके अलावा तिब्बी खदमात की फराहमी, मौसमी हालात की निगरानी की सहूलियात के अलावा हसास मकामात पर क्विक रेस्पॉन्स टीम्स को भी मामूर किया गया है। अलावा अजी यात्रा के रूट्स पर सीसीटीवी कैमरे और यात्रियों नीज गाड़ियों के लिए आरएफआईडी ट्रैकिंग निजाम भी नस्ब किया गया है। उर्दू खबरों के लिए श्रीनगर से मैं इश्फाक शाह।
0: उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में लगातार हो रही बारिश के पेश नजर इंतजामिया ने आदि कैलाश ओम पर्वत यात्रा के लिए इनर लाइन परमिट जारी करने मंसूख कर दिए हैं ताकि यात्रियों के तहफ्फुज को यकीनी बनाया जा सके। धारचूला के सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट आशीष जोशी ने कहा कि इंतजामिया मौसम के हालात का जायजा लेकर परमिट फिर से जारी करने पर गौर करेगा। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने कहा है कि जुनूब मगरबी मानसून मजीद आगे बढ़ते हुए पूरी दिल्ली, गुजरात के मजीद इलाकों, उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्सों, मध्य प्रदेश के बेशतर इलाकों, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों तक पहुंच गया है। मौसमियात के महकमे ने मुल्क के मगरबी और वसी इलाकों में अगले 2 से 3 दिन के दौरान शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इसी दौरान आंध्र प्रदेश, मगरबी बंगाल के गंगा के मैदानी इलाके, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, वस्ती महाराष्ट्र, पंजाब और राजस्थान में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई की गई है। IMD के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश, आसाम और मेघालय में गर्म और हब्स वाला मौसम बरकरार रहने का इम्कान है। गुजरात में मानसून ने शिद्दत इख्तियार कर ली है जिसकी वजह से 109 तालुका में तेज बारिश हो रही है। खास तौर पर सौराष्ट्र और जुनूबी गुजरात में जूनागढ़ जिले के मंगरौल में आज रियासत भर की सबसे ज्यादा 8 इंच तक की बारिश रिकॉर्ड की गई है। शदीद बारिश की वजह से सौराष्ट्र और जुनूबी गुजरात खित्ते के नशेबी इलाकों में जगह जगह पानी भर गया है। फीफा वर्ल्ड कप में आज रात इंग्लैंड के लॉस एंजलिस स्टेडियम में राउंड ऑफ 32 के एक मैच में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। राउंड ऑफ 32 के दीगर मैचों में टोरंटो में पुर्तगाल का सामना क्रोशिया से होगा जबकि कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया आमने सामने होंगे। इससे कबल आज सुबह बेल्जियम सेनेगल को 2 के मुकाबले 3 गोल से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की रफ्तार और जापान की महारत आलमी तरक्की के लिए कलीदी मुहर्रिक साबित होंगी। उन्होंने नई दिल्ली में जापान की अपनी हम मनसब के साथ बातचीत की। भारत और जापान ने स्ट्रेटेजिक तेल जखायर और समुद्री नकलो हमल के निजाम को ज्यादा महफूज और मुस्तहकम बनाने के लिए तवानाई साझेदारी का ऐलान किया है। हुकूमत मगरबी एशिया बहरान के तनाजुर में अगले 1 साल के दौरान मुल्क में सालाना तेल साफ करने की सलाहियत को 300 मिलियन मेट्रिक टन तक तौसी देगी। मरकज ने मुल्क के तमाम बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डों पर इबोला की जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का आगाज किया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
2: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:30 हुए हैं। प्रस्तुत है नाटक। नाटक का शीर्षक है उदास चबूतरा। प्रतिभागी कलाकार हबीब तनवीर, जैमिनी कुमार, वीरेंद्र श्याम अरोड़ा, कुसुम मिश्रा, चांद नारायण सक्सेना, मंजू मैनी, कंचन बाला, राजकुमारी प्रसाद। लेखक डॉक्टर राही मासूम रजा, निर्देशक सत्येंद्र शरद और प्रस्तुति सहायक हैं सुदर्शन कुमार। तो लीजिए प्रस्तुत है नाटक उदास चबूतरा।

0: जावेद ने?
1: जावेद, उस कमबख्त का नाम न लो मेरे साथ।
0: कमबख्त हो उसके दुश्मन?
1: अब दुश्मनों उश्मनों ने कमबख्त होना छोड़ दिया है बेगम। जानती हो उसने अख्तर से क्या कहा है, और वो भी कब, जबकि आज बारात जाने वाली है। तुम्हारे नूरे चश्म अजीज जान सल्लमहु वगैरह वगैरह ने कहा, जबान वालिद साहब ने दी थी, मैंने नहीं दी थी, इसलिए शादी भी वही कर ले।
0: तौबा तौबा, अल्लाह तौबा।
1: जी हाँ, इस सफेद दाढ़ी पे सफेद बालों वाली इस बेगम को छोड़ के मैं उसकी मंगेतर से शादी कर लूं। ला हौल वला कुव्वत, जहन्नम में गया ये घर। क्या इसी दिन के लिए पढ़ाया लिखाया था, पाल पोस कर जवान किया था कि सल्लमहु मुझे शादी का मशवरा दे, यानी कि अपने बाप को शादी का मशवरा कि वो दूसरी शादी कर ले।
0: तौबा तौबा, अल्लाह तौबा।
1: मैं कहता हूँ बेगम, कयामत के आने में ज्यादा से ज्यादा दो चार दिन रह गए।
0: नहीं नहीं, मेरा जावेद ऐसा नहीं कह सकता।
1: और क्या साहब, बेटे ने शादी का मशवरा दिया, बीवी झूठा बना रही है, हम भी क्या याद करेंगे क्या खुदा रखते थे।
0: हाय, तो चीखते क्यों हो?
1: अब लीजिए, कमाल हो गया, अपने घर में मुझे बोलने का हुक्म नहीं है। 63 साल की उम्र में अब मुझे बोलने के आदाब भी सीखने।
0: कोई कहता क्या है और ये समझते क्या है? मैं कहती हूँ जावेद के अब्बा आप
1: मुझे तो जावेद का अब्बा न कहो।
0: क्यों, क्या तुम जावेद के अब्बा नहीं हो?
1: मैं क्या जानू।
0: क्या?
1: हाँ हाँ, मैं उस नालायक का बाप बनने से इनकार करता हूँ, मैं आग कर दूंगा उस अब्बा।
2: अम्मी, क्या है अख्तर की दुल्हन? वो मुन्ने की तबीयत खराब हो गई है और वो है नहीं।
1: वो कौन?
0: अरे अख्तर, और कौन?
1: ये अख्तर का नाम वो कब से हो गया, हमने तो नहीं रखा।
0: जी आज आखिर तुमको हो क्या गया?
1: मुझे
0: है?
1: नई रोशनी हो गई है। हाँ।
2: मैंने मजले साहब से कहा कि जरा डॉक्टर को बुला दें, तो उन्होंने कहा
1: वो तो चाहते हैं कि इस घर के तमाम लोग मर जाएं।
0: अरे खुदा ना करे, मरे इस घर के दुश्मन।
1: इस घर का दुश्मन तो वही कमबख्त जावेद है। कमाल, समझ में कुछ नहीं। अब मैं भाई खलील को क्या मुंह दिखाऊंगा? कमबख्त को मालूम था कि निस्बत बचपन की, उसे यह भी मालूम था कि कोई 10 महीने से तारीख मुकर्रर है, मगर वो चुप रहा। और आज जबकि शाम को बारात जाने वाली है तो कहता है वाले साहब शादी कर ले। तो ये वो करीम कहां मर गया?
2: उसे तो आज आपने निकाल दिया ना।
1: तो वो कमबख्त निकल क्यों गया? हुक्म न मानने ही के जुर्म में तो मैंने उसे निकाला था।
0: तुम्हारा ये हुक्म वो मान गया?
1: अरे तो शाहिद ही को भेज दिया होता।
2: छोटे साहब है नहीं।
1: शरीफ और दीन मोहम्मद कहाँ मर गए?
2: दीन मोहम्मद को मजले साहब ने डाकखाने भेजा है।
1: क्या मतलब, यानी आज इतवार को डाकखाने भेजा है?
2: अब ये मैं क्या जानू, उन्हीं ने कहा था।
1: और शरीफ?
2: वो छुट्टी पर है, उसके लड़के की शादी है।
1: उसके लड़के की शादी है? क्या उसके लड़के ने ये नहीं कहा कि अब्बा तुम खुद शादी कर लो? अच्छा भाई, मैं खुद ही जाता हूँ डॉक्टर के यहाँ।
0: बहु बैठ जाओ, अरे तुम ही जावेद को समझाओ ना, खानदान की इज्जत का सवाल है, बचपन की निस्बत है, अगर टूट गई तो उस बेचारी लड़की का क्या होगा? अरे कहाँ मिलेगा उसे दूसरा वर? दुनिया की जबान कौन रोकेगा, सब उसी में कीड़े निकालेंगे, कहेंगे आए ऐसा ही कोई ऐब रहा होगा, जब ही तो निस्बत टूट गई। अरे जिधर देखो उधर ऐ नौज और उई बहन होने लगेगा।
2: अम्मी, मैंने तो मजले साहब को बहुत समझाया मगर वो एक नहीं सुनते। कहते हैं जिंदगी उन्हें गुजारनी है कि घर वालों को, फिर घर वालों को फैसला करने का क्या हक है?
0: उए अल्लाह, अगर उसके बाप ने भी यही सोचा होता तो वो अल्लाह मियाँ के यहाँ बैठा बैठा अपनी पैदाइश का इंतजार करता रहता। और नहीं तो, और फिर इस घर में आखिर अख्तर की भी तो शादी हुई है।
3: ए बाजी, ये मैं क्या सुन रही हूँ?
2: तस्लीम कलूटन खाला,
0: जीती रहो बहू जीती रहो, दूधो नहाओ पोतो फलो। ए बाजी, सुना है जावेद ने शादी से इनकार कर दिया?
3: अरे वही तो किस्मत को रो रही हूँ बैठी, कहता है जिसने जबान दी है वही शादी कर ले।
0: ना बाबा ना, ये नहीं सुना था मैंने कि बेटा बूढ़े बाप को शादी का मशवरा दे, और वो कौन कलमुही है जिसने ये आग लगाई है?
3: इसीलिए बुजुर्गों ने कहा है कि जवान होने से पहले लड़कों को ब्याह देना चाहिए। अब मेरा कलन माशाल्लाह से 18 साल का है, एक बच्चे का बाप है, और बहू खुदा रखे फिर उम्मीद से है। आज के लड़के तो जरा बड़े हुए के लगे इश्क करने। एक हम लोगों का जमाना था कि कहो मरते मरते इश्क का नाम सुन लिया तो सुन लिया, वरना उठ गए दुनिया से, और ये भी ना जाना कि इश्क औरत होता है कि मर्द।
2: और ये लैला मजनू के किस्से खाला?
3: ऐ बहू, अब मेरे पास बहस करने वाली जबान तो है नहीं, मगर तुम ही बताओ कि अब से पहले कोई लड़का अपने बाप को शादी का मशविरा दे सकता था? मेरी सास की सौतेली ननद की खाला का लड़का आशिक हो गया था किसी पर, मगर माँ बाप ने जब शादी लगा दी तो उस भले मानस ने उफ तक तक की, चुपचाप ब्याह कर लिया। 2 साल हुए मरा है वो। पहली बीवी शादी के 3 साल बाद मर गई तो उसने दूसरी शादी कर ली। किसी को कानो कान खबर ना हुई कि वो किसी पर आशिक था। वो तो जब पिछले महीने लड़की मरी और वो भी 6 बच्चों की माँ होने के बाद, तब उसके बक्स से कुछ खत निकले, अरे तब पता चला कि दोनों में इश्क था। इश्क इसे कहते हैं बहू, न कि ये कि जिसे देखा उस पर आशिक हो गए।
1: कौन किस पर आशिक हो रहा है भला?
3: आओ बेटा आओ, तुम्हारी ही बातें हो रही थी।
1: अच्छा खाला, मेरी अम्मी।
3: छोड़ दे मुझे, मैं नहीं हूँ तेरी माँ।
1: मैं नहीं मानता।
3: तूने मेरा बड़ा खून जलाया है जावेद। ऐ हाँ बेटा, अच्छे लड़कों के ये लक्षण नहीं होते। देख शरवन कुमार अपने माँ बाप को उठाए उठाए जिंदगी भर घूमता रहा।
1: उसके लिए तो मैं भी तैयार हूँ।
3: बस शादी करने को तैयार नहीं है नालायक। कब बखत तू पैदा होते ही मर क्यों ना गया?
1: अम्मी आप खुदा ना खास्ता कहना भूल गई। कलूटन खाला, आपने भी नहीं कहा। अरे बाजी मरे इसके दुश्मन।
3: अच्छा अब बात ना बना। मैं कहती हूँ बेटा।
1: खाला शुरू से बताइए, पहले ये बताइए कि वकील साहब और उनकी बीवी के ताल्लुकात की खराबी किस किस मंजिल में है। मुन्ने खा के लड़के ने कौन सी नई बदमाशी की। शेख साहब की तीसरी बीवी के लक्षण कैसे हैं?
3: अच्छा और... अच्छा अब ये बातें रहने दे। देख बेटा, अगर तुमने शादी से इनकार कर दिया तो तुम्हारे अब्बा से इस बेइज्जती का दाग बर्दाश्त नहीं होगा। ये बचपन की निस्बत है, आखिर वो लड़की कब से तुम्हारे नाम पर बैठी हुई है?
1: बैठने को कहता ही कौन है अम्मा, उठकर अपने आंगन में टहलती क्यों नहीं?
3: ए बाजी ठीक कहती है बेटा, मेरे ननिहाल के एक दूर के अजीज के साले ने शादी से इनकार कर दिया तो मंगेतर बेचारी ने तेल में अफीम घोल के पी ली।
2: नहीं खाला, मंजले साहब तो मजाक कर रहे थे।
1: कहीं इस ख्याल में न रहिएगा भाभी कि मैं मजाक कर रहा हूँ। मैं मजाक वजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं उस लड़की से शादी नहीं करूँगा।
3: जो नहीं करेगा, क्या खराबी है उसमें? माशाल्लाह से खूबसूरत है, 8वां दर्जा पास है, कशीदाकारी में कई इनाम पा चुकी है।
1: मैंने कह दिया कि मैं शादी नहीं करूंगा।
3: और माँ बाप के मुंह पर तालिख लगाएगा।
1: अम्मा अब मैं आपको कैसे समझाऊं कि शादी बड़ी जिम्मेदारी का काम है।
3: या अल्लाह, आए सुनती हो कलूटन, ये मुझे समझा रहा है कि शादी बड़ी जिम्मेदारी का काम है। जैसे ये तो 10-20 शादी कर चुका है ना, और मैं निगोड़ी क्या जानू कि शादी क्या होती है। चला है मुझे समझाने कि शादी जिम्मेदारी का काम होता है। अरे तेरे बाप ने मुझसे इश्क नहीं लगाया था, कानी हूँ, लगड़ी हूँ, लूली हूँ, बोल आया बोलता क्यों नहीं?
1: क्या कॉन्फ्रेंस हो रही है अम्मी?
3: शाहिद बेटे, ये आपके भाईजान है ना, भाईजान, इन्होंने आपके वालिद साहब को मशवरा दिया है कि इनकी मंगेतर से वो शादी कर ले।
1: हाय
3: हाय, कलजुग है बाजी कलजुग, जो न हो जाए कम है। मेरी एक ननद के लड़के ने तो।
4: खाला पहले एक फहरिस्त दे दो हमें कि तुम्हारी कितनी नंदे हैं। मेरा मतलब है हकीकी और सौतेली मिलाकर। हाँ, कितनी खालाएं हैं और उनकी नंदे वगैरह वगैरह, और उन सबके कितने लड़के हैं?
3: अरे बेटा तुम तो जबान पकड़ते हो।
4: यहाँ तो खानदान की इज्जत का मामला फंसा हुआ है और आपको अपनी एक ननंद के लड़के की कहानी याद आ रही है। हाँ
3: बेटा, तो अपने भाईजान को समझाओ ना।
4: मेरे भाईजान ऐसा कर ही नहीं सकते।
1: आपके भाईजान ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं।
4: मगर भाईजान
1: तुम चुप रहो जी, बुजुर्गों की बात में दखल देते हो।
3: क्या तुम अपने बाप को शादी का मशवरा दो और ये चुप रहे? क्यों चुप रहे? बोल बेटा तू बोल, बोल बोल, देखूं तो मैं तुझे ये कैसे चुप करवाता है, बोल।
1: नहीं शाहिद साहब, आप फरमाइए, आप जरूर फरमाइए। भला ये भी कोई बात हुई? अपनी शादी के मामले में बोलने का हक किसे नहीं होता।
4: मगर भाईजान
1: फरमाइए, मेहरबान फरमाइए।

0: ये अब आप खामोश क्यों हो गए? आइए अख्तर भाई।
1: अम्मी खैरियत तो है?
2: आए खैरियत कैसी बेटा, जावेद की तो अकल पर पत्थर पड़ गए। अरे बेटा तुम ही से समझाओ ना।
1: ये तो सोचो जावेद, आज ही बारात जाने वाली है।
3: मैंने तो ये दरखास्त नहीं की थी ना भाई जान कि आज ही बारात जाए।
2: अरे बेगैरत, ये तो सोच कि अगर बारात ना गई तो उन लोगों की इज्जत का क्या बनेगा। आए पालने वाले तुम मुझे उठा ले।
4: अरे खुदा ना करे बाजी, वो आपको कयामत तक जिंदा रहे।
2: क्या करूँ कयामत तक जिंदा रहकर? जावेद या तो तू शादी कर ले बेटा, या मुझे लाके जहर दे दे।
3: मैं दोनों में से किसी हुक्म की तामील नहीं कर सकता।
1: अम्मा को यूं जवाब देते शर्म नहीं आती?
3: मैंने कोई बदतमीजी तो नहीं की भाईजान?
1: और बदतमीजी कहते कैसे है? नालायक बदतमीज।
4: अरे आप कर क्या रहे हैं?
1: तुम चुप रहो जी। इस बेहुदा को हम सब ने प्यार किया, सर पर चढ़ाया, इसकी हर ख्वाहिश पूरी की। क्या इसलिए कि ये जरा सी बात ना माने?
3: जरा सी बात? आप शादी को जरा सी बात कहते हैं भाईजान? मैं शादी में सट्टा खेलना नहीं चाहता। अच्छी बीवी मिली तो क्या कहना, बुरी मिली तो किस्मत को रो लेंगे।
1: मैं ये नहीं कर सकता भाईजान, तुम तो सिर्फ ये कर सकते हो कि वालिद साहब को दूल्हा बनाकर भेज दो।
3: नहीं नहीं, वो वालिद साहब को दूल्हा बनाने की बात तो मैंने जरा जल्दी में कह दी थी,
1: तो अब जरा सोच कर फरमाइए।
3: वालिद साहब को शादी करने की क्या जरूरत है? आपको भी तो खानदान की इज्जत का बड़ा पास है।
1: क्या
3: तशरीफ रखिए भाईजान, ये तजवीज आपको पहली तजवीज से ज्यादा बुरी लगी शायद।
4: ये तो क्या कह रहा है?
3: मैं ये कह रहा हूं, अगर इस घर के और मोहल्ले के तमाम लोगों को इसका हक है कि वो मुझे शादी का मशवरा दें, तो फिर मुझे ये हक क्यों नहीं है कि मैं उन लोगों को शादी का मशवरा दूं? अब बताओ खाला, इस बात के तोड़ पर तुम्हें अपनी किसी ननद के सौतेले देवर के खुश दामन भतीजे की कहानी याद है?
1: तुम ये कहना चाहती हो कि मैं शादी कर लूं?
3: जी, इस तजवीज के बारे में क्या ख्याल है?
4: इसका कोई सवाल ही नहीं है।
3: इसका सवाल क्यों नहीं है? बस खानदान की इज्जत का ख्याल दिल से निकल गया और जो लड़की मेरे नाम पर बैठी हुई थी वो आंगन में टहलने लगी और बोली, भाई जान
1: मैं जरूर कर लेता, मगर अफसोस है कि मैं शादीशुदा हूं और मुझे ये नहीं मालूम था कि तुम्हारी गैरत बिल्कुल मर गई है। मैं नहीं जानता था कि तुम्हारी रगों में दौड़ने वाला सादात का खून सफेद पड़ चुका है।
3: आप तकरीर खत्म करें तो मैं कुछ अर्ज करूं।
1: बको बको बको,
3: आपके शादीशुदा होने से क्या फर्क पड़ता है? इस्लाम तो चार शादियों की इजाजत देता है।
1: मुझे मालूम है, खुदा की कसम अगर फर्रो को कोई एतराज ना हो तो मैं खानदान की इज्जत बचाने के लिए।
4: तो भला मुझे क्या एतराज हो सकता है?
2: नहीं बहू, ये नहीं हो सकता।
3: क्यों नहीं हो सकता अम्मी? आपके लायक बेटे के साथ आपकी लायक बहू खानदान की इज्जत के लिए कुर्बानी दे रही है।
0: कलूटन खाला, जल्दी से जाओ मोहल्ले वालों को ये खबर सुना दो, वरना हाजमा खराब हो जाएगा।
4: एनौत, क्या मैं चुगलखोर हूँ?
3: अरे नहीं, मैं तो कहता हूँ अगर पैगंबरी की कोई गुंजाइश होती तो तुम अपनी जुबान को महज़ब बनाकर पेश करती और मैं ईमान लाता।
1: अगर आज शाम को जावेद की बारात नहीं गई तो मेरी बारात जाएगी।
3: आप खातिर जमा रहे हैं भाई साहब, जावेद की बारात नहीं जाएगी।
4: अच्छा बाजी, मैं चली। अकबरी बहन की तबीयत खराब है, जरा देखा उन्हें।
2: चलो मैं भी चलती हूँ। शाहिद बेटे, तुम जाकर जरा नत तो ले आओ।
5: बेहतर है।
2: चलो बाजी।
0: भाभी ये बेवकूफी न कीजिए,
4: आप जाइए मेरे पास से।
1: मैं तो चला ही जाऊंगा, मगर सोच लीजिए भाभी।
0: सौकन, ये आपसे हाँ कहने को किसने कहा था?
4: तो और मैं क्या करती, क्या इनसे कहती कि?
0: भाभी खुदा के लिए इस इन और वो और सुनते हो जी का पीछा छोड़िए, वरना वो आठवीं पास आकर आपको लौंडी बना लेगी।
4: मुझे खानदान की इज्जत के लिए लौंडी बनना मंजूर है।
0: जज्बात निहायत खूबसूरत है। तो फिर आप कसूर आदि हो जाए तो कट जाए ना, आंख ना हुई छुई मुई का पौधा हो गई, किसी ने छुआ नहीं कि मुर्जा गए। मुन्ने का ख्याल तो कीजिए भाभी।
4: भाभी का इतना ही ख्याल है तो फिर आप शादी क्यों नहीं कर लेते?
0: फिर वही उल्टी बात, आपकी जिंदगी और मेरी शादी का क्या ताल्लुक है? मैं शादी करूं या ना करूं आपका देवर रहूंगा।
4: तब तो फिर आपके भाईजान को ही शादी करनी होगी।
0: जहन्नुम में जाए, मेरा क्या है? बाद में

0: ना हो तो ये देख कर रोइएगा कि मैं घर में हूं या नहीं। मेरी मौजूदगी में ये तस्वीर ना बहाइएगा।
1: खुदा उन्हें सलामत रखे। मैं क्यों रोने लगी भला, रोए मेरे दुश्मन।
0: रोना तो आप ही को पड़ेगा भाभी। क्या लफ्ज़ है, लाहौर मिला।

0: बारात तो बड़ी धूमधाम से गई है बहू, लेकिन जावेद मियां नहीं गए। ऐ बहू, मैं तो साफ साफ कहूंगी, ये तुमने अच्छा नहीं किया।
1: और मैं क्या करती खाला? अगर उस वक्त मैं ना कह देती तो सब यही कहते। मैं बाहर की हूं, इसलिए मुझे इस घर की इज्जत का ख्याल नहीं। लेकिन लेकिन मुझे मुन्ने के अब्बा पर भरोसा है, मुझे मुझे उन पर पूरा भरोसा है।
0: ऐ बहू, अब तुम इतनी नादान भी ना बनो। इन मुए मर्दों का क्या भरोसा, नई चीज देखी और फिसल गए। खुद कल्लन के एक साले का वाकया मेरी निगाहों में है। पहली बीवी को देखकर निहाल बनिहाल रहते थे, जान छिड़की जा रही है, जुकाम उसे हुआ तो जुशांदा वो पी रहे हैं। मगर खुदा ने औलाद नहीं दी थी तो घर वालों ने दूसरी शादी का मशवरा दिया। बस वो फैल गए कि अपनी बीवी की मौजूदगी में दूसरी शादी नहीं करेंगे। किस्सा मुख्तसर कि घर वालों ने समझा लिया कि दूसरी तो नस्ल चलाने के लिए आ रही है, मालकिन तो पहले ही रहेगी। इस पर भी वो बीवी के पास बैठकर घंटों रोए, और जब उस नेक वक्त ने समझाया तब ये दूसरी शादी पर खुदा खुदा करके रसमंद हुए। दूसरी बीवी आ गई, मगर दूसरे ही हफ्ते से मियाँ की निगाह बदलने लगी, और अब तो वो बेचारी पहली मायके में बैठी अपने नसीबों को रो रही है।
1: नहीं खाला, मुन्ने के अब्बा ऐसे नहीं है।
0: खुदा करे ऐसे ना हो बहू, मगर यूं जी नहीं बहलता। मैं फिर कहती हूँ कि तुमने अच्छा नहीं किया बहू, मर्दों की निगाह बदलने में देर नहीं लगती। खुदा ना खास्ता अगर अख्तर की निगाह बदली तो तुम अपनी जवानी लेकर कहाँ जाओगी बहू, और मुन्ने का क्या होगा?
2: क्या हो रहा? भाईजान के खिलाफ भारी के कान भर रही हो?
0: ए नौज, कान भरे मेरे दुश्मन, मैं तो
1: रहने दीजिए खाला, बस रहने दीजिए। इनसे मेरा दुखला रोने की कोई जरूरत नहीं है, यही इस लायक होते तो।
2: अभी शौकन आई भी नहीं और दुखड़ा पैदा हो गया। मैं तो समझता था कि कुछ देर लगेगी, पर मान है वफादार बीवी हो तो ऐसी हो कि शौकन के लिए उजले उरूसी सजा रही है। क्यों खाला?
0: अच्छा अच्छा, निगोड़ी खाला को रहने दो, अब बेचारी बहू के जख्मों पर नमक तो ना छिड़को।
1: ये और क्या करेंगे खाला, जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए लोग किराए पर नहीं हासिल किए जाते। हंस लीजिए मंजले भाई, खूब हंस लीजिए।
2: इस मौके पर फिल्म की हीरोइन एक फड़कता हुआ गाना भी सुना देती, जो दिल पे मेरे गुजरती है बेदर्द ज़माना क्या जाने किस्म का। हाँ, बिस्तर अच्छा और आराम दे,
1: आप जाइए यहाँ से।
2: क्या बदसुगनी है खाला, जरा आप ही समझाइए, घर में नई बहू आ रही है और ये रो रही है। अम्मी ने देख लिया तो कयामत आ जाएगी, कयामत। अब कहाँ गई वो खानदान की इज्जत। अच्छा भाभी, एक बात बताइए, शौकन का आना कैसा लग रहा है?
0: एक तो बेचारी का दिल दुखा है और तुम हो के वाह।
2: है, है, तो कलूटन बहन, किसने बेचारी से कहा था कि अपना दिल दुखा है? इन्होंने अपना दिल खुद दुखाया। उस वक्त इन्हें खानदान की इज्जत का पास था, खानदान की इज्जत है। मियाँ को झट से शादी के लिए इजाजत दे दी। अब रोए?
3: भाभी आप यहाँ हैं?
1: नहीं, मैं यहाँ कहाँ हूँ, मैं तो कपड़े पर हूँ, आंखों में काजल तो भर रखा है, सूझता नहीं है। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है, फूटती क्यों नहीं?
3: वो जाफरान का डब्बा नहीं मिल रहा है, और शायद
1: अब आना और कहना नमक की शीशी नहीं मिल रही है, गोल मिर्च की थैली नहीं मिल रही है, झाड़न नहीं मिल रहा है, वो काम चोर नमक हराम, जरा सी बात हुई और दाढ़ी चली आ रही है। भाभी जाफरान का डिब्बा नहीं मिल रहा है। अरे जाफरान का डिब्बा

0: खूंट में बंधा है? नहीं मिल रहा है। अरे नहीं मिल रहा है तो मैं क्या करूं, जाकर ढूंढना। जाफरान का डिब्बा भी बस सब मिल रहा है। नहीं मिल रहे हैं तो मंझले साहब
1: जी। भाभी ये तो आपकी ज्यादती है।
0: बस बस रहने दीजिए, मेरा मुंह ना खुलवाइए। मैं सब जानती हूँ, अंधी नहीं हूँ। इस घर में जो कुछ होता है सब देखती हूँ। आपका कमरा साफ करने में इस चुड़ैल का खूब जी लगता है, हर राफा आवारा कहीं की। मंझले भाई ने ये कहा। मंझले भाई तो हर वक्त हंसते रहते हैं।
1: भाई तो कहती है,
0: मैं खूब जानती हूँ ऐसे भाई बहनों को। कमरे के बाहर भाई बहन बने रहते हैं और कमरे के अंदर लैला मजनू का ड्रामा खेला जाता है।
1: इतनी जरा सी उम्र में आपको ये तमाम बातें कैसे मालूम हो गई? साहब क्यों ना हो, कलूटन खाला की सोहबत का फैज है।
2: अच्छा अच्छा अब मुझे न घसीटो। एवा कोई बात हुई उसमें कलूटन खाला मौजूद? ऐ ठीक ही तो कह रही हूँ बहू, शेख साहब की नौकरानी उन्हें चचा मियां कहा करती थी। जब पैर भारी हुए मुर्दार के तो घरवाली ने मुंह काला करके घर से निकाल दिया। ऐ इसकी तो आंखों में गुनाह है, एक ना एक दिन इस घर को बदनाम करके ही दम लेगी। हाँ
0: अच्छा बहू अब मैं चलती हूँ।
1: हाँ खाला लपक कर जाइए।
2: आए क्यों?
1: क्यों मोहल्ले वालों को मेरे और शबरातन के ताल्लुकात की कहानी नहीं सुनाएगी? बेचारियां आप ही की बातों के सहारे तो जिंदा रहती हैं, वरना इस यक रंग सुस्त रफ्तार और शरीफाना घरेलू जिंदगी में लगता ही क्या?
2: अरे बेटा मैंने तुम्हें गोद खिलाया है,
1: इसीलिए तो मेरी जबान भी जरा तेज चलने लगी है खाला। शबरातन जाओ, भाभी की बातों को बुरा ना मानो। यूं ही कहती
0: हाँ हाँ और क्या, अब तो इस घर में शबरातन की दिलजोई की जाएगी। मैं तो हमेशा की बदजबान हूँ, मुझसे बड़ी खता हुई बेगम साहिबा, इस कनीज को माफ कर दीजिए।
1: हाँ हाँ शबरातन, भाभी कह रही है तो माफ कर दे।
0: पालने वाले मेरा और मंझले साहब का इंसाफ तेरे हाथ में है, गजब खुदा का। मैं इस घर की बहू हूँ और एक जलील नौकरानी के आगे जलील की जा रही हूँ, क्योंकि वो इनकी मंजूरे नजर है।
1: भाभी पलंग पर बैठ जाइए वरना पैर दुखने लगे।
2: बहू बहू हाय बहू ये क्या हो रहा है? क्या बात है बहू? जावेद से पूछिए बाजी।
0: इनसे क्या पूछिएगा, इस कुटनी शबरातन से पूछिए जो अपने आप को इस घर की मंझली बहू समझने लगी है।
2: क्या? तेरी ये मजाल शबरातन है
1: क्या बात है अम्मा? चूंकि वो नौकरानी है इसलिए उसके बारे में जो कुछ कह दिया जाएगा मान लिया जाएगा।
2: तू मेरी बात का जवाब देता है और वो भी इस कमी के लिए?
1: मैं जवाब नहीं दे रहा हूँ अम्मी, मगर हर बात की एक हद होती है। इस गरीब को बदनाम करने से क्या फायदा?
2: आए है अब कैसा गरीब कह रहे हो, और अभी बहू बेचारी हाथ जोड़कर इससे माफी मांग रही है।
0: क्या? अरे मेरी बहू और इस हर्राफा से माफी मांग रही थी। निकल, मैं कहती हूँ तू आप निकल जा, जा से, निकल जा से।
1: अब चूंकि आप लोगों ने इसे मेरे साथ बदनाम किया है इसलिए मजबूरन मुझे शबरातन से शादी करनी पड़ेगी।
2: क्या कहा?
1: मैंने वही कहा जो आपने सुना है। क्योंकि ये नौकरानी है इसलिए आप लोगों को इसके बारे में हर उल्टी सीधी बात करने का हक नहीं है। जाओ खाला जाओ, मोहल्ले वालों को जल्दी से सुनाओ कि मैं शबरातन से शादी करने वाला हूँ।
2: अब मैं
1: जल्दी से जाओ वरना भूल जाओगी। जाओ जाओ जाओ
2: जाओ
1: जाओ जाओ जाओ।
2: तो तूने इस हर्राफा के लिए शादी से इनकार किया था?
1: नहीं, लेकिन आप लोगों ने इसकी तौहीन की है, इसलिए इसके अलावा कोई सूरत ही नहीं है कि मैं इससे शादी करूं।
2: अरे नालायक, तू खानदान की नाक काट के रहेगा।
0: इन्हें खानदान की नाक का ख्याल ही कब था अम्मी?
1: नाक जरा ज्यादा ही बढ़ गई है, तराश हराश की जरूरत।
2: अरे परवरदिगार, क्या मुझे इसी दिन के लिए जिंदा रखा था कि नौकरानी को बहू बन से देखूं?
1: अम्मी जब ये बहू बन जाएगी तो नौकरानी कहाँ रह जाएगी? अम्मा अभी क्या बदशुगनी कर रही है?
2: मैं तेरा दूध नहीं बख्शूंगी नालायक, मैं तेरा दूध नहीं बख्शूंगी।
1: अभी मुन्ने को ये धमकी नहीं सुननी पड़ेगी, मेरा शेर डिब्बे का दूध पी रहा
2: है। मेरे सामने से चला जा यहाँ से, मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहती। खुदा का ये कलमू ही

0: अच्छा खासा साफ रंग है अम्मी। क्यों भाभी, है ना?
1: क्या सौगन के इस्तकबाल को नहीं जाइएगा?
2: उसके इस्तकबाल को जाए मेरी जूती।
1: जूती बेचारी खुद कैसे जाएगी?
2: मजले साहब, खुदा के लिए आप यहाँ से जाइए, मुझसे बात मत कीजिए।
1: अरे वाह, मैं और अपनी प्यारी भाभी से बात न करूं, ये कैसे हो सकता है?
2: तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी।
1: क्या कहने बाबा, अरे मैंने तो जिंदगी बना दी भाभी, एक से दो भले।
2: खुदा को कौन सा मुंह दिखाइएगा मजली साहब?
1: यही, क्या इसमें कोई खराबी है?
2: खराबी?
3: भाभी के होते हुए भाई जान की दूसरी शादी नहीं हो सकती। अगर मजले भाई नहीं करते तो मैं अपनी खिदमात पेश। लाहौर ला कुव्वत, मैं यहाँ कहाँ आ गया?
2: तो फिर क्या हुआ पापा?
3: तो तुझे दलान खाली तो लो, शाहिद कहने लगा के खाना की इज्जत का भाई जान ने ठेका ले रखा है क्या?
1: चलिए भाभी, बच गई आप, बेचारे शाहिद ने अपनी कुर्बानी दे दी। भाभी अब आपसे क्या छुपाना, शाहिद रुकैया से मोहब्बत करता था, बेचारा कह नहीं पा रहा था क्योंकि वो मेरी मंगेतर थी। तो अब इसके अलावा मैं क्या करता, ये सारा ड्रामा करना पड़ा। जल्दी से कलूटन खाला को बुलाकर ये वाकया सुनाइए।
2: हटिए भी मजले साहब, आप बड़े शरीर हैं।
1: अब तक जिंदगी खराब करने वाला था, खून जला रहा था, और अब हटिए, अब बड़े शरीर हैं। अरे वाह। मगर भाभी, आपने बेचारी शवरातन के साथ बड़ी ज्यादती की।
2: अरे वाह, तो क्या हुआ, अब तो आप उससे शादी करने ही वाले हैं?
1: अजी कहा, अपनी किस्मत में शादी कहा, उस कमबख्त शबरातन पर तो दीन मोहम्मद साहब आशिक हैं।
2: है?
1: हाँ।
2: लेकिन मजले साहब, आपको ये सब कैसे मालूम हुआ?
1: अरे मुझे कलूटन खाला ने गोज जो खिलाया है।

0: डॉक्टर राही मासूम रजा का लिखा ये नाटक सुन रहे थे। निर्देशक थे सत्येंद्र शरत, प्रस्तुतिकरण सहायक सुदर्शन कुमार और तकनीकी सहायिका वीना भारद्वाज। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री हबीब तनवीर, जैमिनी कुमार वीरेंद्र, श्याम अरोड़ा, चांद नारायण सक्सेना, कुसुम मिश्रा, मंजू मैनी, कंचन बाला और राजकुमारी प्रसाद।
1: अभी आप नाटक सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बजे हैं। अब आप हमारा अगला प्रसारण सुनेंगे।
2: कार्यक्रम में आज रात हम प्रस्तुत कर रहे हैं प्रसिद्ध चाक्यर कूत कलाकार श्री मार्गी मधु और उनके साथ संगत की प्रस्तुति।
3: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ रीजनल फोक एंड लाइट म्यूजिक वी ब्रिंग यू अ चाक्यर कूत बाय श्री मार्गी मधु एंड पार्टी।
2: श्री मार्गी मधु कूडियाटम के अग्रणी कलाकारों में से एक है। कूडियाटम केरल की प्राचीन संस्कृत रंगमंच परंपरा है, जिसे यूनेस्को ने मानवता की मौखिक एवं अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की उत्कृष्ट कृति के रूप में मान्यता प्रदान की है। 19 मई 1966 को जन्मे

0: श्रोताओं, आपने अभी श्री मार्गी मधु द्वारा प्रस्तुत चाक्यार कूथ सुना। कार्यक्रम का ये भाग आकाशवाणी त्रिशूर के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया था।
1: डियर लिसनर्स, यू हैव जस्ट हर्ड द चाक्यार कूथ प्रेजेंटेड बाय श्री मार्गी मधु एंड पार्टी। This program was recorded in the studios of Akashwani, Thrissur.
0: Kshetriya Lok evam Sugam Sangeet ki Akhil Bharatiya karyakram ki agli prastuti mein hum aapke liye Shri Amal Antony dwara prastut Malayalam Sugam Sangeet lekar aaye hain. Shri Amal Antony ek parshva gayak, sangeetakar, choral arranger tatha vocal coach hai. Ve Akashwani ke A grade kalakar bhi hai. भारतीय और पाश्चात्य संगीत परंपराओं में समान रूप से दक्ष अमल एंटनी ने विश्वविद्यालय युवा महोत्सव में सुगम संगीत श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया। वर्ष 2006 में वे गंधर्व संगीतम टेलीविजन रियलिटी शो के विजेता बने तथा उन्हें राज्य स्तर पर पी सुशीला पुरस्कार से सर्वश्रेष्ठ पुरुष गायक के रूप में सम्मानित किया गया।
1: Continuing with the national program of regional folk and light music, we now bring you Malayalam light vocal songs presented by Shri Amal Antony. Shri Amal Antony is a playback singer, music composer, choral arranger and vocal coach. He is an A-grade artist of Akashwani, a gifted musician with accomplishments in both Indian and Western

0: प्रेम मनुष्य को सपनों, आशाओं और आनंद की दुनिया में ले जाता है। वही प्रेम वियोग उसे आत्मचिंतन और विरह वेदना की ओर ले जाता है। आइए अगले गीत में विरह की वेदना से व्याकुल एक प्रेमी हृदय की भावनाओं को सुने।
1: While love leads a person into a world of dreams, hopes and joy, the loss of love takes one into the realm of introspection and the pain of separation. In the next song, let us listen to the yawning heart of a lover grieving in the anguish of separation.

0: प्रथम प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मन में अमित स्मृतियां रिच देता है। उसमें जिज्ञासा, सपने, आशाएं और निष्कलुष भावनाएं भरी होती है। इत्र की मधुर सुगंध की तरह प्रथम प्रेम की यह सुगंध अब इस गीत के माध्यम से वातावरण में फैल रही है। आइए सुनिए।
1: First love is an experience that creates unforgettable memories in the heart. It is filled with curiosity, dreams, hopes and innocent emotions. Like the lingering fragrance of attar, the sweet scent of first love now fills the air in this song.

0: वृश्चिक मास की शीतल प्रभात में जब प्रकृति नवजीवन का श्रृंगार धारण करती है, तब फूलों से फूलों तक उड़ती तितलियां रंग बिरंगे सपनों का ताना बाना बुनती है। वे हमें भी सपने देखने और जीवन की सुंदर कल्पनाओं को अपनाने के लिए प्रेरित करती है।
1: In the cool freshness of a Vrishika dawn, as nature adorns itself with new life, butterflies fluttering from flower to flower weave dreams of many colors. They inspire us, too, to dream and to embrace the beauty of imagination.

0: आज क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत की अखिल भारतीय कार्यक्रम में आप श्री अमल एंटनी द्वारा प्रस्तुत मलयालम सुगम गीत सुन रहे थे। इन गीतों के बोल श्री रफीक अहमद ने लिखे थे तथा संगीत श्री टीएस राधाकृष्णन ने दिए थे। उनके साथ संगत कर रहे थे श्री विल्सन केएक्स कीबोर्ड, श्री बाबू वर्गीस रिथम पैड, श्री सीएनके मूर्ति बांसुरी तथा श्री सी श्री कुमार तबला। उसके साथ ही आज का क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम का समापन होता है। यह कार्यक्रम आकाशवाणी त्रिशूर केंद्र में रिकॉर्ड किया गया था। यह प्रसारण आपको आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रस्तुत किया गया।
1: इन द नेशनल प्रोग्राम ऑफ रीजनल फोक एंड लाइट म्यूजिक यू वेर लिसनिंग टू अ प्रेजेंटेशन ऑफ मलयालम लाइट सॉन्ग्स बाय श्री अमल एंटनी। द सॉन्ग्स हैव बीन रिटन बाय श्री रफीक अहमद and composed by Sri T. S. Radhakrishnan. He was accompanied by Sri Wilson K. X. on keyboard, Sri Babu Varghese on rhythm pad, Sri C. N. K. Murthy on flute, and Sri C. Sri Kumar on tabla. With this, we come to the end of today's national program of regional folk and light music. This program was recorded in the studios of Akashwani, Thrissur. This broadcast came to you from the Delhi station of Akashwani.
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होगा।
3: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की दो तिहाई कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। ये समझौता दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
3: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है। लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट अपनाते हुए अपनी इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
2: भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों ने एशिया में जिम्मेदार शक्तियों और प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा सुगमता को संयुक्त रूप से मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की साझा इच्छा व्यक्त की है। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलों पर सहयोग करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नागर विमानन मंत्रालय ने देश भर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के सहयोग से इस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्वास्थ्य, आव्रजन और निगरानी एजेंसियों के बीच समन्वय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना है, ताकि जोखिम वाले यात्रियों का शीघ्र पता लगाया जा सके। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए दो दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में यूक्रेन की राजधानी कीव में 21 लोगों की मौत हो गई है और 90 अन्य घायल हो गए। कीव में मुख्य रूप से रिहायशी इमारतों और बुनियादी सुविधाओं सहित 30 जगहों पर भारी नुकसान हुआ। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह हमला यूक्रेन द्वारा रूस के आम लोगों पर किए गए हमलों के जवाब में किया गया है। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात इंगलवुड के लॉस एंजलिस स्टेडियम में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। वहीं टोरंटो में पुर्तगाल का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। Prime Minister Narendra Modi has said that India-Japan relations are truly very special and there are many shining examples of the success of the economic partnership. Addressing the India-Japan Joint Economic Forum in New Delhi this evening, Mr. Modi said, when Japan's expertise and investment combine with India's speed and scale, the entire world benefits. He said, both the sides today decided to make the partnership even more dynamic and profound. The Prime Minister said, India and Japan today reached agreements on several areas such as economic security, AI, defense and health that will make the partnership futuristic and limitless.
3: जो नए साथी इस फोरम के साथ जुड़ रहे हैं, मैं उन्हें भारत जापान सक्सेस स्टोरी का भाग बनने पर हार्दिक बधाई देता हूं। फ्रेंड, भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। जब जापान की एक्सपर्टीज और इन्वेस्टमेंट भारत के स्पीड और स्केल के साथ जुड़ती है तो पूरी दुनिया को फायदा होता है।
4: In her address, Prime Minister of Japan Sanae Takaichi said, among the many areas of cooperation, energy security is one of the most important areas. Ms. Takaichi said, through the Power Asia initiative, it is working to translate this vision into a concrete action. On the occasion, both Prime Ministers jointly inaugurated Maruti Suzuki's fourth vehicle manufacturing facility at Kharkhoda in Haryana. Earlier, India and Japan today exchanged agreements in different fields, including economic and energy security, pharmaceuticals and AI. India and Japan today agreed to deepen cooperation on strategic crude oil stockpiling, petroleum reserve mechanisms and maritime energy transport value chains. It comes after annual summit-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi this afternoon. According to a joint statement issued by the Ministry of Petroleum and Natural Gas of India and Japan's Ministry of Economy, Trade and Industry on Energy Resilience, both the sides expressed their shared intention to work as responsible powers and major energy-consuming countries in Asia to strengthen energy resilience amid current geopolitical uncertainties. Petroleum and Natural Gas Minister Hardeep Singh Puri today said that India is rapidly expanding its refinery capacity. Addressing a press conference in New Delhi, Mr. Puri informed that in the next 6 to 12 months, the country's refining capacity will be brought to 300 million metric tons per annum. He said that the first greenfield refinery is being established after a gap of 10 years. Union Minister for Jal Shakti, C.R. Patil, today reiterated that the rejuvenation of River Ganga is a shared national responsibility, requiring sustained collaboration among central ministries, state governments, urban local bodies, scientific institutions and local communities. The minister said this while chairing the 19th meeting of the Empowered Task Force, that is ETF, on River Ganga. He emphasized that strengthening sewage infrastructure, promoting reuse of treated wastewater and conserving wetlands and biodiversity will collectively accelerate the vision of an Aviral and Nirmal Ganga. He added that these acts will also ensure long-term water security and ecological resilience across the Ganga Basin. Vice President C.P. Radhakrishnan interacted with 40 participants of MP Lead Fellows at Uprashtrapati Bhavan today. In his address highlighting the importance of constitutional values, Mr. Radhakrishnan said, "Democracy flourishes when citizens uphold their duties along with their rights." The Vice President urged the fellows to learn with curiosity, innovate fearlessly and remain committed to the larger national interest, expressing confidence that the MP Lead Fellowship would nurture future nation builders committed to a developed and self-reliant India. The Ministry of Civil Aviation today launched the Air Suvidha 2.0 portal for Ebola health screening at entry points of international airports across the country. The upgraded digital platform aims to strengthen health surveillance of international travelers through real-time coordination among health, immigration and surveillance agencies for early detection of at-risk passengers. And that is the end of this news bulletin.
5: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 900

मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11:10 हो चुके हैं। हमारे संध्याकालीन सभा के प्रसारण अब यहीं पर संपन्न होते हैं। प्रातःकालीन सभा में सवेरे 5:55 पर आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।